0: अभी आपने मोहम्मद अलीम खां का राग अहिर भैरव में वायलिन वादन सुना। इसी के साथ आज का स्वर रंजनी कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। कुछ ही पलों में सुबह के 6 बजने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
2: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रेहरधर शाखा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन सम्पन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय आज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये सत्र सुबह 6:15 बजे से 7:35 तक चलेगा। 130 से अधिक देशों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इच्छुक लोग 1-800-315-7008 पर मिस कॉल देकर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता तो अंतिम विकल्प भी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि ये समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एक दिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Nice, France, on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. During his visit, Mr. Modi will hold talks with the French President Emmanuel Macron, jointly launch Bharat Innovates, and exchange views on key regional and global issues, and also attend the G7 summit. Upon arrival, the Prime Minister received a warm and enthusiastic welcome from the members of the Indian diaspora at Hotel Negresco. Our correspondent has the details.
4: Prime Minister Narendra Modi was accorded a vibrant community reception in Nice, where members of the Indian diaspora gathered in large numbers to welcome him. The Prime Minister also witnessed colorful performances featuring classical Indian dance forms such as Kathak, Odissi and Bharatanatyam, presented by French and Italian artists. Today at 2:30 p.m., Prime Minister Modi and French President Emmanuel Macron will jointly launch Bharat Innovates, a flagship platform showcasing India's innovation and startup ecosystem. The two leaders will also hold bilateral talks to review cooperation in key sectors including technology, defense, innovation and strategic affairs. From France, the Prime Minister will travel to Slovakia for the second leg of his visit. This is Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
3: The Prime Minister thanked the Indian diaspora in Nice for the warm welcome accorded to him. In a social media post, he described the gesture as memorable. Mr. Modi emphasized that despite being several kilometers away from home, the bond of the Indian diaspora with India remains as strong as ever. Indian Space Research Organization ISRO Chairman V. Narayanan has informed that they have collaborated with the Department of Atomic Energy to develop an advanced artificial heating system that can protect lunar lander from the freezing weather of the moon. Addressing the CSIR RISE conclave in Bengaluru, ISRO chief explained that Chandrayaan 3 lander Vikram, fueled by solar energy, operated only for 14 days on the moon. ISRO will now work with the Atomic Energy Department to develop a lunar lander that can survive on the moon for up to 200 days. The White House said that U.S. President Donald Trump will meet Prime Minister Narendra Modi and other world leaders during the next week's G7 summit in France. A senior administration official said discussions are expected to focus on economic growth, supply chains, artificial intelligence, investment partnerships and a range of global security challenges. On Wednesday, President Trump is scheduled to hold a bilateral meeting with Prime Minister Modi before joining a working lunch attended by G7 leaders, outreach partners, and technology executives. U.S. President Donald Trump has said a deal to end the war with Iran will be signed today and that the strategic Strait of Hormuz will be opened to all immediately afterwards. He made this announcement on a social media post and at the same time, Trump kept the threat of fresh attacks dangling if the deal failed to pan out as expected. He said, hopefully this process will work out. If it doesn't, they have the ultimate alternative. The U.S. president also contrasted the proposed agreement with a 2015 Joint Comprehensive Plan of Action. Meanwhile, Iran's foreign ministry spokesperson Ismail Baghaei has said the signing of any agreement is unlikely to take place immediately, stating that it will not happen today and may take place in the coming days. In men's cricket, India defeated Afghanistan by 7 wickets in a rain-affected first one-day international of the three-match series in Dharamshala, Himachal Pradesh last night. Chasing 195 runs, India overhauled the target in 22.5 overs. Indian skipper Shubman Gill scored unbeaten 84 of 66 balls. In the ICC Women's T20 World Cup, India will begin their campaign against arch rivals Pakistan at Edgbaston in Birmingham today. The match will start at 7 p.m. Indian Standard Time. India holds a strong record against Pakistan in women's T20 internationals, winning 13 of their 16 encounters. In Group B action, Scotland defeated Ireland by 40 runs at Old Trafford in Manchester on Friday. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 6:10 और ठीक 15 सेकेंड। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए इस कार्यक्रम में सुनते हैं सबसे पहले ये प्रस्तुति।

अपनी एक आत्मकथा कहीं न जाए का कहिए में भगवती चरण वर्मा ने लिखा है, मनुष्य की दो प्रमुख प्रक्रियाएं हैं, पाना और खोना। इस पाने और खोने को समर्थ व्यक्ति लेन और देन का नाम देते हैं, लेकिन अपनी विवशताओं और असमर्थताओं से घिरा मैंने इसे हमेशा पाने और खोने के रूप में ही जाना है। इस लेने और देने का सकारात्मक रूप अभिमान है, उस लेने और देने का नकारात्मक रूप कुंठा है, लेकिन पाने और खोने का न कोई सकारात्मक रूप है और न नकारात्मक रूप। मैं अभिमान और कुंठा दोनों से दूर रहा हूँ। इसका प्रथम सुस्पष्ट अनुभव उन्हें मई सन 1942 में हुआ। दरअसल वो इस दौरान अपनी पत्नी उमा को साथ लेकर राजनाथ गांव से लौट रहे थे। इलाहाबाद में उन्हें कानपुर के लिए गाड़ी बदलनी थी। लंबे सफर की थकान तो थी ही, सेकंड क्लास के जनाना वेटिंग रूम में पत्नी का सामान रखवा कर पत्नी से आराम कर लेने को कहा, खुद अकेले वेटिंग रूम के बाहर बैठे रहे। उधर भोली पत्नी उमा ने अपना ट्रंक खोलकर कपड़े निकाले और बिना ताला लगाए बाथरूम चली गई। बाथरूम से लौटकर उन्होंने ट्रंक में ताला लगाया और शाम की गाड़ी से दोनों कानपुर के लिए रवाना हो गए। दूसरे या तीसरे दिन पता चला कि ट्रंक से उनके सारे गहने गायब हैं। करीब 150 तोले के गहने थे। पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी, लेकिन जो गया फिर मिलने के लिए नहीं गया था। लिहाजा भगवती बाबू ने स्वीकार कर लिया कि पाने के साथ साथ खोना भी उनके जीवन का अनिवार्य भाग है। इसीलिए वो मानने लगे कि उनके जीवन में कभी किसी तरह की योजना जैसे रही ही नहीं, काल और नियति के हिलकोरों में बहते जाना ही जैसे उनके जीवन का क्रम रहा। अच्छी बात ये थी कि उनमें अपराजित आशावादिता बनी रही। वो घोर संकट को हंसते हंसते बर्दाश्त कर लेते थे और फिर एक नए उत्साह के साथ संघर्षरत हो जाते थे। उनका विचार था कि उनका जीवन नियतिवाद के दर्शन से अनुशासित था। इसका कारण संभवतः उनके बचपन की घटनाएं भी रहीं। एक घटना यूं रही, उनके पिता ने कच्चा मकान रहने के लिए किराए पर लिया था। जब भगवती बाबू महज 2 महीने के थे, एक दिन माँ ने उन्हें कोठरी के फर्श पर लिटा दिया और खुद रसोई में काम करने चली गई। खाना बनाकर जब वो लौटी तो ये देखकर हैरान रह गई कि बेटा सो रहा है और एक नागराज उस पर फन फैलाए बैठे हैं। उनके वहां पहुंचते ही नागराज ने बच्चे को माँ के संरक्षण में छोड़कर विदा ले ली। अब देखिए बचपन की इस घटना को बड़े होकर वो किस तरह देखते हैं। कोई सांप रेंगता हुआ मेरे पास से निकल गया होगा और माता राम ने इस घटना पर रंग चढ़ा दिया होगा। भगवती बाबू ने आत्मकथ्य के एक अध्याय में एक अनोखा प्रयोग किया है। यहाँ वो एक पौराणिक आख्यान को अपनी शैली में सामने रखते हुए अपने समय की एक बड़ी समस्या पर चिंतन करते हैं। कलियुग महोदय तेजी के साथ द्वापर युग को धकेलते हुए बढ़े जा रहे थे। द्वापर के अंतिम सम्राट राजा परीक्षित ने ये तय कर लिया कि कलियुग को आने ही न दिया जाए। बड़े जबरदस्त राजा महाराजा हुआ करते थे, तो उन्होंने कलियुग को खदेड़ा। अब आगे आगे कलियुग भाग रहा था अपनी जान बचाने के लिए और पीछे पीछे राजा परीक्षित कि हम तुम्हारी जान लेकर ही छोड़ेंगे। अंत में राजा परीक्षित ने कलियुग महोदय को दबोच लिया। बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, बोला, हमें तो आना ही है, विधि का विधान कुछ ऐसा ही है और आकर हमें अंत तक रहना भी है। तो राजन, हमें ऐसा स्थान बता दीजिए जहां हम चैन से रहें आपसे बिना संघर्ष किए हुए। बड़ी बुद्धि लड़ाई राजा परीक्षित ने और बुद्धि काम दे गई। बोले, तुम स्वर्ण में रहो, एव वस्तु कहकर कलयुग महोदय स्वर्ण में प्रविष्ट हो गए। भगवती बाबू के अनुसार ये आख्यान

सखियां सीता जी को गौरी पूजन के लिए पुष्प वाटिका में ले आईं, जहां श्री राम को सीता के प्रथम दर्शन हुए। सीता ने भी श्री राम के श्यामल मनोहरी रूप को देखा कि तभी दोनों भाई वाटिका में उनकी आंखों से ओझल हो गए। वो चकित होकर चारों ओर देखने लगी कि राजकुमार क्षण भर में ही कहां लोप हो गए। उसी समय दोनों भाई लता कुंज में से ऐसे प्रकट हुए जैसे बादलों का आवरण हटाकर चांद निकल आता है। दोनों भाइयों के शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभा पा रही हैं। कानों में सुंदर आभूषण, टेढ़ी भ्रुकुटी और घूंघर वाले बाल, रत्नारी आंखों और मुस्कान की शोभा मन को सहज ही मोह लेती है। ये मनोहारी दृश्य देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। तभी एक सखी ने सीता जी से ठिठोली की, पार्वती का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को ही जी भर कर क्यों नहीं देख लेती। सिर से पैर तक श्री राम का सुंदर रूप देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके सीता जी को अवसाद हो आया। शिव जी के धनुष की कठोरता स्मरण कर हृदय में श्री राम की मूर्ति बसाए बिसूरती सीता सखियों समेत पार्वती पूजन को चल पड़ी।

0: पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
1: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने बताया है कि परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया गया है। यह लूनर लैंडर को चंद्रमा के बहुत ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में श्री नारायणन ने बताया कि इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने का काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर की शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थलसेना प्रमुख होंगे। वर्तमान में वे थलसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने की संभावना व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिन में ऐसा संभव हो। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पहुंच गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। अगले 3-4 दिन तक आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, कराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ तेज हवा और बारिश की संभावना है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्वकप में आज भारत ग्रुप ए में अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान के साथ हुए 16 में से 13 मुकाबले जीत चुका है। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार वर्षा के कारण मैच की शुरुआत में देरी हुई और इसे 25-25 ओवर का कर दिया गया। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे संगीतिका, जिसमें आपने सुना प्रीति सुशील के गाए भजन। आप हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ और अब समय है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। जी हाँ, गीतों भरी गुड मॉर्निंग लेकर आपके साथ हूँ मैं। नाम बताएंगे आप, क्योंकि आप हैं मेरे दोस्त और आवाज़ को पहचानते हैं तो ठीक है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, आपके संदेश आएंगे और बताएंगे कि मैं कौन हूँ। तो खैर, थोड़ी देर में बता दूँगी, इतना सस्पेंस नहीं रखूँगी। फिलहाल गीतों भरी गुड मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं रूप कुमार राठौर के गाए इस गीत के साथ। जिस ईमेल के माध्यम से आप हमें मेल भेजेंगे वो है ip.radiodelhi@gmail.com। जी हाँ, ip.radiodelhi@gmail.com पर आप अपना संदेश हमें भेज सकते हैं।

जी हाँ, कितना अच्छा गीत था ये, है ना। सुबह सुबह हमने इतना अच्छा आपको गीत सुनाया कि आपका दिमाग जो है याद करे कि ये आवाज़ किसकी है। खैर कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ, आपके साथ हूँ मैं गुड मॉर्निंग में। जी हाँ, गीत

और एक गुड मॉर्निंग में आपकी दोस्त कुसुमलता। देखिए संदेश आ चुका है मेरठ कैंट से, दिग्दर्शन कविता, अनिल जैन, संजय ढींगिया, राधा नामदेव, संदीप मक्कड़ और दर्शन भाई का। उन्होंने एक प्लेलिस्ट दी है और कहते हैं कोई भी गाना सुनवा दीजिए भाई, देखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि आपकी पसंद का कोई गीत मैं सुनवा पाऊँ। फिलहाल हम संदेश ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास संदेश आने शुरू हो चुके हैं और इन संदेशों को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, गीत सुनवाते हैं आपको। आपकी पसंद का है या नहीं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये हमारे बाकी जो हमारे वो है ना लिसनर्स, उनकी पसंद का ज़रूर है। तो फिल्म विरासत का है ये तो आपकी ही पसंद का निकला, क्या बात है। आपने भी तो विरासत फिल्म का गीत सुनना चाहा था, है ना। चलिए सुनवाते हैं।

हाँ जी, देखिए आप कहेंगे कि गीत सुनवा दिया रिमझिम रिमझिम वाला, और बहुत मौसम तो हो रहा है गर्म। देखिए, जब हम और आप ये सोचें कि चीज़ें वैसी नहीं जो दिख रही हैं, और जो हम सोच रहे हैं वैसी है, तो वैसी ही हो जाती है। यानी कि हम मान लें हल्की हल्की फुहार पड़ रही है, बारिश हो रही है, और मौसम कितना सुहावना हो गया है ना। मतलब ये हम सोच लें तो हमें गर्मी लगनी बंद हो जाएगी। हम कहीं भी हैं तो हमें एहसास ही नहीं होगा। भाई कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो वही बात मैं आपसे कह रही हूँ कि मन को इतना बांध लीजिए कि समय का अंदाज़ा ना रहे, मौसम का बिल्कुल पता ही ना चले, और आप वैसे खो जाएं जैसे आपका मन कहे। जी हाँ, खैर, हमने अपना बताया था ईमेल आईडी ipradiodelhi@gmail.com, जिस पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं। फिलहाल हमें संदेश मिला प्रकाश वर्मा, बसंत कुमार सिन्हा, अमृत रामगढ़िया, और नसीर शेख हैं, किसन सपकाल हैं, रफीक भाई पवार हैं, और भूषण खेरा। इन सभी ने हमें संदेश भेजा आपका कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एक बार फिर से। गुड मॉर्निंग गीतों भरी कहानी में, गीतों भरी इस शो में हैं आप सभी अपनी दोस्त कुसुम के साथ। तो लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत उदित नारायण के स्वर में।

धड़कन फिल्म का ये गीत आप तक पहुंचाया आपकी दोस्त कुसुम ने, और इस गीत को गाया उदित नारायण ने।

अंतिम गीत, आज के कार्यक्रम का अंतिम गीत। तो छोड़े जाती हूँ आपको इस गीत के साथ कुमार सानू के स्वर में। लीजिए सुनते हैं, बने रहिए, खुश रहिए और गुड मॉर्निंग को कीजिए गुड मॉर्निंग बहुत अच्छे तरीके से।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और अब लीजिए सुनते हैं हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में समाचार।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय

0: अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
1: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशन को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और CSIR ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी

0: होगी। हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
5: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
4: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
6: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
7: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
4: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
8: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान की इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल

0: लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। तीन मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IMA से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असली तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates event in Nice today. Indian Space Research Organization developing long-life moon landers capable of surviving up to 200 days, says ISRO Chairman V. Narayanan. IMD says conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh during next 2 to 3 days. US President Donald Trump claims deal to end war with Iran will be signed today and Strait of Hormuz will be opened to all immediately afterwards. इंडिया बीट अफगानिस्तान बाय 7 विकेट्स इन

0: more of 66 balls earlier put into bat. Afghanistan were bowled out for 194 in 24.5 overs. Shubman Gill was adjudged player of the match. In the ICC Women's T20 World Cup, India will begin their campaign against arch-rivals Pakistan in Group A fixture at Edgbaston in Birmingham today. The match will start at 7 p.m. Indian Standard Time. India holds a strong record against Pakistan in Women's T20 internationals, winning 13 of their 16 encounters. The Ministry of Ayush, in collaboration with Morarji Desai National Institute of Yoga and Habilt, organized a landmark global online yoga session this morning as part of the celebrations leading up to the International Day of Yoga. The event, which witnessed participation from more than 130 countries, was held with an aim to create a new Guinness World Record for the most viewers on a YouTube live yoga stream. And now for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
1: Thank you, Shagun. Trump Modi meeting on cards, PM lands in France, reads a headline in Hindustan Times, while the Economic Times reports Modi Macron to inaugurate Bharat Innovates today, the event to help deep tech startups attract knowledge partnerships and funds. India flays lethal action on mariners. Jaishankar raises issue with Rubio, who warns against violations in Hormuz, headlines The Pioneer. Lieutenant General Dheeraj Seth, appointed next Army Chief, will assume office on 30th of June, informs the Statesman. Rajnath praises rise in women's strength in IAF. Indian Air Force sees the commissioning of its first batch of women officers. Defence Minister says Operation Sindoor showed the forces capability to destroy enemy infrastructure with precision, cites the Hindu. Hindustan Times informs Anthropic has disabled its two most powerful AI models, Fable 5 and Mythos 5, on a US government order under the headline In a First, AI model pulled offline after US government intervenes. FSSAI bans use of pins, metallic wires in food packaging, reads a front page story in the Times of India. The FIFA World Cup 2026 may be attracting over 5 million strong live audience, but match attendees from India to be only about 30,000, far less than previous edition in 2022. High average costs, travel hurdles, results in tepid interest from Indian travellers, writes the Financial Express. And finally, in a piece titled Fashion to Furnace, some luxe gold watches fail the test of time, the Economic Times writes, as yellow metal price hit record high, vintage pieces are being melted down as the gold content value outstrip their resale worth. And with that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates event in Nice today. Indian Space Research Organization developing long-life moon landers capable of surviving up to 200 days, says ISRO Chairman V. Narayanan. IMD says conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh during next 2 to 3 days. US President Donald Trump claims deal to end war with Iran will be signed today and Strait of Hormuz will be open to all immediately afterwards. India beat Afghanistan by 7 wickets in rain-affected first one-day international cricket at Dharamshala. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin their campaign against arch-rivals Pakistan in Birmingham this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के सदर इमैनुअल मैखों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा मुश्तरका तौर पर भारत इनोवेट्स तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। इसरो के चेयरपर्सन वी नारायणन ने कहा है कि खलाई तहकीक का भारतीय इदारा इसरो चांद पर उतरने वाला ऐसा खलाई जहाज तैयार कर रहा है जो 200 दिन तक काम कर सकेगा। भारतीय महकमा मौसमियात IMD के मुताबिक आइंदा 2 से 3 दिनों में जनूब मगरबी मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के जनूबी इलाकों तक पहुंचने के लिए हालात साजगार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ जंग खत्म होने का मुआहिदा आज तय पा जाएगा और इसके फौरन बाद सभी के लिए आब नए हुरमुस को खोल दिया जाएगा। धर्मशाला में बारिश से मुतासिरा पहले एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। और ख्वातीन के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में अपने रिवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी दो मुल्कों फ्रांस और स्लोवाकिया के अपने दौरे के पहले मरहले के तहत फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। फ्रांस में अपने कयाम के दौरान वो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैखों के साथ मुश्तरका तौर पर भारत इनोवेट्स का इफ्तिताह करेंगे और आइंदा G7 समिट से कबल वो सदर मैखों के साथ बाहमी तआवुन के अहम शोबों और आलमी उमूर पर दोतरफा बातचीत करेंगे। इसके बाद वजीर आजम स्लोवाकिया का दौरा करेंगे जहाँ वो स्लोवाक क्यादत के साथ दो तरफा मीटिंगें करेंगे। कल मारूफ होटल नीक्रेस्को में मुनक्किदा एक कम्युनिटी इस्तकबालिया तकरीब में भारतीय बिरादरी की बड़ी तादाद ने वजीर आजम का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वजीर आजम मोदी ने भारतीय बिरादरी के अफराद से पुरजोश अंदाज में खुशगवार मुलाकात की और रंगारंग सकाफती प्रोग्रामों से महजूज हुए। इन प्रोग्रामों में भारतीय क्लासिकी रक्स की मुख्तलिफ शक्लें जिनमें कथक ओडिसी और भरतनाट्यम शामिल हैं पेश की गईं। ये रक्स फ्रांसीसी और इतालवी फनकारों ने पेश किए। ये पुरजोश इस्तकबालिया भारत और फ्रांस के दरमियान मजबूत सकाफती और अवामी रवाबित की अक्कासी करता है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के सदर इमानुअल मैखों के साथ नीस में पैलेस देस एक्सपोजिशन में भारत इनोवेट्स प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। इस तकरीब में भारत के स्टार्टअप और इख्तराई इको निज़ाम को उजागर किया जाएगा जहां तकरीबन 120 स्टार्टअप्स आलमी सरमायाकारों और टेक्नोलॉजी कायदीन के सामने अपनी इख्तराआत पेश करेंगे। तकरीब के बाद वजीर आजम मोदी और सदर मैखों विला कैरलोस में दो तरफा बातचीत करेंगे। यह इस साल भारत और फ्रांस के ताल्लुकात को खसूसी आलमी स्ट्रेटजिक शराकत दारी की सतह तक बढ़ाने के बाद पहली मुलाकात होगी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दिफा टेक्नोलॉजी तजारत और इख्तरा के शोबों में ताउन के अलावा अहम इलाकाई और आलमी हालात वाक़यात पर भी तबादले ख्याल किए जाने का इम्कान है। इसके बाद वजीर आजम अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत स्लोवाकिया के लिए रवाना हो जाएंगे। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हबीब रहमान।
2: स्लोवाकिया में भारत की सफीर अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का स्लोवाकिया का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान इश्तराक और तआवुन के नए मौके फराहम करेगा और इक्तिसादी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने में भी मुआविन साबित होगा। मोहतरमा अपूर्वा श्रीवास्तव स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में आकाशवाणी के नुमाइंदे के साथ गुफ्तगू कर रही थीं।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
2: व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा हफ्ते फ्रांस में मुनक्किद होने वाली G7 समिट के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। अमरीकी इंतजामिया के एक सीनियर अहदेदार के मुताबिक इन मुलाकातों में इक्तिसादी तरक्की सप्लाई चेन्स मसनूई जहानत सरमायाकारी में इश्तराक और आलमी सलामती से मुतालिक मुख्तलिफ चैलेंजों पर तबादला ख्याल मुतवक्के है। सदर ट्रंप बुध के रोज वजीर आजम मोदी के साथ एक दो तरफा मीटिंग करेंगे जिसके बाद वो एक जोहराने में शिरकत करेंगे। इस जोहराने में G7 मुल्कों के रहनुमा शराकतदार और टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव्स भी शरीक होंगे। खलाई तहकीक के भारतीय इदारे इसरो के चेयरपर्सन वी नारायणन ने कहा है कि उन्होंने एक ऐसे जदीद मसनू हीटिंग निज़ाम को तैयार करने के लिए एटमी तवानाई के महकमे के साथ इश्तराक किया है, जो चांद की सतह पर उतरने वाले खलाई जहाज को चांद के बेहद ठंडे मौसम से महफूज रख सके।

0: बेंगलुरु में सीएसआईआर राइज कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए इसरो के सरबराह ने बताया कि शमसी तवानाई वाले चंद्रयान 3 मिशन का खलाई जहाज विक्रम चांद पर महज 14 दिन ही काम कर पाया। इसरो अब एटमी तवानाई के महकमे के साथ एक ऐसे खलाई जहाज को तैयार करने के लिए काम करेगा जो 200 दिन तक चांद की सतह पर काम कर सकेगा। पिछले 12 वर्षों के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश कयादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों के तहत भारत में एक नुमाया तब्दीली आई है। इस अरसे के दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख्वातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज़ आपके लिए एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम उन इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं जो मोदी सरकार ने शहरियों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए किए हैं।
1: इस्लाहात के 12 साल, एतमाद के 12 साल बन चुके हैं। चाहे वो GST हो, फेसलेस टैक्स का निज़ाम हो या डिजिटल इंडिया, हर पहल ने शहरियों को यह एहसास दिलाया है कि वो मुल्क की तामीर में शरीक हैं। मरकजी बजट 2025-26 में आमदनी टैक्स स्लैब्स और टैक्स की शरहों में जामे तब्दीलियां की गई हैं ताकि तमाम टैक्स दहिंदगान को फ़ायदा पहुँच सके। नए टैक्स निज़ाम के तहत सालाना 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स वाजिबुल अदा नहीं है। 88% टैक्स दहिंदगान को आमदनी 12 लाख रुपए तक है और वो बराह रास्त फवायद हासिल कर रहे हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की तादाद माली साल 2022 में 6,90,00,000 से बढ़कर माली साल 2025 में 9,20,00,000 हो गई है। अगले सिलसिले के GST निज़ाम ने टैक्स के अमल को मज़ीद आसान बना दिया है और शहरियों के रहन सहन को सहल बनाया है। टैक्स का ढांचा अब बुनियादी तौर पर 5% और 18% के स्लैब्स पर मुश्तमिल है, जिसके नतीजे में टैक्स दहिंदगान की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। इस साल अप्रैल में GST की वसूली 2.42 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जो अब तक की आला तरीन सतह है। आकाशवाणी न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए फिल्म प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर्स समीर दीक्षित ने कहा कि GST इस्लाहात मुल्क के सबसे अहम पॉलिसी फैसलों में से एक है। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाया है और इस टेक्नोलॉजी को सियासत और पॉलिसी साजी दोनों शो में मुअसर तरीके से इस्तेमाल किया है। 5G खिदमात सिर्फ 22 महीने में मुल्क के 99.6% अजला तक पहुंच चुकी हैं। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97.07% कमी आई है, जिससे इंटरनेट ज़्यादा सस्ता और काबिल रसाई हो गया है। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारतीय महकमा मौसमियात ने आज शिमाल मशरकी भारत के मुख्तलिफ इलाकों अंडमान और निकोबार जजायर, केरला, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 दिनों के दौरान जनूब मगरबी मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा के मजीद कुछ इलाकों और जनूबी छत्तीसगढ़ के बाज़ हिस्सों में पहुँचने के लिए हालात साजगार हैं। मुवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में महकमाए डाक की जानिब से ड्रोन पर मबनी मेल ट्रांसमिशन खिदमात के आगाज का ऐलान किया है। मजकूरा खिदमात मंडी के सदर पोस्ट दफ्तर और रिहारधर शाख के पोस्ट दफ्तर के बीच शुरू की गई हैं। इस पहल का आगाज मरकजी वजीर के ग्रामीण डाक सेवकों और डाक असिस्टेंटों के साथ तबादला ख्याल के दौरान मौसूल हुए फीडबैक के तनाजुर में किया गया है। इस मीटिंग के दौरान दूरदराज के इलाकों में ज्यादा तेज और मुअस्सर कनेक्टिविटी की जरूरत को उजागर किया गया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंग खत्म करने के लिए आज एक मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे और इसके फौरन बाद अहम गुजरगाह आबनाए हुरमुस को तमाम ममालिक के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने ये ऐलान एक सोशल मीडिया पोस्ट में किया है। इसके साथ ही ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर ये मुआहिदा तवक्कुआत के मुताबिक पायाए तकमील तक ना पहुंच सका तो मजीद हमलों का ऑप्शन भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि तवक्को है कि ये अमल कामयाब होगा, लेकिन अगर ऐसा ना हो सका तो उनके पास आखिरी मुतबादिल भी मौजूद है। अमरीकी सदर ने मुजव्वजा

0: मुआहिदे का मुवाजना साल 2015 के जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से भी किया। ईरानी हुकाम ने ईरान के मरहूम रहबरे आला आयतुल्ला अली खामिनेई की आखिरी रसूमात के शेड्यूल का ऐलान किया है। ईरान की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक आयतुल्ला अली खामिनेई की आखिरी रसूमात की तकरीब तेहरान में इमाम खुमैनी इबादतगाह के मकाम पर 4 और 5 जुलाई को मुनक़िद की जाएगी। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के वज़ीर मुमलिकत प्रताप राव जाधव ने आज खून अतिया करने वालों के आलमी दिन के मौके पर मुल्क के लोगों से अपील की है कि वो रज़ाकाराना तौर पर खून अतिया करें। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब जाधव ने कहा कि अतिया किए जाने वाले खून के हर कतरे में किसी ज़रूरतमंद को सेहतयाब करने और एक ख़ानदान की खुशियों को वापस लाने की ताकत होती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो आगे आएँ, ज़िम्मेदाराना तौर पर खून अतिया करें और कीमती जानों को बचाने में अपना रोल अदा करें। मर्दों के क्रिकेट में कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एक रोज़ा बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज के बारिश से मुतासिर पहले मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। जीत के लिए 195 रन के निशाने का पीछा करते हुए भारत ने 22 ओवर्स 5 गेंदों में जीत हासिल कर ली। कप्तान शुभमन गिल ने 66 गेंदों में नॉट आउट 84 रन बनाए। शुभमन गिल को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। भारत और अफगानिस्तान के दरमियान दूसरा मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में 17 जून को खेला जाएगा। ख्वातीन के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में आज बर्मिंघम में एजबेस्टन के मकाम पर ग्रुप ए के मुकाबले में भारत रिवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं हबीबुर रहमान।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर उर्दू अखबारों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोज़ा दौरे से मुतालिक खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। रोज़नामा इनकलाब की सुर्खी है, G7 ममालिक के साथ भारत के ताल्लुकात को मिलेगी नई क़ुव्वत। तजारत, टेक्नोलॉजी, इख्तरा और आलमी उमूर समेत मुख्तलिफ मौजूआत पर तबादला ख्याल का इम्कान। फौज के नायब सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला आर्मी चीफ मुकर्रर किए जाने की खबर को सभी अखबारों ने अहमियत के साथ सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोज़नामा इनकलाब ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान को नुमाया तौर पर शाये किया है। अखबार लिखता है, मुस्तकबिल के दिफाई चैलेंजेस से निमटने के लिए तीनों अफवाज के दरमियान बेहतर तालमेल ज़रूरी। G7 इजलास के मौके पर अमरीका और ईरान के दरमियान अमन माहदे पर दस्तखत का इम्कान। माहदा होने की सूरत में दस्तखत डिजिटल तौर पर होंगे।
0: और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के सदर इमैनुअल मैखों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा मुश्तरका तौर पर भारत इनोवेट्स तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। इसरो के चेयरपर्सन वी नारायणन ने कहा है कि खलाई तहकीक का भारतीय इदारा इसरो चांद पर उतरने वाला ऐसा खलाई जहाज तैयार कर रहा है जो 200 दिन तक काम कर सकेगा। भारतीय महकमाए मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 दिनों में जनूब मगरबी मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के जनूबी इलाकों तक पहुँचने के लिए हालात साजगार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ जंग खत्म करने का मुआहिदा आज तय पा जाएगा और इसके फौरन बाद सभी के लिए आबनाए हुर्मुज को खोल दिया जाएगा। और धर्मशाला में बारिश से मुतासिर पहले एक रोज़ा बैन अल-अक़वामी मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हरा दिया। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य की। श्रोताओं, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी किसी फिल्म में लोक संगीत, लोक गीतों की धुन गूंजने लगती है तो हमारे पैर अपने आप क्यों थिरकने लगते हैं? क्यों पर्दे पर कबीर के दोहे या बुंदेलखंडी आला सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं? वजह साफ है, क्योंकि हमारे सिनेमा की रगों में हमारी माटी का खून दौड़ता है। इन्हीं सबको समेटी लीजिए सुनिए हिंदी सिनेमा में लोक साहित्य विषय पर भेंटवार्ता। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं फिल्म समीक्षक और साहित्यकार श्री अरुण शेखर। आपसे बात कर रही हैं श्रीमती कल्पना शुक्ला।
3: श्रोताओं, हमारा भारत एक देश मात्र नहीं बल्कि विभिन्न प्रांतों, क्षेत्रों, गांवों, भाषाओं, बोलियों, जातियों, धर्मों और विभिन्न मतावलंबियों का एक ऐसा पुंज है जो हमें समृद्ध तो बनाता ही है बल्कि हमारे

0: पहचान को भी नए पंख और उड़ान देता है। हिंदी सिनेमा जब से अस्तित्व में आया, उसने इन तमाम पहलुओं को न केवल छुआ, बल्कि अपनी कहानी, भाषा और संगीत का आधार भी बनाया। आज इन सभी पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं जाने माने अभिनेता, लेखक, निर्देशक और रंगकर्मी श्री अरुण शेखर जी। अरुण जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: धन्यवाद कल्पना जी, और सभी श्रोताओं को हमारी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार।
0: जी अरुण जी, जब हम हिंदी सिनेमा की बात करते हैं तो पाते हैं कि अधिकांश फिल्मों में जो ग्रामीण पृष्ठभूमि, गांव का आदमी, गांव की कहानियां और गांव का जो संगीत है वो अनायास ही प्रवेश कर जाता है। इन्हीं सबसे वो फिल्म न केवल दर्शकों पर प्रभाव डालती है बल्कि हमारी सांस्कृतिक भव्यता को भी बढ़ाती है। तो आप इस बात से कितना सहमत हैं?
1: कल्पना जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। सिनेमा जो आया तो कहा जाए कि हमारी सारी कलाओं में एक तकनीक लेकर आया, टेक्नोलॉजी लेकर आया, और इसके जरिए वो कलाएं बहुत आगे तक गईं। लेकिन उसके साथ साथ ये हुआ कि और बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ी। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं, लोक साहित्य, लोक जीवन, लोक संगीत, इन सब की बातें कर रहे हैं, तो इनके बगैर वो बिल्कुल खाली खाली है, वो बिल्कुल उदास है, या कहें कि उसमें कमी रह जाएगी अगर उसमें लोक जीवन, लोक कथाएं, लोक संगीत नहीं होगा। इसके बगैर वो अधूरा है।
0: और कई बार हम देखते हैं कि कुछ ऐसी ग्रामीण पृष्ठभूमि की फिल्में होती हैं जो उस दौर से लेकर इस दौर तक अपनी ऐसी पहचान बना लेती हैं कि अब आज का जो दर्शक है वो भी बता देता है कि हाँ, ये फिल्म मैंने देखी है। तो कुछ ऐसी फिल्मों के नाम आप बताएं जो काफी लोकप्रिय हुई हैं।
1: बहुत सारी फिल्में बनी हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं मदर इंडिया की,
0: जी
1: तो मदर इंडिया जो ऐसी फिल्म है जो सभी ने लगभग देखी होगी, उसकी छाप अभी तक है, उसकी कहानियां, उसके चरित्र, उसके गाने, उसका परिवेश, उस सब कुछ इतना ज्यादा रचा बसा है कि लोगों को अच्छी तरह से याद है। उसका कारण यही है कि उसमें जो गाने हैं, उसका जो संगीत है, वो पूरी तरह से आपका मन मोह लेता है। आप उसके साथ गाते हैं, आप उसके साथ गुनगुनाते हैं, वो चरित्र लगता है, अरे हमारे पड़ोस का कोई लाला है, हमारे पड़ोस का ये भाई है, उसकी माँ है, ये पड़ोसी है, वो भैंस है ना, वो बैल हैं, वो खेत हैं,
0: जी
1: वो सब कुछ आपको बहुत सहज लगता है, आपको अपना लगता है। उसमें जो संघर्ष होता है, जो द्वंद है, चरित्रों के बीच में हो, समाज के बीच में हो, वो सारा आपको चूंकि अपना लगता है, वो कहानियां झूठी नहीं लगती हैं, इसलिए वो दर्शकों पर लंबे समय तक कहें कि उनका प्रभाव बना रहता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। आपने लोक संगीत की बात की तो एक बात मैं ये भी जानना चाहूंगी कि कुछ फिल्मों का जो संगीत है वो फिल्म से भी अधिक लोकप्रिय हो जाता है और उससे पहले ही लोगों की जुबान पर चढ़ जाता है। तो ऐसी कुछ फिल्में जिनका जो संगीत है उसने फिल्मों से भी बढ़कर पहचान बनाई है या वो लोकप्रिय हो गए पहले ही, कुछ ऐसा लोक संगीत, कुछ ऐसे गीत संगीत के विषय में आप बताएं।
1: बहुत सारी ऐसी फिल्में रही हैं, वो कई बार होता है कि फिल्में नहीं हिट हुई, उसके जो भी कारण रहे हों, लेकिन गीत संगीत हिट हुआ है। हालांकि जो हिट फिल्में हैं उनके तो हिट हुए हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी फिल्में भी हैं, जैसे मैं अभी बात करूं मधुमती फिल्म, हालांकि वो भी हिट थी, लेकिन
0: जी
1: उसका गाना जो था कि डस गयो पापी बिछुआ,
0: जी
1: इतना ज्यादा फेमस है। उसका इवन डांस, उसमें जो कपड़े पहने गए हैं, उसका परिवेश, वो सारा का सारा इतना मोहक है, इतना सहज है, इतना आनंदमयी है कि वो लंबे समय तक आपके दिल पर राज करता है। इसी तरह से जैसे कि मैंने पहले बात की थी मदर इंडिया की, तो उसके भी सारे गाने, नौशाद का संगीत है, वो सारी धुनें भी लोक धुनों से ली गई हैं, और वो
0: जी
1: गाने भी उसी तरह से लिखे जाते थे। चूंकि कहानी ऐसी है, परिवेश ऐसा है, तो वो जिस चरित्र के लिए गाया जा रहा है उस पर फिट होगा क्या, उस माहौल पर फिट होगा क्या, वो माहौल कहाँ का है, क्या होली का माहौल है, दिवाली का माहौल है, उसके लिए गाने लिखे जाएंगे। क्योंकि ये सारे त्योहार जो है हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं,
0: जी हाँ
1: तो वो त्योहार भी उन कहानियों के साथ साथ चलते हैं, तो त्योहार चलते हैं तो इसलिए उन पर ऐसे गाने बनते हैं।
0: जी बिल्कुल, कई बार त्योहारों को केंद्र में रखकर भी गाने लिखे जाते हैं जो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो जाते हैं अपने संगीत की वजह से।
1: जी बिल्कुल, जैसे कि होली की बात करें तो होली सबसे ज्यादा, चूंकि रंगीन त्योहार है ना, और उसमें जो मस्ती है, जो आनंद है, इसको लेकर के लगभग जब भी फिल्म निर्माताओं को, निर्देशक को अवसर मिला है, उन्होंने होली का गीत जरूर डाला है, पुराने समय से लेकर के अभी तक। यानी कि अभी की जैसे रणबीर कपूर की फिल्म की बात करें तो
0: जी
1: लास्ट फिल्म तक भी होली का गीत उसमें है।
0: जी
1: समय के साथ उसका टेक्सचर बदलता है, उसकी थोड़ी शब्दावली बदलती है लेकिन माहौल वही रहता है होली का, जैसा कि बदर इंडिया से लेकर के या शोले इतनी पॉपुलर फिल्म है उसमें भी आता है होली का, चूंकि कृष्ण से भी राधा से भी जुड़ता है तो कृष्ण राधा का ऐसा चरित्र है। लगान फिल्म है जैसे उसमें भी होली आती है, कृष्ण राधा की बात आती है तो वो त्योहार भी हमारे साथ चलता है तो इसलिए वो हमें याद रह जाता है।
0: जी बिल्कुल, जैसे आपने होली की बात की, होली के गीतों की बात की, तो होली के गीत जब हम सुनते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे जो देशी शब्द हैं वो मिलते हैं, जैसे बलम हो गया, छोरी हो गई, इस तरह की शब्दावली होती है, गुस्सा हो जाना, रूट जाना, रिसाई गई, हमें सुनने को मिलती हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कोई जो फिल्म है गीतों से अलग अगर हम बात करें तो वो अपने संवाद या डायलॉग्स की वजह से भी जानी जाने लगती है। जैसे कि सर मुझे शोले फिल्म का एक डायलॉग याद आता है जिसमें धर्मेंद्र जी अमिताभ जी से कहते हैं कि किस गुमताड़े में बैठे हो, तो कहने का अर्थ यह है कि ऐसे अप्रचलित और रोचक शब्द लोगों पर एक अलग प्रभाव बनाते हैं। तो ऐसी कुछ फिल्में जो लोक भाषा के ऐसे ठेठ शब्दों से भरपूर हों उनकी एक झलक आपके माध्यम से हम अपने श्रोताओं को दिखाना चाहते हैं।
1: देखिए जब कहानियां वहां की हैं, चरित्र वहां के हैं, हमारे ग्रामीण परिवेश के, तो निश्चित रूप से उनकी भाषा ही वैसी होगी, क्योंकि जब लेखक लिखता है तो इस बात को ध्यान में रखता है। जैसे कि मैं कहूँ कहाँ जा रहे हो, अगर शुद्ध भाषा में ये है तो अगर वो अवधि का है, अरे भैया कहाँ जात हो
0: जी,
1: इस तरह से आ जाएगा। तो जैसे ही ये संवाद आता है तो संवाद ही एक्चुअली चरित्र को प्रभावी बनाते हैं और उसको विश्वसनीय बनाते हैं
0: जी।
1: अगर वो उस तरह का चरित्र है गांव का और वो पूरी तरह से खड़ी बोली बोलेगा तो विश्वसनीय नहीं लगेगा, प्रभावी नहीं होगा
0: जी।
1: तो इसी तरह जब जब इस तरह के चरित्र लिखे जाते हैं, जैसे लगान का चरित्र होगा तो उसमें भी साला हम अंग्रेजन से लड़ेंगे, तो अंग्रेज ने अंग्रेजन से लड़ेंगे
0: हाँ।
1: तो इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाएगा। अमिताभ बच्चन से लेकर के गोविंदा से लेकर के आमिर खान तक, हर अभिनेता ने चाहा है कि मैं कोई ऐसा प्रभावी चरित्र करूं जरूर ग्रामीण जो लोगों में रचा। बस आज भी मैं बताऊं कि इतनी फिल्में हिट हो जाएं लेकिन शोले के बाद सबसे प्रभावी और बॉक्स ऑफिस पर हिट होने वाली फिल्म दंगल सारी दुनिया में इतना ज्यादा फेमस हुई है, जबकि पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश की फिल्म है
0: जी।
1: कि गांव में किस प्रकार से एक पिता अपने बच्चों को कुश्ती में लगाना चाहिए। अब कुश्ती जो खेल है कहाँ का है, ग्रामीण परिवेश का
0: जी
1: है। हमारी छोरियां छोरों से कम है के
0: जी।
1: अब ये जब बात आती है तो उसमें जो मिठास जो आनंद है ना वो अद्भुत है। तो इसी तरह बहुत सारे संवाद आते हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि वो प्रभावी और विश्वसनीय बनाते हैं, तो ऐसे लेखक जो होता है उसको इसीलिए लोक भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। नहीं तो क्या होगा कि वो शुद्ध शुद्ध हिंदी अगर हर चरित्र के लिए लिख देगा तो उसमें डिफरेंशिएट करना मुश्किल होगा कौन बोल रहा है। तो जैसे उस करेक्टर की बारी आती हो बोलता है तो पता चल जाता है ये करेक्टर कहाँ का है। जैसे मैं बात करूँ चरित्र की और डायलॉग की आपने बात की, तो मदर इंडिया में थे वो कन्हैया लाल जी। अब कन्हैया लाल जी ने लगभग हर फिल्म में गांव का किरदार निभाया है और अक्सर लाला का किरदार। अरे का राधा बेटिया कहाँ जात हो
0: जी,
1: अभी जब बात बोलते हैं वो तो चरित्र कितनी तरह से सहज हो जाता है। उसी तरह से शोले में
0: जी
1: मौसी हैं, उसका किरदार निभाया लीला मिश्रा जी ने, उनके सारे के सारे संवाद कहा बेटवा अरे सुनो, तो जब इस तरह से अवधि में बोलती हैं वो, उन्होंने सारा जीवन इतनी सहजता से अभिनय किया है कि कभी अभिनय लगा ही नहीं। उसका कारण यही था कि उन्हें उस परिवेश की भाषा पर पूर्णता से अधिकार था, वर्चस्व था उस भाषा पर, वहां के शब्दों पर। तो अगर संवाद लेखक ने कुछ आगे पीछे भी लिखे हैं तो उसको अभिनेता अपने अंदाज से बहुत सहज बना देता है, जो आपके अंदर सहज ही उतर जाता है और लंबे समय तक स्थायी बना रहता है।
0: अभी आपने गोविंदा जी का जिक्र किया था, उसको सुनकर ही होंठों पे मुस्कान आ जाती है। वो कहते कि खुद को मुगले आजम और हमको अनारकली समझे हो क्या, कतना नचा रहे हो,
1: कतना नचा रहे हो भैया।
0: ऐसे संवाद आते हैं, ऐसी बातें आती हैं जो कि अपने चरित्र को अमर कर देते हैं। तो कुछ ऐसे चरित्र और अगर आपके दिमाग में
1: ऐसे तो और चरित्र मैं आपको बताऊं तो एक बहुत बढ़िया फिल्म थी, शुरुआत में तो ज्यादा लोगों ने पसंद नहीं की लेकिन बाद में हिट और कल्ट मानी गई, वो फिल्म है तीसरी कसम। राज कपूर की अभिनीत ऐसी फिल्म थी जो पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश में रची बसी थी, जबकि राज कपूर को ग्रामीण परिवेश का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था, वो पूरी तरह से शहर में रचे बसे थे। बम्बई में ही पैदा हुए, मुंबई में ही रहे, यहीं पले बढ़े, लेकिन उन्होंने उस उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के चरित्र को बखूबी निभाया। उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात थी फणीश्वरनाथ रेणु की, जिन्होंने इस कहानी को लिखा था और इसको निर्देशित किया था वासुदा ने। तो उसमें इस तरह का एक हीरामन चरित्र है, उसका एक एक संवाद, एक एक बात, एक चरित्र जो उसमें कार हीरामन बम्बई जाए हमका बुलाए जाएगा,

0: अब हीरा मन इतना सुंदर नाम है, वो कहता मीता मितवा कहाँ कहें, मीता कहो मितवा कहो, तो मीता मितवा इस तरह के जो शब्द आ जाते हैं तो अपने आप उनके अंदर जो मिठास है वो हमारे बीच में घुल जाती है। फिर हीराबाई कहती कार है हीरा मन, जैसे मैंने कहा बम्बई जाके बुलाए जे, वो हीरा मन कहता है नहीं तुरा जैसन गीत गावे वाली हमका दोबारा कहाँ मिली।
1: क्या बात।
0: तो ये पूरी तरह से

0: वही, जैसा कि मैंने कहा कि लोक भाषा के सारे शब्द उठाए गए, धुनें भी उठाई गई होती हैं, और जो आज तक उस माहौल को, संवेदना को हमारे अंदर जीवित रखती हैं। आज भी जब आप देखते हैं तो आप बरबस, आपके होठों पे मुस्कान आ जाएगी या आंखें नम हो जाएंगी अगर जिसने उसको महसूस किया है तो।
1: आपने संगीत की बात की अरुण जी, तो जैसे पुराना संगीत जो है, हम उसकी बात करें, उसको लाने की बात करें, उसको आगे बढ़ाने की बात करें, तो आज के दौर में आपको क्या लगता है कि जो पुराना संगीत है उसके लिए कोई स्कोप बचा है, वो चलेगा, चल रहा है, या फिर वो विलुप्त हो जाएगा?
0: वो संगीत रहेगा ही, बार बार हमारी बात में निकल के आया है कि वो संवेदना, वो महक और वो उसकी खुशबू जो है ना, आज रिमिक्स भी उन्हीं गानों को चलाया जा रहा है जो गाने उस तरह से पॉपुलर थे, जो हमारे दिलों में बसे हुए थे। नए गानों का कोई रिमिक्स नहीं बना रहा है,
1: बिल्कुल सही बात
0: उन
1: है।
0: गानों को आप बना करके कहीं पहुंचते नहीं हैं। जैसा कि मैं कहूं कि ये दिल्ली 6 का जो गाना है कबूतर वाला, मसक्कली मसक्कली, ये सारे गाने,
1: ससुराल गेंदा
0: ससुराल
1: फूल
0: गेंदा फूल, वो सब लौट के आया है
1: जी,
0: नई फिल्मों में। अगर पीपली लाइव में देखने जाएं तो उसमें पूरी कहानी उसी तरह की है, उसके गाने उसी तरह के हैं।
1: जी
0: गैंग ऑफ वासेपुर में आप देखें कि एक लोकगीत कितना सुंदर सा है, सैया हमार
1: तार
0: एक
1: बिजली से
0: तार
1: पतरे
0: बिजली से
1: हमारे
0: पतले
1: पिया
0: हमारे पिया, जो गाना आया है,
1: जी
0: तो क्या है वो, वही तड़का वो आता है उसमें, तब
1: जी
0: लोग बरबस एकदम उनके चेहरे खिल जाते हैं, लगता अरे अरे अरे वाह वाह वाह क्या बात है। तो ये कहानियां किस तरह की भी हों लेकिन बीच बीच में उनको उलाना ही पड़ता है, वो मिठास जो कि उसी में है। गीत की, संगीत की बात हम कर रहे थे तो एक और बहुत फिल्म जरूर हमको याद करना चाहिए, वो फिल्म है नदिया के पार।
1: जी
0: वो पूरी की पूरी फिल्म उसी परिवेश में रची बसी है, वही रिश्ते, वही भावनाएं। अब उसमें दो भाइयों का प्रेम, उसको घर को बचाना, उसमें सारे त्योहार भी आते हैं, सारे रिश्ते आते हैं, जैसे भौजी
1: जी
0: शब्द है।
1: हाँ भौजी
0: अब रिश्तों में भौजी ऐसा शब्द है, उसमें कैसी बढ़िया छेड़छाड़ है, उसमें मिठास है, उसमें आनंद है, उसमें एक दूसरे के बीच में खुलापन है, साथ में इज्जत भी है।
1: जी,
0: तो उसमें उस गाने को लेके, जोगी जी धीरे धीरे नदी के तीरे तीरे, कोई
1: कौन
0: मांगे
1: दिशा में लेके
0: कौन
1: चला
0: दिशा
1: रे
0: में लेके
1: बटोहिया,
0: चला रे बटोहिया, तो जितने गाने हैं उस फिल्म के, उन गानों की वजह से ही वो फिल्म कहीं बहुत आगे गई है।
1: जी
0: गीत संगीत का इतना प्रभाव रहा है कि वो दूर तक जाती हैं, और लौट के कई बार क्या होता है कि वो गाने हम सुनते हैं और सुनने के बाद हम फिर से वो फिल्म देखते हैं। एक लेटेस्ट सिंगर थी, उन्होंने इस गाने को गा के वो पॉपुलर हुई, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया।
1: जी,
0: बहुत दिनों से गाना गाते सिखाते रहे लेकिन उस रिमिक्स ने उनको कहीं आगे बढ़ा दिया है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर तरफ हम देखते हैं चकाचौंध और मॉडर्न कंटेंट का बोलबाला है, ऐसे में किस प्रकार से सांस्कृतिक सहजता जो है वो संरक्षित रह सकती है इस गीत संगीत के लिए, इसके लिए और क्या प्रयास किए जा रहे हैं आपके विचार से?
0: आज हम फिर से लौट रहे हैं, हमें लौटना ही पड़ेगा, बिकॉज जितनी मशीनें चीज़ें आएंगी कुछ देर के लिए वो आपको लुभा सकती हैं, वो आपको अच्छा लगेगा। जैसे कि खाने की बात करें हम, तो खाने में कुछ देर आप पूड़ी पकवान खाएंगे, लौट के आपको चावल दाल खाना पड़ता है। आज डॉक्टर आपको बताता है कि आपको वही मोटा अनाज, वही देसी अनाज जो इस धरती का, जो इस जमीन का है, वही खाना है, वही
1: जी
0: सब्जियां खानी है, वही मौसमी फल खाने हैं आपको जो इस जमीन के हैं। उसी तरह से वो गीत संगीत आपको फिर से ले जाएगा। जैसे आप देखिए, एक फिल्म आई थी कांतारा,
1: जी हाँ
0: पूरी तरह से वनवासी पृष्ठभूमि पर आधारित है, कितना लोगों ने
1: बिल्कुल
0: देखा, कितना पसंद किया। तो कहीं ना कहीं जो हम उसको ना ढूंढ रहे हैं, जब भी कोई ऐसी चीज मिलती हम झपट लेते हैं,
1: बिल्कुल
0: तो जब भी ऐसा संगीत आएगा, जब भी ऐसा गीत आएगा, हम झपट पड़ेंगे, हम ले लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा DNA उस मिट्टी से जुड़ा हुआ है,
1: बिल्कुल
0: जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ है। जब भी उसकी बात आएगी, अब फिर से सत्तू फेमस हो रहा है खाने
1: हाँ
0: में,
1: हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं
0: कि आप सत्तू खाएं, आप मोटे अनाज खाएं, आप सावा कोदो लहर्रा मकई खाएं,
1: जी,
0: सप्ताह में एक बार जरूर खाएं।
1: बिल्कुल
0: तो इसी तरह से वो गीत और संगीत लौटेगा जिसमें रिश्ते हैं, जैसा कि मैंने भौजी का रिश्ता कहा था, तो उस तरह के रिश्ते लौटेंगे, बहन के रिश्ते लौटेंगे। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हमारी जो फैमिलीज हैं वो न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही हैं,
1: जी
0: रिश्ते गायब होते जा रहे हैं, मामा मामी चाचा चाची वो सब कम होते जा रहे हैं, क्योंकि अगर एक बच्चा है तो उसका भाई ये नहीं, बहन नहीं, भाई बहन नहीं तो जीजा नहीं। तो इस
1: बिल्कुल
0: तरह से रिश्ते खत्म होंगे, तो कहीं ना कहीं उनको लौटाने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी, और ये काम फिल्में करेंगी, ये मनोरंजन करेगा, यही हमें लौटाएगा, यही बताएगा। और फिर से हम कह रहे हैं कि उन रिश्तों की तरफ भी हम लौटेंगे, परिवार भी बढ़ाएंगे, जो बहुत जरूरी है हमारे बचे रहने के लिए।
1: तो जब बात नैतिकता की होती है तो पुरानी फिल्मों से हम किस तरह से सीख सकते हैं चीजों को जो आज की फिल्म

0: में हम देखते हैं कि वो चीजें शायद कहीं ना कहीं कम है या ना के बराबर है।
1: जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन एक बात यह भी है कि परिवर्तन शाश्वत है
0: जी,
1: परिवर्तन होना है और होगा, लेकिन कितना परिवर्तन, किस हद तक परिवर्तन, कैसा परिवर्तन, उस परिवर्तन के तहत कहीं हम खत्म तो नहीं हो रहे, हमारी वो चीजें, हमारी संवेदना, हमारी मनुष्यता तो नहीं खत्म हो रही, इस कीमत पर परिवर्तन कर रहे हैं क्या हम? तो निश्चित रूप से जब हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, टेक्नोलॉजी आती है, फिर परिवर्तन आता है, लेकिन उसको बचाए रखने के लिए कलाओं पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। कला, साहित्य, संगीत, उसकी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि वही संवेदना को बचाएगा। टेक्नोलॉजी आपकी संवेदना को नहीं बचाएगी, टेक्नोलॉजी आपके रिश्ते को नहीं बचाएगी, बचाएंगे क्या? कलाएं। इसीलिए हमारे जीवन में कलाओं का बहुत ही महत्व है, और फिल्में आज इतनी ज्यादा प्रभावी हैं कि फिल्मों को देख करके ही हम अपने जीवन में व्यवहार को बदलते हैं। तो फिल्मों की जिम्मेदारी है, इसलिए जब ऐसा कुछ हो रहा है जो हमारे समाज के लिए, व्यक्तित्व के लिए, रिश्तों के लिए अनावश्यक है, गैर जरूरी है, नुकसानदेह है, तो हमें रास्ता दिखाने का काम भी सिनेमा को करना है। वो सिनेमा लेगा कहाँ से? वो हमारे लोक साहित्य से लेगा, लोक जीवन से लेगा, लोक धुनों से लेगा, वहीं से लेगा, तब फिर से हमारा जीवन आनंदमय होगा, क्योंकि कला का यही काम है। लोग कह देते हैं कि कला समाज का दर्पण है, समाज में जो हो रहा है वही दिखाता है। मैं इस बात को आधे रूप में कंडेम करता हूँ। कला समाज का दर्पण है, आपने कह दिया, लेकिन जो दर्पण है वो डेड है, एक वस्तु है, एक धातु है, लेकिन कला धातु नहीं है, कला जीवंत है, कला में दिशा देने की क्षमता है। दर्पण में दिशा देने की क्षमता नहीं है, वो केवल दिखा दे रहा है कि जो है, लेकिन कला एक कदम आगे बढ़ती है। और ये हो तो रहा है, समाज ऐसा है, आधे में वो दिखाएगी, लेकिन समाज को कैसा होना चाहिए ये काम कला करती है, ये फिल्में करती है, ये संगीत करता है। हर कलाओं का उद्देश्य यही है कि मनुष्यता के अंत तक जाना, मनुष्य और बेहतर और बेहतर और बेहतर मनुष्य बनने की दिशा में प्रवृत्त करना कला का काम है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने सर, लेकिन आजकल हो क्या रहा है कि जो समाज में हो रहा है वो पर्दे पर नहीं है, जो पर्दे पर हो रहा है वो देखकर समाज का निर्माण हो रहा है। और आज के दौर में जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, मुझे लगता है वो आजकल की फिल्में देखना ही पसंद नहीं करते, क्योंकि कुछ फिल्मों में हम ऐसा पाते हैं अत्यधिक क्रूरता है, हिंसा है, गिरते नैतिक मूल्य हैं, तो ऐसे में वो स्वयं भी नहीं जाना चाहते हैं, और वो ऐसा भी चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे भी इन चीजों से दूर रहे। तो चरित्र निर्माण के लिए आजकल की फिल्मों को देखा जाना चाहिए या नहीं देखा जाना चाहिए, ये किस तरह के समाज का निर्माण करने की ओर अग्रसर है?
1: ये बहुत जरूरी सवाल आपने किया है, और ये होना चाहिए, और सब को इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि दर्शकों की भी जिम्मेदारी है। अगर वो उसको डिनायल मोड में आए, अब उसको नकार देंगी, पूरी तरह से उसका बहिष्कार कर देंगी, तब वो लोग उसको बनाना बंद कर देंगे। क्योंकि है क्या कि ये दो तरफा मामला है, निर्माता ये देखता है कि ये चीज चल रही है, इससे हमें पैसा मिल रहा है, क्योंकि उसका पहला उद्देश्य हो जाता है। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि पहला उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। पहले बहुत सारे ऐसे निर्माता, निर्देशक रहे हैं, लेखक रहे हैं, कि उनका पहला उद्देश्य ये नहीं होता था। पहला उद्देश्य होता था कि हम ऐसी कहानी बनाएं जो जरूरी है समाज के लिए। लेकिन अभी निश्चित रूप से सबके अंदर ये प्रवृत्ति आ गई है, इसमें लालच बहुत ज्यादा है कि कितना ज्यादा धन कमा ले। ये पीछे रह जाता है कि हमें करना क्या है, बताना क्या है, इसलिए कुछ भी ऐसी चीजें डालते हैं। इतना बड़ा समाज है तो बहुत तरह के लोग हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो देखना पसंद करते हैं, वो जाते हैं, इनकी वजह से चीजें हिट होती हैं। फिर क्या हो कि जो लोग नहीं देखना चाहते हैं, जो समाज के प्रति जिम्मेदार हैं, उनको लगता है कि समाज को बेहतर बनना चाहिए, वो लोग बेचारे पीछे रह जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके प्रयास छोटे पड़ जाते हैं। तो हमें समाज को भी जागृत करना चाहिए, बाकी लोगों को, कि भाई ऐसी चीजों का बहिष्कार करो। जब आप बहिष्कार करेंगे, कम देखेंगे, तो लोग भी कम बनाएंगे। तो ये दोनों की जिम्मेदारी है, मेरा ऐसा मानना है। और जैसा कि आपने बताया कि अति हिंसा की वजह से लोग उससे दूर हो रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे हैं, रिश्तों का ऐसा घालमेल चल रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं, तो ये सब चीजें कम आनी चाहिए। और ये अगेन मैं कह रहा हूं कि ये दिशा देने का काम हमारा लोक साहित्य ही करेगा, लोक संगीत करेगा, और हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं समाज के, वो भी इन चीजों का कहीं ना कहीं विरोध करें। विरोध कर सकते हैं कि उसको किस तरह से समाज के ऐसे लोगों को कहें कि भाई ये चीजें मत देखो, ये उचित नहीं है, और जो बना रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं जागृत किया जाए कि केवल पैसा लेकर के आप क्या करेंगे। जो समाज से फैली हुई चीज है बुराई, अगर आपके घर में आ जाएगी तो आप क्या करेंगे? आप भी नहीं बचेंगे, और तब जागेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। कई बार कह रहे हैं कि बहुत छोटी छोटी बातें हैं, उनको बड़ी

0: फिल्मों के जरिए नहीं, छोटी फिल्मों के जरिए, छोटी कहानियों के जरिए। जैसे कि पंचतंत्र की कहानी की बात करें, अब छोटी छोटी कहानियां हैं, वो कहानियां जानवरों के जरिए कही गई हैं, उनके चरित्र जानवर हैं। अब इसीलिए छोटे बच्चों को, चूंकि जानवर आकृष्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, सुंदर लगते हैं, अब कछुआ खरगोश लेके आएंगे बच्चों के साथ तो उनको आनंद लगता है। तो इसी तरह जरूरत है कि इस तरह की चरित्र बुने जाएं, इस तरह का संगीत बुना जाए और उनको बताया जाए तो लगेगा हाँ नहीं ये ठीक है।
1: मतलब कि कड़वी गोली खिलानी है तो उसको बताशे में रख के खिला दो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो करना पड़ेगा, वो कला की जिम्मेदारी है और कला कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भटक रहा है और इसके पीछे कारक है अति लालच और हमें इससे मुक्त होना पड़ेगा।
1: जी, कहने का अर्थ है कि सारी चीजें इसी के अंदर समाहित हैं, लेकिन बस जरूरत है तो क्या उचित है और क्या अनुचित है उसका भेद करके कुछ बढ़िया सा समाधान लेकर सामने आने की, ताकि हमारा जो समाज है उसको एक अच्छी और नई दिशा मिले। और अरुण जी, बस चलते चलते आपसे ये कहना चाहूंगी कि यदि कोई और ऐसी जरूरी बात या जानकारी जो मुझसे रह गई है पूछने से और आप हमारे श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं तो कृपया आप बताएं।
0: मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसा सिनेमा, ऐसा साहित्य पढ़ें, आसपास अपने घर में रखें कि जिससे कि इंस्पायर हो सके, जो कि हमें जोड़ने वाला हो, तोड़ने वाला ना हो, और वो खाली आपको बहुत ज्यादा पसंद आ रहा, जैसे आपको मिठाई बहुत पसंद है लेकिन आप इतनी आप खा लेंगे तो आपको नुकसान करेगी। तो लिहाजा जैसे कि हम अच्छे खाने की तरफ लौट रहे हैं, हम विटामिन्स ले रहे हैं अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए, हम जैसे कि व्यायाम कर रहे हैं अपने को स्वस्थ रखने के लिए, अपने को जवान रखने के लिए दुनिया भर की चीजें कर रहे हैं, तो अपना मस्तिष्क ठीक रहे, आपका मन सुंदर रहे, तो जरूरी है कि आप अच्छे साहित्य, अच्छी कला, अच्छी फिल्मों की तरफ लौटें। जब आसपास आपके अच्छा साहित्य, अच्छी फिल्में रहेंगी, लोक साहित्य रहेगा, तो निश्चित रूप से आपका परिवार, आपके बच्चे और समाज सुंदर सुदृढ़ बनेगा।
1: अरुण जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हिंदी सिनेमा और लोक साहित्य के संबंधों पर आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हिंदी सिनेमा में लोक साहित्य, अभी आप इस विषय पर भेंट वार्ता सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे फिल्म समीक्षक और साहित्यकार श्री अरुण शेखर और आपसे बात कर रही थी श्रीमती कल्पना शुक्ला। और आइए अब सुनते हैं सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियां। आलेख है युवा पत्रकार सुश्री निशा तरन्नुम का। दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन एवं हिंदी प्रतिभा पुंज संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में हिंदी प्रतिभा प्रदर्शन समारोह का आयोजन गत 6 जून को हिंदी भवन ITO में किया गया। इस अवसर पर दिल्ली NCR के विभिन्न कवि और साहित्यकार उपस्थित थे। समारोह का शुभारंभ द्वीप प्रज्वलन एवं सुरम्य शर्मा की नृत्य प्रस्तुति सरस्वती वंदना के साथ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती इंदिरा मोहन और श्री राजेश श्रीवास्तव ने की। सानिध्य श्रीमती सविता चड्डा का था। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री ऋषि कुमार शर्मा, डॉक्टर विवेक गौतम को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर रवि शर्मा मधुप, डॉक्टर सुधा शर्मा पुष्प ने सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों का अंग वस्त्र, माला एवं पुस्तक से स्वागत किया। प्रथम सत्र में विभिन्न आयु वर्गों के 20 प्रतिभागियों ने कविता पाठ, भाषण, गीत एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम का प्रभावी संचालन नीलम मदान, सुश्री प्राधान्या शर्मा और सरिता गुप्ता ने किया। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह दान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम सौहार्द, साहित्य ऊर्जा एवं हिंदी भाषा के प्रति समर्पण के वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। श्रीमती तरुणा पुंडरी एवं भावना अरोड़ा ने KR मंगलम विद्यालय के विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने में विशेष भूमिका निभाई। 7 जून 2026 को काव्यशैली हिंदी मासिक पत्रिका द्वारा आयोजित काव्यशैली वार्षिक साहित्य सम्मान समारोह 2026 का भव्य आयोजन साहित्य सदन मंगोलपुरी खुर्द दिल्ली में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं द्वीप प्रज्वलन के साथ हुआ। समारोह की अध्यक्षता देश के प्रसिद्ध शायर मंगल नसीम साहब ने की। अनिल वर्मा मीत के आतिथ्य में काव्यशैली की संपादक शैली भागवत आस एवं सह संपादक सावित्री मलिक ने मंच पर देश के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे काव्यशैलियों के सदस्य, कवियों और साहित्यकारों को काव्यशैली साहित्य सम्मान 2026 प्रदान किए। संस्था द्वारा साहित्य के क्षेत्र में उल्लेख योगदान देने वाले साहित्यकारों को काव्यशैली साहित्य सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। सम्मान स्वरूप प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र भेंट किए गए। सम्मानित सदस्यों में सर्वश्री सावित्री मलिक को काव्य शैली विशिष्ट साहित्य सम्मान एवं संगीता अलावत, पूनम शर्मा, डॉक्टर साधना अग्रवाल, कमला सिंह जीनत, तुलिका सेठ, कीर्ति रत्न, दास प्रेम, सुनीता भारल, डॉक्टर पुष्पा जोशी, लक्ष्मी कानोड़िया, जय किशन, राजेश तंवर, राजबाला राज, संजय कुमार गिरी को सम्मानित किया गया। साहित्य सम्मान के साथ सरिता प्रीतम की पुस्तक कॉम इज योर सुपर पावर, शैली भागवत के गजल संग्रह सहर मिल गई का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर काव्य शैली में कई अंक का विमोचन भी किया गया। काव्य शैली के संपादक शैली भागवत आस ने काव्य शैली की वार्षिक यात्रा पर प्रकाश डाला। इसके आगामी वर्ष के कार्यक्रमों पर चर्चा करते हुए कहा कि काव्य शैली मात्र एक पत्रिका नहीं बल्कि सार्थक साहित्य को सहेजने का प्रयास है। इसकी शुरुआत इसी उद्देश्य के साथ की गई कि साहित्य शिक्षा के माध्यम से कला और संस्कृति को संरक्षित किया जाए। इसमें देश के विभिन्न हिस्सों से नवोदित और वरिष्ठ कलमकारों की रचना प्रकाश हो रही है। अब तक लगभग 200 से अधिक रचनाकारों को पत्रिका में स्थान मिला है। वर्तमान में इसकी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की इकाई के साथ इंदौर इकाई भी सक्रियता से काम कर रही है। कार्यक्रम के दौरान सर्वश्री बबीता उपाध्याय, डॉक्टर वीरेंद्र पाठक, गुंजन अग्रवाल, नरेंद्र शर्मा, डॉक्टर गीतांजलि अरोड़ा, डॉक्टर शंभू पवार, अंकिता गोयल सावन, सुमन नागर सरल आदि कवियों और कवित्रियों ने अपनी उत्कृष्ट रचनाओं और काव्य पाठ कर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। प्रसिद्ध शायर मंगल नसीम ने अपने अध्यक्ष भाषण में काव्य शैली के आयोजन को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमें अपनी लेखनी के सार्थक साहित्य का सृजन करते रहना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में आयोजन एवं संयोजक साहित्य श्री संस्थापक राम श्याम हसीन ने सभी अतिथियों, सम्मानित साहित्यकारों, कवियों, श्रोताओं एवं सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। वैश्विक हिंदी परिवार की ओर से 8 जून 2026 को साहित्य अकादमी सभागार में कवि एवं गीतकार डॉक्टर बाल स्वरूप राही के 90वें जन्मदिवस के अवसर पर एक साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात साहित्यकार श्रीमती इंदिरा मोहन ने की। समारोह में सुप्रसिद्ध हास्य कवि मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। यह कार्यक्रम वैश्विक हिंदी परिवार के अध्यक्ष श्री अनिल जोशी और सुश्री कवि श्री राजेश चेतन के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रतिष्ठित साहित्यकार सर्वश्री अलका सिन्हा, दोहाकार नरेश शांडिल्य, मशहूर गजलकार विज्ञान व्रत, कवि राजेंद्र राज निगम, विनयशील चतुर्वेदी उपस्थित थे। जहां एक और राही जी के गीत और मुक्तक पढ़कर उनको शुभकामनाएं दी गई, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश और हरियाणा के प्रबुद्ध रचनाकार भी उपस्थित थे। 8 जून 2026 को दिल्ली विश्व मैत्री द्वारा ऑनलाइन चौपाल का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम संस्था के संस्थापक डॉक्टर संतोष श्रीवास्तव की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संयोजन एवं संचालन संतोष बंसल द्वारा किया गया। इस अवसर पर ऑनलाइन जुड़ने वाले कवियों में सर्वश्री शकुंतला मित्तल, पुष्पा सिन्हा, डॉक्टर बबीता किरण, रेखा अग्रवाल, राधा गोयल, वंदना रानी दयाल, सरिता गुप्ता, अंजना गर्ग ने अपनी प्रेरणादायी रचनाओं से समा बांधे रखा। 14 जून को माँ शारदे काव्य मंच पर आयोजित गीतों के संग गजलों के रंग काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम वरिष्ठ कवि डॉक्टर जयसिंह आर्य की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर परितोष कुमार मुख्य अतिथि थे। सर्वश्री अर्पणा अंजन, रश्मि ममगई, वनिता गुप्ता विशिष्ट अतिथि थी। इस कार्यक्रम का संचालन सोहनलाल शर्मा प्रेम द्वारा किया गया। अभी आप सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियां सुन रहे थे। आलेख था सुश्री निशा तरन्नुम का। इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साहित्यिकी और आइए अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम हमारे अतिथि।
4: नमस्कार, मैं काजल आकाशवाणी के हमारे अतिथि कार्यक्रम में अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ हैं पद्मश्री से सम्मानित मलखम की परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले आदरणीय उदय विश्वनाथ देशपांडे जी। मलखम पितामह के नाम से मशहूर आदरणीय पद्मश्री श्री उदय विश्वनाथ देशपांडे जी ने न केवल इस प्राचीन भारतीय खेल को जीवित रखा बल्कि इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी दिलाई। आपका हमारे स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत।
5: धन्यवाद।
4: सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने मलखम्ब को बचाने और दुनिया भर में फैलाने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, बचपन से ही मलखम्ब से जुड़ाव कैसे बना आपका?
5: मैं जब 2.5 साल का था
4: जी,
5: तो मेरी माँ मुझे उनके पिताजी के पास, मेरे नाना जी के पास ले जाते
4: जी,
5: और वो स्वतंत्र आंदोलन में बहुत अग्रसर थे
4: जी,
5: और जो मुंबई में एक अग्रगण्य व्यायाम संस्था है
4: जी,
5: श्री समर्थ व्यायाम मंदिर, उसके जो पूज्य संस्थापक है व्यायाम महर्षि प्रहलाद लक्ष्मण काले गुरु जी, इनके वो बहुत अच्छे कभी भी दोस्त थे, दोनों स्वतंत्र सैनिक थे। तो जब हम पूना जाते थे तो सुबह 5 बजे उठकर

0: नाना जी योगाभ्यास करते थे
1: जी.
0: और मैं उनके सामने बैठकर जैसा वो करते थे वैसे करने की कोशिश करता था.
1: जी.
0: तो उन्होंने जान लिया कि इस में मुझे दिलचस्पी है.
1: जी.
0: तो उन्होंने माँ को बता दिया कि मुंबई में जाओगे तो श्री समर्थ व्यायाम मंदिर शिवाजी पार्क में काले गुरु जी है, उनके हाथ में उदय को सौंप देना.
1: जी.
0: तो उसी एज से मैंने समर्थ व्यायाम मंदिर में जाना शुरू किया और काले गुरु जी हमें कुश्ती मलखम इस पे बेसिक ट्रेनिंग देते थे. मेरा स्कूल 7 बजे का था
1: जी.
0: तो सुबह मैं 5:30 से 7:30 व्यायामशाला जाता था और फिर घर में जाकर नहा धोकर 7 बजे फर्स्ट बेल के पहले स्कूल में पहुंच जाता
1: क्या
0: था.
1: बात.
0: तभी से एक लगाव शुरू हो गया मलखम को
1: जी.
0: और खुद मलखम करने के बाद उसके जो फायदे मुझे महसूस हुए
1: जी.
0: फिर मैंने सोचा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की बहुत ज़रूरत है. कॉलेज का भी मेरा सुबह 8 बजे का प्रैक्टिकल था तो सुबह व्यायामशाला जाना, वहीं से प्रैक्टिकल को जाना, फिर घर आके ब्रेकफास्ट लंच करके वापस लेक्चर को जाना और शाम को व्यायामशाला, रात को घर. यही रूटीन बन गया. फिर मैं कस्टम्स और सेंट्रल एक्साइज में इंस्पेक्टर कर ज्वाइन हो गया ग्रेजुएशन के बाद 75 में, फिर सुपरिटेंडेंट, फिर असिस्टेंट कमिश्नर, फिर डिप्टी कमिश्नर करके 48 साल सर्विस करके मैं 2013 में एज अ डिप्टी कमिश्नर रिटायर हो गया. तो तब भी रूटीन यही था, सुबह व्यायामशाला, फिर घर जाना, ऑफिस, ऑफिस से फिर वापस व्यायामशाला, रात को घर जाना. तो इवन मेरे शादी के दिन भी सुबह में पहले व्यायामशाला गया और बाद में शादी के लिए हाजिर हो गया.
1: बहुत अनुशासित जिंदगी रही आपकी. तो क्या कहेंगे, जिंदगी में अनुशासन कितना जरूरी है?
0: बहुत जरूरी है. और ये सिर्फ उन्हीं की वजह से, जैसे हम कहते हैं कि बेस्ट कोच जो अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन एक्सप्लेन करता है वो अच्छा टीचर है, जो डेमोन्स्ट्रेशन करता है उससे बेहतर है, इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, वो बेस्ट टीचर है. तो काले गुरु जी बेस्ट टीचर थे, उनके पास से ये डिसिप्लिन और ये सब लगाव चालू हो गया.
1: जिंदगी में किसी चीज को करने के लिए पैशन, जो जनून, जो पागलपन है, उसकी बहुत जरूरत रहती है. पैशन का होना जरूरी है.
0: कस्टम्स और सेंट्रल एक्साइज ये मेरा प्रोफेशन था और मलखम ये मेरा पैशन
1: रहा है आपका. मलखम को अब कई देशों में जाना जाता है. डेमो और ट्रेनिंग कैंप किस तरह से आयोजित किया और अमेरिका, यूरोप आदि में इसका कैसा अनुभव रहा?
0: पहले मैंने मुंबई में चालू किया. मेरी व्यायामशाला में 1-2 बच्चे ही मलखम करते थे. आज मेरी व्यायामशाला में डेली 100 लड़के 100 लड़कियां मलखम का प्रशिक्षण लेते हैं. अभी 36 डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में और हर एक डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर्ड मलखम एसोसिएशन है और वहाँ मलखम का प्रशिक्षण हर एक जिले में दिया जाता है.
1: जी.
0: और उसके बाद मैंने महाराष्ट्र के बाहर काम करना शुरू किया तो आई वॉज द सेक्रेटरी ऑफ मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया. तो उस समय सिर्फ 4 राज्य थे, महाराष्ट्र, गुजरात, MP, UP, लेकिन आज पूरे भारतवर्ष में 34 राज्य है जहाँ मलखम नियमित रूप से चलता है, मलखम के एसोसिएशन है और मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया को एफिलिएटेड है. मलखम को भारत के बाहर ले जाना चाहिए.
1: जी.
0: तो पहले मैं अमेरिका गया, 35 मलखम की वर्कशॉप ले लिया और वहाँ के जो इंडियन लोग थे उन्होंने हर जगह पे जहाँ जहाँ इंडियन कम्युनिटी है अच्छे ढंग से लोगों के सामने
1: प्रस्तुत किया
0: और बहुत लोगों ने मलखम का प्रशिक्षण लिया.
1: जी. एक विलुप्त होती जो ये कला है खेल की, ये आपने इसको रिवाइव किया, उसको जिंदा किया. तो भारत से बाहर कितना पॉपुलर है ये विदेशों में, खासतौर पर?
0: विदेशों में अभी बहुत पॉपुलर हो गया है. जैसे मैं 2004 में पहली बार जर्मनी गया था.
1: जी जी जी.
0: तो वहाँ पे 50 बच्चों का ट्रेनिंग लिया 8 दिन का. तो 8 दिन के बाद जब उनका समापन हुआ तो उन बच्चों ने 8 दिन में क्या प्रशिक्षण लिया उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया. हर साल वो मुंबई से मुझे बुलाते हैं, मैं 10 इंडियन बच्चों को लेकर वहाँ जाता हूँ. वहाँ 50-50 जर्मन बच्चों के 2 शिविर लगते हैं तो एक साल में 100 जर्मन बच्चे मलखम सीखते हैं. तो अभी 16 साल में 1600 जर्मन बच्चे मलखम सीखे हैं. तो मलखम आपको सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी कणखर, समर्थ बनाता है. तो
1: आपकी मेंटल हेल्थ को
0: मजबूत करता है, स्ट्रांग बनाता है. और आजकल की जीवन शैली में बचपन से ही बच्चे मोबाइल हाथ में लेते हैं और फिर लैपटॉप, कंप्यूटर, फिर वो मैदान पे जाकर खेलना भूल जाते हैं और 35-40 साल में उनकी कमर दर्द चालू होता है, पीठ दर्द चालू होता है, नेक एक चालू होता है. तो मलखम रीढ़ की हड्डी को सबसे ज़्यादा अच्छा व्यायाम देता है, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा व्यायाम.
1: इसको काफ़ी ख्याति मिल रही है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी और भारत में भी, जहाँ लोग इसको भूल रहे थे अब इसको और ज़्यादा रिवाइव कर किया है आपने. अब खुद एक राष्ट्रीय चैंपियन रहे हैं और फिर कोचिंग की तरफ मुड़े. एक खिलाड़ी से कोच बनने का सफ़र कैसा?

0: रहा, किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको, कैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा?
1: जब मैं खुद मलखम करता था छोटे उम्र में, तभी मैंने बाकी मेरे उम्र से छोटे लोगों को सिखाना शुरू किया, और इससे हम कंपटीशन में जाते थे तो वो अंडर 10 अंडर 12 एज ग्रुप में खेलते थे और मैं अंडर 18 एज ग्रुप में खेलता था, बाद में अबो 18 एज ग्रुप में खेलता था। तो मैंने अपने पास कम ध्यान दिया, उनके पास ज़्यादा ध्यान दिया। इसके लिए बहुत सारे मेरे 12 लड़के लड़कियां हैं जो मलखम में नेशनल लेवल पे खेल चुके हैं और उन्होंने अच्छे अवार्ड्स हासिल किए हैं। यही मेरी पहले से तमन्ना थी और मैंने मलखम प्रचार प्रसार को ज़्यादा ध्यान दिया।
0: क्या बात, क्या बात। जब आपको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया तो क्या आपकी आपके मन में किस तरह की भावनाएं उमड़ी और किस तरह की कैसा फील हुआ आपको?
1: मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि ये मुझे मिलेगा, लेकिन जब पद्मश्री के लिए मुझे नामांकित किया गया मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे पहले से जितने लोगों ने मलखम में काम किया है ये उनका पुरस्कार है, सिर्फ मेरा पुरस्कार नहीं है। और मेरे गुरु जी जो हैं काले गुरु जी जिन्होंने मुझे मलखम सिखाया, उनके गुरु जो माणिक राव जी हैं, जुम्मा दादा के शिष्य है जिनके जुम्मा दादा व्यायाम मंदिर बड़ौदा में, बस यही गुरु परंपरा है। मेरे सामने उनके सब चेहरे आ गए कि जिनकी वजह से आज मुझे पद्मश्री मिल रहा है।
0: क्या बात, आपको पद्मश्री के अलावा अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिल चुके हैं?
1: मुझे नहीं मिले लेकिन मेरे स्टूडेंट्स
0: को मिले हैं। तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी की भावना और ज्यादा बढ़ जाती है। तो मलखम में पुरुष और महिला दोनों वर्ग हैं, साथ ही एरियल और पोल मलखम भी बहुत लोकप्रिय हो रहा है। महिलाओं को इस खेल में लाने के लिए क्या खास कोशिशें की आपने?
1: ये मेरे मलखम की जर्नी में ये इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स हैं। जैसे मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया में सिर्फ लड़के मलखम करते थे, लेकिन मैंने लड़कियों को मलखम की कॉम्पिटिशन शुरू की। जैसे 1984 में जो बड़ौदा में जुम्मा दादा व्यायाम मंदिर में मलखम की 4th नेशनल हो गई, दैट वाज द फर्स्ट नेशनल फॉर द वीमेन कॉम्पिटिटर्स। और उस समय 3 टीम्स थी वहाँ पर, एक महाराष्ट्र की थी, एक गुजरात की थी और एक कर्नाटक की थी।
0: जी।
1: और ये तीनों टीम्स के जो खिलाड़ी थे उनको मैंने ही तैयार किया था। कर्नाटक में जाकर टीम तैयार की, उनको नेशनल में भेज दिया, फिर नेशनल के पहले जुम्मा दादा व्यायाम मंदिर में जाकर वहाँ की लड़कियों को ट्रेनिंग किया। तो एक महिलाओं का मलखम में सम्मिलित होना ये बड़ी उपलब्धि है ऐसे मुझे लगता है। फिर वैसे ही लड़कियां रोप मलखम करती थी, लड़के पोल मलखम करते थे, तो मैंने लड़कियों को भी पोल मलखम कराना सिखाना शुरू किया। वो मेरी व्यायामशाला शुरुआत हो गई। अब जहाँ जहाँ मैं आउट ऑफ इंडिया भी गया, कजाकिस्तान गया या इंडोनेशिया गया, मलेशिया गया, एशियन कंट्रीज में हांगकॉन्ग सिंगापुर चाइना जापान, या यूरोपियन कंट्रीज में स्पेन पुर्तगाल इटली फ्रांस जर्मनी नीदरलैंड ऑस्ट्रिया, ये सब जगह पर मैंने लेडीज को भी पोल मलखम सिखाया। और फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप हमने 2019 में मुंबई में ऑर्गेनाइज की, तो उसमें लोगों का विश्वास नहीं बैठता है कि फर्स्ट पोल मलखम पर लड़की जो आई वो जापान की थी, काइके टाकेमोटो।
0: क्या बात।
1: और दूसरी लड़की डेलिया सिरुटी जो इटली की थी, और थर्ड थी हिमानी पर जो मेरे समर्थ व्यायाम मंदिर की स्टूडेंट थी।
0: क्या बात।
1: और इंडिया को पोल मलखम में थर्ड प्लेस मिला, लेकिन ओवरऑल पोल एंड रोप मिलकर हिमानी चैंपियन हो गई। और उसी से मलखम का रास्ता पोल मलखम लड़कियों के शुरू हो गया
0: खुल गया। जी जी। अभी हम गुरु शिष्य की बात कर रहे थे, तो एक गुरु के रूप में आप अपने शिष्यों में कौन से मूल गुण जो गुण होते हैं वो विकसित करना चाहते हैं?
1: एक तो लगन उनमें होनी चाहिए। आजकल के लड़के मे बी ड्यू टू मोबाइल और अन्य उनका एक कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है। आज यहाँ देखा, कल वहाँ देखा, परसों वहाँ देखा, ये खेल छोड़कर वो खेल में गए, उसको छोड़कर फिर ये खेल में आ गए। तो एक उनको कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। जब मैं मलखम करता था लोगों ने मुझे ये भी बताया था, देशपांडे जी ये मलखम से जिमनास्टिक्स आप करते हैं, तो जिमनास्टिक्स ज़्यादा इंटरनेशनल गेम है, तो जिमनास्टिक्स में आपके बच्चे भी इंटरनेशनल हो जाएंगे, ओलंपिक तक पहुंच जाएंगे, तो आप मलखम छोड़ दो, जिमनास्टिक की ओर देखो। लेकिन मैंने ये कहा था कि जो खेल पहले से इंटरनेशनल है उसमें काम करने से, जो खेल इंटरनेशनल नहीं है वो अपना खेल है उसको इंटरनेशनल कैसे करे, ये सोचना हमारा फ़र्ज़ है। और मैंने कॉन्सेंट्रेट किया। तो जिनको मलखम सीखना अच्छा है उनको यही चाहिए कि एक तो कॉन्सेंट्रेशन, रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर मेहनत। आज एग्जाम है, आज नहीं जाएंगे, आज दोस्तों के साथ कहीं पार्टी है तो नहीं जाएंगे, वहाँ जाएंगे, तपश्चर्या है वो।

0: सीखना बहुत बहुत जरूरी है।
1: और जो इस मार्ग पे रहते हैं वही ये अचीव कर सकते हैं,
0: कर सकता है।
1: लोगों को जब मलखम हम दिखाते हैं तो बहुत बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट एलिमेंट्स करते हैं, तो मैं उनको पूछता हूँ कि सबसे डिफिकल्ट कौन सा है, तो ये है वो एलिमेंट है, वो नाम बता दें, वो नहीं सातत्यासन आप नियमित रूप से जो करते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो जब करेगा वो बाकी सब आराम से आ जाएंगे।
0: जी बिल्कुल। और अंत में उन हजारों छात्रों को, उन हजारों खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो आपसे प्रेरित होकर मलखम्ब सीख रहे हैं?
1: मैं उनको यही कहूँगा कि यदि आप मलखम्ब करते हैं तो उसको जारी रखिए, सिर्फ कंपटीशन कंपटीशन ये मकसद नहीं है आपका, लेकिन मलखम्ब से जो बेनिफिट्स होते हैं, मलखम्ब गिव्स यू मेंटल स्ट्रेंथ, मलखम्ब आपके इंटरनल सिस्टम्स को डेवलप करता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है या रेस्पिरेटरी है या सर्कुलेटरी है, जिससे डिसीज रेजिस्टेंस पावर आपकी बढ़ जाती है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आएगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अपने हेल्थ के भरोसे आराम से जी सकते हैं। और मलखम्ब से जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज डेवलप होते हैं, जैसे कंसंट्रेशन डेवलप होता है, मेमोरी डेवलप, उससे आपको पढ़ाई में बहुत अच्छा फायदा होता
0: जैसे
1: है।
0: जैसे आजकल मेंटल हेल्थ की बहुत बात करते हैं
1: एग्जैक्टली
0: तो
1: मेरी एक लड़की थी प्रांजल पाटिल जो टोटली ब्लाइंड है, तो बचपन से वो मलखम्ब करती थी फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक। नाउ शी इज द फर्स्ट ब्लाइंड IAS ऑफिसर इन इंडिया, जो दिल्ली में एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करती है। तो मलखम्ब के ये फायदे बहुत हैं, बाकी कहीं पर भी जाने से आपको मलखम्ब करने से ज़्यादा फायदा मिलेगा।
0: इसके अलावा आपकी क्या क्या, आपको क्या क्या करना अच्छा लगता है?
1: नहीं, एक तो ये है कि मलखम्ब की आज मलखम्ब में आज तक बहुत काम किया है, लेकिन जो काम करना है ना इससे बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी मलखम्ब एशियन गेम्स में नहीं है, कॉमनवेल्थ में नहीं है, तो हमें तो हम ड्रीम करते हैं कि मलखम्ब को ओलंपिक तक हमें पहुंचाना
0: तक
1: है,
0: ले जाएं।
1: तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा देशों में मलखम्ब पहुंचाना है। अभी मैं 52 देशों में गया हूं, लेकिन जब ओलंपिक में ये रूल है कि 75 कंट्रीज में 5 कॉन्टिनेंट्स में मलखम्ब होगा, जो खेल होगा वही ओलंपिक में जा
0: में
1: सकता है, तो
0: अभी
1: बहुत लंबी मंजिल है, वहाँ तक आगे पहुँचना है। और मैंने ब्लाइंड बच्चों के लिए काम किया, यानी जो देख नहीं पाते हैं उनके, मुंबई में 3 ब्लाइंड स्कूल थे, मैं तीनों ब्लाइंड स्कूल
0: मलखम्ब सिखाया आपने, ये बहुत बड़ा चैलेंज है।
1: और वो जब आप उनको करते हुए देखेंगे तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो ब्लाइंड है।
0: तो आदरणीय उदय विश्वनाथ देश पांडे जी, आपने अपने अनुभवों और विचारों के माध्यम से हमें प्रेरित किया, आकाशवाणी की तरफ से आपका हार्दिक धन्यवाद।
1: बहुत बहुत आभार।
0: श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम हमारे अतिथि में हमने जाना पद्मश्री से सम्मानित मलखम्ब गुरु उदय विश्वनाथ देश पांडे जी की प्रेरक शख्सियत के बारे में। इसी के साथ काजल को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे अतिथि, और आइए अब सुनते हैं पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

0: अकाली सन। इन्हां तो बाद सरदार जरनैल सिंह संपादक बने। इस दी नीति धर्म प्रचार दी सी। 1908 विच एक सिरकड पेपर बीड जारी किया गया जो शुरू विच महीनावार फिर पंद्रवाड़ा सप्ताहिक अते फिर रोजाना अखबार बन गया। ये इकला पेपर सी जो एक दिन दे विच दो बार भी छपदा सी। इस दे संपादक चरण सिंह शहीद पंजाबी पत्रकार विच सिर कढ सन। पेपर दी नीति तो तंग आ के सरदार चरण सिंह शहीद ने अपने आप नूं पेपर तो वख कर लिया सी। पंजाबी पत्रकारी दा असल विकास 1900 ते 1930 दौरान होया। पंजाब दियां वख वख राजनीतिक अते कौमी लहरां खास करके अकाली लहर कारण मन्या जा सकता है। इन्हां सालां दौरान ही जलियांवाला बाग कतलेआम रोल्ट एक्ट विरोधी लहर तो पैदा होया। दूजी संसार जंग तो बाद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अकाली लहर कारण होंद विच आई अते समाजवादी लहर भी होंद विच आई। इन्हां अंदोलनां ने सरकार विरोधी जज्बात नूं प्रफुल्लित कीता अते पंजाबी भाषा दे पेपरां ते उन्हां दे पाठकां दी गिणती विच भी वाधा कीता। इस पड़ाव विच पंजाबी पत्रकारी नूं कई संकटां दे विच गुजरना पिया। कुछ अखबार सूबे दे जबर तो बचण लई नकली संपादक नियुक्त करदे सन तां जो छापेमारी दे समय असल संपादक नूं गिरफ्तार ना कीता जा सके। हैरानी दी गल है कि पंजाबी पाठकां दा बहुत तंग दायरा होण दे बावजूद भी वख वख विषयां ते वख वख वर्गां दी अगवाई करदे पंजाबी भाषा दे पेपर सन। उस समय पंजाबी भाषा दे पेपरां ने छोटियां पैडल मशीनां तों लै के सिलेंडर मशीनां तक प्रिंटिंग मशीनां स्थापित कीतियां। कई किस्मां दे पंजाबी अक्खर भी बन गए। सन 1942 विच साधु सिंह हमदर्द अजीत अखबार दे पहले संपादक बने अते अखबार प्रकाशित होना शुरू हो गया। पहला ये अखबार उर्दू विच छपदा सी ते बाद विच पंजाबी दा अखबार बनिया। 1900 तो 1947 दे दौरान 300 तो वध रसाले शुरू होए जिन्हां विच 27 रोजाना 122 सप्ताहिक 7 पंद्रवाड़ा 130 मासिक 12 दे करीब त्रैमासिक छिमाही अते सालाना प्रकाशित होए। भारत दे कुछ राज्यां विच भी पंजाबी दे अखबार छपे। पंजाबी पत्रकारी दा मुढ़ तो ही सहत दे नाल संबंध रहा है जो हुण तीक भी चल रहा है। पंजाबी अखबारां दे हुण रंगदार पन्ने भी छप रहे हन ते रोचक समगरी होण ते पाठकां दी गिणती वधी है। पंजाबी दे अखबारां विच अजीत पंजाबी ट्रिब्यून चढ़दी कला जगबाणी स्पोक्समैन आदि अखबारां विच राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय ते सूबे दे मुद्दियां दियां खबरां छपदियां हन। बड़ी खुशी दी गल है कि अखबारां दी छपाई विच क्रांतिकारी तब्दीली आई है। अपसेट प्रेसां ते अखबारां छप रहियां हन। पंजाबी पत्रकारी विच पत्रकार दी पढ़ाई नूं होर उत्साहित करन दी जरूरत है। अज दा समां सोशल मीडिया दा समां है अते अखबारां दे ई पेपर एडिशन भी होंद विच आ चुके हन जिन्हां नूं लोक मोबाइल ते भी पढ़ रहे हन।
1: पंजाबी पत्रकारी दा सफर। हुणे असीं इह वार्ता सुन रहे सी बलविंदर सिंह सोढी तों। एक आवाज़ लड़ी हेठ आओ हुण असीं सुनदे हां गुरमीत बावा दे गाए होए कुछ गीत। वेले आदे चंबा लावां घड़े दे कोल आओ सुनदे हां एह गीत गुरमीत बावा दी आवाज़ विच।

एक आवाज लड़ी हेठ अज असी सुन रहे सी गुरमीत बावा दे गाए हुए कुछ गीत। इस दे नाल ही पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक दा समा हुन खत्म हुंदा है। हुन रविंदर नू इजाजत देओ।

0: अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक, और अब 10 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी व अंग्रेज़ी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया।
2: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल

0: दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिनों तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की है कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के फसल उत्सव राजा के अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने राजा को मानसून के स्वागत का त्यौहार बताया। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले समग्र स्वास्थ्य, मानसिक आरोग्य और प्रकृति के साथ सामंजस्य को बढ़ावा देने में योग की भूमिका का उल्लेख किया है। कजाकिस्तान के दुशांबे में योग सत्र में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि योग उन शाश्वत मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है जो विश्व भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है मानवता की एक बूंद रक्तदान करें, जीवन बचाएं। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। Prime Minister Narendra Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. During his stay in France, he will join French President Emmanuel Macron in jointly inaugurating Bharat Innovates and hold bilateral talks with him on key areas of cooperation and global issues ahead of the upcoming G7 summit. Mr. Modi will subsequently travel to Slovakia for bilateral engagements with the Slovak leadership. At the community reception held at the iconic Hotel Negresco yesterday, a large gathering of the Indian diaspora accorded a warm and enthusiastic welcome to the Prime Minister. Our correspondent has the details.
2: Prime Minister Narendra Modi will today join French President Emmanuel Macron for the inauguration of Bharat Innovates at the Palais des Expositions in Nice. The event will showcase India's startup and innovation ecosystem with around 120 Indian startups presenting innovations to global investors and technology leaders. Following the event, Prime Minister Modi and President Macron will hold bilateral talks at Villa Kirlos. The meeting will be the first since India and France elevated their ties to a special global strategic partnership earlier this year. The two leaders are expected to discuss cooperation in defense, technology, trade and innovation, besides exchanging views on key regional and global development. The Prime Minister will later depart for Slovakia for the second leg of his visit. This is Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
1: The White House has said that US President Donald Trump will meet Prime Minister Narendra Modi and other world leaders during next week's G7 summit in France. A senior administration official said discussions are expected to focus on economic growth, supply chains, artificial intelligence, investment partnerships, and a range of global security challenges. Prime Minister Narendra Modi has expressed gratitude over the greetings of Serbian President Aleksandar Vučić over becoming India's longest-serving Prime Minister. In a social media post, Mr. Modi thanked President Vučić for his heartfelt greetings. He also fondly recalled the Serbian President's recent visit to India and the productive discussions held during the visit. Indian Space Research Organization ISRO Chairman V. Narayanan has informed that they have collaborated with the Department of Atomic Energy to develop an advanced artificial heating system that can protect lunar lander from the freezing weather of the moon. Addressing the CSIR RISE conclave in Bengaluru, ISRO chief explained that Chandrayaan 3 lander Vikram, fueled by solar energy, operated only for 14 days on the moon. ISRO will now work with the Atomic Energy Department to develop a lunar lander that can survive on the moon for up to 200 days. President Draupadi Murmu has extended her greetings to the people of the country, particularly the people of Odisha, on the occasion of the harvest festival Rajya. In a social media post, the president described Rajya as a welcoming festival of the monsoon season that is celebrated to honour the earth, motherhood and the clouds. On the occasion of World Blood Donor Day today, Union Health Minister Jagat Prakash Nadda has called upon the people to come forward and voluntarily donate blood to help save lives. In a social media post, Mr. Nadda said that blood donation is one of the simplest yet most effective ways to give someone a second chance at life. US President Donald Trump has said a deal to end the war with Iran will be signed today and that the strategic Strait of Hormuz will be opened to all immediately afterwards. He made this announcement on a social media post. At the same time, Trump kept the threat of fresh attacks dangling if the deal failed to pan out as expected. He said, "Hopefully this process will work out. If it doesn't, they have the ultimate alternative." Meanwhile, Iran's foreign ministry spokesperson Ismail Baghaei has said the signing of any agreement is unlikely to take place immediately, stating that it will not happen today and may take place in the coming days. In the ICC Women's T20 World Cup, India will begin their campaign against arch rivals Pakistan in Group A fixture at Edgbaston in Birmingham today. The match will start at 7 p.m. Indian Standard Time. In FIFA World Cup 2026, Scotland ended a 28-year drought after beating Haiti 1-0 in their Group C clash at Gillette Stadium in Massachusetts today. And that is the end of this news bulletin.
3: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद।

0: वाह क्या खूबसूरत एहसास है इस गीत पे, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में सजा तुम जो मिल गए हो। गीत आज भी दिल को उसी तरह छू जाता है जैसे पहली बार सुना हो। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ आपकी दोस्त शोभा शर्मा और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। जी हाँ, आपकी पसंद पूरा ध्यान रखा जाएगा इस कार्यक्रम में और आपके अपने इस खास कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा भी प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। और जो यह हंसते जख्म का सदाबहार गीत सुना तुम जो मिली, उम्मीद है इस गीत से आपको यूँ कहें कि बहुत उम्मीद भी मिली और बहुत ही, क्योंकि आपके दिन है ना जो उसकी शुरुआत को और भी खुशनुमा बना दिया होगा। और भी बहुत सारे गीत होंगे जो आपके पसंद के होंगे, हम लेते रहेंगे और आपके संदेश भी लेंगे। तो हम आपको बता दें कि आप हमें संदेश कैसे भेज सकते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या है, मैसेज करना है, हमें मेल भेजना है और हमारा ईमेल आईडी है ip.radio.delhi@gmail.com। तो हमें इंतज़ार रहेगा आपके संदेशों का। और भी बहुत सारे संदेश आ चुके हैं, बिल्कुल हम उन्हें शामिल करेंगे, पर उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आप सुन रहे कार्यक्रम आपकी पसंद और आपकी पसंद में आपके संदेश तो शामिल होंगे ना, तो ले लेते हैं हम सबसे पहले ये संदेश। ये संदेश हमें आया है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, है अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक जी का। और अगला संदेश है हमारे पास आया है पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से, मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा का। और हमारे साथ जुड़े हैं किशोर नगर अमरावती से हीरामन शेंडे, शीला देवी शेंडे और सिद्धार्थ गुंडाने। और लिखते हैं कि ज़िंदगी में कभी किसी को ऐसा मौका मत देना कि वो तुम्हारे चेहरे की मुस्कान छीन ले, याद रखना दुनिया तुम्हारे लिए। जी हाँ बिल्कुल, आप खुश रहेंगे तो सब खुश रहेंगे, क्योंकि आप अगर चिड़चिड़े होंगे तो फिर आप कैसी खुशियाँ बांट सकते हैं, क्योंकि जो इंसान के पास जो होता है वही तो बांट सकता है। तो बिल्कुल अपनी मुस्कान बरकरार रखिए, बहुत अच्छा संदेश। अगला जो संदेश है वो ले लेते हैं, ये है किशनगंज बिहार से, हमारे साथ जुड़े हैं रविंद्र मोहन दास, आशा देवी। और ये संदेश हमें आया है नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से, मुसरत जहानाज का, तलत जहानाज, फरत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज का। और लिख रहे हैं कि हम बहनों को प्रोग्राम में शामिल करें। बिल्कुल दोस्त, शामिल हुए ना आप दोस्त। अगला संदेश ले लेते हैं, ये संदेश हमें आया है पांडर कपड़ा से, अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनश्री बुरांडे और बुल्हार शहर से, इनके साथ जुड़े हैं सूरज लोंढे, प्राची, एकलव्य जी। और अगला जो संदेश में आया है वो है जलालाबाद वेस्ट से, सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दशानी और निमित का। और हमारे साथ जुड़े हैं एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन चंडीगढ़ से, इनके साथ हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। तो आप सबकी पसंद पर सुनते हैं हम अगला गीत।

0: आज तो पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आप सुन रहे कार्यक्रम आपकी पसंद, और आपकी पसंद में आपके मैसेजेस बिल्कुल तैयार हैं और उनको हम पढ़ने के लिए भी तैयार हैं। तो मैसेजेस ले लेते हैं। ये संदेश आया है हमें भोपाल का, राजस्थान से, धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार का। अगला संदेश ले ले। अगला संदेश हमें आया है किशनगंज बिहार से है, रविंद्र मोहन दास और आशा देवी का। और ये संदेश हमें आया है, ये संदेश हम पढ़ चुके हैं और इन्होंने मेरा नाम भी अलग लिया। मैं शोभा शर्मा हूँ और इन्होंने किसी और का नाम लिया। चलिए अगला संदेश पढ़ लेते हैं। अगला संदेश अभी आया है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप का। इनके साथ कालका से जुड़े हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज जी। और अगला संदेश हमें आया है झज्जर हरियाणा से, बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया का। और ये संदेश हमें आया है गाज़ियाबाद से, शीश पाल अकेला का लिख रहे हैं, किसी भी गीत में शामिल कर लें। तो दोस्त बहुत ही प्यारे प्यारे गीत हैं आपके, जो बागी मित्र हैं ना हमारे, इसमें बहुत प्यारे प्यारे गीतों की फरमाइश कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगेगा। तो अगला संदेश ले लेते हैं। ये आया है ख्याल बाजार पानीपत से है, नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो, कोहिल मल्होत्रा, पापा जी, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से हैं, पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू, भाविक सिक्का जी। और ये हमें संदेश मिला है उत्तम नगर दिल्ली से, बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल का। चलिए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये गीत।
4: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस बार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
5: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी, समझूंगी तुम्हारे होंठों को छू लिया।

सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे रेफ्यूजी फिल्म का ये गीत। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और आपकी पसंद में अगला संदेश ले लेते हैं हम। ये संदेश आया है कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैज़ी फराज, फरहीन फरहान, फारिया और ताहिरा का। लिख रहे हैं कि प्रोग्राम का आगाज़ एक बहुत ही उम्दा गीत से किया और आज हम आपको दिल्ली से सुन रहे हैं, और इन्होंने बहुत ही प्यारे गीत की फरमाइश की है। तो चलिए इनकी फरमाइश पर सुनते हैं पाकीज़ा फिल्म का ये गीत।

लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज़ में पाकीज़ा फिल्म का ये गीत सुना आपने। और अब हम संदेशों के रुख करते हैं। ये जो संदेश आया है हमें सप्तरंग शोता परिवार कुंभार खली श्रीरामपुर से, अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, ऋषिकेश जीविका का, और इनके साथ जुड़े हैं पूना वाले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने, विशाखा सोनवने जी। और ये संदेश हमें आया है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, टैनी पवार और मनीषा पवार का, और इनके साथ जुड़े हैं राम देवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा। और ये संदेश हमें आया है उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु, तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद का, पाकुड़ झारखंड से, और उनके साथ हैं घोड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत। और ये संदेश हमें आया है किशोर नगर अमरावती से हीरामन शेंडे, सिद्धार्थ गोंडाने का। और ये संदेश हमें आया है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा का। और अगला संदेश हमें मिला है श्रोता रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नयाब और लड्डू खा। और हमारे साथ जुड़े हैं चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, विमला अनेजा। ये लिखते हैं जीवन की सुंदरता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम कितने खुश हो, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि तुम्हारी वजह से कितने खुश हैं। बहुत ही प्यारा संदेश। और अगला जो संदेश हमें आया है ये है कोहका भिलाई से उत्तम सिंह झंगेल, मोरस झंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष झंगेल और नंदिनी झंगेल का। और धमधमा ग्राम सुखरी कला से इनके साथ हैं अमित झंगेल, शगुन झंगेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य झंगेल और अंजलि झंगेल। और हमारे साथ ये संदेश जो है ना श्रोता बार बार देते हैं तो हमें आगे ही बढ़ाने पड़ते हैं, क्योंकि अब जब एक बार ही संदेश ले लिया गया है तो बार बार हम उनका लेंगे तो दूसरों की बारी कब आएगी। चलिए अगला संदेश ले लेते हैं। ये हमें आया है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, व्रत मक्कड़, कमल सहानी, पिंगा वाला का ना पिंगा वाला चौक, गोरैया जालंधर से। और हमारे साथ जुड़े हैं गाँव लोहगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह और गुलाल सिंह, अविराज सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। और टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छावड़ा का यह संदेश हमें आया है। और अगला जो संदेश है वो हमें आया है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ का। और अगला जो संदेश है ये लिख रहे हैं कि आपके पसंद कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता बहन शोभा शर्मा जी को सादर प्रणाम, नमस्कार करता हूँ। हम भी आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, हमारा मेल कब होगा शामिल, हम बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्त इंतज़ार ख़त्म, और ये आपका जो संदेश है ये आप लिखे हमें ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया, उमा कांति कठेरिया, कमलेश पुत्रवधु निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया और समस्त कठेरिया परिवार की ओर से। और ये संदेश हमें आया है श्रोता रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो का। और जसपुर उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत जी। और दोस्त वक्त हो चला है कि हम आपसे इजाज़त दें, क्योंकि घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए। जी हाँ, तो मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त पर जाइएगा कहीं नहीं, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा गीत आपके इंतज़ार में, तो जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम के साथ। तो मुझे यानी शोभा शर्मा को आप दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब आप कुछ ही पलों में समाचार सुनेंगे। पहले हिंदी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, ठीक उसके बाद अंग्रेज़ी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों के स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की है कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले समग्र स्वास्थ्य, मानसिक आरोग्य और प्रकृति के साथ सामंजस्य को बढ़ावा देने में योग की भूमिका

0: भूमिका का उल्लेख किया है। तजिकिस्तान के दुशांबे में योग सत्र में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि योग उन शाश्वत मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है जो विश्वभर में लाखों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है, मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें, जीवन बचाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के फसल उत्सव राजा के अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने राजा को मानसून के स्वागत का त्यौहार बताया। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दो तीन दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। फीफा विश्व कप में स्कॉटलैंड ने 28 साल बाद जीत दर्ज करते हुए हैती को 1-0 से हरा दिया। जॉन मैकगिन के पहले हाफ में किए गए गोल की बदौलत स्कॉटलैंड ग्रुप सी में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. During his stay in France, he will join French President Emmanuel Macron in jointly inaugurating Bharat Innovates and hold bilateral talks with him on key areas of cooperation and global issues ahead of the upcoming G7 summit. Mr. Modi will later travel to Slovakia for bilateral engagements with the Slovak leadership. At a community reception held at the iconic Hotel Negresco yesterday, a large gathering of the Indian diaspora accorded a warm and enthusiastic welcome to the Prime Minister. Prime Minister Narendra Modi has expressed gratitude over the greetings of Serbian President to him over becoming India's longest-serving Prime Minister. In a social media post, Mr. Modi thanked President Vučić for his heartfelt greetings. He also fondly recalled the Serbian president's recent visit to India and the productive discussions held during the visit. Indian Space Research Organization ISRO chairman V. Narayanan has informed that they have collaborated with the Department of Atomic Energy to develop an advanced artificial heating system that can protect lunar lander from the freezing weather of the moon. Addressing the CSIR RISE conclave in Bengaluru, ISRO chief explained that Chandrayaan 3 lander Vikram, fueled by solar energy, operated only for 14 days on Moon. ISRO will now work with the Atomic Energy Department to develop a lunar lander that can survive on the Moon for up to 200 days. India's healthcare sector has witnessed a transformative change over the past decade under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, with a strong focus on ensuring accessible and affordable healthcare for all citizens. In a social media post today, Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari said that the government's flagship healthcare initiatives have significantly strengthened the country's health infrastructure and advanced the vision of a Swasth Bharat. The minister highlighted that Ayushman Bharat scheme has provided cashless health coverage to millions of beneficiaries across the country and has now been extended to senior citizens as well. Mr. Gadkari also noted that Jan Aushadhi Kendras have been made quality medicines available at affordable prices, helping reduce out-of-pocket healthcare expenditure for people. On the occasion of World Blood Donor Day today, Union Health Minister Jagat Prakash Nadda has called upon the people to come forward and voluntarily donate blood to help save lives.

अभी आप सुन रहे थे सुचित्रा की आवाज़ में ये गीत। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस। सबरस कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति शुभा मुद्गिल की।

अभी आप सुन रहे थे गुरदास मान की आवाज़ में ये गीत। इसी के साथ आज का सबरस कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरमंदरी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे मोहम्मद अलीम खान से वायलिन वादन, राग है अलैया बिलावल, तबले पर संगत कर रहे हैं राशिद जफर खान।

0: सुर मंजरी के अंतर्गत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद अलीम खान का वॉयलन वादन, राग था अलैया बिलावल, तबले पर संगति दी थी रशीद जफर खान ने। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, दिन के 12 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों के स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। उन्हें रोजगार, श्रम, गरीबी और विकास से जुड़े विषयों पर 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में रांची के 2 और गढ़वा जिले के 2 लोग हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की है कि वार्ता सफल रहेगी।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं ग्रामीण बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

0: कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को
1: राम
0: राम
1: राम।
0: आज गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में मैं और यमुना हाजी ने फिर से एक बार अपनी बहनों के लिए ढेर सारी बातें और बहुत सारी जानकारी लेकर, जो यमुना हमारी बहनों को अच्छी लगेगी और साथ ही साथ वो हमें अपनी राय भी भेजेंगी, जिससे कि हम कार्यक्रम को और अधिक आकर्षक बना सकें।
1: ये तो अपनी बहनों पे डिपेंड करता है, उन पर निर्भर करता है कि हमारी बातें उनको कितनी अच्छी लगेंगी रेनू। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है, जो गृहलक्ष्मी हमारा कार्यक्रम है खास करके ग्रामीण बहनों पर केंद्रित होता है, जो गांव घर में अपनी खेती के साथ साथ अपने घर का सारा काम करती हैं और उनके अंदर हुनर भी बहुत होता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं, उनको बताने की कोशिश करते हैं कि आप भी कैसे पंख लगाकर उड़ सकती हैं अपने हुनर के बल पे। तो आज गृहलक्ष्मी कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं और कहते हैं रेणु की जो दान पुण्य है उसे करना बहुत ही फलित होता है। तो दान पुण्य में क्या करते हैं लोग, बहुत सी चीज़ें दान करते हैं, कोई गरीब को कुछ दे दिया, किसी ज़रूरतमंद को कुछ दे दिया। ऐसे जब ज़रूरत की बात आती है तो खास करके रक्त की बात करें, किसी की जीवन दान देने की बात करें तो रक्तदान बहुत ही महत्व रखता है।
0: बिल्कुल। और यमुना देखो, कहते हैं कि जो खून के रिश्ते होते हैं ना वो बहुत बढ़कर होते हैं, और ये बात तुमने भी हमने भी बहुत बार सुनी है कि अगर भाई बहनों में थोड़ा बहुत तनाव हो गया और फिर कोई कार्यक्रम होता है, समारोह होता है, तो सब बोलते हैं भाई खून का रिश्ता है, आखिर आएंगे तो सही। लेकिन देखो, इस खून के रिश्ते से भी बड़ा एक रिश्ता होता है रक्तदान का। और जो भी इंसान अपना रक्त किसी को दान करता है ना, तो जीवन भर जिस व्यक्ति को रक्त दिया जाता है वह कभी उसे नहीं भूलता।
1: और सबसे बड़ी बात ये होती है कि रेणु की जब हम रक्तदान करते हैं
0: बिल्कुल,
1: तो होता क्या है, मतलब जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, वो कभी कभी सबका अलग अलग होता है।
0: बिल्कुल,
1: किसी का ए है, किसी का बी पॉजिटिव है, किसी का ओ है, तो ज़रूरत पड़ने पर वो चीज़ मिलती नहीं है। तो होता क्या है कि समय समय पर शिविर लगाया जाता है और शिविर के जरिए जो है उस रक्त को इकट्ठा

0: किया जाता है। तो
1: बिल्कुल
0: क्या होता है कि एक दिवस के, जैसे आज दिवस है, बहुत से लोग जाकर के जो है रक्तदान करेंगे, तो जो छोटी छोटी चीज़ें वो जाकर के रक्तदान ऐसे करते हैं तो वो इकट्ठा करके रखा जाता है, तो जब किसी को ज़रूरत होती है तो समय पे वो रक्त मिल जाता है, वो अगले का जीवन बच जाता
1: बिल्कुल।
0: है।
1: और यमुना, जैसे अभी तुमने हमारी बहनों को बताया कि रक्त जो है अलग अलग समूह का होता है, किसी का ए हो गया, किसी का बी हो गया, ओ पॉजिटिव हो गया, तो हम अपनी बहनों को एक और जानकारी भी दे दें। जैसे कि आज 14 जून है, विश्व रक्तदाता दिवस, तो इस जो 14 जून है इसको महान वैज्ञानिक डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है। और इसलिए क्योंकि इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण खोज की थी, वही जो बात अभी तुमने बताई, इन्होंने रक्त समूहों की खोज की थी कि हर मानव जो है उसका रक्त ग्रुप अलग अलग होता है, किसी का ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, या किसी का ए बी। तो ये जो खोज थी इन्होंने की थी, और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था, और यही कारण है कि इन्हीं के सम्मान में आज यह दिन चुना गया था।
0: कुल मिला के इन्होंने ए बी ओ रक्त
1: बिल्कुल
0: प्रणाली का खोज की थी इन्होंने। और ख़ास करके जो योगदान की बात होती है, तो होता ये है कि हम कोशिश करते हैं कि हम दान करें, किसी न किसी चीज़ की दान करें,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: लेकिन सच कहें बहनों, तो ये जो रक्तदान है एक ऐसा दान है जिसे वो जो पाता है तो वो तो जीवन भर नहीं भूलता,
1: बिल्कुल
0: और हम अगर किसी की जान बचाते हैं तो ये मान के चलिए कि जब जान बचाते तो अपने मन में भी एक बहुत बड़ी आत्मसंतुष्टि पहुंचती है कि
1: बिल्कुल
0: हमने किसी के लिए कुछ किया। तो
1: बिल्कुल
0: ऐसी कोशिश हमारी होनी चाहिए, और ख़ास करके अपने लिए तो सब कोई जीते हैं, लेकिन जब हम किसी गैर के लिए जीते, किसी और के लिए जीते हैं, तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है।
1: बिल्कुल। और यमुना, एक और महत्वपूर्ण बात भी हम अपनी बहनों को बता दें, पता है कई बार उनके मन में ये बात आ जाती है कि रक्तदान करने से शरीर कमज़ोर हो जाता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इसीलिए हम ये बता दें कि रक्तदान करने का है वो बहुत ही लाभ होता है। एक तो ये बिल्कुल भ्रम वाली बात है कि रक्तदान करने से शरीर कमज़ोर हो जाता है, इसके बहुत सारे लाभ होते हैं। जैसे कि जब रक्तदान किया जाता है तो हमारे शरीर में नया रक्त बनता है, और रक्तदान के बाद शरीर तेजी से नए रक्त कणों का निर्माण करता है, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा और ताजगी बनी रहती है। और यमुना, हमारे देश में तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने रक्तदान करने में कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं, उन्होंने 100, 200, 300 बार अपना रक्त जो है वो दान किया है, और सभी लोगों को जागरूक भी किया है कि वो भी रक्तदान करें।
0: बिल्कुल सही कह रही हो। और एक बात और है कि रक्तदान कौन कर सकता है, इस बारे में भी बताना बहुत ज़रूरी
1: बिल्कुल
0: है। ख़ास
1: बिल्कुल
0: करके 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के व्यक्ति जो है रक्तदान कर सकते हैं, और जो 45 किलोग्राम हैं या उससे अधिक हैं वही रक्तदान करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर कोई संक्रामक बीमारी है तो बिल्कुल
1: बिल्कुल
0: रक्तदान ना करें। तो सच कहें तो अपने लिए तो हम, हर कोई
1: जीते हैं
0: जीता है, तो
1: बिल्कुल
0: हम किसी और के लिए भी जी करके देखें, तो फिर देखिए उसका क्या आनंद होगा।
1: बिल्कुल।

0: बिल्कुल, अपने लिए जीने की बात जो होती है तो अपने लिए जीते तो सभी हैं, लेकिन जब किसी और के लिए हम जीते हैं तो उसकी बात ही कुछ अलग हो जाती है रेनू।
1: बिल्कुल। और देखो यमुना, ऐसा कहते हैं कि जब एक महिला परिवार में आगे बढ़ती है तो पूरा परिवार आगे बढ़ता है, पर सोचो क्या हो अगर एक साथ 10 महिलाएं मिलकर साथ बढ़े तो फिर क्या होगा।
0: बिल्कुल, जो 10 सहेलियों की बात कर रही हूँ
1: हाँ
0: ना, मैं
1: हाँ
0: सच कहूँ,
1: बिल्कुल
0: दस
1: बिल्कुल
0: सहेलियां जब बैठती हैं तो ये कहा जाता है ना, महिलाएं बैठ के बातें करेंगी केवल।
1: बिल्कुल
0: लेकिन आज का दौर बदल चुका है, अगर 5 और 10 महिलाएं एक साथ होती हैं तो ये एक समूह बना करके वो
1: बिल्कुल
0: अपने हुनर को निखार कर बहुत आगे बढ़ रही हैं। कुछ ऐसी ही बातें आज हम बताने जा रहे हैं
1: बिल्कुल।
0: आपको।
1: और देखो आजकल ऐसा नहीं है कि जो महिलाएं हैं वो अचार पापड़ तक सीमित हैं, अब वो बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, वो डिजिटल सशक्तिकरण भी कर रही हैं और ड्रोन तक खेतों में अब लाए जा रहे हैं।
0: बिल्कुल
1: तो हमारी बहनें समझ ही गई होंगी कि आज हम उनकी जो बातचीत कराने जा रहे हैं वो महिला स्वयं सहायता समूह पर ही केंद्रित है। आज की हमारी बातचीत का विषय है महिला

0: स्वयं सहायता समूह द्वारा महिलाओं का विकास और नीलम त्यागी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की ये संचालिका हैं गाजियाबाद से, इनसे बातचीत कर रही हैं हमारी बहन नीलम मदान। तो यमुना, हम अपनी बहन को यही बातचीत सुनवाते हैं।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सबका। बहुत सारी योजनाएं हैं कल्याणकारी जो महिलाओं के लिए हैं, लेकिन सफल तभी होंगी अगर हम संगठित होकर उन योजनाओं का लाभ उठाएंगे, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है। और आज हमारे साथ हैं श्रीमती नीलम त्यागी, जिन्होंने 300 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह चला रही हैं, स्वयं भी उद्यमी हैं और संघर्ष के बल पे अपने इस मुकाम को पाया है। और आज 300 ग्रुप को चलाकर वो कितनी ही महिलाओं के जीवन में एक अनोखा बदलाव ला रही हैं, उन्हें सक्षम बना रही हैं, सशक्त बना रही हैं। तो हम स्वागत करते हैं डॉक्टर नीलम त्यागी का।
2: सभी बहनों को राम राम। संगठन

0: और संघर्ष के बल पे अपने इस मुकाम को पाया है और आज 300 ग्रुप को चलाकर वो कितनी ही महिलाओं के जीवन में एक अनोखा बदलाव ला रही हैं, उन्हें सक्षम बना रही हैं, सशक्त बना रही हैं। तो हम स्वागत करते हैं डॉक्टर नीलम त्यागी का।
1: सभी बहनों को राम राम। संगठन का जो शब्द है ना, ये अपने आप में ही निराकार शब्द है। इस शब्द में इतनी शक्ति है कि अगर हम उंगली ऐसे खोले ना, एक उंगली को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन अगर हमने ये पांचों उंगली बंद करके मुट्ठी बंद कर ली तो ये जरूर सामने वाले को तोड़ सकता है, वो खुद नहीं बिखर सकते। इसी दिशा में जो प्रयास है हमारी सरकार का, ये स्वयं सहायता समूह अपने आप में एक संगठित शक्ति है। स्वयं सहायता समूह क्या है, वो सबसे पहले उसमें अगर आप रूप की बात करेंगे तो कम से कम 10 महिलाएं, ज्यादा से ज्यादा 20 महिलाओं का एक संगठित रूप है जो एक ही गांव में, जिनका मानसिक लेवल, सामाजिक लेवल, आर्थिक लेवल एक जैसा हो, उनको एक साथ एक समूह बनाना। एक बच्चे का नाम जैसे रखा जाता है, समूह का भी नाम रखा जाता है। उसकी जो पदाधिकारी होते हैं उसमें अनपढ़ महिलाएं भी रह सकती हैं। अच्छी बात यह है उसमें 3 महिलाएं जो पदाधिकारी होती हैं, जिसका सब कहना मानते हों, कोषाध्यक्ष जो थोड़ी पढ़ी लिखी हों, सचिव भी पढ़ी लिखी हों जो रजिस्ट्रों का देखरेख कर सकें, लिख सकें लेखा जोखा, फिर उनका बैंक में खाता खोला जाता है। अपना जो वो महीने में काम करती हैं उसमें से थोड़ा सा बचा के, ऐसे उदाहरण समझिए कि हमने रसोई में कोई सामान लेके आए, हम चीनी लेके आए, चाय की पत्ती लेके आए, उसमें से एक एक मुट्ठी निकाल के हमने अलग सेव करते गए तो 12 महीने में देखेंगे वो डिब्बा भर जाता है। तो कभी भी उसमें से कमी नहीं पड़ती है। हम महिलाएं अपनी रसोई से लेके और उद्यम तक और बाहर तक सबको संभालना जानते हैं, बस

0: के उनको संगठित करके एक एक गांव में 20-20 समूह, 30-30 समूह बनाए गए। तो जब 500-600 महिलाएं गांव में खड़ी हो गईं, अब उस गांव में जो भी कुरीतियां हैं उनको वो तोड़ सकती हैं।
1: सामाजिक और आर्थिक दोनों रूप से
0: दोनों रूप से सक्षम हो गई हैं। उनको पहले गांव में काम करने के बाद अपने घर के काम के साथ साथ कैसे और अपने काम कर सकती हैं। अब उन्होंने पहले समूह बनाए, फिर एक फेडरेशन बनाया। अब समूह में से देखें तो उसी में से सरकार ने बड़े अच्छे अच्छे पद भी रख दिए हमारी बहनों के लिए। समूह सखी है, बैंक सखी है, विद्युत सखी है, लखपति दीदी है, ड्रोन दीदी है, क्लस्टर हेड है, समूह अध्यक्ष हैं, समूह सचिव हैं, समूह कोषाध्यक्ष हैं। इतने सारे ये पद गांव में निर्धारित कर दिए। अब ये महिलाएं आगे चल फेडरेशन बना देना, फेडरेशन के बाद में फिर और एक बड़ा कुनबा इकट्ठा करके एफपीओ बना देना है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। एफपीओ के लिए तो कोई कमी नहीं है, हर क्षेत्र में सरकार ने एफपीओ को खड़ा किया है। और अगर महिलाओं के एफपीओ होते हैं तो उनको और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने सबसे पहले मेरी इंटर करते शादी हो गई थी
1: जी।
0: इंटर करने के बाद जब शादी हो गई तो मुझे लगा मैं क्या करूं, मुझे तो बहुत कुछ करना था। फिर उथल पुथल हुई तो गांव छोड़ना पड़ा, और जिस दिन गांव छोड़ा तो जेब में 2 रुपए थे। जब बाहर आए तो उस दिन लगा कि जिंदगी का सबसे बुरा दिन आज ही है, लेकिन आज समझ में आता है सबसे अच्छा दिन, खूबसूरत दिन वही था, क्योंकि हमें संघर्ष करने को वहां से मिला। जब संघर्ष किया फिर हमने पहले स्वयं सहायता समूह अपना बनाया। स्वयं सहायता समूह जब मैंने अपना बनाया तो मुझे पता चल गया कि ये ऐसी स्कीम है जो अपने साथ और अपनी 20 बहनों की पूरी मदद करता है, पारदर्शिता के साथ। जैसे हमारे हाथ में 5 उंगली हैं, एक भी कटती है तो 5ों को दर्द होता है, उसी तरह से ये समूह का काम होता है। फिर मैंने 10 समूह बनाए, फिर मैंने इसको और तेज गति दी, फिर मैंने 300 समूह।
1: तो आप जब वहां से हुए तो आप जुड़े किससे जब आप गांव से बाहर निकले?
0: क्योंकि जब मैं गांव में समूह बनाए थे तो गांव में नाबार्ड के एजीएम पहुंचे थे और बैंक के मैनेजर थे, जिन्होंने वो समूह बनाने का मुझे सिखाया था। मैं इंटर कॉलेज में टीचिंग कर रही थी उस समय। जब मैं गांव से निकली तो मैंने उनको फोन किया
1: जी
0: कि सर मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं है। तब उन्होंने मुझे एक एनजीओ का रास्ता बताया कि आप वहां जाके काम करिए। मैंने एक एनजीओ में नौकरी करी और नौकरी करने के साथ मैंने ये सीखा, क्योंकि मुझे पता था मुझे बहुत दिन नौकरी नहीं करनी है, अपना काम करना है। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हो सकती हैं जो मेरी तरह परेशान हो सकती हैं, तो मैं उनकी मददगार कैसे बनूं, उनको मैं दिशा कैसे दिखाऊं, ये मेरा अपना उसी समय से फोकस था।
1: यानी कि जहाँ चाहा थी आपकी वही राह मिल गई।
0: वहाँ वही राह मिली मुझे। फिर मैंने अपनी पढ़ाई भी पूरी करी, मैंने एमए सोशियोलॉजी किया। इसी बीच में मेरे पास 2 बेटे 1 बेटी, उनकी परवरिश भी थी, नौकरी भी करना, पढ़ाई भी करना, उन बच्चों की भी देखरेख करना। तो वो अपने आप में एक तपस्या वाला काम था। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं नहीं कर पाऊं, क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो हमें ना बहुत सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी।
1: और ये भी सोचना, विश्वास करना बड़ा जरूरी है कि संघर्ष ही हमारी शक्ति है।
0: बस
1: इसी को हथियार बनाना
0: है, इसी को हथियार बनाना है। तो मैंने फिर एक एनजीओ बनाई। एनजीओ के साथ साथ मैंने अपना एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खड़ा किया, ऐसी महिलाएं जो भटक रही हैं इधर उधर उनको रास्ता देने के लिए वहां पर ट्रेनिंग का सेंटर बनाया। पूरा 100 महिलाएं मेरे यहाँ पे रह के ट्रेनिंग कर सकती हैं। फिर मैनेज हैदराबाद के साथ में नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया, जिसमें एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर बनाया। एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के बच्चे भी मेरे यहाँ से आते हैं, ऑल इंडिया लेवल के बच्चे हैं जो आज ट्रेनिंग लेते हैं। 45 डेज तक वो मेरे पास रहते हैं। फिर उसके बाद में एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर के साथ साथ फिर हमने जो बच्चे किसान हैं, किसानों का ये था कि हमारे बच्चों को कैसे और आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि मैं किसान की बेटी हूँ। तो किसानों के लिए हमने क्या किया, किसान खेती करें, महिलाएं प्रोसेसिंग करें, और जो उनके बच्चे हैं जो आज सभी परेशान है कि बच्चे सिर्फ मोबाइल चलाते हैं और बच्चे बाइक चलाते हैं, तो हमने कहा इनका जो ये माइनस पॉइंट है इसी को आप जो है इस्तेमाल करो और इसी से इनको प्लस कर दीजिए, इसी में इनको दौड़ा दीजिए, मोबाइल हमसे ज्यादा चलाना जानते। फिर उनको हमने क्या किया कि छोटे छोटे मैंने अपना फ्लोर मिल लगाया तो 5 टन आटा डेली मार्केट में सप्लाई किया। मार्केट में मैं खुद गई गाड़ी के साथ, तो मार्केट में भी बड़ा हल्ला मचा, बताओ अब ये समय आ गया महिलाएं आटा लेके आएंगी। तो मैंने उनको भी समझाने का प्रयास किया कि महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं। मैं मार्केट में देखने आई हूँ कि परेशानी कहाँ है। वहां जाके देखा कि सब चीजें कंपनी से आती हैं। जो भी किसान हमारा बना रहा है, हमारे किसान सरसों पैदा करता है, गेहूं पैदा करता है, धान पैदा करता है, तमाम फसलें हैं जो हमारा किसान कर रहा है, लेकिन वहां सारी चीजें कंपनी से आती हैं। मैंने कहा कि अगर हमारे किसान पैदा करें तो आप खरीदेंगे? कि हाँ बिल्कुल, हम किसानों से खरीदेंगे। अब किसान की प्रॉब्लम है कि वो क्वांटिटी में नहीं दे सकता, ज्यादा चीज नहीं दे सकता। जैसे फसल पैदा की तो उसको बेचना होता है, उसको पैसे की जरूरत होती है। तो उसी समय स्कीम आ गई एफपीओ। एफपीओ जो आ गया तो वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, वो हमने क्या किया, किसानों की कंपनी बना दी, कोपस एग्रो, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना दी। कोपस एग्रो के नाम से एक फूड इंडस्ट्री लगा दी। फूड इंडस्ट्री में हम किसानों से रॉ मटेरियल खरीदेंगे, तो किसानों को दूर मार्केट में नहीं भागना पड़ेगा, बीच के बिचौलिया हट गए,
1: परिवहन का खर्चा बच गया,
0: सारे खर्चे बच गए। अब उसी में

0: हमने क्या किया है कि जो उनके बच्चे हैं उन्हीं को दुकान खोलने का आउटलेट खोलने का मौका देंगे, तो अब उनको अलग से बेनिफिट हो गया, पूरा स्टाफ लगा दिया, प्रोसेसिंग हो जाएगी, मार्केटिंग भी हो जाएगी। लेकिन कुछ महिलाएं वहां पे जो एक्टिव महिलाएं हैं, तो एक्टिव महिलाओं को मैंने फिर पहले चिन्हित किया, कुछ महिलाएं मार्केटिंग भी कर सकती हैं, कुछ महिलाएं पैकेजिंग कर सकती हैं, कुछ महिलाएं प्रोडक्शन कर सकती हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ग्रेडिंग से लेके पैकेजिंग मार्केटिंग सब। मार्केट लिंकेज के लिए जो कहते हैं ना कि बड़ी प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना हम बनाते हैं उससे ज्यादा खपत उस जिले में हो सकती है अगर थोड़ा सा सहयोग हमें अधिकारियों का मिल जाए, थोड़ा सा सहयोग वहां पे मिल जाए, तो मार्केट की कोई प्रॉब्लम नहीं कि कहाँ कहाँ हमारे होलसेलर बैठे हैं, कहाँ रिटेलर बैठे हैं, उनको क्या चाहिए, किस तरह का माल चाहिए, क्वालिटी में चाहिए, क्वांटिटी में चाहिए,
1: पैकेजिंग कैसी चाहिए।
0: अगर ये हमें पता चल जाए तो फिर मार्केट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैंने ऑयल मिल लगा दिया, मसाले की यूनिट है, मल्टीग्रेन आटा है, मिलेट से तेल, बेसन, सिरका, अचार, आपका शहद, जो भी हमारी रसोई में यूज होने वाले प्योर प्रोडक्ट हैं उनको हमने उसमें लगा दिया। हमारी यूनिवर्सिटी साथ आ गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो मेरठ में है, कृषि विज्ञान केंद्र साथ आ गए और ICR साथ आ गए। तो हमारा प्रोडक्शन हो गया, मार्केटिंग हो गया, टेक्निकल सपोर्ट बाय KVK और ICR और सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी। द फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ में जो किसानों के बच्चे हाई स्कूल पढ़े लिखे हैं उनको हम 15 डेज का कोर्स कराते हैं, तो वो खाद बीज दवाई का लाइसेंस लेके काम कर सकते, अपनी दुकान खोल सकते। बहुत अच्छा लगता है ये बताने में कि 10,000 इनपुट डीलर हैं उत्तर प्रदेश में जिनको मैंने खड़ा किया।
1: बहुत बड़ी बात है कि सच में आपने खुद को भी स्थापित किया, खुद को भी सिद्ध किया और अपने संघर्ष के बल पे इतने सारे लोगों को रोजगार अपनाने के लिए प्रेरित किया।
0: तो हमें क्या करना है, शिक्षा पे काम करना है, स्वास्थ्य पे काम करना है और रोजगार पे काम करना है। गाजियाबाद महिला उत्पीड़न की चेयरमैन भी बनाया गया, मैं फैमिली कोर्ट में कंसल्टेंट भी बनाया गया, हाई कोर्ट से नॉमिनेट किया गया, 11 नेशनल अवार्ड भी मैंने लिए जिसमें मेरा उद्यान रत्न, NCR रत्न, UP रत्न, त्यागी समाज रत्न, सारे रत्न मैंने लिए, डॉक्टरेट की उपाधि मैंने ली, कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हिमाचल में मुझे प्रोफेसर की उपाधि मिली। हमें अपना उत्साह बनाए रखना है, जुनून बनाए रखना है।
1: बिल्कुल सही बात है, सभी से मेरा यही अनुरोध है कि ऐसी महिलाओं से हमें प्रेरणा पाकर आगे बढ़ना है, खुद को सिद्ध करना है। थोड़ी मुश्किलें होंगी, दूसरे से मिलके संगठन से हम आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद नीलम त्यागी।
2: रेनू, कहते हैं ना संगठन में शक्ति है, और खास करके बात करें अगर किसी चीज को हम करना चाह रहे हैं, कभी आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो उसमें सबसे जो जरूरी बिंदु होता है वो होता है उत्साह, और मन में आशा बनी होनी चाहिए। ऐसी ही बहुत सी बातों को बताया हमारे जो गाजियाबाद की हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप संचालिका नीलम त्यागी ने, और इनसे बातचीत कर रही थी हमारी नीलम मदान, वरिष्ठ हमारी अनाउंसर, और बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने बताया कि कैसे महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा महिलाओं का विकास किया जा सकता है। तो कोशिश हमारी भी होनी चाहिए, हमारी जो बहनें सुन रही हैं कार्यक्रम को, उनको भी ऐसी कोशिश करनी चाहिए वे आगे बढ़ सके। और जब चार सहेलियां होती हैं रिनू, बातें करती हैं, तो इन बातों के साथ साथ आपस में कुछ और भी चहलकदमी होती है, कुछ चुलबुली सी बातें होती हैं, तो इस गाने के जरिए हम उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं।

0: और यमुना देखो, गर्मी इन दिनों बहुत तेज है और जो सूरज देवता है वो पूरी तरह से अपने तेवर दिखाने में लगे हुए हैं। गर्म हवाएं लू थपेड़ों की तरह हमारे शरीर को झुलसाने लगती हैं, और ऐसे में जब हमारी बहनें भी काम करती हैं, हम भी काम पर निकलते हैं, तो देखो सूरज की गर्मी और किरणें परेशान तो करती हैं, और ऐसे वक्त में हमें किसकी तलाश होती है? देखो ऐसे वक्त में हमें तलाश होती है उस ठंडे शीतल जल की, जो कि हमें तुरंत राहत दे सके और गर्मी से हमारे शरीर को ठंडक मिल सके। आज बहुत सारी ऐसी जो कोल्ड ड्रिंक्स चल गए हैं जिनको कि लोग तवज्जो देते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो भारतीय संस्कृति है ना यमुना, वो इतनी उच्च है कि भारतीय संस्कृति में इतने अच्छे पेय पदार्थ बने हुए हैं जो हमारी ग्रामीण बहनें तो प्रयोग करती ही हैं। अगर विश्व में भी लोग उनका प्रयोग करें ना, तो उन्हें वही बात है कि आम के आम गुठलियों के दाम।
1: बिल्कुल रेनू, आपका कहना है कि जो अपनी संस्कृति की हम बात कर रहे हैं तो हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं जो हमारी परंपरा में शुरू से
0: बिल्कुल
1: पारंपरिक पेय चलता चला आ रहा है। कभी सत्तू के घोल पी लिए, कभी चौ का
0: बिल्कुल
1: घोल पी लिए, तो मतलब होता है ना कि, और कभी कभी आम का आमिया बना लिए, आम
0: बिल्कुल
1: उबाल के उसका रस बनाए, उसमें जरा सा जीरा जरा सा काला नमक मिलाए और ठंडा सा बन गया, उसको हम पी लिए। इसी तरीके से बहुत से पेय पदार्थ होते हैं जो घर में बनाए जा सकते हैं और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक
0: लाभदायक
1: होते
0: होते हैं।
1: हैं।
0: और देखो जैसे अभी ये तुमने आम का पन्ना कहा, उसी में जो सत्तू है, सत्तू को तो ये कहा जाता है कि ये गर्मियों में सुपर फूड से किसी कम नहीं होता, और गरीबों का फ्रिज भी इसको कहा जाता है,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि देखो फ्रिज तो फिर भी नुकसान करता है, लेकिन सत्तू को अगर पिया जाए तो इसको पीने से हमारे शरीर को राहत तो मिलती ही है।

0: एक बात और है कि अगर लू में निकल रहे हैं, धूप की थपेड़ों में निकल रहे हैं, जैसे आपने कहा कि सूरज की गर्मी,
1: बिल्कुल
0: तो ऐसे में जो है जब घर से बाहर निकलते हैं, तो पुराने ज़माने में क्या अभी भी जिनको पता है, जिनके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, तो क्या करते हैं, प्याज को पीस करके उसका थोड़ा सा रस निकालते हैं, एक चम्मच बच्चे को या जो भी घर से बाहर निकल रहे हैं उसे पिला देते हैं, तो जो
1: बिल्कुल
0: प्याज का हम रस पीते हैं उससे हमें लू नहीं लगता है। और इतना ही नहीं है, छाछ की बोतल भी दे सकते हैं उसमें,
1: बिल्कुल
0: कि छाछ की बोतल रहेगी तो उसमें जीरा उरा पड़ा रहेगा तो सुपाच्य रहेगा, ठंडक देगा, तरावट देगा हमारे शरीर को।
1: बिल्कुल
0: ऐसे पुदीना है, जलजीरा है, तो बहुत से ऐसे चीज़ हैं जो पेय पदार्थ आप घर में बना सकते हैं, और हम थोड़ा
1: बिल्कुल
0: बता भी सकते हैं कि कैसे बन सकता है।
1: बिल्कुल ऐसे ही बेल का शरबत भी है। देखो, बेल को भी गर्मियों में वरदान कहा जाता है, और इसकी तासीर जो है वो बहुत ही ठंडी होती है। इसको रात भर पानी में भिगो कर रख दें, और उसके बाद ये जली जैसा हो जाता है। इसे फिर दूध पानी के साथ मिलाकर, और जब गर्मी या मरोड़ होते हैं, दस्त की समस्याएं होती हैं, तो बेल का जो सेवन है वो बहुत अधिक राहत देता है।
0: अब पाचन की हम बात कर लें, तो जैसे पुदीने की बात है, तो पुदीने की जब अभी तो पुदीना हरा मिल रहा है, तो बहुत से समय ऐसा हो जाता है जैसे पुदीना नहीं मिल रहा है, तो उसकी पत्ती हम सुखा के रख लेते हैं, पाउडर से
1: बिल्कुल
0: बना के रख लेते हैं। तो करना क्या है, थोड़ा सा हम पानी लिए और थोड़ा सा आम का हम हल्का सा पना लिए, उसमें थोड़ा सा पुदीना हमने मिलाया, थोड़ा जीरा पाउडर मिलाया, थोड़ा सा काला नमक मिलाया, सादा नमक
1: बिल्कुल
0: मिलाया, और घोल बना के, और हल्का सा अगर हींग है तो हल्का सा हींग भी डाल दी, बहुत ही सुपाच्य, बहुत ही स्वादिष्ट बन जाएगा। और ऐसे सत्तू की हम जब बात किए हैं, सत्तू के घोल को बनाने को, कि कैसे शरबत जैसा बना के आप पिए, तो सत्तू आप चने के सत्तू ले लीजिए, चाहे जौ के
1: बिल्कुल
0: सत्तू को ले लीजिए, पानी लीजिए एक चम्मच, उसमें एक ग्लास पानी में एक चम्मच सत्तू डालिए, थोड़ा सा अमिया का रस डालिए, और ना हो तो नींबू डाल लीजिए, और थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा वो काला नमक,
1: बिल्कुल
0: और ये सारी चीज़ें मिला के पीजिए, देखिए कितना स्वादिष्ट लगेगा। और जब बाहर आप निकलते हैं तो कोशिश करिए कि कांच का बॉटल हो या
1: बिल्कुल
0: स्टील का हो, कुछ उसमें रख के आप निकलिए, प्लास्टिक में तो ना ही रखिए। तो ऐसे आप छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान देते हैं तो शीतलता बनी रहेगी और आपका स्वास्थ्य भी बहुत ही अच्छा
1: बिल्कुल
0: रहेगा।
1: और पेट को भी ठंडक और आराम मिलेगा।
0: लेकिन एक बात और है रेनू, अब देख लो मेरा गला आज बैठा सा नज़र आ रहा, क्योंकि हमने कुछ क्या किया है, उतार चढ़ाव कुछ किया, कभी ठंडा
1: बिल्कुल
0: पी लिया तो कभी गर्म पी लिया, तो ऐसी चीज़ों से बताएं, जैसे आप गर्मी से आ रहे हैं और तुरंत आप ठंडा पानी पी लिए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। घर में कोशिश करनी चाहिए कि घड़े में पानी रखें, फ्रिज का
1: बिल्कुल
0: उपयोग ना करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर घड़े का पानी स्वादिष्ट और सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू देगा। और एक बात और है, ये सारी चीज़ों को करेगा कौन, घर की घरनी करेगी,
1: बिल्कुल
0: और जब घर की घरनी लग के कोई काम करती है तो घर सुव्यवस्थित रहता है, और जब घर सुव्यवस्थित रहता है तो घर का जो सदस्य होता है वो चहक उठता है कि हमारा घर की, जो हमारा घर है, जो हमारी बगिया है, महक रहा है, और महक आने वाली कोई और नहीं, हमारी भाभी है। तो चलते हैं, ये गीत के माध्यम से आनंद उठाते हैं।

0: और यमुना, हमारे देश में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है, और हम सभी बहनों को उनसे प्रेरणा भी मिलती है।
1: बिल्कुल
0: तो
1: सही कह रही
0: आज
1: हैं।
0: हम अपनी बहनों को बताने जा रहे हैं भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध सरोजनी नायडू के बारे में। ये भारत की एक बहुत ही महान और अद्भुत महिला थी। इन्होंने अपनी कलम से कविताएं भी लिखी, और इसके साथ साथ कलम के साथ साथ इन्होंने देश की आज़ादी के लिए तलवार भी उठाई थी। इनका जन्म 13 फरवरी को हुआ था और असाधारण बुद्धिमत्ता की धनी ये थी। इसके साथ साथ यमुना, सबसे खास बात इनमें ये थी कि ये बहुभाषाविद थी, यानी कि देखो हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, उर्दू और तेलुगु सभी भाषाओं पर ये अपनी समान पकड़ रखती थी। और कलम की ताकत तो इनकी ऐसी थी कि केवल 13 साल की आयु में ही इन्होंने लेडी ऑफ द लेक नामक 1300 पंक्तियों की एक बहुत बड़ी कविता लिखी थी। देखो जहां 10 लाइनें लिखने में हम सबके मतलब सोचने लगते हैं क्या लिखें क्या लिखें, वहां केवल 12 साल की आयु में 1300 पंक्तियों क्योंकि कविता लिखना मायने रखता है।
1: ये जो बात कह रही हो कि उन्होंने लेखन के जरिए भी अपना नाम किया,
0: बिल्कुल।
1: तो नायडू ने महिलाओं के लिए एक वाक्य कही थी रेनू। वो वाक्य थी, अपनी महिलाओं को शिक्षित करो।
0: बिल्कुल।
1: अपनी महिलाओं मतलब जो परिवार के सदस्य हैं उनके लिए वो कह रही संबोधन में, अपनी महिलाओं को शिक्षित करो, फिर राष्ट्र खुद ब खुद अपना ख्याल रख लेगा।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि ये कल जितना सच था उतना ही आज भी सच है कि जो हाथ पालने को झुलाते हैं वही दुनिया पर शासन कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और सरोजिनी नायडू की जब हम बात कर रहे हैं, तो आपने जैसे कहा कि स्वतंत्रता सेनानी, महान स्वतंत्रता सेनानी थी, तो महिला भारती जो भारतीय संघ थी उसकी स्थापना भी इन्होंने की। तो
0: बिल्कुल।
1: सच कहें तो जो लोग हमारे बीच नहीं हैं या जो लोग हैं और महान कार्य कर रहे हैं, तो उनसे हम बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में सीख सकते हैं कि हाँ वाकई अगर उन्होंने ऐसा किया तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: वो हमारी प्रेरणा है और प्रेरणा की स्रोत हैं। तो अगर देखा जाए तो इस तरीके से

0: बहुत कुछ किया जा सकता है जीवन में, और जो हमारी वीरांगनाएं हैं उन वीरांगना क्रम में आज हम सरोजिनी नायडू की बात कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, और देखो कलम के साथ साथ इन्होंने जो आज़ादी के आंदोलन में भी बहुत ही ऐतिहासिक अपनी भूमिका निभाई थी। इन्होंने पूरी तरह से एक तरह से देश सेवा का मार्ग चुन लिया था, और इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत सारे ऐसे आंदोलन थे जिसमें इन्होंने भाग लिया। और यमुना हम कह सकते हैं कि ऐसी ही महान वीरांगनाओं के कारण आज हम चैन की सांस ले पा रहे हैं, आज हम स्वतंत्र हैं। वरना सोचा जा सकता है कि प्रतंत्रता की आग में किस तरह से इन महिलाओं ने देश को आज़ाद करने का बीड़ा उठाया होगा।
0: बिल्कुल, हम नमन करते हैं, श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं अपनी ऐसी वीरांगनाओं के प्रति, और भक्ति भाव में डूबते हैं देश के प्रति।

0: से।
1: और यमुना, जिस तरह से देश की वीरांगनाओं ने हमारे देश के लिए काम किया है, उसी तरह से आज हम आकाशवाणी के माध्यम से अपनी बहनों से बात कर रहे हैं। आकाशवाणी का सफ़र भी बहुत लंबा है, 90 सालों से हमारी बहनों को और पूरे देशवासियों को राह दिखाई है और बहुत सारे कार्यक्रमों के माध्यम से जन जन को जागरूक करने में अगर हम कहें कि आकाशवाणी का भी हाथ रहा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत सारी ग्रामीण बहनों के लिए कार्यक्रम और इन्हीं बहनों के माध्यम से बहुत सारी बहनों ने अपना नाम रोशन किया है, जिनमें हम अनीता देवी का नाम ले सकते हैं, धान की संरक्षिका कमला कुमारी का नाम ले सकते हैं, किसान चाची के नाम से प्रसिद्ध राजकुमारी देवी का नाम ले सकते हैं और साथ ही साथ राजस्थान को पारंपरिक कढ़ाई में नाम दिलाने वाली रूमी देवी का नाम भी हम ले सकते हैं।
2: बिल्कुल। और योजना क्रम में अगर आज हम कहें तो आज हम सुकन्या समृद्धि योजना की बात करेंगे। बालिकाओं पर केंद्रित सुकन्या समृद्धि योजना खास करके दो बालिकाओं के लिए ये योजना है। खास करके जैसे घर में अगर जन्म लेती है बच्ची तो एक और दो बच्चों तक ये सुकन्या समृद्धि का खाता खुलवाया जा सकता है, जिसके लिए जैसे बच्ची जन्म लेती है आप तैसे ही खाता खुलवा सकते हैं। उसके लिए जो ज़रूरी कागजात होंगे, आधार कार्ड होना चाहिए, आपका हो, बच्चे का हो, किसी का भी हो, मतलब माता पिता या बच्चे में से कोई एक का हो सकता है, और आपका खाता होना चाहिए उस डाकखाने में या बैंक में, और आप

0: 1,000 रुपया से शुरुआत कर सकते हैं, और न्यूनतम अगर राशि हम बात करें तो 250 रुपये से शुरू कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप साल भर में 1,50,000 रुपये जमा कर सकते हैं। तो जब बच्ची जन्म लेती है और उससे लेकर के जब वो 18 वर्ष की होगी, तो आप आधी धनराशि या 10वीं पास होती है, तो आप जो जमा राशि आपने किया है उसमें से 50% आपको मिल सकता है उसकी शिक्षा के लिए, उसकी विवाह के लिए, और 21 साल पे उसकी मेच्योरिटी होती है, पूरा धनराशि मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप सुकन्या समृद्धि का लाभ उठा सकते हैं डाकखाने या नज़दीकी जो बैंक है वहाँ पर जा करके। और कहते हैं जब पैसा ज़्यादा होता है तो सच कहें तो गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसा जो होता है वो एक कहते हैं कि फली डाल जो होती है वो झुक कर रहती है, जब
1: बिल्कुल
0: डाल जब पेड़ पे कोई फल आ जाता है, तो उसी प्रकार से इंसान को थोड़ा झुक के रहना चाहिए, क्योंकि पैसे पे गुरूर करना ठीक नहीं होता है।

0: और अगर हमारी बहनें हमें कुछ लिखना चाहें तो वो हमें ईमेल कर सकती हैं feedback@gmail.com पर।
1: और जो हमारा पता है कृषि एवं गृह कांश, कमरा नंबर 610,

0: और हमारे आज के कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पारा सर और संयोजक हैं शिवनंदन लाल।
1: और आज अगली कार्यक्रम में जो आप सुन सकेंगे कृषि जगत कार्यक्रम, ग्राम संसार कार्यक्रम और लोक रंजनी जो 5:10 से शुरू होगा, 5:20 पर खत्म हो जाएगा। और कृषि जगत कार्यक्रम 6:30 से 7:00 तक, ग्राम संसार 7:05 से लेकर के 7:30 तक। इसी के साथ बहनों हमें दीजिए इजाजत, सभी को राम राम, राम।
2: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। आइए सुनते हैं समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। इस दौरान भारत के तेजी से बढ़ते नवाचार तंत्र को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप, निवेशक और टेक्नोलॉजी लीडर्स शामिल होंगे। कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा ऐसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
3: सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। इससे इंजीनियरिंग और वस्त्र परीक्षण सहित प्रमुख क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। ये केंद्र उन्नत विनिर्माण सुविधाएं, तकनीकी सहायता और उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करेगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक नर्तक नर्तकियों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की। इस सामूहिक प्रस्तुति को गिनीज विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और सांस्कृतिक

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त नंदा इस्सर। आप सुन रहे हैं इंद्रप्रस्थ चैनल का लोकप्रिय कार्यक्रम एक ही फिल्म से। दोस्तों, हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर की फिल्मों में कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जो अपने संगीत, कलाकारों के अभिनय और सरल लेकिन दिल को छू लेने वाली कहानी के कारण आज भी याद की जाती हैं। ऐसी ही एक फिल्म है वर्ष 1959 में प्रदर्शित कन्हैया। निर्देशक थे अभिनेता और फिल्मकार ओम प्रकाश, निर्माता थे संत सिंह पंछी, संगीत दिया था महान जोड़ी शंकर जयकिशन ने और मुख्य भूमिकाओं में थे राज कपूर, नूतन, ललिता पवार और मदनपुरी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस फिल्म के सबसे लोकप्रिय गीत के साथ।

वाह क्या मधुर धुन! मुकेश की गायकी और शंकर जयकिशन का संगीत इस गीत को अमर बना देता है। एक रोचक बात आपको बता दें दोस्तों कि इस गीत का फिल्मांकन उस दौर में काफ़ी चर्चित हुआ था। गीत में राज कपूर जिस अंदाज में नायिका को रोकने की कोशिश करते हैं वो दर्शकों को बहुत पसंद आया था। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से अपने पसंदीदा चैनल इंद्रप्रस्थ चैनल पर, और मैं हूं आपकी दोस्त नंदा इस्सर आपके साथ। आपको ये फिल्म कैसी लग रही है, स्टोरी कैसी लग रही है, आप हमें इसके लिए मेल कर सकते हैं। आपके मेल का हमें बेसब्री से इंतज़ार होगा और आपकी मेल कार्यक्रम के बीच में ज़रूर शामिल की जाएगी। तो फिल्म कन्हैया की कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक गांव से। इस गांव में रहती है एक भोली भाली और धार्मिक लड़की शानो, जिसका किरदार निभाया है नूतन ने। शानो भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त है। वे हमेशा कृष्ण भक्ति में डूबी रहती है। उधर गांव में एक लड़का है जिसका नाम है कन्हैया। ये भूमिका निभाई है राज कपूर ने। ये कन्हैया एक लापरवाह और निठल्ला और शराबी है। एक दिन अचानक शानो की मुलाकात कन्हैया से होती है और नाम के धोखे में वो उसे अपना भगवान कृष्ण समझ बैठती है। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, और वो मोड़ क्या आता है इससे पहले सुन लेते हैं इस फिल्म का एक और खूबसूरत सा गीत।

कहानी में ये ट्विस्ट आता है कि अब शानू के मन में कन्हैया के लिए भावनाएं और गहरी होने लगती है। दूसरी तरफ असली कन्हैया इस गलतफहमी को समझते हुए भी उसे दूर नहीं करता। धीरे धीरे गांव में दोनों के प्रेम की चर्चाएं फैल जाती हैं, तो गांव की पंचायत दोनों के विवाह का फैसला करती है। शानू अपने सपनों को सच होता हुआ देख रही है, लेकिन विवाह के समय उसे सच्चाई का पता चलता है कि ये वो कन्हैया नहीं है जिसकी शानू पूजा करती आई है। शानू का दिल

दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और हमारी आज की फिल्म है कन्हैया। तो आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है? आपके हम संदेश शामिल कर लेते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है। तो ये पहला संदेश हमें मिला है फागुराम यादव का। इन्होंने लिखा है, सप्रेम नमस्कार नंदा मैडम, आपको भी हमारा नमस्कार। हम आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं और आपको ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमें संदेश भेजा है इन्होंने संबलपुर कांकेर से। फागुराम यादव के साथ हैं ज्योति और ओजस्वी यादव। अगला संदेश हम शामिल कर रहे हैं, ये संदेश हमें मिला है सतीश अनेजा का। नमस्कार जी, आपको भी नमस्कार। कन्हैया फिल्म अपना लोहा मनवा चुकी है, बिल्कुल मनवा चुकी है। सभी कलाकारों ने बहुत अच्छा अभिनय किया था। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिल्म और ये हमें संदेश मिला है चंडीगढ़ से, इनके साथ है बिमला अनेजा जी। और अगला संदेश हम शामिल करते हैं दिनेश वर्मा का। संदेश हमें ये मिला है, उनको कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद, आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है। इन्होंने, दिनेश वर्मा जी ने हमें ये मेल भेजा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से, इनके साथ है करुणा वर्मा। और अगला संदेश हम जल्दी से शामिल कर लेते हैं, ये है निसार अली का। इनको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, इनके साथ हैं नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये भी हमारा प्रोग्राम बहुत तल्लीनता के साथ सुन रहे हैं, धन्यवाद। और अगला संदेश है, ये संदेश आया है सुर संगम रेडियो श्रोता संघ से। इन्होंने लिखा है, आज एक ही फिल्म प्रोग्राम में नंदा जी प्रोग्राम पेश कर रही हैं। बिल्कुल सही बोला आपने, आपको नमस्कार। और इन्होंने, प्रोग्राम इनको अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। आज की फिल्म कन्हैया, जिसमें राज कपूर, नूतन, ललिता पवार और संगीत शंकर जयकिशन की संगीत से सजी फिल्म लाजवाब है, इसके आपकी तारीफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको फिल्म पसंद आ रही है और फिल्म के गीत भी पसंद आ रहे हैं। और अगला हमें संदेश मिला है बबलेश पनवर जी का, गांधी चौक बाड़मेर राज से। इन्होंने भी फिल्म कन्हैया से जुड़ा एक किस्सा हमें लिखकर भेजा है। फिल्म के क्लाइमैक्स और कहानी में एक बेहद भावुक मोड़ आता है। गांव वाले शन्नों के चरित्र पर उंगली उठाते हैं और खुद को पवित्र साबित करने के लिए सीता माता की तरह अग्नि परीक्षा देने की जिद पर अड़ जाती है। जब शन्नो चिता पर बैठती है तो राज कपूर का किरदार उसे बचाने दौड़ता है, लेकिन लोग उसे पीट कर भगा देते हैं। इसके बाद कन्हैया पहाड़ पर दौड़कर जाता है और रोते रोते भगवान कृष्ण को पुकारता है और वो आकर सच्चे भक्त की रक्षा करें, वो ऐसा बोलता है। तो थिएटर में इस सीन को देखकर दर्शक भावुक हो गए थे और फिल्म के सबसे दमदार दृश्यों में से इसे माना जाता है। इस जानकारी के लिए बबलेश पनवर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने ये फिल्म नहीं देखी है वो ज़रूर इस फिल्म को देखें। अगला संदेश आया है कमलकांत जी का, पीपरिया से। और इनको भी प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और इनके साथ हैं इनके परिवार के अन्य सदस्य। और अगला संदेश मैं शामिल कर लेती हूँ राधे श्याम शर्मा जी का, हांडी खेड़ा सिरसा से। और इनके साथ है इंदिरा शर्मा। इनको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है और फिल्म से जुड़ी जानकारी भी इनको अच्छी लग रही है और गाने तो कर्णप्रिय लग ही रहे हैं, धन्यवाद आपका।

और अगला एक और मेल मैं शामिल करना चाहूंगी, धर्मेंद्र छिप्पा जी का। इन्होंने लिखा है कि कार्यक्रम एक ही फिल्म से आप चर्चा कर रहे हैं, बेहतरीन फिल्म, बिल्कुल सही कहा। ये संदेश हमें मिला है भोपालगढ़ राजस्थान से, इनके साथ हैं कपिल चिम्पा और पूजा परिहार जी। तो अभी संदेशों को देते हैं एक विराम और कहानी को आगे बढ़ाते हुए बढ़ाते हैं और बताते हैं कि कन्हैया को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। पहली बार उसे महसूस होता है कि उसने किसी के विश्वास को ठेस पहुंचाई है। गांव पर संकट आता है, लोग परेशान होते हैं। ऐसे समय में कन्हैया आगे बढ़कर लोगों की मदद करता है। उसके अंदर का अच्छा इंसान सामने आने लगता है। शानू भी उसके बदले हुए रूप को देखती है। शानू को महसूस होता है कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं बल्कि अच्छे कर्म करने वाले इंसानों में भी बसते हैं। शानू को समझ आ जाता है कि सच्चा कन्हैया वही है जो दूसरों के दुख में साथ खड़ा हो। शानू भी महसूस करती है कि इंसान की पहचान उसके नाम से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। इस प्रकार शानू कन्हैया को अपना लेती है और फिल्म का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। तो आइए सुनते हैं फिल्म का एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से और मैं हूं आपकी दोस्त नंदा इस्सर आपके साथ आपके पसंदीदा चैनल इंद्रप्रस्थ चैनल पर। और हमारी आज की फिल्म है कन्हैया। फिल्म कन्हैया में राज कपूर ने एक ऐसे युवक का किरदार निभाया जो शुरू में लापरवाह दिखाई देता है लेकिन बाद में उसके अंदर का संवेदनशील इंसान सामने आता है। राज कपूर ने इस परिवर्तन को बहुत बाखूबी से निभाया है। वहीं नूतन ने शानू के किरदार में मासूमियत आस्था और भावनात्मक संघर्ष को इतने प्रभावशाली ढंग से निभाया कि दर्शक उनकी कला के कायल हो गए। ललिता पवार और मदन पुरी ने भी अपने अपने किरदारों को मजबूती प्रदान की। फिल्म की कहानी भक्ति और मानवीय प्रेम के अनोखे मेल पर आधारित थी जो उस दौर में काफ़ी अलग विषय माना गया। दोस्तों फिल्म के संगीत की अगर बात करें तो शंकर जयकिशन ने इस फिल्म में लोक धुनों और मधुर मेलोडी का सुंदर मिश्रण पेश किया। गीतकारों ने भी सरल लेकिन प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग किया। मुकेश की आवाज़ ने गीतों को अमर बना दिया। तो दोस्तों ये थी साल 1959 की फिल्म कन्हैया, एक ऐसी फिल्म जिसमें भक्ति प्रेम विश्वास और इंसानियत का सुंदर संदेश छिपा है। तो दोस्तों कुछ और मेल जाते जाते कुछ और मेल शामिल कर लेते हैं और साथ में आपको इस फिल्म का एक और प्यारा सा गीत मैं सुनवाना चाहूँगी। गीत के साथ साथ आपके संदेश भी शामिल करूँगी और इसी गीत के साथ अपनी दोस्त नंदा इस्सर को अनुमति दीजिए और अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।

पहला संदेश हमें आया है बिट्टू गंगनेजा जी का। इन्होंने ये संदेश भेजा है जलालाबाद वेस्ट से। इनके साथ है पूनम गंगनेजा। और भी एक दो मेल मैं शामिल करना चाहूँगी। अगला संदेश आया है संदीप मक्कर जी का, ज्योति मक्कर, मन्नत, भरत मक्कर, इनको भी प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है। ये संदेश आया है जलंधर से। और एक संदेश और शामिल करना चाहूँगी। नमस्कार आरजे जी, नमस्कार। ये हमें मेल भेजा है भूषण खेड़ा जी ने। इनके साथ हैं विशाल खेड़ा, शालिनी खेड़ा, वाणी खेड़ा। और ये संदेश हमें मिला है पंजाब खेड़ा परिवार की तरफ से। और इसके साथ ही अगर किसी का मेल मैं शामिल ना कर पाऊँ समय की पाबंदी की वजह से, तो आप नाराज़ मत होइएगा, अगले प्रोग्राम में आपका मेल ज़रूर शामिल किया जाएगा।

0: हमें मिला है नरेंद्र सूथर जी का, ये मेल है हनुमानगढ़ राजस्थान से। इनके साथ है मनोज सूथर और हिमांशु जी का। इनको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, इसके लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही फिल्म से, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चुनवियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के नीस विच इंडिया इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों नाल दुवाली गल्लबात भी करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 सालों में देश में सेहत संभाल को बेहतर और किफायती बनाने लई कई कदम चुके गए ने। जनगणना 2027 तहत पंजाब च मकाना दे सूचीकरण ते गणना दा पहला पड़ा तय समय च सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। केंद्रीय सेहत मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व खूनदाता दिवस ते लोगों नूं स्वेच्छा नाल खूनदान करन दी अपील कीती है। ते भारत दा आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप विच अपनी मुहिम दी शुरुआत पाकिस्तान खिलाफ मैच नाल करेगा। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों नाल नीस विच इंडिया इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन साल के हिस्से वजो आयोजित इस समागम विच 120 तो वध भारतीय स्टार्टअप्स आलमी निवेशक तकनालोजी आगू ते उद्यमी इकट्ठे होंगे। इस समागम भारत के तेजी नाल वध रहे नवीनता इकोसिस्टम नूं प्रदर्शित करेगा। इस तों बाद प्रधानमंत्री मोदी ते राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष आलमी रणनीतिक भाईवाली विच प्रगति की समीक्षा करने लई दुवाली गल्लबात करनगे ते मुख खेतरी ते अंतरराष्ट्रीय मुद्दे ते चर्चा करनगे। पहला नीस पहुंचण ते प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत किया गया। भारतीय भाईचारा ने होटल पहुंच के उन्हां दा निघा स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों नाल गल्लबात की ते सभ्याचारक पेशकारियां दा आनंद माणिया। राष्ट्रपति मैक्रों नाल गल्लबात ते दोपहर दे खाने दी दावत तों बाद श्री मोदी अपने दौरे दे अगले पड़ा ते स्लोवाकिया लई रवाना हो जाणगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 12 सालों विच देश विच सेहत संभाल नूं बेहतर ते किफायती बनाउण लई कई अहम कदम चुके गए ने। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच उन्हां कहा कि आयुष्मान भारत योजना गरीबां ते लोड़वंदां नूं इलाज प्रदान करदी है, जदों कि जन औषधि केंद्र किफायती दवाईयां प्रदान करदे ने। प्रधानमंत्री ने अगे कहा कि मरीजां नूं घट कीमतां ते स्टेंट ते गोडियां ते इम्पलांट का लाभ होया है। इस तों इलावा मैडिकल कालजां ते सीटां दे विस्थार ने डाक्टर बनन दे मौके वधाए ने। उन्हां कहा कि सरकार एक सेहतमंद भारत बनाउण लई अणथक मेहनत करदी रहेगी। केंद्रीय सड़क आवाजाई ते शाहराह मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई हेठ पिछले दहाके विच देश के सेहत संभाल खेत्र विच वड्डा बदलाव आया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना तहत करोड़ां लोग नकदी रहत सेहत संभाल हासिल कर रहे हैं और इसका दायरा हुण सीनियर सिटीजन तक भी वधा दिता गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केन्द्र राही किफायती दरां ते म्यारी दवाईयां उपलब्ध कराईयां जा रही ने। केंद्रीय वणज ते उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अज दुनिया दीयां कई वड्डियां सेहत संभाल योजनावां नूं सफलतापूर्वक चला रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह यकीनी बनाना है कि किसी भी परिवार नूं बीमारी कारण माली बोझ का सामना ना करना पए। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਹੈ @AIRRNU ਜਲੰਧਰ। ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ RNU-AIR ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ @AIR ਜਲੰਧਰ। ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀਕਰਨ ਤੇ ਗਣਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 15 ਮਈ ਤੋਂ 13 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਾਈ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਂਸਸ ਆਫੀਸਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਸੈਂਸਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਡਾ ਨਵਜੋਤ ਖੋਸਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਚ ਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ 14 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਗਣਨਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੁੱਲ 52,564 ਹਾਊਸ ਲਿਸਟਿੰਗ ਬਲਾਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਕਾਨ ਸੂਚੀਕਰਨ ਕਾਰਜ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਭਾਰਤ ਵਿਚ 16ਵੀਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਏਗੀ। केंद्रीय सेहत मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व खूनदाता दिवस ते लोगों नूं स्वेच्छा नाल खूनदान करन दी अपील कीती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच श्री नड्डा ने कहा कि खूनदान किसी व्यक्ति नूं नवां जीवन देण दा सब तों प्रभावशाली ते पवित्र मौका है। उन्होंने खूनदान की महत्ता बारे जागरूकता फैलाउण ते जोर दिता। इस साल विश्व खूनदाता दिवस का विषय मनुखता की एक बूंद खूनदान करो जीवन बचाओ। विश्व खूनदाता दिवस हर साल 14 जून नूं सुरक्षित खून की महत्ता बारे जागरूकता पैदा करन अते स्वेच्छा नाल खूनदान नूं उत्साहित करन दे उद्देश नाल मनाया जांदा है। सरकार ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलक खैन शर्मा नूं किरत अंकड़िया अते उच्च पदरी तकनीकी माहर कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया है। यह कमेटी देश विच रोजगार अते किरत बाजार के अंकड़िया की समीक्षा करेगी अते उन्हां नूं होर सटीक व्यापक अते समय सिर बनाने लई उपावां दी सिफारिश करेगी। यह कमेटी भारत के बदलते किरत बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा इस समय मनुखी विकास संस्था के डायरेक्टर ने। उन्हां कोल रोजगार किरत गरीबी अते विकास विच 40 साल तों वध दा तजर्बा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सब तो वध समय तक भारत के प्रधानमंत्री वजों सेवा काल लई उन्हां नूं वधाई देण ते सर्बिया के राष्ट्रपति अलैक्सेंडर वूसिक का धन्नवाद किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच श्री मोदी ने सर्बिया के राष्ट्रपति का उन्हां दे हार्दिक वधाई संदेश लई धन्नवाद किया। सर्बिया के राष्ट्रपति के हालिया भारत दौरे अते दौरे दौरान होईयां लाहेवंद चर्चावां नूं याद करदिआं उन्हां कहा कि भारत सर्बिया नाल अपनी दोस्ती की डूंघाई नाल कदर करदा है। उन्होंने विश्वास प्रगट किया कि आने वाले समय में दोहां देशों विचकार भाईवाली होर मजबूत होगी। झारखंड में पिछले 24 घंटे अंदरों आसमानी बिजली डिगण नाल वख-वख घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इन्हां विच 3 औरतां ते 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने दस्सिया कि मृतकों विचों 2 रांची अते 2 गढ़वा जिलों के सन, बाकी चतरा गेडी अते सरायकेला खरसावन जिलों तों सन। अधिकारियों ने लाशां नूं पोस्टमार्टम लई भेज दिता है। भारत अज आईसीसी महिला 2020 विश्व कप विच अपनी मुहिम की शुरुआत पाकिस्तान विरुद्ध मैच नाल करेगा। ग्रुप ए का यह मैच बर्मिंगम के एजबेस्टन विखे भारतीय समय अनुसार शामी 7 बजे शुरू होगा। महिला 2020 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों च भारत ने पाकिस्तान नूं 16 मैचों विचों 13 च हराया है। आस्ट्रेलिया ने फीफा विश्व कप 2026 दे अपने पहले ग्रुप डी मैच विच तुर्की नूं 2-0 नाल हरा दिता है। अमरीका दे न्यूजर्सी विच ग्रुप सी दे एक होर मैच विच अज स्कॉटलैंड ने हैती नूं 1-0 नाल हराया है। स्कॉटलैंड ने 28 सालां दे इंतजार तों बाद यह उपलब्धि हासिल कीती है। इसे ग्रुप विच 5 वार दे चैंपियन ब्राजील ने अपनी मुहिम की शुरुआत मोरक्को नाल 1-1 दे ड्रा नाल कीती। इस तों पहलां कतर अते स्विट्जरलैंड विचकार ग्रुप बी दा मैच 1-1 नाल बराबर रहा। अज श्रीलंका के कोलंबो विच 5,000 तों वध नर्तक नर्तकियां ने समूहक तौर ते भारतनाट्यम पेश कीता। यह एक इतिहासक सभ्याचारक मील पत्थर है। इस समूहक पेशकारी नूं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड विच दर्ज किया गया है। श्रीलंका भारत अते कई होर देशां दे हजारां नर्तकां ने इस विच हिस्सा लिया। इस समागम दा उद्देश भारतनाट्यम दी सदीवी परंपरा नूं प्रदर्शित करना अते सरहदां तों पार सभ्याचारक संबंधां नूं उत्साहित करना सी। श्रीलंका विच भारतीय हाई कमिश्नर संतोष झा ने कलाकारां ते प्रबंधकां तरफों गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र हासिल किया। नृतकां ते प्रबंधकां नूं वधाई दिंदिआं हाई कमिश्नर ने कहा कि सभ्याचार भारत अते श्रीलंका दे आपसी संबंधां नूं मजबूत करन विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाउंदा है। अंत विच चोणवीआं खबरां इक वार फिर सुन लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज फ्रांस के नीस विच इंडिया इनोवेट्स का उद्घाटन करनगे। श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों नाल दवली गलबात भी करनगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 सालों विच देश विच सेहत संभाल नूं बेहतर अते किफायती बनाउण लई कई कदम चुके गए ने। जनगणना 2027 तहत पंजाब च मकानां दे सूचीकरण ते गणना दा पहला पड़ा तय समय च सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। केंद्रीय सेहत मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व खूनदाता दिवस ते लोगों नूं स्वेच्छा नाल खूनदान करने की अपील की है। भारत आज आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप च अपनी

मुहिम की शुरुआत पाकिस्तान खिलाफ मैच नाल करेगा। इस दे नाल ही खबरों का राष्ट्रीय बुलेटिन खत्म होंगे। साडा अगला प्रदेशक खबरों का बुलेटिन शामी 6:20 ते होगा। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के शहर नीस में मीटिंगों के साथ यूरोप का अपना दौरा शुरू कर दिया है। जनाब मोदी अब से कुछ देर बाद फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर भारत इनोवेट्स 2026 का इफ्तिताह करने वाले हैं। आज सदर मैक्रों के साथ दो तरफा बातचीत में खसूसी आलमी कलीदी साझेदारी में पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। झारखंड में बिजली गिरने के अलग अलग वाकयात में 7 अफराद की मौत हुई है। जुनूब मगरबी मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक के बाज हिस्सों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और जुनूबी छत्तीसगढ़ में पहुंचने का इम्कान है। कोलंबो में 5,000 से ज़्यादा भरतनाट्यम डांसर्स ने सबसे बड़े भरतनाट्यम रक्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया है। और क्रिकेट में ख्वातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत पाकिस्तान के खिलाफ मैच के साथ अपनी मुहिम का आगाज करेगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के हमराह अब से कुछ देर बाद नीस में भारत इनोवेट्स का इफ्तिताह करने वाले हैं। ये अहम तकरीब भारत और फ्रांस के इख्तरा के साल के तहत हो रही है और इसमें 120 से ज़्यादा भारतीय स्टार्टअप इदारे, आलमी सरमायाकार, टेक्नोलॉजी के माहिरीन और कारोबारी अफराद शिरकत कर रहे हैं, जिसमें भारत के तेज़ी के साथ फ़रोग़ पाते इख्तराई इको निज़ाम की अक्कासी की जाएगी। बाद में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर मैक्रों दो तरफ़ा बातचीत करेंगे, जिसमें भारत फ्रांस खुसूसी आलमी कलीदी साझेदारी में पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। दोनों रहनुमा अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। मज़ीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और सदर इमैनुअल मैक्रों मुश्तरका तौर पर भारत इनोवेट्स का इफ्तिताह करेंगे। इस तकरीब के दौरान जिद्दत तराजी, सनतकारी और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ के शोबों में भारत की बढ़ती हुई ताकत का मुजाहरा किए जाने का इम्कान है। बाद में दोनों रहनुमा दो तरफा बातचीत करेंगे, जिसमें भारत फ्रांस खुसूसी आलमी कलीदी साझेदारी में पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा और टेक्नोलॉजी, तिजारत और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में जारी तआवुन में मज़ीद इजाफा करने के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल किया जाएगा। दो तरफा बातचीत और सदर मैक्रों की जानिब से एक जोहराने के इनेकाद के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी अपने दौरे के अगले मरहले के तहत स्लोवाकिया रवाना हो जाएंगे। फ्रांस के शहर नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस में अगले हफ्ते G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। अमरीकी इंतजामिया के एक आला ओहदेदार के मुताबिक इस बातचीत में मुआशी तरक्की, सप्लाई निज़ाम,

0: ये भरपूर अंदाज से काम किया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क को उस वक्त बड़े फख्र का एहसास होता है जब भारत को दुनिया के हिफ्जाने सेहत के सबसे बड़े प्रोग्राम आयुष्मान भारत के मुल्क के तौर पर जाना जाता है। इसके तहत कमज़ोर तबकों के लोगों को आला मेयार के हिफ्जाने सेहत सहूलियात फराहम की जाती हैं। जनाब मोदी ने कहा कि पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना जैसी कोशिशों से दवाएं कम कीमत की हो गई हैं। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि सरकार एक सेहतमंद भारत की तामीर की खातिर अब तक की पेशरफ्त को बरकरार रखते हुए ये सिलसिला आगे बढ़ाएगी। मरकजी वजीर सेहत जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान भारत के हिफ्जाने सेहत के शोबे में बड़ी पेशरफ्त हुई है जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि सेहतमंद शहरी एक मजबूत मुल्क की सबसे बड़ी ताकत है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत PMJAY और आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर डिजिटल हिफ्जाने सेहत के मुख्तलिफ इकदामात तक हिफ्जाने सेहत की मेयारी सहूलियात अब पहले से कहीं ज़्यादा लोगों तक पहुंच रही हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के महकमे के वज़ीर नितिन गडकरी ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान भारत के हिफ्जाने सेहत के शोबे में बड़ी तब्दीली आई है और सभी शहरियों के लिए कम खर्च और काबिल रसाई हिफ्जाने सेहत को यकीनी बनाने पर ख़ास तवज्जो दी गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब गडकरी ने कहा कि हिफ्जाने सेहत से मुतालिक हुकूमत के सरकर्दा इकदामात से मुल्क के सेहत के बुनियादी ढांचे को काफ़ी तकवीत मिली है और एक स्वस्थ भारत के नज़रिए को फ़रोग हासिल हुआ है। कॉमर्स और सनत के महकमे के वज़ीर पीयूष गोयल ने भी जोर देकर कहा है कि भारत आज हिफ्जाने सेहत के दुनिया के कई सबसे बड़े इकदामात में कायदाना रोल अदा कर रहा है। अकलियतों के उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि गुज़िश्ता 12 साल में मुल्क में अकलियती बिरादरियों की ज़िंदगी मेयार और मजमूई सूरत हाल में नुमाया सुधार आया है। एक कौमी रोजनामे के साथ इंटरव्यू में जनाब रिजिजू ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में सबका साथ सबका विकास के नज़रिए की बदौलत इस बात को यकीनी बनाया जा सका है कि तरक्की के फ़ायदे मुआशरे के हर तबके तक पहुँचें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की शिकायत पर अमेरिका में कायम एक तंजीम और 6 दिगर इदारों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस शिकायत में गैर मुल्की डेबिट कार्ड्स के नेटवर्क के जरिए गैर मुल्की फंड्स को गैर कानूनी तरीके से बरूएकार लाने का इल्ज़ाम लगाया गया है जिसमें मुल्क के बाईं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासरा इलाके भी शामिल हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की शिकायत की बुनियाद पर बेंगलुरु की कोथनूर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की मुख्तलिफ दफ़ात और गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम से मुतालिक एक्ट के तहत 11 जून को केस दर्ज किया। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आज 5,000 से ज़्यादा भरतनाट्यम डांसर्स ने मिलकर एक साथ रक्स का मुजाहरा किया जो एक तारीखी सकाफती संगे मील है और इस तरह उन्होंने भरतनाट्यम के सबसे बड़े रक्स प्रोग्राम का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। मज़ीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज तारीख रकम की गई। 5,000 से जायद भरतनाट्यम फनकारों ने एक साथ परफॉर्म करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम डांस क्लास का एक नया गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। रंग, ताल और रिवायत के शानदार इम्तिजाज ने पूरे माहौल को एक सकाफती जश्न में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद पाया तकमील को पहुँचाने वाला ये तारीखी प्रोग्राम भारतीय क्लासिकी रक्स की आलमी मकबूलियत को नई बुलंदियों तक ले गया है। इस कामयाबी के लिए गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड का साइटेशन भारत के हाई कमिश्नर संतोष झा ने फनकारों और मुंतजमीन की नुमाइंदगी करते हुए हासिल किया। भारत और श्रीलंका के सकाफती ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने वाला ये प्रोग्राम फन और विरासत की एक नाकाबिल फरामोश मिसाल बन गया है। अहमद मुईन फारूकी, कोलंबो।
0: झारखंड में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान बिजली गिरने के अलग अलग वाकयात में कम से कम 7 अफराद की मौत हो गई। इनमें 3 खवातीन और 10 साल का एक लड़का शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक रांची में 2 अफराद की मौत हुई जबकि गढ़वा ज़िले में भी 2 अफराद मारे गए। दीगर अमवात की इत्तला चित्रा, गिरिडीह और सरायकेला खरसवान ज़िले से मिली है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक के बकिया हिस्सों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कुछ और हिस्सों, नीज जुनूबी छत्तीसगढ़ में पहुंचने के लिए

ये हालात साजगार हैं। मौसमियात महकमे के मुताबिक शुमाल मशरकी खित्ते, अंडमान निकोबार जजायर, केराला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी आज तेज़ बारिश होने का इम्कान है। ख्वातीन के ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत आज ग्रुप ए में रिवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ मैच के साथ अपनी मुहिम का आगाज़ करेगा। ये मैच बर्मिंघम में एजबेस्टन में खेला जाएगा और ये भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे

20 का इफ्तिताह करने वाले हैं। आज सदर मैखों के साथ दो तरफा बातचीत में खसूसी आलमी कलीदी साझेदारी में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। झारखंड में बिजली गिरने के अलग अलग वाकयात में 7 अफराद की मौत हुई है। कोलंबो में 5,000 से ज्यादा भरतनाट्यम डांसर्स ने सबसे बड़े भरतनाट्यम रक्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया है। और क्रिकेट में खवातीन के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत पाकिस्तान के खिलाफ मैच के साथ अपनी मुहिम का आगाज

0: देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने कोलंबो में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ अपना पहला मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया। श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
1: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
2: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। समिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध कराई जा रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुंच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए

0: उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका

0: अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मानसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
1: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, आरिसा पीठा, चकुली पीठा और मसूर रजा पान की खुशबू फैली हुई है। रजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम व्यू 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम एक ही कलाकार।

जी हाँ, लौट कर आ गए हैं हम आपके लिए और कार्यक्रम चल रहा है एक ही कलाकार और मैं हूँ आपका रेडियो साथी अरुणेश द्विवेदी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

रानी रूपमती फिल्म जो कि 1959 में रिलीज हुई थी, इसका गाना आप सुन रहे हैं मुकेश कुमार साहब की दर्द भरी आवाज़ में। और इस गाने को लिखा है भारत व्यास ने और इस विरह गीत को फिल्माया गया है हमारे आज के कलाकार भारत भूषण पर।

दोस्तों, गुजरे जमाने के जाने माने एक्टर भारत भूषण ने अपने करियर में कालिदास, तानसेन, कबीर, बैजू बावरा और मिर्जा गालिब जैसी एक से बढ़कर एक फिल्में दी और आज हम उनकी बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं। भारत भूषण साहब का जन्म 14 जून 1920 को उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में हुआ था और उनके पिता राय बहादुर मोतीलाल पेशे से वकील थे और उनके पिता बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनका बेटा फिल्मों में काम करे। वे तो चाहते थे कि उनका बेटा वकील बने, लेकिन भारत भूषण को तो एक्टर ही बनना था और आखिरकार उन्होंने अलीगढ़ से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और चले आए माया नगरी बम्बई, जिसे आजकल हम मुंबई कहते हैं। इसके बाद किस तरह से उनका स्ट्रगल शुरू हुआ और किस तरह से उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपना सफल करियर बनाया, ये सब हम बताएंगे आपको आज के अपने इस कार्यक्रम में। बस आप सुनते रहिए कार्यक्रम एक ही कलाकार, अपने रेडियो दोस्त अरुणेश द्विवेदी के साथ।

फिल्म बरसात की रात जो कि 1960 में रिलीज हुई थी और मोहम्मद रफी साहब की मखमली आवाज में सुन रहे हैं आप ये गीत, और ये गीत आज भी भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ रोमांटिक गानों में से एक है।

और इसी बीच आपके संदेश लगातार हमारे पास आ रहे हैं। और गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, और चंडीगढ़ से संदेश आया है राहुल खुराना, रचित खुराना, केशु रिधान खुराना का। और इन्होंने लिखा है कि आज आप एक ही कलाकार कार्यक्रम में भारत भूषण के बारे में जो बता रहे हैं और जो गाने सुनवा रहे हैं वो हमें बेहद पसंद आ रहे हैं जी। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ऐसे ही हमारे कार्यक्रम को सुनते रहिए।

तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं आज भारत भूषण साहब की। और अभी इस गाने से पहले हमने आपको बताया था कि उनका जन्म मेरठ में हुआ और इसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई अलीगढ़ से पूरी किया और फिर जब वो मुंबई पहुँचे तब उनका संघर्ष शुरू हुआ। और एक बार की बात है कि वे मशहूर डायरेक्टर महबूब खान के पास पहुँचे और उन दिनों महबूब खान साहब अली बाबा 40 चोर की शूटिंग में बिजी थे। इसके बाद उस फिल्म में तो कोई रोल बचा नहीं था, लेकिन उसी समय उनको किसी ने बताया कि एक और डायरेक्टर हैं रामेश्वर शर्मा, जो कि भक्त कबीर नाम से एक फिल्म बना रहे हैं, आपको उनसे जाकर मिलना चाहिए और आपको वहाँ पर कुछ काम मिल सकता है। और हुआ भी ऐसा ही। उन्होंने रामेश्वर ने उन्हें फिल्म में काशी नरेश का रोल दिया और 60 रुपये महीने की नौकरी दे दी और 1942 में रिलीज हुई फिल्म भक्त कबीर में उनका पहला रोल था। और इस तरह से फिल्मी दुनिया में भारत भूषण साहब का करियर की शुरुआत हुई। आगे बढ़ने से पहले एक और प्यारा सा नगमा सुनवाते हैं भारत भूषण की ही एक फिल्म से।

फिल्म बैजू बावरा जो कि 1952 में रिलीज हुई थी और ये गाना इसी फिल्म से है और ये फिल्म भारत भूषण साहब के करियर में मील का पत्थर साबित हुई और ये फिल्म और इसके गाने आज भी लोगों को बेहद पसंद आते हैं।

और इसी बीच आपके कुछ और संदेश ले लेते हैं। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता और सुभाष योगी का मैसेज आया है और इन्होंने लिखा है कि आप अभिनेता भारत भूषण जी के बारे में जो कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं वो बेहद पसंद आ रहा है और उनकी फिल्मों के गाने को भी वे सुन रहे हैं।

दोस्तों, जब भक्त कबीर फिल्म हिट हो गई तो इसके बाद तो जैसे भारत भूषण साहब की किस्मत ही खुल गई। और इसके बाद उन्होंने कई फिल्में एक के बाद एक की, उनमें से भाईचारा, सावन, जन्माष्टमी, बौजी बैजू बावरा और मिर्ज़ा गालिब प्रमुख फिल्में थीं। ये वो दौर था जब किस्मत भारत भूषण पर मेहरबान थी, और देखते ही देखते उन्होंने मुंबई में कई बंगले खरीद लिए और कई महंगी महंगी बड़ी कारें भी खरीद ली। और इसके बाद उनके जीवन में क्या कुछ हुआ, किसने उनको सलाह दी कि वे शानदार अभिनेता तो हैं ही, अब उनको फिल्म प्रोड्यूसर भी बनना चाहिए, और इस सलाह को उन्होंने माना या नहीं माना, और इसके बाद उनके करियर में, उनके जीवन में क्या कुछ हुआ, हम आपको बताएंगे इस गाने के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कार्यक्रम एक ही कलाकार, अपने रेडियो दोस्त अरुणीश कुमार के साथ।

फिल्म मिर्जा गालिब और आवाज सुरैया तलत महमूद की, दिले नादा तुझे हुआ क्या है। इस फिल्म में भी थे हमारे आज के कलाकार भारत भूषण।

इसी बीच आपके कुछ संदेश ले लेते हैं। दत्तरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा का मैसेज आया है और इन्होंने लिखा है कि कहानी और गाने बेहद पसंद आ रहे हैं।

जालंधर पंजाब से हमारे साथ हमारे श्रोता जुड़ चुके हैं, संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत, भरत, कमल, साहिनी और उन

दोस्तों, जब भारत भूषण साहब को उनके भाई रमेश ने उन्हें फिल्म प्रोड्यूसर बनने की सलाह दी और ये कहा कि अब वे एक एक्टर के तौर पर तो सफल हो ही चुके हैं, अब उन्हें फिल्म मेकिंग में उतरना चाहिए, उन्हें प्रोड्यूसर बनना चाहिए। और इस बात को भारत भूषण ने दिल से ले लिया और उन्होंने कहा कि ठीक है, चलो प्रोड्यूसर बनकर भी अपनी किस्मत आजमाते हैं। और उन्होंने कई फिल्में प्रोड्यूस की, इनमें से दो फिल्में हैं बसंत बहार और बरसात की रात। ये दोनों फिल्में तो सुपर डुपर हिट साबित हुई, लेकिन इसके बाद और उन्होंने जो फिल्में बनाई वे उतनी बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हो पाई और आखिरकार उन्हें बहुत अधिक नुकसान हो गया। और इस तरीके से उन्होंने प्रोड्यूसर बनने का जो उनका फैसला था वो उन्होंने अपने बाद में एक इंटरव्यू में कहा कि वो अच्छा फैसला नहीं था। और इस तरीके से वो फिर से अभिनय की दुनिया में यानी एक्टर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। और आगे बढ़ने से पहले एक और गाना आपको सुनवाते हैं, बहुत ही प्यारा सा गाना है ये, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, एक परदेसी मेरा दिल ले गया।

फिल्म है फागुन और इस को गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी साहब ने। एक बेहद ही चुलबुला और सुपरहिट डांस नंबर है ये और फिल्माया गया है भारत भूषण साहब पर।

भोपालगढ़ राजस्थान से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे नियमित श्रोता हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार। इन्होंने लिखा है कि आप बेहतरीन अभिनेता रहे, भारत भूषण के बारे में बहुत ही अच्छी बातें बता रहे हैं और उनकी फिल्मों के गाने भी सुनवा रहे हैं, हमें बेहद पसंद आ रहे हैं। बहुत बहुत

गन्नौर कस्बा यूपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा। इन्होंने लिखा है कि आप भारत भूषण के बारे में जो जानकारी दे रहे हैं वो तो हमें भी नहीं पता था और हमें आपका ये कार्यक्रम, आपका प्रस्तुतीकरण बेहद पसंद आ रहा है। ये बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही कार्यक्रम को सुनते रहिए।

गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह का भी संदेश हमें प्राप्त हुआ है।

दोस्तों कार्यक्रम चल रहा है एक ही कलाकार, और आज के हमारे कलाकार हैं भारत भूषण साहब, और इनकी कई फिल्में सुपर डुपर हिट साबित हुई हैं, और उनमें से जैसे कि बरसात की रात फिल्म का हमने आपको गाना सुनवाया, और इसके अलावा रानी रूपमती, फागुन जिसका भी आपने गाना सुना, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, और एक बहुत ही अच्छी फिल्म आई थी और उसमें एक बहुत ही अच्छा, जिसको कहते हैं कि गाने तो होते ही हैं, साथ ही में क्या होता है कि आपके इन गानों के साथ साथ में बहुत सारी कव्वालियाँ भी होती हैं, तो वो कौन सी वो कव्वाली है और वो आपको सुनवाते हैं मन्ना डे साहब आशा भोसले जी की आवाज़ में, ना तो कारवां की तलाश है।

और एक और संदेश आया है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, पीएस नवकर, निर्मला, विशाल, मलकापुर से नारायण, सोपान और आशीष का।

त्रेगी से संदेश आया है भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा का। इन्होंने लिखा है कि आपकी प्रस्तुति और भारत भूषण साहब के बारे में आप जो जानकारी दे रहे हैं और उनकी फिल्मों के गाने बेहद पसंद आ रहे हैं, ये बहुत बहुत धन्यवाद।

बरसात की एक रात इस फिल्म से आप इस कव्वाली को सुन रहे हैं। जो इसमें आवाज़ दी है वो बहुत ही अच्छी आवाज़ है आशा भोसले जी की और मन्ना डे साहब की।

दोस्तों, अभिनेता भारत भूषण भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग यानी गोल्डन एरा के एक ऐसे सदाबहार अभिनेता थे जिन्होंने अपनी फिल्मों में शास्त्रीय संगीत और इस शास्त्रीय संगीत के अलावा जो गाने हैं और उनकी जो भावपूर्ण प्रस्तुति है वो आज भी लोगों को बेहद पसंद आती है। उनकी फिल्मों में उनके गानों को मुख्य तौर पर मोहम्मद रफ़ी, मुकेश कुमार और मन्ना डे जैसे महान गायकों ने आवाज़ दी है। और एक ऐसा ही अब कार्यक्रम के आखिर में आपको एक गाना सुनवाते हैं जो कि एक भक्ति गीत है, शास्त्रीय संगीत पर आधारित है, राग है मालकौंस और इस पर आधारित ही एक बेहतरीन और शुद्ध भक्ति गीत है फिल्म बैजू बावरा से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

दोस्तों, इसी के साथ घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमारे इस कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। तो अपने रेडियो साथी अरुणीश द्विवेदी को दीजिए अनुमति, फिर जल्द ही आपसे इसी चैनल पर किसी न किसी कार्यक्रम में होगी मुलाकात। तब तक कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार।

हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम व्यू 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

0: ब्रजमाधुरी कार्यक्रम सुनबे बारे हमारे सभी प्यारे भैया बहन अनकू चंपा बहन
1: और श्रुतिपुरी की राधे
0: राधे राधे।
1: राधे।
0: बहन श्रुति, देखो अधिक मास को ये बड़ो ही परम पावन पुनीत महीना चल रहे हो है, और आप देखो कि जो भक्ति और श्रद्धा की धारा है ना, वो ब्रज धारा में आवखत ना देखते ही बन रही है।
1: हाँ बहन चंपा, पूरे 84 एकोसिय ब्रज में आस्था का सैलाब उमड़ रहे हो है। और देखो, शीतल सीरो सीरो जल और ठंडाई शरबत, शिकंजी के संग ही संग हलवा, चना की कोमरी, खीर, बूंदी और तस्माई, जो परिक्रमार्थी को तरह तरह के व्यंजन परोसे जा रहे हैं।
0: हाँ बहन श्रुति, और जो हमारे ब्रज की परंपरा है ना, कलेऊ भोजन और ब्यारू की, उनके संग ना रात्रि में अगर कोई चलते चलते थक गए हैं तो उनको विश्राम की पूरी व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात आप देखो जीजी, के पंखा कूलर की हवा भी उनके काजे उपलब्ध कराई जा रही है, फुहारे चल रहे हैं, और जो संकीर्तन मंडली है वे रास लीला कर रही हैं, और ब्रजराज कृष्ण की जो लीला है ना उनको वे दर्शाए रही हैं। मतलब उन्हें देख देख के जो परिक्रमार्थी हैं, श्रद्धालु हैं, बड़े ही आनंदित हो ही रहे हैं।
1: देखो बहन चंपा, यह पावन पुनीत पुरुषोत्तम मास को अब समाहार यानी समापन 16 जून को है व्यवहार है,
0: हाँ,
1: और फिर 3 साल के बाद लौंद को महीना आएगा। तुम्हें पता है ये बात?
0: और श्रुति मैंने एक बात बताओ, आपने लौंद भजाई दी होगा आप बताए दो ना,
1: और का भजाए दियो,
0: तो आपने हम क्यों ना बुलाए
1: तुम तो आए वे वाली ना हो, 3 साल से बुलाए रही हूँ तुम्हें,
0: अच्छा
1: पिछले
0: अगला,
1: लौंद में बुलायो
0: हाँ तो
1: करो।
0: अगला लौंद को महीना फिर 3 साल बाद आएगा, तो जब बुलानो मत भूलियो
1: हाँ, और फिर तुम बताइयो।
0: ना। आऊंगी, अरे आप लौंद
1: अच्छा
0: भजाओगी और हम ना आमे, सो कैसे होएगा बहन श्रुति।
1: और हाँ बहन चंपा, देखो कितनी बड़ी पौराणिक मान्यता है कि अधिक मास में शिग्रे तीर्थ जो हूं मैं, है ना, वो ब्रज में ही निवास करे हैं।
0: हाँ बहन श्रुति, आपने बहुत बढ़िया बड़ी सुंदर बात कही है, और याई के काजे देखो कहो गयो है, जो भक्ति रचनाकारन ने पद लिखे हैं, नीको लागत पुरुषोत्तम मास, जाकी महिमा जगत बखानत,
1: करत भक्त सब जाकी आस,
0: आप ही सूरज आप ही चंदा,
1: आप ही को सब होत प्रकाश,
0: आप ही भोग जोग सब अर्पत,
1: वही प्रभु मम मन उल्लास,
0: ज्यों ज्यों दान करत प्रभु हित,
1: त्यों त्यों बात प्रेम की आस,
0: सूरदास प्रभु सबके स्वामी,
1: दास को राखो चरण के पास,
0: नीको
1: नीको
0: लागे
1: लागे
0: पुरुषोत्तम
1: पुरुषोत्तम
0: मास।
1: मास।

0: प्यारे भैया बहनाओं, अभी आप ये भक्ति रचना सुन रहे हते। तो बहन श्रुति, देखो हमारे ब्रज की कितनी विलक्षण परंपरा है के अधिक मास में ना कितनी श्रद्धा को जो सैलाब है वो उमड़े है, और जो आस्था को धरातल है ना वो देखते ही वो बने हैं।
1: देखो चंपा बहन, पुरुषोत्तम मास में आध्यात्मिक महत्व तो या को है ही,
0: हाँ।
1: पर या में कितनी तैयारी ब्रजवासीन को करनी पड़े, चौकी यात्री बहुत आवे है, परिक्रमार्थी बहुत आवे है।
0: परवीन श्रुति, आप जो बात बोल रही हो ना, इन सब बातन को आधार तो एक ही है।
1: हाँ चंपा बहन, आधार तो तुमने कह दी, पर कहाँ आधार है ये तो बताए दियो।
0: हाँ बहन श्रुति, जो आधार है वो ये है कि हमारे जो विश्वविख्यात ठाकुर बांके बिहारी है ना, वृंदावन में विराजमान, तो वे ही एकमात्र आधार हैं।
1: देखो बांकी बिहारी जी को प्राकट्य कौन ने किया पता है तुम्हें?
0: स्वामी हरिदास ने।
1: हाँ, और स्वामी हरिदास को जो संगीत है, जो इनके पद हैं, जो इनकी रचनाएं हैं,
0: हाँ।
1: वो बांके बिहारी को ही समर्पित थी।
0: तो बहन श्रुति, अब आप ही सब बात अन्य बताओगी कि हमारे श्रोता भैया बहनान को काउ औरते कछु बतवाओगी?
1: हाँ बिल्कुल बतवामेंगे। आज हम एक वार्ता सुनवाए रहे हैं अपने प्यारे भैया बहनान को, स्वामी हरिदास ब्रज भक्ति और संगीत साधना के अमर पुरोधा, और या के वार्ताकार हैं राजेश श्रीवास्तव।
2: श्रीमत् निकुंज विहारिणे नमः, श्री भगवन् निबार्क महामुनिन्द्राय नमः। ब्रज और या की पावन भूमि ब्रज भूमि केवल एक भौगोलिक क्षेत्र को नाम नाए है, बल्कि सच्चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण व श्री राधा रानी के नित्य दिव्य लीला स्थली है। यह भूमि को संत महात्माओं, ऋषि मुनियों और अवतारों की पावन तपोस्थली मानो जाए। ये भूमि भक्ति आंदोलन को आधार है और संत

महात्माओं की साधना को प्रमुख स्थल है। मध्यकाल में वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और सूरदास जैसे अनेक संतन ने या धरा पे आय के भक्ति संगीत और साहित्य की रचना की। यही श्रृंखला में ब्रज की इस पावन धरा पे एक और महान रसिक संत, विभूति, भक्त कवि, शिरोमणि, कृष्णोपासक, वैष्णव भक्त स्वामी श्री हरिदास जी ने भी जन्म लियो और अपनी भक्ति, माधुर्य, संगीत साधना और तप से यह भूमि को अभिसिंचित कर पवित्र कियो। स्वामी हरिदास जी निम्बार्क सखी संप्रदाय के प्रवर्तक, संगीत कला कोविद, प्राचीन शास्त्रीय संगीत के उच्च कोटि के मर्मज्ञ, चतुष ध्रुपद शैली के रचयिता एवं चौताल तथा वीणा वादन के अद्वितीय विद्वान हते। स्वामी हरिदास जी को परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण एवं आराधनीय शक्ति श्री राधा रानी की प्रिय नित्य लीला की सहचरी ललिता सखी को अवतार मानो जाए। स्वामी हरिदास जी को जन्म विक्रम संवत 1535 तदेव सन 1478 में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि राधा अष्टमी के दिन हुआ हतो। निम्बार्क संप्रदाय वालों को मत है कि स्वामी हरिदास जी को जन्म वृंदावन से 1 मील दूर राजपुर गांव में गंगाधर ब्राह्मण के घर संवत 1537 तदेव सन 1478 में भयो हतो। पंडित गंगाधर के गुरु को नाम आशुधीर स्वामी हतो। बिनी से स्वामी हरिदास जी ने भी निम्बार्क संप्रदाय की दीक्षा ग्रहण की हती, किंतु विष्णु स्वामी संप्रदाय के गोस्वामी स्वामी हरिदास जी को जिला अलीगढ़ के हरिदासपुर गांव को निवासी सारस्वत ब्राह्मण और आशुधीर को पुत्र माने हैं। बाल्यावस्था से ही ईश्वर भक्ति में लीन रहे वारे स्वामी हरिदास जी ने सांसारिक मोह माया से विरक्त है के संसार के समस्त सुख वैभव को छोड़कर कामरी और करुआ को अपनी संपत्ति मान के 25 बरस की अवस्था में गृह त्याग कर दियो और वृंदावन आय के बिन ने निम्बार्क संप्रदाय के संत श्री आशुधीर देवाचार्य जी से दीक्षा लई और संन्यास ग्रहण कियो। स्वामी हरिदास जी ने संन्यास ग्रहण करवे के पश्चात वृंदावन में लता पत्र वेष्टित निधिवन में कुटिया बनाए के एक एकांत स्थान को अपनी संगीत साधना की स्थली बनाई। स्वयं को प्रभु की सखी मान के बिन्होंने सखी संप्रदाय की स्थापना की हती, जो कि निम्बार्क संप्रदाय की ही एक शाखा या उपशाखा मानी जाए है और सखी एवं माधुर्य भाव से नित्य विहार निकुंज श्यामा श्याम भगवान श्री राधा कृष्ण की आराधना में लीन है गए तथा इनकी लीलाओं, रास, श्रृंगार आदि को वर्णन करवे वारे पदों की संगीत में रचना करने लगे। स्वामी हरिदास जी की अनन्य मधुर भक्तिपूर्ण संगीत आराधना से प्रसन्न है कि युगल सरकार भगवान राधा कृष्ण ने बिने साक्षात दर्शन दिए। स्वामी जी के आग्रह पे वे दोनों परम शक्ति एक है के दिव्य विग्रह श्री वाक्य बिहारी जी के रूप में स्वामी जी की साधना स्थली निधिवन में विशाखा कुंड के समीप अवतरित भय। ये प्राकट्य मार्ग शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भयो। यह प्रतिवर्ष विहार पंचमी के रूप में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाए। आज भी वाई दिव्य श्री विग्रह की पूजा विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं के द्वारा अनवरत की जाए है। स्वामी हरिदास जी के पदों के अनुशीलन ते ये स्पष्ट विदित है जावे कि बिनकी भक्ति माधुर्य भाव की है यती और जुगल उपासना को उनने स्वीकार कियो हो तो और विष्णु स्वामी संप्रदाय की बाल भाव की उपासना बिने मान्य नाय हती। निकुंज लीला के पद और श्री राधा कृष्ण के नित्य विहार वर्णन बिन्होंने निम्बार्क और राधा बल्लवी विचारधारा के अनुकूल ही कियो हतो। भगवत रसिक ने स्वयं को स्वतंत्र संप्रदाय को अनुयायी बताते भये कछु जा तरह से अपनो मत व्यक्त कियो है। आचार्य ललिता सखी रसिक हमारी छाप, नित्य किशोर उपासना जुगल मंत्र को जाप। ना ही द्वैता द्वैत हरि, नहीं विशिष्ट द्वैत, बंधे नहीं मतवाद में ईश्वर इच्छा द्वैत। स्वामी हरिदास जी की भावना इन्हीं दोहों के अनुरूप हती। सखी भाव की उपासना के कारण बिनको संप्रदाय सखी संप्रदाय के नाम से भी प्रसिद्ध भयो। कुछ विद्वान बिनके संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय भी कहवे हैं। स्वामी हरिदास जी द्वारा स्थापित सखी संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय भी कहो जाए है। जा संप्रदाय में राधा कृष्ण एवं निकुंज की उपासना सखी भाव अर्थात स्वयं को परमात्मा की सखी मानकर तथा माधुर्य भाव से की जाए है। जे संप्रदाय कृष्ण भक्ति को एक प्रमुख संप्रदाय हते जो सांसारिक कर्म कांडों ते परे विशुद्ध प्रेम और संगीतमय भक्ति पर जोर देवे है। जाको उद्गम स्थल वृंदावन को निधिवन हते। महान संत, संगीत शिरोमणि, भक्त कवि,
तथा निम्बार्क सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी ने ब्रजभाषा में मधुर पदों की रचना की हती। बिन ने अपने सिद्धांतों और भक्ति भाव को स्वतंत्र भाव से नाए लिखो, बल्कि बिन की रचनाओं को मुख्य रूप से दो प्रमुख ग्रंथों केलिमाल और अष्टदश सिद्धांत अर्थात सिद्धांत के पद नामक ग्रंथ में संकलित कियो गयो है। केलिमाल अर्थात श्रृंगार तथा अष्टदश अर्थात सिद्धांत पर आधारित ग्रंथ। केलिमाल ये स्वामी हरिदास जी को सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध ग्रंथ थे। या में श्यामासाम परम ब्रह्म भगवान कृष्ण एवं राधा की नित्य विहार निकुंज लीलाओं रस और श्रृंगार को वर्णन करवे वारे 108 पदों को संकलन हते। ये पद संगीतमय ब्रजभाषा में संकलित हैं। अष्टदश सिद्धांत या सिद्धांत को पद भी कहो जाए है। यह संग्रह में हरिदास जी के हरिदासी संप्रदाय अर्थात सखी संप्रदाय के दार्शनिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों को दर्शावे वारे 18 पद शामिल हते। इन पदों में ध्रुपद गायन शैली और रागों को अनूठो समावेश हते। स्वामी हरिदास जी की रचनाओं की मुख्य विशेषताएं हैं संगीत शैली तथा भक्ति को स्वरूप। ये सभी पद ध्रुपद शैली और विभिन्न रागों जैसे कि केदारो मल्हार कान्हरा और बसंत राग में गाए जावे हैं। इन पदों में माधुर भक्ति और संयोग श्रृंगार की प्रधानता हते। स्वामी हरिदास जी के प्रमुख पद और उनके भाव या प्रकार से हैं। अष्टादश पद अर्थात सिद्धांत के पद, ये पद जीव की असहायता संसार की नश्वरता माया और हरि के भजन की महिमा को दर्शावे हैं। हरि को ऐसो ही सब खेल, मृग तृष्णा जग व्यापी रहो है, कहूँ बिजोरी ना बेल, धन मद जोवन मद राज मद जो पंछिन मैं डेल, कही श्री हरिदास यह जिए जयो तीरथ को सो मेल। केलिमाल ये स्वामी हरिदास जी की रहस्यमयी और शांगारिक 108 पदों की रचना को संग्रह थे। केलिमाल में स्वामी जी ने प्रिया प्रीतम अर्थात भगवान राधा कृष्ण की नित्य विहार लीलाओं को वर्णन कियो हते। माई री सहज जोरी प्रकट भई, जुवती नवल किशोर नवल, नवल नवल रस की सई, अंग अंग की उजियारी, सुंदरताई अनूप कोटि रति, काम लज्जित छकी रहे इनके रूप। वे इन पदों के माध्यम से नित्य वृंदावन में राधा कृष्ण के अनूठे और अलौकिक रूप को वर्णन कर रहे हैं जो अनुपम और दिव्य हते। स्वामी हरिदास जी के द्वारा रचित अष्टादश पद संग्रह के पद संख्या 14 के माध्यम से हम यहाँ पे एक और पद को दर्शन करें हैं। झूठी बात साची कर दिखावत, यह पद को स्वामी जी ने राग कल्याण एवं कन्हारों में लयबद्ध कियो है। झूठी बात साची कर दिखावत हौ हरि नागर, निस दिन बुनत उधेरत जात प्रपंच कौ सागर, ठाट बनाए धर्यो मेहरी को है पुरुषते आगर, सुनि हरिदास यहे जिए जानो सपने को सौ जागर। स्वामी हरिदास जी के द्वारा रचित एक और पद के दर्शन करें हैं। ये अष्टादश सिद्धांत को 18वां पद है। प्रेम समुद्र रूप रस गहरे कैसे लागे घाट, बेकार्यो है जान कहावत जान्य पन्यों की कहा पर ही बाट, काहू कोसर सुधो ना परे मारत गाल गली गली हाट, कहीं श्री हरिदास जान्य ठाकुर बिहारी तकत ओट पाट। रसिक अनन्य नपति ललिता सखी अवतार स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कहवे हैं कि श्री बाके बिहारी जी महाराज सब बातन को भली भांति जाने हैं, क्योंकि वे हृदय के पर्दे के भीतर बैठकर सब कछु देख रहे हैं। अष्टादश पद संख्या 15 जगत प्रीत करी देखी, ये पद रचना भी राग कल्याण में लयबद्ध है। जगत प्रीत कर देखी ना ही ने गटी को छत्रपति रंक लौ देखे प्रकृति विरोध बच्यो नहीं को, दिन जो गए बहुत जनमति के ऐसे जाऊं जिनको, कहे श्री हरिदास मीत भले पाए बिहारी ऐसो पाओ सबको। स्वामी हरिदास जी के सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध शिष्य हते तानसेन। तानसेन ने स्वामी जी से 11 वर्षों तक संगीत की शिक्षा लई अध्ययन कियो और एक महान एवं प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक एवं संगीतज्ञ बने। तानसेन के अलावा स्वामी हरिदास जी के अन्य प्रमुख शिष्यों में बैजू बावरा जिनको मूल नाम बैजनाथ मिश्र हतो, ये भी एक महान और विख्यात गायक और संगीतज्ञ थे। इनके साथ एक और स्वामी जी के शिष्य हते विट्ठल विपुल, ये भी हरिदास जी के प्रमुख सन्यासी और आध्यात्मिक शिष्यों में से एक हते। महान संत भक्त कवि संगीत शिरोमणि
ललिता सखिया अवतार

0: निम्बार्क सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी के काव्य को सौंदर्य परिभाषाओं में नाए बांध हो जा सके, अपितु वाकी अनुभूति विनके वर्णित विषय के साथ तादात्य स्थापित करके ही जानी जा सके। स्वामी जी को काव्य कोरी कला नाय है, वो उनकी जीवन की साधना को सार है, विनकी उपासना को महत्वपूर्ण अंग है, विनके मन के प्रेम की अभिव्यक्ति है। स्वामी हरिदास जी को नाम भारतीय भक्ति साहित्य और शास्त्रीय संगीत की परंपरा में अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ लियो जाए। वे केवल एक महान संत और कृष्ण भक्ति ही नाय हते, बल्कि उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के ऐसे आचार्य हते जिन्होंने भक्ति और संगीत को एक दिव्य साधना को रूप प्रदान कियो। संगीत के क्षेत्र में स्वामी हरिदास जी को योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने संगीत को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि ईश्वर प्राप्ति को साधन मानो। इनकी रचनाओं में भक्ति माधुर्य और आध्यात्मिक अनुभूति को अद्भुत समन्वय में देखने को मिले हैं। वे ध्रुपद गायन शैली के महान आचार्य हते और इनके पद आज भी भारतीय शास्त्रीय संगीत में आदरपूर्वक गाए जाए हैं। स्वामी हरिदास जी को संपूर्ण जीवन त्याग साधना संगीत और भक्ति को अनुपम उदाहरण है। उन्होंने भारतीय संस्कृति को आध्यात्मिक संगीत की ऐसी धरोहर दी जाकी गूंज आज भी वृंदावन की गलियों मंदिरों और शास्त्रीय संगीत की सभाओं में सुनाई देवे है। वे भारतीय भक्ति आंदोलन तथा संगीत जगत के अमर नक्षत्र हैं। संवत 1632 तदैव सन 1575 ईस्वी में स्वामी जी ने स्वेच्छा से अपनो नश्वर शरीर त्याग दियो और अपने आराध्य परम ब्रह्म परमेश्वर श्री राधा कृष्ण में लीन है गए। वृंदावन के निधिवन में विनकी समाधि स्थल आज भी मौजूद है जहां अनेकों भक्त नित्य उनके दर्शन करवे आवे हैं। ब्रज संस्कृति और भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास में स्वामी हरिदास जी को नाम भक्ति और संगीत साधक के रूप में अमर रहे को।
1: प्यारे भैया बहनाओं, अभी आप ये वार्ता सुन रहे हते जाको विषय हो स्वामी हरिदास ब्रज भक्ति और संगीत साधना के अमर पुरोदा। वार्ताकार है राजेश श्रीवास्तव। देखो बहन श्रुति।
2: हाँ बहन चंपा।
1: देखो यार, वार्ता को सुन के ना हमारे श्रोता भैया बहनान को मने बड़ो आनंदित और उल्लसित भयो होएगो।
2: चौंकी चंपा बहन, बिहारी जी के चरणन में ही तो सबकी गति है।
1: और बहन श्रुति, श्रद्धा के धरातल पे हम देखें तो बाके बिहारी ऐसे इष्ट हैं, प्रेम के ठाकुर हैं, यानी कि थोड़े से प्रेम ते कोई उनने पुकारो तो वे चले आमे हैं।
2: और देखो चंपा बहन, ये ही तो महिमा है कि पूरे वर्ष में एक ही बार ठाकुर जी बाहर आमे हैं चरण दर्शन के ताई।
1: हाँ।
2: और फिर बिनकी झांकी जो है वो हरिदास समाधि तक पहुंचे है।
1: और बहन श्रुति, ऐसे तो बहुत सारे उत्सव हैं जिनकी हम 3 या 4 के करीब उन्हें हम मान सकें कि कोई एक दिन वो साल में आ रहे हैं तो बंशी धारण कर रहे हैं, है ना, और एक दिन आ रहे हैं तो चरण दर्शन दे रहे हैं, एक दिन आ रहे हैं तो हिंडोला झूल रहे हैं। तो ये अपनी अपनी ना हमारे इष्ट की अपनी अपनी अनेक जो शैली हैं, भक्ति के जो आयाम हैं, ये तो इनके काजे तो हमारी ब्रजधारा जानी ही जावे है।
2: तो देखो चंपा बहन, जो कन्हैया की लीलाएं हैं ना वो तो जगत प्रसिद्ध हैं, और जो आप भक्ति के धरातल की बात कर रही ही, वह धरातल पे कन्हैया की लीलान को ही बखान सबसे ज्यादा हुयो करे है।
1: हाँ बहन श्रुति, चाहे वे माखन चोरी की हैं, चाहे वे दही की मटकी न फोड़वे की हैं, चाहे वे ओढ़ाने इनकी हैं।
2: हाँ, तो हम ये चाह रहे हैं कि बिनकी नटखट बाल लीलान ते ओतप्रोत कोई लोग गीत हूँ सुनवाई दो अपने श्रोतान को।
1: हाँ हाँ बहन श्रुति, आपकी बात तो जरूर मानेंगे, तो चलो फिर ऐसे ही लोकगीत की ओर चलें।

0: प्यारे भैया बहनाओं, अभी आप ये ब्रज को मन भावन सो लोक गीत सुन रहे हते। तो बहन श्रुति, देखो अभी हमने ये चर्चा हम निरंतर कर रहे हैं और हमने अभी कन्हैया की बाल लीलान की बात करी है कि उनने बचपन में कैसो नटखटपन दिखायो। पर बहन श्रुति, हमें संगई एक बात ये ना भूलनी चाहिए कि ब्रजराज कृष्ण ने जितनी भी इन लीलान को मंचन करो, वो कितनी लीला ऐसी हैं कि कन्हैया ने वो जो हमारे जल के स्रोत हैं, जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं, उनके किनारे इन पे करी।
1: देखो जो ब्रज है ना, वो तो कुंड ताल सरोवरन की नगरी है और यहाँ पे जल संचय याई लिए किया जाए रहे हो और याई लिए तरह तरह के पोखर और कुंड और तालाब बनाए गए, कुआं बावड़ी बनाए गए ताकि वहां में जल संचय किया जा सके।
0: और बहन श्रुति, हमारे ब्रज को जो ये जल संचयन का स्वरूप है ना, या को सबरे विश्व ने स्वीकारो भी है और या ते ना सीखो भी है।
1: कन्हैया ने वह समय पे जल के संचयन की बात सोची तो वो कितने दूरदर्शी हते।
0: पर ब्रज में देखो अपन किया जो बम्बे को पानी बहवे है ना, बाकू कौन ना जाने। तो बहन श्रुति देखो, हमारी ब्रज वसुधा की इतनी विविधता है, इतनी बात है कि हम कितनी भी करते जाएं कोई ओर छोड़ थोड़ी ना है। पर आप देख रही हो समय को संकेत, तो आप भी समझ रही होंगी। तो प्यारे भैया बहनाओं, इन्हीं प्यार भरी बातन के संग हमारो आज को ब्रज माधुरी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होवे है। मोए अपनी चंपा बहन यानी चंद्रवती शर्मा को
1: और मोए यानी श्रुतिपुरी को देव अनुमति
0: नमस्कार।
1: कार्यक्रम प्रस्तुत करता
0: बीके तोमर।
2: अभी आप ब्रज माधुरी कार्यक्रम सुन रहे थे। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चों के प्रिय कार्यक्रम रेडियो किड्स।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं नबीहा चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्यारे कार्यक्रम रेडियो किड्स में। और मेरे साथ है मेरे दोस्त
1: आयत,
2: इसराज,
3: अरहम,
4: सौर्य।
0: जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, तो आप सबने गर्मियों की छुट्टियों में क्या सीखा?
1: मैंने राग बिलावल, राग भोपाली और राग भैरव बजाना सीखा और गाना सीखा।
0: अरे इसराज, तुमने तो गर्मियों की छुट्टियों में काफी गाने सीख लिए, एक बजाकर तो सुनाओ।
1: ठीक है, मैं सुनाता हूँ। तो अब मैं आपको वृंदावनी सारंग की बंदिश सुनाता हूँ।

0: अरहम और सौर्य, आप लोग इतने चुप क्यों हो? आप भी कुछ बोलो।
1: इस बार गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही मैंने सोचा था कि इन छुट्टियों में सिर्फ खेलना और टीवी ही नहीं देखना है, बल्कि कुछ नया भी सीखना है। मेरी दादी को गार्डनिंग का बहुत शौक है, उन्हीं की मदद से मैंने भी अपने घर के आंगन में कुछ नए पौधे लगाए हैं। मैं रोज उन्हें पानी देता हूँ और उनकी देखभाल करता हूँ। जब उन पौधों में नई पत्तियाँ निकली तो मुझे बहुत खुशी हुई। दादी कहती हैं कि इससे मैंने प्रकृति से प्रेम करना और पर्यावरण की रक्षा करना सीखा है।
0: शौर्य, आपने क्या सीखा?
2: मैंने जीव दया, अपने परिवार के साथ वक्त बिताना और काफी कुछ सीखा है।
0: चलो अब मैं बताती हूँ मैंने गर्मियों की छुट्टियों में क्या सीखा। वैसे तो गर्मियों की छुट्टियाँ बस अब खत्म होने को ही हैं। 15 दिन बाद स्कूल खुल जाएंगे, मगर इस बार की छुट्टियाँ मेरे लिए बहुत खास रही, क्योंकि मैंने इन दिनों में कुछ नई चीजें सीखी, जिनमें से सबसे स्पेशल है स्कूटी ड्राइव करना। साइकिल चलाना तो मैंने पिछले साल ही सीख लिया था। इन छुट्टियों में मैंने पापा से स्कूटी चलाना सीखा। इस कोशिश में मैं कई बार गिरते गिरते बची, लेकिन हर बार पापा ने मुझे चोट लगने से पहले ही संभाल लिया। काफी मेहनत के बावजूद मैं अभी तक अच्छी तरह स्कूटी चलाना नहीं सीख पाई हूँ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी है। अगले साल गर्मियों की छुट्टियों में मैं दोबारा कोशिश करूंगी और मुझे यकीन है कि मैं जरूर कामयाब हो जाऊंगी। नबीहा, आपने क्या सीखा?
3: इस बार की गर्मी की छुट्टियों में मैंने बहुत कुछ नया सीखा। मैंने ड्राइंग और कलरिंग की कोशिश की और अपने तरीके से सुंदर चित्र बनाए। मैंने डांस सीखना शुरू किया और रोज रोज प्रैक्टिस करके थोड़ा बेहतर भी हो गया। घर में मैंने मम्मी की मदद करना भी सीखा, जैसे छोटे मोटे काम करना और चीजें संभाल कर रखना। कभी कभी मैं अपने दोस्तों के साथ खेलती थी और खूब मस्ती भी।

0: करती थी। मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई भी की, लेकिन बीच बीच में मन खेलने का ही हो जाता था। तो कुल मिलाकर मेरी छुट्टियां तो अभी सीखने, मस्ती और थोड़ी शरारत से भरी हुई हैं।
1: अरे वाह, आपकी छुट्टियां तो बड़ी मजेदार लग रही हैं।
2: मैं एक कविता सुनाऊं?
1: हाँ जरूर।
2: गर्मी की छुट्टियां आई, ढेरों खुशियां साथ मिलाई, बस्ता बोला अब आराम, हम बोले वाह श्रीमान, आम चूसे कुल्फी खाएं, ठंडी ठंडी लस्सी पाएं, सुबह खेले शाम को गाएं, मिलकर खूब धमाल मचाएं, दारी चुटकुले कहानियां सुनाएं, हंस हंस लोट पोट हो जाएं, नानी के घर जाना प्यारा लगता जैसे स्वर्ग हमारा, पार्क में खेले दौड़ लगाएं, छुट्टियों में मजे उड़ाएं, मस्ती भी हो सीख भी आए, हर दिन नई खुशी दे जाए, गर्मी की छुट्टियां हैं न्यारी, लगती सबसे प्यारी प्यारी।
1: अरे वाह।

0: अरे वाह, आपने तो कितना अच्छा गाना सुनाया।
1: धन्यवाद।
2: मैं अपनी एक चिड़िया की गीत वाली कविता सुनाऊं?
1: सुनाओ।
2: सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला धूप सूखे सिंकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं गई शाखाओं पर हरी भरी थी जो सुकमा, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिरकार मैं बड़ी हुई दूर दूर तक उड़ी पंख पसार, तब मेरे समझ में आया बहुत बड़ा है ये संसार। कैसी लगी?
1: वाह,
3: बहुत अच्छी,
1: बहुत अच्छी,
2: बहुत अच्छी।
1: क्या आपको पता है आज कौन सा दिन है?
2: हाँ
4: जी, रक्तदान दिवस।
2: हाँ, वो 14 जून को ही होता है।
1: हाँ,
2: आज तो वही तारीख है।
1: हाँ, आज तो 14 जून ही है। कोई उस पे कुछ बताना चाहेगा?
5: हाँ, मैं बताऊँ?
1: बताओ।
5: जैसा कि आप सभी ने बताया, विश्व रक्तदान दिवस हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करना और सुरक्षित रक्त की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और अन्य स्वास्थ्य संगठनों द्वारा वर्ष 2004 में विश्व रक्तदान दिवस की शुरुआत की गई थी। 14 जून को इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन कार्ल लैंडस्टाइनर का जन्म हुआ था। उन्होंने ABO रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला।
1: अरहम, क्या आप बताना चाहोगे रक्तदान के बारे में कुछ?
2: एक दिन राहुल अपने पिताजी के साथ अस्पताल गया। वहां उसने देखा कि एक मरीज को तुरंत रक्त की जरूरत थी। मरीज के परिवार वाले बहुत चिंतित थे। तभी कुछ लोगों ने अपनी इच्छा से रक्तदान किया और मरीज का इलाज शुरू हो गया। ये देखकर राहुल ने अपने पिताजी से पूछा, क्या रक्तदान करने से किसी की जान बच सकती है? पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, रक्तदान एक महान कार्य है। एक व्यक्ति का रक्त कई लोगों के जीवन में आशा की किरण बन सकता है। उस दिन राहुल ने समझा कि रक्तदान केवल एक दान नहीं बल्कि मानवता की सेवा है। उसने फैसला किया कि बड़ा होकर वो भी रक्तदान करेगा और लोगों को इसके लिए प्रेरित करेगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि रक्तदान महादान है। ये किसी जरूरतमंद को नया जीवन दे सकता है।
1: अरे वाह, आपने तो काफी कुछ बता दिया हमें। चलो, मेरे पास एक कविता है रक्तदान पर, क्या मैं सुनाऊं?
2: हाँ जरूर।
1: रक्तदान है सबसे न्यारा, इससे बचता जीवन प्यारा। जीवन पर जब संकट आता, रक्तदान ही काम में आता। एक दान अनेक मुस्कान, यही है रक्तदान की पहचान। नहीं खरीद सकते हम प्राण, पर दे सकते जीवन दान। मानवता का यही संदेश, मदद करें हम ये विशेष। आओ मिल कर ले ये ठान, करेंगे हम भी रक्तदान। जब हो जाए किसी भी योग्य, जरूर निभाएं ये कर्तव्य। रक्तदान का करे सम्मान, सच में है ये महादान।
4: इस दिन रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। रक्तदान से दुर्घटना पीड़ितों, मरीजों और जरूरतमंद लोगों की जान बचाई जा सकती है। सुरक्षित रक्त की उपलब्धता के लिए नियमित रक्तदान आवश्यक है। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविर आयोजित किए जाते हैं।
5: अच्छा इसराज, तुमने तो हमें बताया था कि तुमने गाना भी सीखा है, जरा एक गाना तो सुनाओ।
4: जी जरूर। अब मैं आपको एक मोटिवेशनल गाना सुनाऊंगा जिसका नाम है नामू छुपा के जियो और ना सर झुका के जियो।

0: वैसे क्या सबको पता है कि रक्तदान दिवस 2004 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने पहली बार मनाया था?
1: हमें तो पता ही नहीं था।
2: अच्छा, कुछ सवाल मेरे पास भी हैं। क्या मैं पूछूं?
1: जी जरूर।
2: अच्छा, अभी जब मैं रेडियो आ रही थी तब मैंने देखा कि ट्रैफिक लाइट्स लगी थी और उन्हें देखते ही सभी लोग रुक गए। तो मुझे बता सकता है कि ट्रैफिक लाइट्स में कितने कलर्स

0: होते हैं?
1: ट्रैफिक लाइट्स 3 तरह की होती हैं, लाल, पीली और हरी।
0: अरे वाह अरहम। अच्छा तो जो रेड लाइट होती है उसका क्या मतलब होता है?
1: लाल बत्ती का अर्थ है रुकना।
0: और ग्रीन लाइट का क्या अर्थ है?
2: हरी बत्ती का अर्थ है आगे बढ़ना।
3: अच्छा, क्या मुझे कोई बताएगा कि ट्रैफिक लाइट्स के ये 3 रंग सिर्फ भारत में लागू हैं या किसी और देश में भी इनका चलन है?
4: ट्रैफिक लाइट्स की ये तीनों लाइट यूनिवर्सल है, लेकिन जापान के पास ग्रीन लाइट के जगह नीली लाइट है।
3: हाँ, आपने तो सही बताया। ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन करने या रेड लाइट जंप करने से क्या होगा, कोई बताएगा मुझे?
2: ट्रैफिक लाइट के नियमों का उल्लंघन करने से चालान होता है।
1: ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन करने या रेड लाइट जंप करने से एक्सीडेंट हो सकता है। इससे अपनी और दूसरों की जान को खतरा हो सकता है।
3: कोई और कोई सवाल पूछना चाहेगा? जैसे अभी लाल बत्ती पर गाड़ियां रुक गई, पैदल चलने वालों के लिए क्या है?
2: जेब्रा क्रॉसिंग सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए बनाई गई विशेष जगह होती है। यह सफेद और काली धारियों से बनी होती है जो जेब्रा के शरीर जैसी दिखाई देती है, इसलिए हम उसे जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। इसका उपयोग सड़क को सुरक्षित रूप से पार करने के लिए किया जाता है।
3: तो अब क्या मुझे बताएगा कोई कि वाहन चालकों के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का नियम क्या है?
5: मैं बताऊं?
3: बताओ।
5: वाहन चालकों को जेब्रा क्रॉसिंग पर तेजी से गाड़ी चलाने या ओवरटेक करने से बचना चाहिए।
3: सही बोले।
1: विश्व का पहला जेब्रा क्रॉसिंग कब और कहां बनाया गया था, क्या किसी को पता है?
2: हमें तो नहीं पता।
3: मुझे भी नहीं पता।
4: मुझको भी नहीं पता।
3: चलो मैं बताती हूँ इसका आंसर।
1: हाँ बताओ।
3: विश्व का पहला जेब्रा क्रॉसिंग 1951 में यूनाइटेड किंगडम के स्लो में बनाया गया था।
1: हाँ सही कहा।
3: तो क्या किसी को पता है कि जेब्रा क्रॉसिंग की पट्टियों की चौड़ाई कितनी होती है?
1: 24 इंच।
3: सही जवाब। मैंने देखा है कि स्कूल के बाहर और रोड पर कई जगह साइन बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, क्या मुझे बताएगा कि वो कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से होते हैं?
1: हाँ, रोड साइंस मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं, रेगुलेटरी, वार्निंग एंड इंफॉर्मेशनल।
5: अच्छा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि वार्निंग साइंस क्या बताते हैं?
3: ये साइंस ड्राइवरों को आने वाले खतरे, सड़क की स्थितियों या अचानक पैदा होने वाली अड़चनों के बारे में सावधान करते हैं, जैसे स्कूल जोन, स्लिपरी रोड, नैरो रोड आदि।
2: क्या कोई मुझे बता सकता है कि उस साइन का मतलब क्या होता है जिसमें एक आदमी कुल्हाड़ी लेके जमीन को खोद रहा होता है?
5: क्या इसका मतलब ये है कि आगे कंस्ट्रक्शन चल रहा है?
2: सही जवाब।
3: शौर्य, क्या आप बताना चाहोगे रेगुलेटरी साइंस का क्या मतलब होता है?
4: मुझको नहीं पता।
3: अरे कोई नहीं, क्या अरम आप बताना चाहोगे?
1: ये साइंस प्रतिबंधों को बताते हैं, इनका उल्लंघन ट्रैफिक नियमों को तोड़ना माना जा सकता है, जैसे स्पीड लिमिट, नो एंट्री, नो पार्किंग आदि।
3: आपने तो सही जवाब दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देशभक्ति की भावना जगाने वाला ये मशहूर शेर है महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का। अभी 3 दिन पहले ही उनकी जयंती थी, 11 जून 1897 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था। वो भारत की स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। 19 वर्ष की कम उम्र में उन्होंने आज़ादी की राह पर कदम रखा था। इसी सिलसिले में वो 1925 के विश्व प्रसिद्ध काकोरी कांड में भी शामिल हुए, जिसके लिए अंग्रेज सरकार ने उन पर मुकदमा चलाया और 19 दिसंबर 1927 को सुबह 6:30 बजे गोरखपुर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। सिर्फ 30 साल की उम्र में देश की आज़ादी के लिए बिस्मिल ने अपना जीवन बलिदान कर दिया।
2: अब मैं एक उनकी मशहूर कविता सरफरोशी की तमन्ना गाकर सुनाऊंगा।
3: सुनाओ।

0: आप बताना चाहोगे कुछ?
1: हाँ,
0: बताओ।
1: पंडित राम प्रसाद बिस्मिल सिर्फ क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि एक कवि और लेखक भी थे। बिस्मिल उनका उपनाम था। 11 वर्ष के क्रांतिकारी जीवन में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी और प्रकाशित की। उनके जीते जी 11 पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनमें से अधिकतर अंग्रेज सरकार ने जब्त कर ली। अपनी किताबों को बेचकर जो पैसा मिला उसका उपयोग उन्होंने ब्रिटिश राज का विरोध करने के लिए किया। बिस्मिल ने हमेशा कहा कि देश के लिए जीना और देश के लिए मरना ही असली जीवन है। फांसी से पहले भी उन्होंने देशभक्ति के गीत गाए। उनकी समाधि देवरिया उत्तर प्रदेश में है। आज भी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन की कहानी हमें हिम्मत, सच्चाई और देश प्रेम का पाठ पढ़ाती है।
0: अरे वाह, आपने तो हमें काफी कुछ बताया। अब तो बहुत देर हो गई है हमें बातें करते करते, अब घर चले।
2: चलो अब चलते हैं, लेकिन अगले सप्ताह हम दोबारा मिलेंगे इसी समय।
3: तब तक के लिए बाय।

0: अभी हमारे प्यारे राज दुलारे बच्चे सुन रहे थे अपना मनपसंद कार्यक्रम रेडियो किड्स। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक शाम के 4 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम स्वांग।
1: स्वांग के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं स्वांग श्रवण कुमार। कलाकार हैं ऋषिपाल चौहान, मनसाराम चौहान।

और सेवा के पथ पर सब कुछ दीनावार, कदम नहीं हट पाया।

0: लक्ष्मण कुमार गुरु वशिष्ठ जी को नमन करते हुए क्या कहता है, आइए सुनते हैं और गुरु वशिष्ठ जी क्या जवाब देते हैं, किस प्रकार से भला। गुरु वशिष्ठ जी को श्रवण कुमार का प्रणाम स्वीकार हो।
1: खुश रहो बेटे।
0: ऋषिराज
1: कहिए बेटे।
0: आज आपके पास एक छोटी सी शंका लेकर के आया हूँ।
1: मेरे पास में?
0: हाँ।
1: क्या बात है ऐसी?
0: आप सुनिए जरा।
1: कहिए।

प्रेमी सज्जनों, ऋषि के आशीर्वाद से ज्ञानवती सांत्वन को एक पुत्र पैदा हो जाता है जिसका नाम श्रवण कुमार रखा जाता है। श्रवण कुमार धीरे धीरे बड़ा होने लगा। श्रवण कुमार का विवाह भी कर दिया जाता है। श्रवण कुमार एक दिन राजा दशरथ के दरबार में जाता है। राजा दशरथ के दरबार में गुरु वशिष्ठ जी बैठे हुए होते हैं।

0: वशिष्ठ जी कह देते हैं कि श्रवण, अगर तू अपने माता पिता को सारे तीर्थ कराएगा तो उन्हें रोशनी वापस मिल सकती है, उनके आंखों की ज्योति वापस आ सकती है। श्रवण कुमार अपने दिल में ठान लेता है कि मैं अपने माता पिता को सारे तीर्थ करा के उन्हें ज्योति जरूर दिलाऊंगा। साथियों, उधर विद्या श्रवण कुमार की पत्नी पूछती है और क्या कहते हैं श्रवण कुमार,
1: हे प्राणनाथ, कहिए मेरे प्राणों प्यारी विद्या,
2: आज आपके चेहरे पर यह उदासी, आप मुझसे बार बार अपनी नजर क्यों चुरा रहे हैं? तो मेरी बात सुन लीजिए प्राणनाथ, और

0: कुमार से जिद करती है, हे मेरे प्राणनाथ, मैं भी आपके साथ सास ससुर की सेवा करना चाहती हूँ।
1: मेरे साथ तेरा चलना ठीक नहीं होगा।
0: प्राणनाथ, अगर वो आपके माता पिता हैं, तो सास ससुर तो मेरे भी हैं।
1: बात तो सही है।
0: हाँ,
1: लेकिन कहाँ बनखंड में तू मेरे साथ में धक्के खाएगी?
0: आप मेरी बात सुन लीजिए जरा।
1: कह दे विद्या।
0: के संग मैं भी चलूंगी तुम्हारे पिया।
1: अच्छा,
0: मैं भी सेवा बराबर करूंगी पिया।
1: अच्छा,
0: मैं

0: स्वामी आप मेरी बात सुन लीजिए जरा।
1: कह दे विद्या क्या बात है।
0: कि सेवा सास ससुर की ठाऊं।
1: अच्छा
0: मैं भी

0: दिया।
1: आप बताइए, बिना सास ससुर और आपके बिना इस दुनिया में मेरा ठिकाना क्या है कहीं?
0: बात तो तेरी सही है, हाँ। लेकिन तुझे घर पर भी तो बहुत काम है।
1: अच्छा,
0: हाँ।
1: सुनिए जरा,
0: कह दे।
1: ए सास ससुर बिन पति सती का कड़े ठिकाना होगा।
0: धीरज धर, मन मात पिता को तीर्थ कराना होगा रे। हाँ, धीरज धर, मन मात पिता को तीर्थ कराना होगा।
1: या ना कोई बहाना होगा,
0: मन ने फर्ज निभाना होगा।
1: या ना कोई बहाना होगा,
0: मन ने फर्ज

0: प्रेमी सज्जनों, विद्या जिद करती है कि स्वामी मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ और सास ससुर की सेवा करना चाहती हूँ। श्रवण कुमार मना करते हैं। घर में बैठे हुए सलाह कर रहे हैं। उधर विद्या के भाई का दोस्त चंपक श्रवण कुमार के यहाँ आ जाते हैं और आकर के कहते हैं कि विद्या, तेरे माँ और पिता की तबीयत बहुत खराब है, वो मृत्यु शैया पर लेटे हुए हैं। प्रेमी साथियों, विद्या जाने के लिए मना कर देती है और कहती है कि मैं अपने सास ससुर को तीर्थ करवाने के लिए जा रही हूं, इसीलिए मैं वहां नहीं जा सकती। विद्या के भाई का दोस्त चंपक कहता है कि विद्या, अगर ये तेरे सास ससुर हैं तो वो भी तो तेरे माँ बाप हैं जिन्होंने तुझे जन्म दिया है। प्रेमी सज्जनों, इतनी बात को सुनकर के विद्या उनके साथ अपने पीहर आ जाती है। पीहर में आकर देखती है पिता माता बीमार नहीं हैं, वो स्वस्थ हैं। समझ गई विद्या कि इनकी जरूर कोई चाल है। वो कहती है कि मैं अपने ससुराल अभी जाना चाहती हूं। उधर श्रवण कुमार अपने अंधे मात पिता को तीर्थ कराने के लिए घर से रवाना हो जाता है। इधर विद्या जैसे ही अपने ससुराल आने के लिए रास्ते में होती है तो रास्ते में चंपक किस प्रकार से विद्या से क्या कहता है, आइए सुनते हैं इस बात के द्वारा वाला। विद्या,
1: कहिए चंपक।
0: एक बात मैं तुझसे कहना चाहता हूँ विद्या।
1: क्या बात है चंपक ऐसी?
0: विद्या, श्रवण कुमार अपने माता पिता के साथ जीवन भर के लिए तीर्थ कराने के लिए चला गया है।
1: अच्छा,
0: अब एक बात तू मेरी मान ले भला।
1: क्या बात मान लूं तेरी?
0: के बात मान ले

0: चंपक।
1: बात समझ में आई विद्या?
0: आखिर मैं तेरी बहन लगती हूँ।
1: अच्छा,
0: तू मेरे भाई का दोस्त है।
1: हाँ।
0: तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए?
1: मेरी बात सुन ले विद्या,
0: मेरी बात भी सुन ले जरा।
1: कह दे भला।
0: दूर हट जा रे चंपक तू पापी।
1: अच्छा।
0: मैं नारी सती।
1: अच्छा अच्छा।
0: दोस्त था तू तो भाई मेरे का।
1: हाँ।
0: शर्म तुझको न आती कती भी।
1: विद्या, एक बात कहूँ, मैं तेरे भले की ही बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुन ले जरा।
0: कह दे चंपक।
2: और मजे उड़ावेगी विद्या जो, और तू मेरी हो जावे।
0: दुष्ट अधर्मी

प्रेमी सज्जनों, चंपक को विद्या श्राप दे देती है, क्योंकि विद्या सती थी। चंपक विद्या के श्राप से कोढ़ी हो जाता है। उधर विद्या अपने स्वामी श्रवण कुमार और सास ससुर को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाती है, और उधर श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ कराते कराते लगभग सारे तीर्थ करा देता है, एक अयोध्या धाम रह जाता है।

0: अयोध्या धाम रह जाता है तो अंधे माता और पिता श्रवण कुमार से एक दिन क्या कहने लाग रहे हैं, आइए सुनते हैं इस बात के माध्यम से। बेटा श्रवण कुमार,
1: कहिए पिताजी।
0: आज हम अंधी अंधे के मन में एक बात आ रही है बेटा।
1: क्या बात है सी?
0: आज अपने दिल का बयान हम तुझसे करना चाहते हैं।
1: पिताजी क्या बयान करना चाहते हो तुम?
0: हमारी बात सुन ले बेटा जरा।
1: कह दो।
2: अरे मेरे लाल तू हम अंधों का।
1: क्या बात है सी?
2: अरे

0: श्रवण, कहिए पिताजी।
1: तू मात पिता की सेवा तो कर रहा है,
0: हाँ,
1: लेकिन एक काम गलत कर रहा है बेटा।
0: मैं?
1: हाँ।
0: वो क्या काम है?
1: अरे पत्नी और घर बार छोड़ तेरा हमें घुमाना ठीक नहीं।
0: तुम ही कहो क्या मात पिता की

0: प्रेमी साथियों, श्रवण कुमार कहता है कि पिताश्री एक अयोध्या धाम और रह गया है, उसे अगर मैं पूर्ण कर दूंगा तो आपको ज्योति वापस मिल जाएगी। प्रेमियों, कहते हैं श्रवण कुमार के पिता और माता की बेटे बहुत जोर की प्यास लगी हुई है, हमें पानी पिलवा दे। आइए प्रेमियों, किस प्रकार से सरयू नदी के पास श्रवण कुमार जल लेने के लिए चला जाता है। उधर राजा दशरथ, क्योंकि प्रजा जंगली जानवरों से बहुत ज्यादा परेशान थी, जंगली जानवरों का वध करते करते सरयू नदी के पास आ जाते हैं। जैसे ही श्रवण कुमार सरयू नदी में जल में अपना लोटा डुबोते हैं तो राजा दशरथ अपना शब्द वेदी बाण चला देते हैं। शब्द वेदी बाण श्रवण कुमार के सीने में लग जाता है। तीर सीने में लगते ही श्रवण कुमार के मुख से निकलता है, हाय माता हाय पिता। प्रेमी साथियों, राजा दशरथ घबरा जाते हैं, कोई इंसान मारा गया। आइए, श्रवण कुमार के पास राजा दशरथ आ जाते हैं तो श्रवण कुमार क्या कहता है, आइए सुनते हैं इस बात के माध्यम से।
1: मामा दशरथ, आपने तो अनर्थ ही कर दिया। अपने अंधे माँ बाप के बुढ़ापे का एक मैं ही तो सहारा था। मेरे सीने में तीर मारकर आपने मुझसे और मेरे माता पिता से कौन से जन्म का बदला लिया है भला, और मेरी बात सुन लीजिए।

0: प्रेमी सज्जनों, उधर श्रवण कुमार कहते हैं कि मामा श्री, आपने मुझे तीर मार कर अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी आप मेरी एक विनती स्वीकार कीजिए। इस जल में, इस लोटे में जल भर के मेरे अंधे मात पिता की प्यास बुझा देना, और आप चुप रहना, कुछ मत कहना, तब तक वो पानी ना पी लें, तब तक आपको चुप रहना है, और उसके बाद मेरा हाल आपको बताना है। आइए, राजा दशरथ जल का लोटा लेकर के अंधे मात पिता के पास आ जाते हैं, और क्या कहते हैं आइए सुनते हैं। भला
1: पिताश्री और माताश्री, मैं जल लेकर आया हूँ, जल पी लीजिए।
0: जल पी लीजिए?
1: हाँ।
0: तुम कौन हो? हमें तुम्हारी आवाज श्रवण जैसी नहीं लग रही। आखिर एक बात का जवाब

0: हमें जल पिलवाने आया है।
1: मुझसे धोखे में मारा गया तुम्हारा बेटा।
0: धोखे में मारा गया?
1: हाँ।
0: राजा दशरथ, ये अंधे अंधी आज पुत्र के विरह में जैसे अपने प्राण प्यासे ही त्यागेंगे, हम तुझे भी श्राप देते हैं कि अपने चौथे पन में जब तू मरेगा तो पुत्र वियोग में ही मरेगा।
1: आप क्या कह रहे हो? ये
0: हमारा श्राप बेकार नहीं जाएगा। दशरथ, हमारी बात सुन ले जरा। अब पुत्र विरह में प्राण तजे पर, पुत्र

0: सज्जनों, राजा दशरथ को वो मात पिता श्राप देते हैं कि राजा दशरथ तू जब चौथे पन में मरेगा तो पुत्र वियोग में ही मरेगा, और हम श्राप देकर के प्यासे अंधे अंधी अपना दम तोड़ते हैं। आइए प्रेमियों, किस प्रकार से आपके बीच में स्वांग श्रवण कुमार का पेश किया गया और क्या बताया भला
1: के विजय धर्म की होती है।

0: समाप्त हो गया, बोलो भारत माँ की जय।
1: अभी आप सुन रहे थे स्वांग श्रवण कुमार, कलाकार थे ऋषिपाल चौहान, मनसाराम चौहान। अब ये कार्यक्रम संपन्न होता है। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शिवनंदन लाल।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 5 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में समाचार होंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में अन्य देशों के शीर्ष नवाचार स्टार्टअप और उद्यम पूंजीदाता भी शामिल हुए। इसमें उन्नत कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा तथा जैव प्रौद्योगिकी सहित 13 प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार प्रदर्शित किए गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और फ्रांस के मजबूत संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने भारत फ्रांस साझेदारी को ऐसा अस्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
4: भारत और फ्रांस

0: प्रतिभाओं से संपन्न देश के रूप में देख रही है, बल्कि नवाचार के देश और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी शक्ति के रूप में भी देख रही है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद और इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति सहित कई प्रमुख व्यापारिक नेता भी उपस्थित थे। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों आज भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी का वहां पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि राज्य को राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, रेलवे परियोजनाओं और बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक गलियारा परियोजना के लिए भी बड़ी राशि दी गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्य भर में 1.25 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई। मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 191 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी किया। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने ओमान तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट वन के इंजन में खराबी आने की जानकारी दी है। इसमें सवार 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ओमान के अधिकारियों के साथ तालमेल से बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। अंतालिया में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज बोम्मा देवरा और किशोरी कुमकुम मोहत ने रिकर्व मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओह ये जिन और किम जे डेओ को 5-1 से हराया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंगम के एजबेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Prime Minister Narendra Modi and President of France Emmanuel Macron today jointly inaugurated Bharat Innovates event at Palade Expositions in Nice, France. The flagship event being held under the India-France Year of Innovation brings together top innovation startups and venture capital funds from India, France and other countries. It features innovations across 13 key sectors including advanced computing, semiconductors, artificial intelligence, quantum technologies, space technology, clean energy and biotechnology. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi highlighted the strength of India-France ties. He said while many nations engage in trade and strategic cooperation, only a few relationships are guided by a shared vision as well as common interests.
2: दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है।
1: Addressing the gathering, French President Macron also described it as an honor for France to host the first edition of the initiative outside India. He said the world increasingly sees India not only as a country with immense talent, but as a nation of innovation and a disruptive force in technology.
3: A country with 1.4 billion inhabitants, a country who pays on know-how and research, knowledge and training as many

0: लोक रंजनी के सभी श्रोताओं को नमस्कार।
1: नमस्कार
0: अश्वनी बड़े जोश के साथ आज तो क्या बहुत बढ़िया बढ़िया गाने लेकर आए हैं।
1: भाई, देखिए दोनों ने मिलकर गानों को भाई निकाला है और ये सोचा है कि लोक रंजन कार्यक्रम में जब भी हम लेकर आते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे जो युवा साथी हैं, जो हमारी बहनें हैं या जो काम कर रहे हैं, जो खेतों में हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक अच्छा और मट्टी से जुड़े हुए गाने ज़रूर होने चाहिए।
0: बिल्कुल, और उनसे जुड़े हुए गानों में हम अपनी विशेषताओं का जिक्र करते हैं, क्या खासियत है। अब जहाँ तक आपने बहनों की बात की तो बहनों को कई चीज़ें पसंद होती हैं, और कपड़ों की अगर बात करें, साड़ी, हमारी भारतीय नारी साड़ी
1: जी
0: अनेक मौक़ों पर ख़ास तौर पर पहनती हैं।
1: बिल्कुल
0: और ये जो अपनी बबीता चौधरी है ना, वो कह रही हैं कि मुझे तो काली साड़ी पसंद है, और
1: चलिए
0: उससे मंगवाने की फरमाइश कर रही हैं।
1: जी
0: तो सुनते हैं ये लोकगीत।

0: भाई अश्वनी, काले
1: जी
0: रंग की साड़ी साड़ी पसंद नहीं, बहुत सारी चीज़ें विशेषताएं बहनों में होती हैं, स्नेह की प्रतिमूर्ति होती हैं, और चाहे बच्चे हों, रिश्तेदार हों, बड़े हों, सबसे एक लगाव उनके अंदर देखने को मिलता है, जिससे रिश्ते जुड़े रहते हैं।
1: बिल्कुल, चाहे वो बहन हो, चाहे माता हो, चाहे चाहे वो माँ हो या किसी की बहू हो, तो कहीं ना कहीं हमारी हमारी बहनों का, माताओं का कहीं ना कहीं ये रिश्ता एक दूसरे से जुड़ा रहता है, चाहे पति से हो। देखिए अब कुछ मंजू शर्मा की आवाज़ में कहीं ना कहीं आपने भी ये गीत लगाया है कि
0: के
1: धड़क
0: सजने संवरने के
1: नहीं
0: साथ
1: जाता
0: साथ
1: तो
0: रिश्तों को बनाए
1: जी
0: रखने में भी, उनकी याद करने में भी वो पीछे नहीं है।

0: तो मंजू शर्मा, ये लोकगीत उनकी आवाज़ में हम सुन रहे थे। और ऐसा नहीं है, ये जो बीना ढिल्लोर हैं, बीना ढिल्लोर उनकी सखियाँ, उनका भी कुछ ऐसा ही सोचना और मानना है।
1: बिल्कुल। तो चलिए समय ना व्यर्थ करते हुए सुन लेते हैं बीना ढिल्लोर और साथियों की आवाज़ में ये लोकगीत।

0: और इन रिश्तों में कई बार देखिए ये तो है, लेकिन नोक झोंक भी चलती हैं कई बार। देखो काले आदमी भी गुणी होते हैं, लेकिन
1: बिल्कुल
0: मजाक में कि मेरी तो सास काली है, मेरी तो नंद गोरी है, इस तरह के एक नोक झोंक वाले छेड़छाड़ वाली चीज़ें

0: काली भी प्यारी होंगी, नणंद हो चाहे सास हो। और अब घड़ी की सुइयों से मिल गया है इशारा कि अपने साथियों से विदा
1: जी
0: लेने का वक्त हो गया हमारा।
1: जी
0: तो सभी
1: जी
0: श्रोताओं को नमस्कार। इस
1: नमस्कार
0: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन
1: लाल।
0: लाल।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खिलाड़ी खेलों का आईना। नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में, जहां खेल की धड़कन हम आपके दिल तक पहुंचाते हैं। और आज आपके साथ हूं मैं हेमंत, और मेरे साथ हैं सिमरन सारवान। हम हर दिन खेल की दुनिया की सबसे दिलचस्प कहानियां लेकर आते हैं। भारत के खेल हों, अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले, खिलाड़ियों के संघर्ष और वो पल जो इतिहास बन जाते हैं।
2: जी बिल्कुल, और इसी इतिहास को बनाने के लिए शुरू हुआ है फीफा वर्ल्ड कप 2026, जिसमें कई रोमांचक खेल खेलने शुरू हो चुके हैं। तो सुनते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 पर ये रिपोर्ट।

0: फुटबॉल की दुनिया में इन दिनों फीफा वर्ल्ड कप का रोमांच अपने चरम पर है। हर मैच के साथ समीकरण बदल रहे हैं और मैदान पर ऐसी कहानियां लिखी जा रही हैं जो आने वाले कई दशकों तक याद रखी जाएंगी। आज हम बात करेंगे उन चार मुकाबलों की जिन्होंने न केवल फैंस को रोमांचित किया बल्कि फुटबॉल के नक्शे पर भी नए पन्ने भी लिखे।
1: जी हाँ, मेजबान देश कतर के लिए ये वर्ल्ड कप किसी सपने जैसा है। स्विट्जरलैंड जैसी मजबूत यूरोपीय टीम के खिलाफ 1-1 का ड्रॉ खेलना कतर के लिए किसी जीत से कम नहीं है। कतर की टीम, जो फुटबॉल की वैश्विक रैंकिंग में बहुत पीछे मानी जाती है, ने खेल के हर विभाग में अनुशासन दिखाया। मैच के शुरुआती हाफ में स्विट्जरलैंड का पलड़ा भारी रहा, लेकिन कतर के डिफेंस ने उन्हें गोल करने के मौके कम दिए। दूसरे हाफ में कतर ने जवाबी हमले की रणनीति

0: रणनीति अपनाई और एक महत्वपूर्ण गोल दागकर स्विट्जरलैंड के खेमे में हलचल मचा दी। इस ड्रॉ के साथ कतर ने अपने फीफा वर्ल्ड कप का इतिहास का पहला पॉइंट हासिल करके एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की। ये पॉइंट सिर्फ एक अंक नहीं बल्कि कतर के फुटबॉल भविष्य के लिए एक नई शुरुआत भी है।
1: जब बात ब्राजील की आती है तो दुनिया की हर टीम को अपना डिफेंस मजबूत करना पड़ता है, लेकिन मोरक्को ने न केवल अपने डिफेंस को अटूट रखा बल्कि ब्राजील के फॉरवर्ड्स को भी अपनी गति से परेशान किया। एक एक का ड्रॉ साबित करता है कि मोरक्को अब फुटबॉल की महाशक्ति बनने की राह पर है। ब्राजील ने अपनी पूरी ताकत लगाई, कई बेहतरीन पास और ड्रिबल देखे गए, लेकिन मोरक्को के गोलकीपर ने पूरे मैच में शानदार सेव करके अपनी टीम को हार से बचाया। इस परिणाम ने वर्ल्ड कप के पॉइंट टेबल को और भी रोमांचक बना दिया है। फुटबॉल के जानकारों का मानना है कि मोरक्को की ये टीम इस वर्ल्ड कप की डार्क हॉर्स साबित हो सकती है।
0: अब बात करें स्कॉटलैंड की, तो स्कॉटलैंड की 36 साल पुरानी प्यास भी अब बुझ चुकी है। अगर आज के मैच में सबसे भावनात्मक पल कोई था तो वो स्कॉटलैंड की जीत थी। 1990 के बाद फीफा वर्ल्ड कप के मंच पर स्कॉटलैंड को अपनी पहली जीत का इंतजार था। हैती के खिलाफ मुकाबला काफी कड़ा रहा, स्कॉटलैंड की टीम पर दबाव था, लेकिन मैच के निर्णायक पलों में एक बेहतरीन गोल ने स्कॉटिश दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। 1-0 की ये जीत उनके लिए सिर्फ 3 अंक नहीं बल्कि गौरव की वापसी है। मैच के बाद खिलाड़ियों के चेहरे पर आए आंसू और स्टेडियम में मौजूद फैंस का उत्साह ये बयां कर रहा था कि 36 साल का इंतजार कितना लंबा होता है। ये जीत स्कॉटलैंड के फुटबॉल इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गई है।
1: दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की के खिलाफ एक बहुत ही संयमित और प्रभावशाली प्रदर्शन किया। 2-0 की जीत दर्शाती है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी फिटनेस और तकनीक पर कितना काम किया है। मैच के पहले 20 मिनट तक दोनों टीमें बराबरी पर थी, लेकिन इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने आक्रामक रुख अपनाया। उनके मिडफील्डर्स ने खेल को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया। तुर्की ने वापसी करने की काफी कोशिश की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मजबूत डिफेंस को भेदना उनके लिए नामुमकिन साबित हुआ। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने टूर्नामेंट में खुद को एक गंभीर दावेदार के रूप में स्थापित किया है।
0: फीफा विश्व कप 2026 में कई रोमांचक मुकाबले अभी देखने बाकी हैं, जहां दिग्गज टीमें अगले दौर की अपनी दावेदारी मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी। दिन के सबसे चर्चित मुकाबलों में से एक होगा जर्मनी और कुरासाओ के बीच। 4 बार की विश्व चैंपियन जर्मनी इस मुकाबले में स्पष्ट रूप से मजबूत नजर आ रही है, लेकिन विश्व कप जैसे मंच पर कुरासाओ उलटफेर करने की कोशिश करेगा।
1: एक और बड़ा मुकाबला जापान और नीदरलैंड्स के बीच खेला जाएगा। जापान की तेज और अनुशासित फुटबॉल का सामना डच टीम की आक्रामक शैली से होगा। ये मैच तकनीक और रणनीति की दिलचस्प जंग साबित हो सकता है।
0: आइवरी कोस्ट और इक्वाडोर के बीच मुकाबला भी काफी अहम माना जा रहा है। दोनों टीमें शारीरिक क्षमता और तेज खेल के लिए जानी जाती हैं। ऐसे में प्रशंसकों को कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है।
1: स्वीडन और ट्यूनिशिया की टीमें भी आमने सामने होंगी। स्वीडन अपने यूरोपीय अनुभव का फायदा उठाना चाहेगा, जबकि ट्यूनिशिया अफ्रीकी फुटबॉल की ऊर्जा और संघर्षशीलता के दम पर चुनौती पेश करेगा।
0: दिन का एक और आकर्षक मुकाबला स्पेन और काबो वर्डे के बीच होगा। स्पेन की युवा और प्रतिभाशाली टीम बॉल पर नियंत्रण और तेज पासिंग गेम के लिए मशहूर है। वहीं काबो वर्डे की टीम टूर्नामेंट में एक और बड़ा उलटफेर करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। तो फीफा विश्व कप 2026 में ये मुकाबले बहुत रोमांचक होने वाले हैं, प्रतिस्पर्धा और नतीजों से भरपूर भी रहने वाला है। देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीमें जीत दर्ज करके अगले दौर की ओर मजबूत कदम बढ़ाते हैं। अब अगर बात करें विमेंस क्रिकेट की, जिसमें T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और आज होगा इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान के साथ, जो कि सबसे बड़ी राइवलरी मानी जाती है। आज शाम 7 बजे मुकाबला जारी होगा, और इससे पहले सुनते हैं इंडिया और पाकिस्तान पर ये रिपोर्ट।
1: आज हम बात कर रहे हैं उस महामुकाबले की जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन को होता है। जी हां, आज आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप ए के अहम मुकाबले में आमने सामने है भारत और पाकिस्तान। आज बर्मिंगम का एजबेस्टन स्टेडियम पूरी तरह से तैयार है। दर्शक अपनी अपनी टीमों का उत्साह बढ़ाने के लिए स्टेडियम पहुंच रहे हैं। एक तरफ हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली बेहद मजबूत और संतुलित भारतीय टीम है, तो दूसरी तरफ फतिमा सना की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम अपनी चुनौती पेश करने उतरी है। अगर हम इतिहास और टू हेड आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय महिला टीम का दबदबा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। T20 फॉर्मेट में भारत और पाकिस्तान की महिला टीमों के बीच अब तक कुल 16 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से 13 मैचों में भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज की है, जबकि पाकिस्तान केवल 3 ही बार जीत सका है। T20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों का 8 बार आमना सामना हुआ है, जिनमें से 6 बार भारत ने बाजी मारी है। ये आंकड़े बताते हैं कि टीम इंडिया का पलड़ा भारी है और वे एक मनोवैज्ञानिक बढ़त के साथ मैदान में उतरेंगे। हालांकि

0: टी20 फॉर्मेट की प्रकृति को देखते हुए भारतीय टीम इसे हल्के में लेने की भूल बिल्कुल नहीं करेगी। अब बात करते हैं दोनों टीमों की ताकत और प्लेइंग 11 की, जिन पर आज सबकी नजरें टिकी होंगी। पारी की शुरुआत करने की जिम्मेदारी स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना और युवा सनसनी शैफाली वर्मा पर होगी। इन दोनों का तालमेल टीम को तेज शुरुआत दिलाता है। मध्य क्रम में कप्तान हरमनप्रीत कौर का अनुभव और जेमिमा रॉड्रिक्स की क्लास टीम को स्थिरता देती है। आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाने के लिए विकेट कीपर ऋचा घोष एक बेहतरीन फिनिशर की भूमिका में होंगी। गेंदबाजी आक्रमण का मोर्चा रेणुका सिंह ठाकुर संभालेंगी, जिनकी इन स्विंग गेंदें इंग्लैंड की परिस्थितियों में बेहद खतरनाक साबित होती हैं। वहीं स्पिन विभाग में अनुभवी दीप्ति शर्मा, राधा यादव और युवा श्रियंका पाटिल मध्य ओवरों में रनों पर अंकुश लगाने और विकेट निकालने का काम करेंगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम कप्तान फातिमा सना के युवा नेतृत्व और चुस्त गेंदबाजी के साथ मैदान पर है और वे भारतीय टीम को कड़ी टक्कर देने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान की बल्लेबाजी काफी हद तक विकेट कीपर बल्लेबाज मुनीबा अली और अनुभवी आलिया रियाज पर निर्भर करेगी। वहीं स्पिन विभाग में नशरा संधु और सादिया इकबाल की जोड़ी बीच के ओवरों में काफी कसी हुई गेंदबाजी करने के लिए जानी जाती है। क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, जहां मैच में प्रेशर और सिचुएशन को जो अच्छे से मैनेज कर लेता है वही होता है असली विनर। और इसी पर क्या कुछ कह रही हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, आइए सुनते हैं।
1: वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड, वेरी बिग टूर्नामेंट फॉर ऑल ऑफ अस, वी ऑल आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। एवरीवन इज वेरी एक्साइटेड फॉर द फर्स्ट गेम, बिकॉज़ फर्स्ट गेम इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट एंड दैट ऑलवेज सेट द टोन फॉर यू एंड वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट गेम। आई वॉन्ट डिनाई कि प्रेशर नहीं होता, प्रेशर होता है क्योंकि जब से क्रिकेट देखना स्टार्ट करा है तब से सपोर्टर भी वो प्रेशर फील करा है और अभी तो खेलते हैं तो प्रेशर उससे भी ज़्यादा है। बट एट द सेम टाइम हम लोग यही बात करते हैं कि इस गेम को जितना इंजॉय करेंगे उतना हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि वी आर द लकी वन हु यू नो पिक फॉर दिस बिग ओकेशन एंड वी जस्ट वॉन्ट टू एंजॉय सेल्फ ऑन द फील्ड। आई थिंक मोर देन एनीथिंग इट्स अनदर गेम विच वी वांट टू प्ले, वी जस्ट वॉन्ट टू प्ले अवर बेस्ट।
2: तो आकाशवाणी की तरफ से भी हमारी भारतीय टीम को बहुत बहुत
3: शुभकामनाएं।
2: और

0: अब आइए सुनते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, महिला वर्ल्ड कप पर ये रिपोर्ट।
1: स्कॉटलैंड ने विश्व कप के इतिहास की पहली जीत दर्ज कर ली है। स्कॉटलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 161 रन बनाए थे। टीम की जीत की नींव कप्तान कैथरीन ब्राइस और उनकी बहन सारा ब्राइस ने रखी थी। कैथरीन ब्राइस ने 39 गेंदों में 60 रन की कप्तानी पारी खेली, जबकि सारा ब्राइस ने 49 रन बनाकर अर्धशतक से वो चूक गई थी। 162 रन का लक्ष्य का पीछा करने उतरी आयरलैंड ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और 19.2 ओवर में 121 रन पर ऑल आउट हो गई थी। वहीं बात करें ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका की, तो ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 65 रन से हरा दिया था। 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने महिला T20 विश्व कप 2026 में एक शानदार शुरुआत की है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 172 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। टीम की ओर से फीबी लिचफील्ड ने 24 गेंदों में 51 रन की विस्फोटक पारी खेली, जबकि एलिस पेरी ने 36 और जॉर्जिया वेयरहम ने 32 रन का योगदान दिया। 173 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीकी टीम की शुरुआत खराब रही, उसने शुरुआती विकेटें जल्दी गवाई। कप्तान एल वोलवार्ट ने 44 रन और नेडिन डी क्लर्क ने 25 रन बनाकर संघर्ष किया, लेकिन बाकी बल्लेबाज टिक नहीं सके। पूरी टीम 16.4 ओवर में 107 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया की ओर से जॉर्जिया वेयरहम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट लिए, जबकि सोफी मोल्युक्स और एलेना किंग ने 2-2 विकेट चटकाए। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने टूर्नामेंट में विजयी आगाज किया है। साथ ही साथ बात करें न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के मैच की, तो वेस्टइंडीज ने भी न्यूजीलैंड को हरा दिया। 163 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज ने एक गेंद शेष रहते जीत हासिल कर ली। इस जीत की नायिका शेमेन कैंपेबल रही, जिन्होंने नाबाद 90 रन की शुरुआती पारी खेली। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 162 रन बनाए। ब्रूक हेलिडे ने 40 रन और मैडी ग्रीन ने नाबाद 35 रन की उपयोगी पारी खेली। वेस्टइंडीज की ओर से अलिया और एलन ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके। जवाब में कैंपेबल की संयमित और आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर वेस्टइंडीज ने लक्ष्य हासिल कर लिया और महिला T20 विश्व कप सेमीफाइनल में मिली हार का बदला भी उन्होंने चुकता कर लिया।
0: तो सिमरन, एक और मैच जो चल रहा है वो बांग्लादेश विमेंस के बीच में नीदरलैंड विमेंस

0: और बांग्लादेश विमेंस के बीच में चल रहा है, जहां पहले नीदरलैंड की बैटिंग आई जिसमें 139 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर की समाप्ति के बाद, और बांग्लादेश की टीम का चेज जारी है और 12 ओवर की समाप्ति के बाद 85 रन 4 विकेट खोकर उन्होंने बना लिए हैं। अब 48 गेंदों में 55 रन की जरूरत है बांग्लादेश विमेंस को।
1: अब एक और टूर्नामेंट की बात करते हैं जो कि दिल्ली में हो रहा है, यह है ऑल इंडिया त्यागमूर्ति गोस्वामी गणेश दत्त मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट, जिस पर हमारे सहयोगी शाहिद आजमी ने एक बहुत अच्छी एक रिपोर्ट बनाई है, तो सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेट टूर्नामेंट में से एक गोस्वामी गणेश दत्त मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला आज खेला गया। आमने सामने थी आउटर दिल्ली वॉरियर्स और कोलाज स्पोर्ट्स क्लब। दिल्ली की सख्त गर्मी में हाई स्कोर मैच खेला गया, जहां बाजी मारी पहली बार इस टूर्नामेंट में भाग ले रही आउटर दिल्ली की टीम ने। सेंट स्टीफन ग्राउंड पर खेले गए फाइनल मैच की बात करें, उससे पहले सुन लेते हैं गोस्वामी गणेश दत्त टूर्नामेंट के 51वें संस्करण के ऑर्गेनाइजिंग हेड विकास कतियाल को।
3: देखिए, ये टूर्नामेंट 16 टीमें टोटल पार्टिसिपेट कर रही, 2020 फॉर्मेट था, लीग कम नॉकआउट था, सबको हमने पहले तीन लीग मैचेस दिए, फिर जो ऊपर के चार पूल में थे, जो जो ऊपर की दो टीमें थी उनको क्वार्टर फाइनल से फिर खिलाया और सेमीफाइनल और फिर फाइनल। सभी टीमों ने बड़ा मजा आया, काफी आईपीएल प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया, कम से कम 7-8 आईपीएल प्लेयर्स खेले इस बार भी। जैसे ही आईपीएल से फ्री हुए तो सारे यहां आ गए थे। आज भी 4-5 प्लेयर्स जो हैं वो आईपीएल के खेले हैं। लास्ट मैच जो सेमीफाइनल था उसमें भी मयंक अग्रवाल मुंबई इंडियंस के कुछ रिकॉर्ड्स भी बने, एक मैच में एक नो बॉल हुआ, 7 बॉलों पे 6 छक्के लगे, कल भी सेमीफाइनल में 6 छक्के लगे एक ओवर में। ओवरऑल टीम्स ने बड़ा अच्छा एंजॉय करा और T20 मुझे लगता है फॉर्मेट इनको सूट भी करता है, DPL भी आ रहा होता है यहाँ परफॉर्म करके, उनको लगता है कि शायद फ्रेंचाइजी वगैरह उनको एक एडवांटेज हो जाता है। टूर्नामेंट तो आप लोग बताओगे सक्सेसफुल रहा, बट हाँ मेरे को अच्छा लगा, हमने अपनी तरफ से बेस्ट फैसिलिटीज दी, बेस्ट जो भी हम दे सकते थे, कोई पानी, जैसे गर्मी 46 में खेल रहे हैं बच्चे, तो मुझे भी ये समझ आता है कि इस टाइम पे इनको पानी और ग्लूकोज, जो इनको एनर्जी ड्रिंक और जो डिहाइड्रेशन ना हो, ग्लूकोज वगैरह अपनी तरफ से बेस्ट फैसिलिटीज देते हैं।
2: खिताबी मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी का न्योता पाकर कोलाज स्पोर्ट्स क्लब ने निर्धारित 20 ओवर में 245 रन का स्कोर किया। 246 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आउटर दिल्ली वॉरियर्स ने 17 ओवर में निर्धारित टारगेट 6 विकेट पर हासिल कर लिया। आउटर दिल्ली की तरफ से प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच हिम्मत सिंह ने सबसे ज्यादा 95 रनों की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 11 चौके और 7 छक्के जड़े। हालांकि वो शतक से चूक गए मगर अपनी टीम की नैया पार लगा दी। उनके अलावा ध्रुव सिंह ने 69 और सार्थक रंजन ने 39 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। इससे पूर्व कोलाज स्पोर्ट्स क्लब ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 245 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। ललित यादव ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 51 गेंदों में 109 रन बनाए। उनकी शतकीय पारी में 5 चौके और 10 छक्के शामिल रहे। वहीं कप्तान समर्थ सेठ ने 39 गेंदों पर 80 रन की आक्रामक पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 8 छक्के शामिल थे। दोनों बल्लेबाजों की विस्फोटक पारियों के अलावा स्वास्तिक चिकारा ने 24 रन तथा सिद्धार्थ लियोन ने 19 रन का योगदान दिया। आउटर दिल्ली वॉरियर्स की ओर से शौर्य मलिक और शिवम शर्मा ने 2-2 विकेट हासिल किए। मैच के बाद हिम्मत सिंह से हमने बात की।
4: फाइनल मैच बहुत अच्छा था, हम तो चाह रहे थे कि हम पहले बैटिंग करें, क्योंकि यहाँ पे बैटिंग विकेट है, हमेशा 250 रन बनाना आसान नहीं होता, पर क्योंकि यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस हो ही रहे हैं, पर हमारे कैप्टन को था कि हम चेज करेंगे, तो हमने कहा चलो ठीक है, हम खुश नहीं थे इनिशियली, बट हमने कहा कोई नहीं, अब जो डिसीजन ले लिया वो सही है।
2: 245 कुछ ज्यादा स्कोर नहीं था,
4: 245 तो ज्यादा है, बट यहाँ पे टचवुड हमारी टीम में जो बैट्समैन है, हमारी बैटिंग ही हमारी स्ट्रेंथ है, तो इसीलिए, और हम पहले भी मैचेस में 300-300 रन भी बना रहे हैं, इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर भी हमने ही बनाया, तो हम कॉन्फिडेंट रहे कि हम लोग बना सकते हैं।
2: अपनी बल्लेबाजी के बारे में बताइए, इस पूरे टूर्नामेंट में शतक भी ठोका, आज थोड़ा सा चूक गए शतक से।
4: हाँ जी, ये सच बात है, क्या कहते हैं, मैंने इस टूर्नामेंट में यही सोचा कि मैं कई बार बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव खेलता हूँ और मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ अपने गेम में। T20 में बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होने की जरूरत नहीं है, इंस्टिंक्ट पे खेलना है और वो चीज मैं अपने गेम में डालना चाहता हूँ, तो इस टूर्नामेंट में मैंने वही प्रैक्टिस करी। बस कहीं आज कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आ गया था कि मैं 95 पे आया कि क्या कहते हैं 100 बना लूं, उससे पहले मैं बोर्ड नहीं देख रहा था और वहीं पे मैंने एक गलत शॉट खेला और मैं आउट हो गया।
2: आईपीएल खेलते हैं, डीपीएल खेलते हैं, यहाँ खेलते हैं, कितना डिफरेंस है गोस्वामी और आईपीएल जैसी इवेंट?
4: थोड़ा है, बस यही है कि लूज बॉल्स आपको थोड़े, जब आप ऊपर लेवल पे खेलते हो आपको लूज बॉल्स थोड़ी कम मिलती है और यही एक डिफरेंस है, उसके सिवाय सब बॉलर हैं, बॉल ही डाल रहे हैं और कुछ नहीं है, सिर्फ लूज बॉल कम मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टूर्नामेंट भी, और ये सारे लड़के डीपीएल खेलते हैं, डीपीएल से फिर ये आईपीएल खेलते हैं, सैयद मुश्ताक अली खेलते हैं, तो जरूर है वही लड़के हैं, वही बंच है, वही कोई थोड़ा जल्दी कोई थोड़ा लेट सब खेलते हैं।
2: अब सुनते हैं

0: पिछले संस्करण की चैंपियन कोलाज स्पोर्ट्स क्लब के कप्तान समर्थ सेठ को। और जानते हैं आखिर क्यों उनकी टीम इस बार हार गई?
1: सर थोड़ा मेरे को लगता है सुबह थोड़ी विकेट बॉलर्स के लिए थोड़ी थी, उसमें मॉइस्चर था विकेट में, तो टॉस बहुत वाइटल होता है इस मैच में, तो हम टॉस हार गए और हमारी बैटिंग आ गई, इस वजह से थोड़े से हमारे 15-20 रन शॉर्ट रह गए।
0: टारगेट अच्छा खासा 245 रन बनाया था, उसको डिफेंड नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं गेंदबाजी थोड़ा सा लेकर गए।
1: सर गेंदबाजी तो क्या, विकेट बहुत अच्छी, बहुत ट्रू है यहाँ की, तो अगर आप देखोगे अगर ये टूर्नामेंट हर मैच में 260-270 बन ही रहे हैं और चेज भी हो रहे हैं, तो हम 15-20 रन शॉर्ट रह गए थोड़े। बॉलिंग तो मेरे को लगता है कि उन्होंने बैटिंग ही बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी करी।
0: ओवरऑल टूर्नामेंट आपकी टीम के लिए क्या?
1: सर अच्छा रहा, लास्ट ईयर हम चैंपियन थे, इस साल हम फाइनल पहुंचे हैं, अब ये तो सर पार्ट ऑफ द गेम है, कोई हारता कोई जीतता, बट ओवरऑल बहुत अच्छा रहा हमारी टीम के लिए टूर्नामेंट।
0: मेजर आपको क्या लगता, क्या गलती रही, क्या कमी आपको लगी?
1: थोड़ा सर हमारे हिसाब से हम बेस्ट ही खेले, एक मैच सर कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, वही हुआ आज का मैच।
0: आपकी बल्लेबाजी के बारे में बताइए, और आज क्या हुआ था, कैसे आउट हुए, चोटिल भी हुए आप?
1: सर अच्छा था, बैटिंग अच्छी हो रही थी, 80 ऑड रन बनाए, रन आउट हो गया, सामने बॉल मारी और वो मेरे हाथ पे लग के सीधा फील्डर के चली गई, तो रन आउट हो गया आज, बट अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा था सर।
0: इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। कार्यक्रम का प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ दिल्ली के सेंट स्टीफन ग्राउंड से आकाशवाणी के लिए मैं मोहम्मद शाहिद आजमी।
2: बात क्रिकेट की हो रही है तो पुरुष क्रिकेट को भी नहीं भुलाया जा सकता। कल खेले गए इंडिया और अफगानिस्तान के बीच ओडीआई मैच पर सुनते हैं ये रिपोर्ट।
3: धर्मशाला में खेले गए बारिश से प्रभावित पहले वनडे मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की शानदार बढ़त बना ली है। 25-25 ओवर के इस बेहद रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और दर्शकों को एक यादगार मैच देखने को मिला। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम की शुरुआत भले ही थोड़ी लड़खड़ाई, लेकिन उनके ओपनर गुरबाज ने एक छोर पर भारतीय गेंदबाजों पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए महज 51 गेंदों में 102 रनों की स्फोटक शतकीय पारी खेली, जिसमें 8 छक्के और 8 चौके शामिल थे। हालांकि भारत के लिए अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेल रहे युवा तेज गेंदबाज गुरनूर और हर्ष दुबे ने शानदार वापसी कराई। दोनों ने 3-3 विकेट झटके और अर्शदीप सिंह ने भी किफायती गेंदबाजी करते हुए 2 अहम विकेट चटकाए, जिससे अफगानिस्तान की पूरी टीम 24.5 ओवर में 194 रन पर सिमट गई। 195 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत थोड़ी डगमगाई जब रोहित शर्मा 16 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने सूझबूझ और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया। कप्तान शुभमन गिल ने शानदार तरीके से पारी को संभाला और 66 गेंदों पर नाबाद 84 रनों की बेहद समझदारी भरी पारी खेलकर मैच को जिताया, जिसमें 11 चौके और 2 छक्के शामिल थे। गिल का साथ देते हुए ईशान किशन ने भी तेज गति से 22 गेंदों में 34 रन जोड़े। अंत में बल्लेबाजी करने आए केएल राहुल ने ताबड़तोड़ शॉट लगाए और महज 19 गेंदों में 3 चौके और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 39 रन ठोक डाले। राहुल की इस आक्रामक पारी की बदौलत भारत ने 23वें ओवर में ही आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत ने 13 गेंदें शेष रहते ये शानदार जीत दर्ज की। शानदार और जिम्मेदारी भरी पारी के लिए शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बेहतरीन प्रदर्शन के साथ भारतीय टीम ने सीरीज की शानदार शुरुआत की है। और इस जीत पर क्या कहा भारत के युवा खिलाड़ी नीतीश रेड्डी ने, आइए सुनते हैं।
4: You need to be strong because ball will be old after 20 overs and you need to bowl those tight lengths with 5 fielders in. And it's just you need to come back and hit the top off and you know what the plan is, one side bigger. And it's all depends on the situation, you know. You have to use the situation according to you and you have to improve, get some wickets over there. That's how we prepare ourselves. It's basically, haven't done a lot of work, but it's just basically what we want to achieve in coming days. That's what we have discussed and we have worked on that. And I have learned some points where I need to change a little bit in my specific bowling. So we're working on it and hopefully in future it gets work and you can see me bowling little warm pace.
3: क्रिकेट की खबरों के बाद चलते हैं अब हॉकी की तरफ, जहां मेंस FIH प्रो लीग इंडिया वर्सेस नीदरलैंड और वुमेन्स इंडिया वर्सेस US पर के मैच पर आधारित, आइए सुनते हैं सिमरन की ये रिपोर्ट।
2: भारतीय पुरुष हॉकी टीम FIH प्रो लीग 2026 के यूरोपीय चरण में आज से अपने अभियान की शुरुआत करेगी। टीम का पहला मुकाबला नीदरलैंड्स के खिलाफ रोटरडैम में खेला जाएगा। विश्व कप की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए भारत इस दौरे पर कुल 8 मुकाबले खेलेगा। नीदरलैंड्स के खिलाफ आज के मैच के बाद भारतीय टीम 17 और 18 जून को लगातार 2 मुकाबलों में जर्मनी का सामना भी करेगी। इसके बाद 21 जून को एक बार फिर नीदरलैंड से

0: उनका सामना होगा। लंदन चरण में भारत का मुकाबला 23 और 26 जून को पाकिस्तान से जबकि 25 जून और 28 जून को इंग्लैंड से होगा। मुख्य कोच क्रेग फुल्टन ने कहा है कि प्रो लीग चरण अगस्त में होने वाले हॉकी विश्व कप की तैयारियों का अहम हिस्सा है। उनके अनुसार नीदरलैंड्स, जर्मनी और इंग्लैंड जैसी शीर्ष टीमों के खिलाफ खेलने से भारत को अपनी तैयारियों और टीम संयोजन को परखने का बेहतरीन अवसर मिलेगा। ऐसे में भारतीय टीम की नजरें न सिर्फ अच्छे नतीजों पर होंगी बल्कि विश्व कप से पहले अपनी सर्वश्रेष्ठ लय हासिल करने पर भी रहेंगी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व कप्तान सरदार सिंह ने कुछ यूं कहा।
1: मैं कहूंगा कि जब आप पिछला 10-15 साल देखो तो ऐसे कोई भी प्रोग्राम नहीं होते, तो मेरे ख्याल से आजकल के ये जो यंग बच्चे हैं एज ऑफ 15, 16, 17 इनके ऊपर इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही बच्चे हैं जो आने वाले टाइम में हमारे अभी सब जूनियर से जूनियर में जाएंगे, उसके बाद सीनियर में जाएंगे, वर्ल्ड के बेस्ट टीम के साथ खेलेंगे, अच्छे मैचेज में खेलेंगे, जाते जाते इनको काफी एक्सपीरियंस हो जाएगा।
0: हॉकी FIH प्रो लीग के करंट स्टैंडिंग्स की बात करें तो बेल्जियम पहले स्थान पर है 25 पॉइंट्स के साथ। दूसरे टेबल पर ऑस्ट्रेलिया विराज है 21 पॉइंट्स के साथ। इंग्लैंड तीसरे स्थान पर 18 पॉइंट्स के साथ। अर्जेंटीना चौथे स्थान पर। पांचवें स्थान पर नीदरलैंड है, उसके बाद जर्मनी, स्पेन है सातवें स्थान पर और भारत इस वक्त आठवें पायदान पर है 4 पॉइंट्स के साथ। बात करें महिला हॉकी टीम की तो 15 जून को भारत अमेरिका से सामना करेगा। ये मैच ऑकलैंड न्यूजीलैंड में भारतीय समय के अनुसार 4:15 पर शुरू होगा। दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है। भारतीय टीम अपनी शार्प टेक्निक के लिए जानी जाती है, वहीं अमेरिकी टीम अपने तेज और शारीरिक खेल के लिए मैदान पर उतरने के लिए जानी जाती है। मुख्य कोच सोजर्ड मारिजने की देखरेख में भारतीय टीम ने अपने फिटनेस पर काफी काम किया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे और वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के बाद टीम अपने आक्रामकता और बेहतर फिनिशिंग में बदलने पर जोर दे रही है। ये नेशंस कप भारत के लिए बेहद अहम है क्योंकि इसके जरिए भारतीय टीम अगले सीजन के लिए FIH प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर सकती है। बात करते हैं तीरंदाजी यानी आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 की जो कि अंटालिया तुर्की में होने जा रहा है, तो सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: आज खेले गए आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 में ओलंपियन धीरज बोमे देवरा और कुमकुम मोहोद ने जबरदस्त आत्मविश्वास दिखाते हुए ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर रिकर्व मिक्स्ड टीम का गोल्ड मेडल जीता। भारतीय जोड़ी ने एक शानदार फाइनल में किम जे दियोक और ओहे ये जिन को 5-1 से हराया। उन्होंने दुनिया की सबसे मशहूर आर्चरी टीमों में से एक के खिलाफ कमाल और संयम और दृढ़ संकल्प दिखाया। 17 साल की टीन सेंसेशन कुमकुम मोहोद की परफॉर्मेंस की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। धीरज ने जिन्होंने पहले 2024 में अंकिता भगत और 2025 में भजन कौर के साथ मिक्स्ड टीम ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, आखिरकार लंबे समय से प्रतीक्षित गोल्ड मेडल जीतकर अपना कलेक्शन पूरा किया। इससे पहले भारत को पहले राउंड में बाई मिली थी। दूसरे राउंड में भारत ने डेनमार्क को 6-0 से हराया। क्वार्टर फाइनल में भारतीय टीम ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को 6-2 से हराया, जबकि सेमीफाइनल में उन्होंने जर्मनी को 6-2 से हराकर गोल्ड मेडल मैच में जगह पक्की की थी। 2022 में स्टेज 1 के बाद मिक्स रिकर्व टीम की ये पहली वर्ल्ड कप स्टेज जीत है। इस शानदार जीत के बाद क्या कहा इस जोड़ी ने, आइए सुनते हैं।
3: हमको बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि हम ये मैच जीते हैं, क्योंकि बहुत दिन से हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, सारा टीम हो, मिक्स टीम हो, इंडिविजुअल हो, ये सारा टीम का साथ रहा है हम लोग का, उसी वजह से हम लोग जीते हैं। एंड जो हमारा आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया और साई ने जो हम लोग को एक साथ में रह के जो हम लोग को वो रास्ता दिखाया कि भाई हम है आप लोग के पीछे, आप लोग चलो, आप लोग मेहनत करो, उसकी वजह से हम लोग बहुत सही कर पाए एंड आगे भी करते रहेंगे।
4: मैंने बहुत मतलब खुद पर विश्वास रखा और चलाया और प्रोसेस पर ध्यान दिया, सिर्फ आगे वाले कौन है कुछ नहीं देखा। और शंघाई का भी बहुत फायदा रहा है क्योंकि वहाँ पे जो जैसे खेली थी उससे तो और बेहतर खेली हूँ इस बार और ऐसे ही खेलती रहूँगी।
3: Honestly, जब इसके साथ खेलता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना इसको चीज़ें अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ उससे ज़्यादा उससे मैं सीख रहा हूँ कि बेधड़क होके चलाना, कि जैसे वो बोले कि फ़र्क नहीं पड़ रहा है किसके साथ खेल रहा है, तो बेसिकली पूरा चीज़ है ना एक्सपीरियंस एक्सचेंज हो रहा है कि एक नया वाले कैसे सोचता है जोश में एंड जो एक्सपीरियंस है हम कैसे शेयर करते हैं हर सिचुएशन में। एंड हम लोग हमेशा एक मतलब कहावत बोलते हुए हम लोग जा रहे थे मिक्स टीम में कि इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। सो आखिरी तीर तक, आखिरी सांस तक हम लड़ते रहे, चाहे हम आगे हैं पीछे हमको फ़र्क नहीं पड़ता एंड हम उसी चीज़ें पर ध्यान दिए जिस पर हमको देना चाहिए। एंड इसमें बहुत सारे चीज़ें ये है कि कुमकुम बताई एंड मैं उसको शेयर किया, सो इट्स टोटली अबाउट टीम बॉन्डिंग।
2: सिमरन, ये खबर तो भारतीय प्रशंसकों के लिए बहुत ही खुशी वाली खबर थी, और इसके बाद एक और खबर भारत को मिल सकती है, क्योंकि आज सेमीफाइनल में व्यक्तिगत स्पर्धा में अजय चल रहे धीरज का मुकाबला आज जर्मनी के मोरित्स वीजर से भी होगा।
0: जी, साथ ही साथ उस पर भी नजरें रहेंगी, और साथ ही साथ हमारे नजरें भी जुड़ी हुई है इंडियन एथलेटिक सीरीज 9 पर, जो कि लुधियाना में चल रहा है। तो सुनते हैं इस पर ये रिपोर्ट।
2: लुधियाना के गुरु नानक स्टेडियम में आयोजित इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 9 का दिन भारतीय एथलेटिक्स के लिए बेहद शानदार रहा। इस इवेंट में न केवल नए नेशनल रिकॉर्ड्स बने, बल्कि कई खिलाड़ियों ने CWG क्वालिफिकेशन मार्क हासिल कर अपनी दावेदारी मजबूत की। यहां 13 जून के प्रमुख मैचों और परिणामों के बारे में हम बात कर रहे हैं। कल के कुछ आकर्षण के बारे में हम बात करें तो तेजा शिरसे ने 13.27 सेकंड का समय निकालकर अपना ही पिछला नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने शानदार दौड़ के साथ गोल्ड मेडल जीता और कॉमनवेल्थ गेम्स के क्वालिफाई कर लिया। अब बात करें जेवलिन थ्रो की, तो रोहित यादव ने 83.76 मीटर की जबरदस्त थ्रो के साथ पहला और यशवीर सिंह ने 82.93 मीटर के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। दोनों ही खिलाड़ियों ने CWG का क्वालिफाइंग मार्क आसानी से पार कर लिया। अब बात करते हैं शॉर्ट पुट की, जहां स्टार एशियन गेम्स चैंपियन तेजिंदर पाल सिंह तूर ने अपने घरेलू दर्शकों के सामने अपना दम दिखाया और 20.72 मीटर दूर गोला फेंक कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं बात करते हैं पुरुष वर्ग के कुछ अन्य नतीजों पर, जहां 100 मीटर दौड़ में हरजीत सिंह ने 10.33 सेकंड में रेस पूरी करके गोल्ड जीता। वहीं 200 मीटर दौड़ में अभय सिंह 20.82 सेकंड के साथ पहले स्थान पर रहे। वहीं 400 मीटर दौड़ में विक्रांत पांचाल 46.09 सेकंड के साथ विजेता बने। वहीं बात करते हैं 800 मीटर दौड़ की, मोहम्मद अफजल ने 1:47 सेकंड के समय के साथ जीत दर्ज की। वहीं ट्रिपल जंप तिहरी कूद की बात करें तो कार्तिक यू ने 16.52 मीटर ने पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं महिला वर्ग के प्रमुख नतीजों की बात करें तो शॉर्ट पुट गोला फेंक में मनप्रीत कौर ने 17.99 मीटर का शानदार थ्रो कर गोल्ड जीता और CWG क्वालिफाइंग मार्क पार किया। लॉन्ग जंप की बात करें तो एशियन चैंपियनशिप की सिल्वर मेडलिस्ट शैली सिंह ने 6.42 मीटर की छलांग के साथ स्वर्ण पदक जीता। डिस्कस थ्रो की बात करें तो सीमा ने 58.16 मीटर के बेहतरीन थ्रो के साथ पहला स्थान हासिल किया। वहीं 100 मीटर दौड़ में बात करें तो जेलेना MV ने 11.68 सेकंड के साथ जीत दर्ज की। 100 मीटर हर्डल्स रेस की बात करें तो प्रज्ञान प्रसंती साहा ने 13.35 सेकंड ने स्वर्ण पदक जीता। 1500 मीटर दौड़ की बात करें तो लिली दास जो है 4.20 सेकंड के साथ विजेता बनी। वहीं बात करें सीनियर वर्ग के अलावा अन्य अंडर 20 वर्ग की प्रतियोगिताओं में हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के युवा एथलीटों का दबदबा देखने को मिला। सिमरन, एक खुशी की बात यह कि भारतीय मैनेजमेंट ने अभी कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी टीम की घोषणा कर दी है, तो वो एक खुशी की बात रहेगी। और अब घड़ी की सुइयां कर रही है इशारा कि ले ली जाए आपसे विदा। कार्यक्रम प्रोड्यूसर शहनवाज खान के साथ मैं हेमंत, और सिमरन के साथ नमस्कार।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर खासतौर से चर्चा हो रही है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तनकारी, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ भी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत फ्रांस साझेदारी को एक ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
6: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है,

0: इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
1: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक

0: के साथ मिलकर कौन नवाचार करे। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी का वहां पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित एक समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्य भर में 125 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 191 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना ज्यादा धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को खारिज किया कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने ओमान तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 के इंजन में खराबी आने की जानकारी दी है। इसमें सवार 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि ओमान के अधिकारियों के साथ तालमेल से बचाव अभियान जारी है। अंतालिया में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज बोमा देवरा और किशोरी कुमकुम मोहद ने स्वर्ण पदक जीते। फाइनल में रिकर्व मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओह ये जिन और किम जे द्योक को हराया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान से खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे जर्मनी का मुकाबला कुरासाओ से होगा। वहीं रात 1:30 बजे नीदरलैंड्स और जापान होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron are holding delegation-level talks at the historic Villa Carolus at Nice in France. The discussion between the two sides focuses on expanding the special global strategic partnership between two countries, covering defense, technology and trade. The two leaders also interacted during a walk-and-talk session at Villa Carolus. Earlier, Prime Minister Modi and French President Macron jointly inaugurated Bharat Innovates event at Pala the Expositions at Nice in France today. The landmark initiative showcases India's rapidly expanding innovation and startup ecosystem. The flagship event, being held under the India-France Year of Innovation, brings together over 120 Indian startups and leading investors, technology leaders, and premier educational institutions from across the globe. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi highlighted India's startup revolution by saying that the country's youth are developing solutions for global challenges in a number of areas.
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: Addressing the gathering, French President Macron praised India's emergence as a global innovation powerhouse and said the question today is no longer whether India is innovating, but who will innovate with India.
3: A country with 1.4 billion inhabitants, a country who pays on know-how and research, knowledge and training as many engineers as Europe and the US combined, more than 1 million per year. So in every respect, a country with research, innovations and frontier models is spearheading global innovation.
1: External Affairs Minister Dr. H. Jaishankar, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, National Security Advisor Ajit Doval, Principal Scientific Advisor Ajay Kumar Sood, Infosys Founder Narayana Murthy, and several prominent business leaders

आकाशवाणी से प्रस्तुत है चहल पहल। आज के इस अंक में जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन संगीत और नृत्य उत्सव। 10 जून बुधवार को नई दिल्ली के हाउस खास स्थित जगन्नाथ मंदिर परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 4,399 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय जनजातीय मामले मंत्री श्री जुएल उरांव ने भगवान जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की।

0: तत्पश्चात संवाददाताओं से बातचीत करते हुए केंद्रीय जनजातीय मामले मंत्री श्री जुएल उरांव ने कहा,
1: मोदी जी का कार्यकाल 4,399 दिन कंप्लीट हुआ, जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के रूप में वो नेहरू जी का कार्यकाल को रिकॉर्ड तोड़ के आज आगे आए। इसलिए भगवान से प्रार्थना करने आया था जगन्नाथ जी से कि उनका दीर्घ जीवन दे, भारत को परम वैभवशाली राष्ट्र बनाने में उनका जो योगदान है वो आगे और बढ़ते रहे, ये प्रार्थना करने के लिए मैंने आया था। और मोदी जी जैसा लीडरशिप का आवश्यक था, 2014 में जब वो दायित्व में आए और दायित्व संभाला तो उसके बाद निरंतर देश का प्रगति में ऊंचाई आ रहा है, आगे बढ़ रहा है, प्रगति हो रहा है और लोग खुश हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि तीन तीन बार चुन के आना, पार्टी को नेतृत्व देके, एनडीए को नेतृत्व देके सरकार में लाना, ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है, बहुत बड़ा बात है। मैं पुनः एक बार जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता हूँ कि उनका लंबी उम्र दे और देश को आगे बढ़ाने में वो सक्षम रहे और देश का नेतृत्व करे।
0: 11 जून और 12 जून को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर सभागार में ग्रीष्मकालीन संगीत एवं नृत्य उत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन के प्रथम दिन आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष डॉक्टर संतोष नाहर ने वॉयलिन वादन प्रस्तुत किया और विदुषी नीला सिन्हा रॉय ने अपनी प्रस्तुति से उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रस्तुत है डॉक्टर संतोष नाहर के वॉयलिन वादन की एक झलक।

0: आकाशवाणी से विशेष साक्षात्कार में डॉक्टर संतोष नाहर ने अपने उद्गार व्यक्त किए।
1: इंडिया इंटरनेशनल सेंटर द्वारा यानी ICC के द्वारा ये समर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है हर साल। इस साल बड़ा संयोग रहा कि मुझे आमंत्रण मिला, मैंने आज यहाँ परफॉर्मेंस दिया, राग किरवानी बजाया, जो मैंने आकाशवाणी में लगभग 35 वर्ष तक अपनी सेवाएं दी विभिन्न पदों पर, एज ए पेक्स, एज ए डीपी, एज ए डिप्टी डायरेक्टर। जो हमने कलाकारों को सुना, इतने जगह हम लोग गए, आकाशवाणी से बड़ा खान हो ही नहीं सकता है। मतलब कि तुलसी के पत्ते की तरह, चाहे पत्ता छोटा हो, मंदिर में चढ़े चाहे बालाजी के चरणों में चढ़े, आकाशवाणी ने ऐसे ऐसे धरोहर दिया है कलाकारों का। इसी से हमारा भारतीय संगीत सुरमई शाम की तरह जगमगाता, दीपावली की तरह, भिन्न भिन्न संगीत के विभिन्न प्रकार।

0: दिए हैं, कर्नाटक हो, हिंदुस्तानी हो, उसी कड़ी में मैं भी वहीं से एक छोटा सा तुलसी का पत्ता हूँ और आज उन्हीं जो कलाकारों को देखा सुना, जो हमने सीखा है, आज यहाँ हमने परफॉर्म किया है। मैं आकाशवाणी दिल्ली को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये 90 वर्ष जो है इसके उपलक्ष्य में आकाशवाणी दिल्ली से ही इनिशिएट किया गया कि जो पूरे भारत में हम 90 वर्ष को मना रहे हैं, इसके लिए अलग से साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी दिल्ली को, उन तमाम पदाधिकारियों को, तमाम अधिकारियों को जो तन मन धन से मिलकर इतनी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं।
1: और अब विदुषी नीला सिन्हा रॉय के गायन की एक झलक।

0: आकाशवाणी से विशेष साक्षात्कार में विदुषी नीला सिन्हा रॉय ने कहा,
1: समर फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक IIC का 2026 का भाग ली हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा मेन जॉनरा है वो ठुमरी है। ठुमरी एक ऐसी गायन शैली है जो आजकल बच्चे को सुनना चाहिए। दीर्घ दिन ख्याल सीखने के बाद ही ठुमरी गाने लायक होते हैं लोग। ये जो श्रृंगार रस प्रधान ये गायन शैली है वो सीखने के लिए बच्चे आगे आए ताकि इस गायन शैली को हम और जनप्रिय कर पाए।
0: इसी के साथ चहल पहल का आज का ये अंक यही संपन्न होता है।
2: आइए अब सुनते हैं संस्कृत में समाचार।
3: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुएल मैक्रोन इत्यनेन सह नीस नगरे प्रतिनिधि मंडलस्तरीयां वार्तां कृतवान्। अस्यां वार्तायां भारत फ्रांसयोः विशेष वैश्विक रणनीतिक सहभागितायाः अधिक सुदृढ़ीकरणे बलं दत्तम्। रक्षा प्रविधि व्यापारादिषु क्षेत्रेषु सहकार्य विस्तारस्य विषये उभाभ्यां नेतृभ्यां विचार विमर्शः कृतः। फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः मैक्रों इत्येषः वैश्विक नवोन्मेष शक्तिरूपेण भारतस्य उदयस्य प्रशंसां कृतवान्। सः अवदत् यत् अद्य प्रश्नः नास्ति यत् भारतं नवोन्मेषं करोति न वा, अपि तु प्रश्नः अयमस्ति यत् भारतेन सह नवोन्मेषकार्ये कः सहभागी अस्तीति। आयुष मन्त्रालयः अद्य यूट्यूब लाइव योग स्ट्रीम इत्यस्मै सर्वाधिक दर्शकाणां कृते नूतनां गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इति विश्व अभिलेखं निर्मितवान्। अपि च ICC महिलानां T20 विश्वकप इति क्रीडायां भारतम् अद्य सायंकाले वर्मिंघम नगरे पाकिस्तानं विरुद्ध्य स्वकीयाभियानम् आरप्स्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः इमैनुएल मैक्रों इत्येषः च अद्य नीस नगरस्य पॉलेस दे एक्सपोजिशंस इत्यत्र भारत इनोवेट्स इति कार्यक्रमस्य संयुक्त रूपेण उद्घाटनम् अकुरुताम्। उभौ नेतारौ प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ताञ्च कृतवन्तौ। भारत फ्रांस नवान्वेषण वर्षान्तर्गतम् आयोजितः अयं प्रमुखः कार्यक्रमः उभयोः देशयोः शीर्ष नवान्वेषण आरम्भान् वेंचर कैपिटल्स निधि इत्येतञ्च समाकलयति। कार्यक्रमेस्मिन् उन्नतगणनं सेमीकंडक्टर्स कृत्रिमबुद्धि

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भाइयों को
1: राम राम, राम।
0: अश्विनी भाई
2: जी, निरंका भाई,
0: भाई आज तो भाइयों की फरमाइश का दिन है और बहुत सारी हमारे पास संदेश और पत्र पहुंचे हैं
2: जी,
0: उन्हें हम शामिल करेंगे। और जो पहली फरमाइश हमारे पास आई है वो सुनना चाहे है योगेश कुमार और उनके साथी को
2: जी।
0: और इसके लिए पत्र हैं चौधरी वास हरियाणा से, मांगे राम सतोड़, रितु सिंह, हिमानी, शुभम, यश कुमार, ये हैं गांव चोहलदा बागपत से, संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, और कलानौर हरियाणा से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, गांव नूरपुर की मंडिया पोस्ट गुलावटी जिला बुलंदशहर से गोपाल शर्मा, टीटू सिंह और डॉक्टर जगदीश, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल, निशा, और ये हैं ऊपरकोट मोहल्ला चौकुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी और उनका परिवार, ये हैं बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा और दिव्यांश वर्मा। अगले जो संदेश हैं वो हमें मिला गांव खोकरा वाली से विनोद वारासा, विशाल वारासा और विकास वारासा, ये हैं गांव डंडी तहसील भद्रवाह जिला डोडा जम्मू कश्मीर से पुरुषोत्तम कुमार, और गांव पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग और तनुजा और इनका परिवार, ये हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और उनका परिवार।
2: और ये वांडीखेड़ा पंजाब से पत्र मिला है, ये है मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली, आरती और उनका पूरा परिवार, और ये है चक्र पाँच MD पता रोड जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से है, मंगल जी, श्रीमती रोशनी, अंकुर और उनका पूरा परिवार, बलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से ये पत्र में मिला है, रोशन लाल देवगन, कौशल्या देवगन, हेमलता देवगन और उनका पूरा परिवार, और ये है वांडीखेड़ा मंडी डवाली से, ये है राजेंद्र नागर, अर्जुन नागर, मोहित तानिया और उनका पूरा परिवार,
0: गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, पुष्पेंद्र डुड्डी और इनका परिवार, ये हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और इनका परिवार, ये हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से, और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा, ऊपरकोट मोहल्ला से मोहम्मद सईद अब्बासी और इनका परिवार, अनारकली बाज़ार जगराऊ पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा और इनका परिवार। तो सुनते हैं इन सब की पसंद पर योगेश कुमार और उनके साथी की आवाज़ में हरीश चंद्र के किस्से की ये रागनी।

0: तो ये बात रोहताश ने कही माली को जब सांप ने डस लिया। ये थी हरिश्चंद्र के किस्से की रागनी। और अब अगली जो रागनी की फरमाइश आई है पप्पू भारती को सुनने के लिए फरमाइश है
1: और ये है ये पत्र हमें मिला है ये दतरंगी
0: दतरंगी से भगवत
1: से।
0: वर्मा, शांति देवी, लीलावती और इनका परिवार, जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, बेहरवाला खुर्द सिरसा से बलवंत जाखड़, ममता जाखड़, प्रिया नैना जाखड़, हिमानी जाखड़ और इनका परिवार, हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह, कृष्ण मुकेश, रामचंद्र, कपिल देव और इनका परिवार, ये हैं खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा और उनका परिवार, ये हैं
1: शिवा शिवाजी कॉलोनी रोहतक
0: शिवाजी
1: से।
0: कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और उनका परिवार, और धनोरी तेलीवाड़ा उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और इनका परिवार, जीटीबी मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना और इनका परिवार, ये हैं पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक और इनका परिवार।
1: और ये है नरविल महाराष्ट्र से पत्र में लिखा है, पी एस नेहवाल, निर्मला नेहवार, विशाल नेहवार। और एक और पत्र मिला है, ये है मलकापुर से है, ये नारायण और सोपेन, आशीष और उनका पूरा परिवार। ये है बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, उनका पूरा परिवार। डमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम आबिदा और उनका पूरा परिवार। यह है सारिमपुर बक्सर से राजेश डी अंसारी, खातून अंसारी और उनका पूरा परिवार। और ये
0: सीतामढ़ी बिहार से मुसरत जहाँ नाज, तलत ना जहानाज, फरत जहानाज और इनका परिवार, और ये है निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौल, सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, बेगम इशरत, वसीम अकरम और इनका परिवार, ये हैं दतरंदी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा, और दादरी गेट भिवानी से पुराने श्रोता हैं कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा और इनका परिवार।
1: और हर गोविंद नगर नेवार पंजाब से है, ये सुरेंद्र सिंह संधू, अनीता संधू, रोहित संधू, रितेश संधू, उनका पूरा परिवार। यहीं पर बिसालपुर हिमाचल प्रदेश से है सुरेश गोवरकर, बेबी गोवरकर। और ये है महेश और उनका पूरा परिवार।
0: और
1: और
0: अश्वनी
1: जी
0: ये भी बता दें, ये जो रागनी है
1: जी
0: ये है साई लकड़हारे के किस्से की रागनी है। जब बीना की शादी साई लकड़हारे से हो जाती है, जब वो घर लेके आते हैं तो क्या कहते हैं बीना को कि भाई राजा की लड़की है पर यहाँ तो लकड़हारे का घर है, तो क्या इस रागनी में कहते हैं, सुनते हैं पप्पू
1: पप्पू भारती
0: भारती
1: की
0: के।
1: आवाज़।

0: और अश्वनी भाई, ये पप्पू भारती को भाई सुन रहे थे अपनी पसंद पर, और अब पसंद किया है शीश राम की आवाज़ में सुनने के लिए। और इसके लिए जो पत्र हमारे पास हैं, गांव सूप जिला बागपत से कृष्ण कुमार, रमेश कुमार, सुरेश कुमार, मदन मोहन, अश्वनी, आशीष, अभिषेक, क्षितिन, लक्ष्य, नेहा, निकिता, श्रेयांश और उनका परिवार। और ये पत्र है गांव बधेव जिला शामली से डॉक्टर सहेंद्र पाल शर्मा, हरेंद्र शर्मा, बबीता शर्मा और आशुतोष शर्मा। ये पत्र है गांव रठोड़ा जिला बागपत से पुष्पेंद्र शर्मा, रीता शर्मा, अनमोल और खुशी शर्मा का।
1: ये जनकपुरी सहारनपुर से हमें लिखा।

0: है जॉन डिकोस्टा, रोजी डिकोस्टा, पारल डिकोस्टा, विलियम डिकोस्टा और उनका पूरा परिवार यहीं पर। एक पद यह है राजपुर मध्य प्रदेश में पत्र मिला है, ये माधुरी सोलानी, भगवान पुष्पा नेहा एकता और इनका पूरा परिवार यहीं। कस्बा ज़िला अम्बाला हरियाणा से पत्र मिला है, रवि कुमार, राहुल और रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, गुरमीत और उनका पूरा परिवार। और एक और ये है साहू नगर यलतमाल से है, राहुल मनवार, सलरा मनवार, विशाल तथा इनका पूरा परिवार।
1: और जटवाड़ा गाजियाबाद से शिषपाल अकेला, और ये है गांव हांडी खेड़ा से राधेश्याम शर्मा और इंदिरा शर्मा, पटेल नगर मलोट कैंप से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू। ये हैं विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश और इनका परिवार गांव कलाना तहसील भद्रा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से। और ये हैं जलालपुरा जिला सहारनपुर यूपी से शरण कुमार प्रजापति, शिवम प्रजापति, आर्यन प्रजापति, लवीश और इनका परिवार। ये हैं महोबा बुंदेलखंड यूपी से नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव सिंह, जाह्नवी राजपूत। और ये हैं चिट्टा मंदिर रोड यमुनानगर से लिखने वाले हैं तेजपाल सिंह प्रजापति, अनुराधा, क्षमा और इनका परिवार। और ये हैं संदीप कुमार गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, किरण ठाकुर, जग्गी दुआ, ये भी फरमाइश भेज रहे हैं मॉडल टाउन करनाल हरियाणा से
0: जी।
1: और ये हैं
0: गांव उगला जिला अम्बाला हरियाणा से है राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और उनका पूरा परिवार।
1: तो सुनते हैं इन सबकी पसंद पर शीश राम

0: निरंका भाई, अभी आप सुन रहे थे शीश राम की आवाज़ में ये रागनी। और अब हम हमारे भाइयों की फरमाइश पे एक और हम लोग
1: नरदेव
0: नुक्कड़
1: बेनीवाल
0: को
1: की
0: सुन
1: फरमाइश
0: माइक पे।
1: आई है भाई,
0: जी
1: और ये हैं रिंगणी छत्तीसगढ़ से, दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और इनका परिवार। और अगला पत्र है हमारे पास गांव कुम्हार हेड़ा से, सैयद मसरूर साइना हसन और इनका परिवार। ये हैं लोहड़ा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनेश देवी और परिवार। उत्तराखंड जसपुर से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी और इनका परिवार। और ये हैं भोला कॉलोनी घरोंडा जिला करनाल से, विजेंद्र कुमार जयजान, कांत रानी, गुंजन साहिल और वाणी जयजान। और ये है आगे हमारे पास रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर और इनका परिवार। करावल नगर दिल्ली से रामनाथ प्रजापति, सुमन देवी। और सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और इनका परिवार। और अश्वनी भाई, कृषि जगत में हम भाइयों के नाम लेंगे
0: जी,
1: क्योंकि समय कम है, तो सुन लेते हैं नरदेव बेनी
0: वाल
1: वाल
0: सही है
1: को।
0: जी।

0: अब कार्यक्रम का समय समाप्त होने को है। सुनने वाले सब बहन भाइयों को
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: ग्राम संसार, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। 7 बजने को है, थोड़ी देर में आप हिंदी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर खासतौर से चर्चा हो रही है, जिसमें रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल है। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव परिवर्तनकारी अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव परिवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत फ्रांस साझेदारी को ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
2: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहलें शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
1: फ्रांस के राष्ट्रपति ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
3: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, विशाल प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
1: इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी का वहां स्लोवाक शैली में पारंपरिक तरीके से

डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्य भर में 25 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट एक का इंजन खराब होने से डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिसमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है। 3 अन्य लोगों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय नौसैनिक पोत शारदा ने श्रीलंका के कोलंबो की यात्रा पूरी कर ली है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग और आपसी संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। यात्रा के दौरान श्रीलंका की नौसेना के साथ कई पेशेवर प्रशिक्षण और खेल संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए गए। अंताल्या में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज और किशोरी कुमकुम मोहन ने स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में रिकर्व मिक्स टीम स्पर्धा में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओ ये जिन और किम जे डेओ को हराया। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में आज बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भाइयों को
1: राम
0: राम राम।
1: राम
0: अश्वनी भाई भाई
1: जी।
0: देखिए, जून का महीना चल रहा है और गर्मी भी बहुत पड़ रही है।
1: जी
0: मौसम में जो हम बदलाव देख रहे हैं, इसके कई बार जैसे कि बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, उसके कई फायदे भी लिए जा सकते हैं। जैसे कि इस समय जुताई करके खेतों में जो हानिकारक कीट हैं, खरपतवार हैं, उनको नष्ट किया जा सकता है। इसके साथ साथ जब खाली खेत होते हैं तो कुछ ऐसी कृषि क्रियाएं हैं जो आपको भविष्य में फसल उत्पादन में मदद करती हैं। जैसे कि ज़मीन का समतलीकरण अगर करना है तो इस समय खेत खाली हैं, या मिट्टी का नमूना आपको लेना है तो खेत खाली हैं। बहुत आसान रहता है मिट्टी का नमूना लेना इस समय, ताकि आप अपने मिट्टी की सेहत की जानकारी ले सकें। इसके साथ साथ आप समतलीकरण का काम हुआ, मिट्टी की जांच का काम हुआ, या इस तरह से जुताई करके धूप में सौरीकरण करने का काम हुआ, इन कामों को इस समय आप कर सकते हैं। और साथ साथ जब हम माइक्रो इरिगेशन की बात करते हैं, सूक्ष्म सिंचाई की पद्धतियाँ, उसमें आप चाहे उसमें स्प्रिंकलर सिस्टम लगाना है आपको, या पक्की नाली बनवानी है, या बूंद बूंद सिंचाई सिस्टम लगाना है, इस समय खाली खेतों में आसानी से वो भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर हम मौसम की बात करें तो जो आगामी हमारी खरीफ की फसलें आएंगी, उनकी तैयारी इस समय आप कर सकते हैं। जैसे ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, उनकी बिजाई की तैयारी इस समय कर सकते हैं। धान की नर्सरी तैयार करने के लिए अभी से तैयारी कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि जब आप इनमें से किसी भी फसल को उगाते हैं तो उसकी प्रमाणिक किस्म आपके पास होनी चाहिए। अच्छी किस्म आप लेंगे तब आपको फ़ायदा होगा। और साथ साथ जब आप बीज की बिजाई करेंगे, उसको उपचारित करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ दलहनी फसलें हैं, उनके लिए बिजाई के लिए खेत की तैयारी आप कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि जो दलहनी फसलें हैं, उनकी जड़ों के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम। अगर आप अलग से भी टीका लगा देते हैं राइजोबियम का, तो और ज़्यादा उसमें गांठें बनेंगी और दलहनी फसलें आपके ज़मीन को अतिरिक्त नाइट्रोजन की मात्रा उपलब्ध कराएंगी, जिससे

0: कि अगली फसल में नाइट्रोजन कम देने की ज़रूरत पड़ेगी, ज़रूरी है। इसके अलावा टमाटर, बैंगन, मिर्च की नर्सरी आप तैयार कर सकते हैं। आम में फल मक्खी जैसे कीटों का नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर उद्यान फसलों की हम बात करें तो अभी समय है आपका खाली खेतों में कि आप गड्ढे तैयार कर सकते हैं ताकि उसमें नए जो फल वृक्ष हैं उनको लगाने के लिए छोटे पौधों का रोपण किया जा सके। इसके साथ साथ जो अगली हमारी आगे की ज़रूरी चीज़ है, बारिश के महीने अगर आ रहे हैं आगे,
1: जी
0: तो बारिश में जल संरक्षण की व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि धान की फसल अगर आप लगा रहे हैं तो उसमें एक तरीका है, उसकी मेड़ों को ऊंची कर देंगे जिससे कि आपके खेत में पानी रुकेगा, और अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो निकासी का प्रबंध भी आपको रखना है। और इसके लिए जिन किसान भाइयों के पास इस तरह की व्यवस्था है कि खेत में कुछ ऐसे स्थान बनाए जा सकते हैं जिसमें कि मछली पालन करने वाले एक बड़ा गड्ढा अगर बना करके ज़्यादा से ज़्यादा पानी को संरक्षित करेंगे तो जो उनका भूमिगत जल का स्तर है उससे ऊंचा हो जाएगा। और साथ साथ जो जल प्रबंधन की हम बात करते हैं, जैसा कि स्प्रिंकलर की हमने बात करी, इसी समय उसे स्थापित कर लेंगे तो खड़ी फसल में जो काम मुश्किल होता है वो इसी समय आप पूरा कर सकते हैं। अब जो हमारे फल वाली जितनी किस्में हैं उनका चुनाव आप अभी से कर लें कि आपको कितने पौधे, जैसे कि आपको अगर आम लगाना है या आपको अमरूद लगाना है या फिर आपको सिट्रस लगाने हैं, अपने एरिया में जो आपके यहाँ अच्छे फल चल सकते हैं उनका चुनाव करके और अच्छी किस्मों का चुनाव करके आपको उनको लगाना है। और तैयारी आपको अभी से करनी है, गड्ढे अभी से तैयार कर लेंगे तो जब बारिश होगी उसमें आपके पौधे अच्छे जल पाएंगे। और पौधों की खास बात ये आपको ध्यान रखना है, खास तौर पर उद्यान की फसलों में, बाकी तो सभी फसलों में आपको पहले से देख लेना चाहिए कि कौन सी किस्म आपको लगाना चाहते हैं और प्रमाणित जगह से उसको लेना है। लेकिन फलों की बात करें तो कई साल के बाद आपको अगर ये पता चलता है, आपने मान लीजिए दशहरी लगाया है और दशहरी नहीं है, तो जब 5-6 साल का आपका पेड़ तैयार हो जाता है तो उस समय उसको दूसरी किस्म को आप लगाना और उसको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब आप कोई भी फसल लगाते हैं, चाहे धान है, ज्वार है, बाजरा है, सभी में आपको ये ध्यान रखना है कि प्रमाणित जगह की हम बार बार बात करते हैं, जैसे कि आपके कृषि विश्वविद्यालय हैं या दिल्ली के आसपास के लोग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा खंड विकास अधिकारी के कार्यालय राज्यों में हैं या कृषि विज्ञान केंद्र है, देश के लगभग हर ज़िले में चल रहे हैं, वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। तो बीज पे खास ध्यान देना है और बीज में भी उनके उपचार में इसके साथ साथ जो जैविक चीज़ें हैं, जैसे कि जैविक टीके लगाने की ज़रूरत जिन फसलों में है, जैविक टीके लगा सकते हैं। और अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ और कहेंगे अश्वनी भाई,
1: जी
0: कि बारिश का मौसम आने वाला है तो बारिश में जो हमारा पशुधन है
1: जी
0: उनमें भी बीमारियां बहुत ज़्यादा आती हैं, इसलिए अभी से भाइयों को ये ध्यान रखना है कि अपने पशुओं का टीकाकरण ज़रूर करा लें ताकि आने वाले मौसम में वो बीमारियों से उनके पशु बचे रह सकेंगे। और इसमें जो आसपास का पशु चिकित्सालय है सरकारी, वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से कर्मचारी आकर आपके घरों में पशु के पास भी खुद आकर के टीके लगा सकते हैं। और अगर कहीं ऐसी सुविधा नहीं है तो आप पास के पशु चिकित्सालय में ले जाकर अपने पशुओं को भी टीकाकरण करा सकते हैं। और टीकाकरण कई जगह तो मुफ्त है और अगर कहीं पर अगर पैसे देकर भी होता है तो उसकी कीमत बहुत कम आपको मिलेगी। सरकार की तरफ से अभियान चलाए जा रहे हैं कि हमारा पशुधन भी स्वस्थ रहे, हम भी स्वस्थ रहें, और पशुओं का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इस मौसम में जब आप काम में लगे होते हैं पशुओं का ध्यान भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी में प्यास उनको भी लगती है। पानी का प्रबंध करें काम में अगर लगे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें, और खान पान का उनका भी ध्यान रखना है। तो ये कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें थी इस समय मौसम में जो ध्यान रखने की थी। और अब अश्वनी भाई कहो तो भाइयों का पहले मनोरंजन करवा देते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, मनोरंजन करने से पहले मैं ये कहूँगा कि जितनी भी जानकारी आपको दी जा रही है, दी जाती है हमारे निरंकार भाई ने, सारे के सारे जो अभी सलाह होनी चाहिए इस आने वाले मौसम में, क्योंकि बारिश की बात भी की उन्होंने, उन्होंने खरपतवार की बात करी, उन्होंने उर्वरकों की बात करी, उन्होंने सब हर एक पहलू की बात करी जो हमारे किसानों के लिए आज और आने वाले कल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी पूंजी बचेगी, आपका वक्त बचेगा, आपकी फसल

0: पहुँचेगी और उत्पादन आपको बहुत अधिक होगा, क्योंकि इन बातों का अगर ध्यान, किसान भाई अगर ध्यान रखते हैं तो इन सभी का सभी को पूरा का पूरा लाभ कहीं ना कहीं हमारे किसान को डायरेक्ट पहुँचता है।
1: तो मैं आपको बता दूं, विनोद कुमार की आवाज़ में उपदेश हम सुनेंगे, लेकिन हमारे श्रोता नाराज ना हो जिनके नाम बच गए थे उनको भी पढ़ देते हैं।
0: जी बिल्कुल, ये पहला पत्र मैं ले लेता हूँ जो बचा हुआ है। ज़िला मुरादाबाद, गांव दूलापुर, उत्तर प्रदेश में मिला। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, सीमा और उनका पूरा परिवार। यहीं पर एक और पत्र शामिल करता हूँ, ये है गाँव थाना पंजाब से है। हरजितेंद्र छिप्पा, जसबीर छिप्पा और उनका पूरा परिवार। और ये पत्र हमें मिला है नरगौड़ा छत्तीसगढ़ से है ये। और ये महाराज पूरी गोविंद सिंह, लक्ष्मी देवी और जोगेश, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी और उनका पूरा परिवार।
1: और ये हैं अभिजीत गवानवर, राही सरिता गवानकर, अर्जुन गवानकर और इनका परिवार। ये है मेरठ कैंट दिग्दर्शन और कविता गोड़। और आगे हैं जालौन ग्राम पंजोनिया यूपी से सत्येंद्र कुमार चंदोलिया, आदर्श सार्थक और इनका परिवार। और ये है आदर्श नगर मलोट कैंप से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और इनका परिवार। और ये हैं ढाणा नरसाना भिवानी से जगदीश चंडालिया, राजवीर चंडालिया, सतीश चंडालिया, ऋतिक चंडालिया और इनका परिवार। ये हैं बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, उत्कर्ष चौहान। और ये हैं अगला सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। और डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, अनिष्का और तन्मय गजभिये। और कुगदा छत्तीसगढ़ से बलराम भया, दामिनी भया और डोमेश भया। ये हैं ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बालकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा और इनका परिवार। और कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता और इनका परिवार। छत्तीसगढ़ हसदा नंबर दो कमलेश साहू, जितेंद्र साहू, पायल साहू।
0: गोविंदगढ़ मांझी जिला कानपुर से राजस्थान से ये पत्र मिला। राजू उर्मिला, जिम्मू, शिव, सेठी और इनका पूरा परिवार। ये चौधरीवास हिसार से पत्र मिला है राजू अग्रवाल और इनका पूरा परिवार। ये पत्र और शामिल कर लेते हैं, ये है
1: गांव शेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से मंटू शर्मा, सुशीला शर्मा, सिलाधर और इनका परिवार। ये हैं
0: पदमपुर जिला श्रीगंगा राजस्थान से है मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और उनका पूरा परिवार।
1: और ये हैं जेल रोड बक्सर से राज एस री अंसारी, फातिमा और इनका परिवार। भोला भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और परिवार। नलोई तहसील शिवानी मंडी जिला हिसार से सज्जन कुमार जांगड़ा, राजबाला और इनका परिवार। ये हैं संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़ और भरत मक्कड़, पिंगावाला चौक गोरिया जालंधर से। और जो अगला मैसेज हमारे पास है, सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके और इनका परिवार। और यह है मुरादगढ़ गांव मुरादगढ़ जिला करनाल हरियाणा से रमेश कुमार काम्बोज, पिंकी वंश और इनका परिवार।
0: जी
1: तो सुनते हैं विनोद कुमार को।
2: रहे मन मूरख तेरी तरह के, कितने आके चले गए।

विष्णु महेश और परे सोतम राम रहे कोन्या गौतम कपिल वशिष्ठ मुनि मा तग के नाम रहे कोन्या सप्तऋषि

0: तो ये भाई सुन रहे थे एक उपदेश, और ये सुन रहे थे विनोद कुमार से, और अब अगला उपदेश भी हम सुन लेते हैं, एक और उपदेश सुनते हैं
1: जी
0: टुकी गिरी की आवाज़ में।
1: जी

0: टुकी गिरी के गाय इस उपदेश के साथ ही हमारा आज का कृषि जगत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सुनने वाले सब बहन भाइयों को राम राम।
1: और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पराशर और संयोजक हैं शिवंदन लाल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, यह आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। आइए अब सुनते हैं गजल और कव्वालियों का ये कार्यक्रम। सबसे पहले सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल।

गुलाम अली की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये गज़ल। यह आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। 7:45 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
4: आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
5: आरबीआई कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। दिल्ली पुलिस शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए सभी थानों में साप्ताहिक जन सुनवाई आयोजित करेगी। यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए आज राजधानी में 28 घाटों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्रा सिंह ने बवाना में लगभग 10 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। आयुष मंत्रालय के वैश्विक ऑनलाइन योग सत्र में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उपलब्धि दर्ज। और फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत संडे ऑन साइकिल का 78वां संस्करण आज मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया गया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली पुलिस ने उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु के निर्देशों के बाद जनता की शिकायतों के त्वरित निपटारे और पुलिस जन संवाद को मजबूत करने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। इस संबंध में पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस पहल के अंतर्गत राजधानी के सभी थानों में प्रत्येक शनिवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक जन सुनवाई आयोजित की जाएगी। इस दौरान लोग अपनी शिकायतें, सुझाव और सुरक्षा संबंधी मुद्दे सीधे पुलिस के समक्ष रख सकेंगे। इन कार्यक्रमों में विशेष पुलिस आयुक्त से लेकर सहायक पुलिस आयुक्त स्तर तक के अधिकारी अनिवार्य रूप से शामिल होंगे। पुलिस आयुक्त हरगोबिंद सिंह धालीवाल ने कहा कि यह निर्णय लोगों के हित में है। उन्होंने कहा कि इससे शिकायतकर्ताओं के लिए हफ्ते में कम से कम एक दिन ऐसा होगा जब वे थाने जाकर अपने जांच अधिकारी या पर्यवेक्षक अधिकारी से मिल सकेंगे।
8: हर शनिवार

0: विदाउट फेल, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो चाहे ना हो, चाहे 15 अगस्त 26 जनवरी के अरेंजमेंट हो, कुछ भी हो, लेकिन हर शनिवार को 10 से 2 बजे पुलिस थाने में एटलीस्ट मिनिमम स्टाफ मिलेगा जो कि जिसकी कंप्लेंट है, जो उस थाने में रहता है या उस थाने में जिसने दी है, अगर वो कंप्लेनेंट जाएगा उसकी सुनवाई होगी।
1: दिल्ली पुलिस की अपराध नियंत्रण शाखा ने ऑपरेशन विश्वास के तहत पिछले 2 महीने में 1000 से अधिक खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को लौटाए हैं। इसके अंतर्गत सभी थाना क्षेत्रों में तकनीकी निगरानी, फील्ड इंटेलिजेंस, दूर संचार सेवा प्रदाताओं और अन्य उपायों की मदद से मोबाइल फोन का पता लगाया गया है। यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए आज राजधानी में 28 घाटों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित राज्य के सभी सांसद, विधायक और हजारों स्वयं सेवकों ने श्रमदान किया। इसमें चिल्ला गांव घाट, निजामुद्दीन घाट, सोनिया विहार, कालिंदी कुंज समेत कई घाट शामिल हैं। सफाई अभियान में जनप्रतिनिधि, अधिकारियों और 500 से अधिक सामाजिक तथा स्वयंसेवी संगठनों, हजारों स्वयंसेवकों और स्थानीय नागरिकों ने हिस्सा लिया। श्रीमती गुप्ता ने गीता कॉलोनी घाट पर श्रमदान करते हुए कहा कि यमुना केवल एक नदी नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और जीवन का आधार है। उन्होंने कहा कि यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाना दिल्ली सरकार तथा समाज दोनों की साझा जिम्मेदारी है।
2: हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी सभी कार्यकर्ताओं ने श्रमदान दिया। लगातार यहाँ यमुना सफाई का काम चल रहा है। मैं ये सोचती हूँ यमुना सफाई जहाँ सरकार का पूर्ण रूप से दायित्व है, वहीं हम नागरिकों को भी इसके प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और यमुना में किसी भी प्रकार का कोई कूड़ा हम लोग ना डालें। हमें मिलकर के काम करना होगा। मैं सभी वॉलेंटियर्स का, सभी संस्थाओं का धन्यवाद देती हूँ कि आपने 22 किलोमीटर लंबी यमुना पर अलग अलग पॉइंट पे श्रमदान दे करके माँ यमुना की आज सेवा की है।
1: मुख्यमंत्री ने बताया कि यमुना पुनर्जीवन के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि अमृत योजना के अंतर्गत नजफगढ़ क्षेत्र में 860 करोड़ रुपए की लागत से 12 नई स्थानीय अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली स्थापित किए जा रहे हैं ताकि अपशिष्ट जल को यमुना में जाने से रोका जा सके। वहीं दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पुराना लोहा पुल स्थित यमुना छठ घाट पर स्वच्छता अभियान का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि केवल धन खर्च करने से नदी का जीर्णोद्धार संभव नहीं है और इसके लिए जन भागीदारी और जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है। श्री गुप्ता ने कहा कि स्वच्छ घाट और निर्मल यमुना दिल्ली की सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक पहचान के लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि यमुना की गरिमा बहाल करने के लिए इसे जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश साहिब सिंह ने भी आज ITO स्थित हाथी घाट पर यमुना स्वच्छता महाअभियान में भाग लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस अभियान में हजारों नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर स्वच्छ, सुंदर और निर्मल यमुना के निर्माण के संकल्प को मजबूत किया है।
3: पूरे दिल्ली की सफाई के साथ साथ जो सबसे बड़ा कमिटमेंट है माँ यमुना को साफ करना, वो हमको करके दिखाना है। माँ यमुना को साफ करना ये हमारी जान है, ये हमारा कर्तव्य है और अगर हम इसको साफ करेंगे तो दिल्ली का पर्यावरण भी ठीक होगा और लोगों को एक अच्छा स्थान मिलेगा। पूरा सौंदर्यीकरण होगा, रिवर फ्रंट बनेगा। केवल एक विभाग नहीं, सब लोग अपनी साझेदारी से काम कर रहे हैं और आपको 3 साल के बाद में यमुना में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्रास सिंह ने आज बवाना स्थित गांव पूट खुर्द में लगभग 10 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि ये परियोजनाएं दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं।
4: इन परियोजनाओं में सड़कों के सुदृढ़ीकरण, सड़कों के पुनर्निर्माण, नालियों के निर्माण और जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के कार्य शामिल हैं। श्री सिंह ने कहा कि इन कार्यों से पूट खुर्द और आसपास के क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा, जल भराव की समस्या कम होगी और लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि इन कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों को आधुनिक आधारभूत सुविधाओं से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। श्री सिंह ने बताया कि एक दिन

0: पहले दीप विहार में लगभग 20 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया था और अब पूट खुर्द में 10 करोड़ रुपए के कार्य शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बवाना विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और आने वाले समय में इन परियोजनाओं का लाभ क्षेत्रवासियों को प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
1: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने राजधानी में आग की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कालकाजी अग्निकांड में दूसरी मंजिल पर फंसी 75 वर्षीय महिला को सुरक्षित बचाने वाले दमकल कर्मियों की सराहना की। उन्होंने दिल्लीवासियों से आग से बचाव के लिए सतर्क रहने, घरों और दुकानों की वायरिंग की जांच कराने तथा एसी और अन्य बिजली उपकरणों की नियमित सर्विस कराने की अपील की। श्री मल्होत्रा ने कहा कि भीषण गर्मी में बिजली उपकरण के बढ़ते इस्तेमाल से आग लगने का खतरा भी बढ़ रहा है, इसलिए सभी को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि अब वृद्धि, नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सार्वजनिक विचार विमर्शों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बढ़ता महत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि को दर्शाता है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने आज ईस्ट किदवई नगर में एक पेड़ माँ के नाम रविवार अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का नेतृत्व किया। श्री चहल ने बताया कि पिछले लगातार 28 रविवार से नगर पालिका परिषद यह अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि जन भागीदारी से ऐसे प्रयास नई दिल्ली को अधिक हरित, स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने में सहायक होंगे। दिल्ली पुलिस ने लूटपाट और धोखाधड़ी मामले में कुख्यात ईरानी गैंग के सरगना नासिर हाफिज खान को उर्फ समीर के गिरोह पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम मकोका के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों में लूट, ठगी और संगठित अपराध की वारदातों में शामिल था। दिल्ली पुलिस के अपराध नियंत्रण शाखा ने ऑनलाइन निवेश के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पीड़ित को अधिक मुनाफे का लालच देकर 18 लाख रुपए से अधिक की राशि का 4 अलग अलग लेन देन से ली थी और आरोपी के पास से 1-2 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। मामले की जाँच जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दक्षिण दिल्ली के तुगलकाबाद क्षेत्र की लाल कुआं कॉलोनी में आज 5 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने सांसद रामवीर सिंह बिदुड़ी के साथ इन कार्यों की शुरुआत की। आयुष मंत्रालय ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पहले आयोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत आज सुबह मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन किया। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि यह उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है।
2: आप सभी ने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हमने हेबिल्ड के साथ में मिलकर हमारा आयुष मंत्रालय राष्ट्रीय योग संस्थान की एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी स्थापित किया है कि जैसे कि आज सवेरे 6 बजे के बाद यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम में सबसे अधिक व्यूअर ने पार्टिसिपेट करके जो पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड था उसे भी काट दिया है। 45 मिनट का ये जो योग प्रोटोकॉल था वो सभी ने एक साथ आकर यहाँ पर किया, इसकी मुझे बहुत खुशी है। मैं जो भी लोगों ने इस पर पार्टिसिपेट किया वो सभी को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
1: फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत संडे ऑन साइकिल का 78वां संस्करण आज मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया गया। देशभर में लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करने के लिए प्रत्येक रविवार को इसका आयोजन किया जाता है। इस इवेंट में आज युवाओं से लेकर बुजुर्ग सभी शामिल हुए। फिट इंडिया के एम्बेसडर जितेंद्र आडवाणी ने इस मुहिम को चलाए जाने के लिए फिट इंडिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया।
3: मैं फिट इंडिया का बहुत आभार प्रकट करता हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी का भी आभार प्रकट करता हूं।

0: क्योंकि उन्होंने ये फिट इंडिया मूवमेंट को इनिशिएट किया है, जिसके माध्यम से इतने लोग जुड़े हैं। ऑलमोस्ट 10 साल से ये इनिशिएटिव चल रहा है और हर आदमी जो है अपने स्वस्थ और वेलनेस के प्रति जागरूक हो गया इस मुहिम के थ्रू। और इस मुहिम को जो है काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हर जगह से, बिकॉज हर कोई जो आजकल अपने लाइफस्टाइल की वजह से जो है फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पा रहा था, इस इनिशिएटिव के माध्यम से जुड़ के अब जागरूक हो गया है और अपने लिए टाइम निकाल रहा है फिटनेस के लिए।
1: दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, दिल्ली पुलिस शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए सभी थानों में साप्ताहिक जनसुनवाई आयोजित करेगी। यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए आज राजधानी में 28 घाटों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने बवाना में लगभग 10 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। आयुष मंत्रालय के वैश्विक ऑनलाइन योग सत्र में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उपलब्धि दर्ज। और फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत संडे ऑन साइकिल का 78वां संस्करण आज मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया गया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, ओ जैसे UPI से।
3: अच्छा।
2: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
3: वो क्या है मम्मी जी?
2: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
3: आम भी ना मम्मी जी।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
6: आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि हैं श्रीमती अभिलाषा विनय, श्री हेमंत जगदीश शर्मा और श्री दिव्य हंस दीपक। गोष्ठी का संचालन कर रहे हैं श्री दिव्य हंस दीपक।
7: नमस्कार मित्रों, जब कवि और कविता की बात चलती है तो आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक कविता को कवियों ने अपने अपने नजरिए से देखा। कवि पंत जी कहा करते थे कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। फिर कविता का यह सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ा। कवि गोपाल दास नीरज जी ने लिखा कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है कवि होना सौभाग्य। फिर धीरे धीरे कविता वर्तमान काल में पहुंची और वर्तमान काल में कवियों ने कविता को किस नजरिए से देखा। बुलंदशहर के डॉक्टर रामपाल शर्मा विश्वास जी लिखते हैं कि अंतरतम के पट खोले तो कविता होती है, घट घट वंशी वट डोले तो कविता होती है, जीवन में नवरस घोले तो कविता होती है, कवि नहीं कविता बोले तो कविता होती है। और कवि से कविता से कोई भी होता भव्य नहीं, कवि की दुनिया से कोई भी दुनिया दिव्य नहीं, और कविता मन का शून्य यह भावों का शून्य नहीं, मात्र भावना भड़काना कवि का कर्तव्य नहीं। फिर कविता ने धीरे धीरे अपना रास्ता तय किया और वर्तमान काल में पहुंची तो कवि डॉक्टर सुनील जोगी जी ने कविता के बारे में लिखा कि वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है, वो कविता थी जिसने गौरी को शब्द बाण से मारा था, वो कविता थी जिसने दिनकर जी के स्वर में हुंकारा था, वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है, वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है, वो वंदे मातरम कविता थी सब गोरे आग बबूले थे, वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे, रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है, माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है, मत पूछो कविता की उड़ान ये स्वाभिमान बन जाती है, वो कविता है जो सवा अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। तो श्रोताओं, मैं आज के इस कार्यक्रम में आहुति देने के लिए सर्वप्रथम जो मेरे साथी हैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं, श्रीमती अभिलाषा विनय जी जो एक पेशे से शिक्षिका हैं। जब इनकी उपस्थिति काव्य क्षेत्र में होती है तो चार पंक्तियों के साथ मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो जिनके घर में हैं बेटी नसीब उन सब के जागे हैं, वो जिनके घर में हैं बेटी नसीब उन सब के जागे हैं, कई धनवान बिन बेटी यहाँ कितने अभागे हैं, और कोई अबला समझकर इनको अब कमजोर ना समझे, कोई अबला समझकर इनको अब कमजोर ना समझे, यकीनन बेटियां इस दौर में बेटों से आगे हैं, यकीनन बेटियां इस दौर में बेटों से आगे हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आमंत्रित करता हूं श्रीमती अभिलाषा विनय जी।
8: बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और आज जो गीत लेकर के मैं आपके सामने आई हूँ उसका शीर्षक है ख्वाब। ख्वाब देखना हम सभी को चाहिए। देखिए मैंने इस गीत में क्या कहने की कोशिश की है। ख्वाब

0: कभी और भूल जाने की आदत जरा डालिए, दिल में जिंदा दिली का शहर पालिए।
1: वाह
0: भूल
1: वाह वाह वाह,
0: जाने की आदत जरा डालिए, दिल में जिंदा दिली का शहर पालिए।
1: वाह
0: चल चले।

0: ने
1: बहुत
0: कभी।
1: शानदार गीत, बहुत शानदार गीत।
0: जी बहुत बहुत आभार है। और एक गीत जो है मौसम के ऊपर लिखा है,
1: स्वागत है।
0: इस गीत का शीर्षक है झुलवा। झुल

0: एक रचना हुई थी जिसका शीर्षक है सूरज लड़कियाँ।
1: स्वागत है आपका।
2: स्वागत है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज लड़कियाँ। एक खुला आसमां सुकून भरी सांस, एक खुला आसमां सुकून भरी सांस, ढूंढती लड़कियाँ रत्ती रत्ती जीती टूटती बिखरती, रत्ती रत्ती जीती टूटती बिखरती, बढ़ती लड़कियाँ
1: आहा,
0: लड़खड़ाती संभलती, हाँ नहीं डरती,
1: क्या बात है।
0: लड़खड़ाती संभलती, हाँ नहीं डरती, निडर लड़कियाँ।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: मुट्ठी भर आसमां, मुट्ठी भर आसमां, हिमालय पढ़ती तूफान लड़कियाँ।
1: वाह,
0: आंचल भरे सपने रंगोली सजाती दीपित लड़कियाँ।
1: वाह,
0: ओस की मुक्ता लड़ी, ओस की मुक्ता लड़ी, घर की चलती घड़ी, ओस
1: वाह,
0: की मुक्ता लड़ी, घर की चलती घड़ी, सूरज लड़कियाँ।
1: आहा,
0: स्वावलंबी विश्वास, स्वावलंबी विश्वास, धूप की सुहास लाठी लड़कियाँ,
1: आहा,
0: लाठी लड़कियाँ। वासंती सुर निखार, वासंती सुर निखार, वीणा की तान जगाती लड़कियाँ।
1: क्या बात है।
0: और अक्षय वट की कोपल, अक्षय वट की कोपल, विहान की चौखट बुलबुल लड़कियाँ।
1: क्या बात है।
0: अक्षय वट की कोपल, विहान
1: आन
0: की
1: की
0: चौखट
1: चौखट।
0: बुलबुल लड़कियाँ। टुकड़ा टुकड़ा जीती, टुकड़ा टुकड़ा जीती, गंगा सी सरसाती, बढ़ती लड़कियाँ,
1: क्या बात है,
0: सूरज लड़कियाँ, सूरज लड़कियाँ।
1: बहुत
0: बहुत बहुत
1: शानदार
0: धन्यवाद।
1: गीत। मुझे कविश्रेष्ठ की पंक्तियां याद आती हैं कि दिल को बहलाने का सामान न समझा जाए, दिल को बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको इतना भी आसान न समझा जाए, मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। और अब तो हो जाते हैं बेटे भी घरों से रुखसत, अब तो हो जाते हैं बेटे भी घरों से रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। बहुत बहुत साधुवाद। चार पंक्तियाँ मुझे अपनी याद आती हैं, मैंने कभी लिखा था कि देखना एक रोज़ हल सब मसले हो जाएंगे, देखना एक रोज़ हल सब मसले हो जाएंगे, मंजिले मकसूद से कम फासले हो जाएंगे, और राह से दुश्वारियाँ सब खुद ब खुद हट जाएंगी, राह से दुश्वारियाँ सब खुद ब खुद हट जाएंगी, जब बड़े उनसे हमारे हौसले हो जाएंगे,
2: वाह
0: वाह वाह,
1: जब
0: क्या
1: बड़े
0: बात।
1: उनसे हमारे हौसले हो जाएंगे। और मैं अगली प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करता हूँ, हमारे बीच हेमंत शर्मा जगदीश जी होते हैं जो कि नोएडा से ही हैं, और मैं चार पंक्तियों के द्वारा उन्हें आमंत्रित करता हूं उनकी काव्य प्रस्तुति के लिए कि घोर तिमिर में उजियारे को दीप जलाना पड़ता है,
0: क्या बात है।
1: घोर तिमिर में उजियारे को दीप जलाना पड़ता है, दागी चेहरों को खुलकर दर्पण दिखलाना पड़ता है, घोर तिमिर में उजियारे को दीप जलाना पड़ता है, दागी चेहरे को खुलकर दर्पण दिखलाना पड़ता है, और लाख लाख जुबां पर सरकारें प्रतिबंध लगाती हैं, लेकिन लाख जुबां पर सरकारें प्रतिबंध लगाती हैं, लेकिन माँ वाणी के बेटों को कवि धर्म निभाना पड़ता है, माँ वाणी के बेटों को कवि धर्म निभाना पड़ता है। तो उसी कवि धर्म को निभाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री हेमंत जगदीश शर्मा जी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
0: स्वागत
1: जी
0: है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मैं सबसे पहले अपने बारे में बताना चाहूंगा कि ना मैं किसी बहर पर लिखता हूँ, ना मैं किसी शहर पर लिखता हूँ, मैं
1: हाँ,
2: तो सीधी और सच्ची बात से मन की लहर पर लिखता हूँ।
1: वाह
2: वाह
1: वाह
2: वाह
1: वाह
2: वाह।
1: वाह, क्या बात
2: जी,
0: है, क्या बात।
2: कि तेरे सिवा मेरे पास मंजर नहीं कोई, तेरे सिवा मेरे पास मंजर नहीं कोई, खेत मेरा मेरे पास बंजर नहीं कोई,
1: वाह,
2: ये लोग मेरे जज्बातों से खेलते रहे, ये लोग मेरे जज्बातों से खेलते रहे, क्योंकि मेरे पास खंजर नहीं कोई।
1: नहीं
2: वाह
1: कोई, वाह
2: वाह।
1: वाह वाह।
2: दूसरा इसमें है कि आज ये मौसम तो बड़ा शायराना है, आज ये मौसम तो बड़ा शायराना है, ऊंचे महलों में उसका आशियाना है, ऊंचे
1: वाह,
2: महलों में उसका आशियाना है, मुझ पर भी कुछ पत्थर उछालो यारो, मुझ पर भी कुछ पत्थर उछालो यारो, मुझे मेरा कच्चा घर पक्का बनाना है,
1: क्या
2: मुझे
1: बात है,
2: मेरा
1: क्या
2: कच्चा
1: बात
2: घर
1: है।
2: पक्का बनाना है, उसको वो मेरे जख्म दिखाई नहीं देते, उसको वो मेरे जख्म दिखाई नहीं देते, शायद उसका वो कोई बड़ा घराना है,
0: क्या बात,
2: शायद
1: वाह वाह
2: उसका वो
1: वाह।
2: कोई बड़ा घराना है। कि तेरी रूह से मेरी रूह का रिश्ता गहरा है, तेरी रूह से मेरी रूह का रिश्ता गहरा है, आज फिर से फिजाओं का रंग सुनहरा है, आज फिर से फिजाओं का रंग सुनहरा है, तू चाहती है कि मैं बांध के आऊं सहरा, तू चाहती है कि मैं बांध के आऊं सहरा, पर तेरे घर पर जमाने का सख्त पहरा है। तेरे घर पर जमाने का सख्त पहरा है। ये बात तेरी कब समझ में आएगी, ये बात तेरी कब समझ में आएगी कि तेरे मेरे बीच बंदिशों का घना कोहरा है।
3: जी,
2: तो अब इसके बाद मैं एक अपनी गजल लेता हूँ, उसका शीर्षक है जिंदगी। ए जिंदगी,
0: स्वागत है।
2: अब हो गई उससे हमारी सीधी यारी है, जिंदगी बता कितनी बची तेरी देनदारी है। जिंदगी बता कितनी बची तेरी देनदारी है। थपेड़े दिए हैं ए जिंदगी तूने बहुत हमको, थपेड़े दिए हैं ए जिंदगी तूने बहुत हमको, पर हमने भी कर ली पूरी तैयारी है। पर हमने भी कर ली पूरी तैयारी है। कुछ फासले तो जरूरी हैं बड़े लोगों से, कुछ फासले तो जरूरी हैं बड़े लोगों से। समुंदर बना देता मीठे दरिया को खारी है।
1: क्या बात,
2: समुंदर बना देता मीठे दरिया को खारी है। जिंदगी बता कितनी बची तेरी देनदारी है। अपनी खुशियों को मांगते तुझसे ताउम्र, अपनी खुशियों को मांगते तुझसे ताउम्र, पर हमारी अपनी भी तो कोई खुददारी है। पर हमारी अपनी भी तो कोई खुददारी है। जिंदगी बता कितनी बची तेरी देनदारी है। ए जिंदगी हमें तो तेरी है जरूरत बहुत, ए जिंदगी हमें तो तेरी है जरूरत बहुत, पर हमें रुलाने की तेरी क्या लाचारी है। पर हमें रुलाने की तेरी क्या लाचारी है। जिंदगी बता कितनी बची तेरी देनदारी है। जीतना है बहुत जरूरी है जिंदगी तुझसे, जीतना है जरूरी है जिंदगी तुझसे। हारने के बाद तो तय मौत की सवारी है, हारने के बाद तो तय मौत की सवारी है।
0: जी,
2: धन्यवाद।
1: जिंदगी के विभिन्न पहलुओं को छूते हुए काव्य प्रस्तुति श्रीमान हेमंत जगदीश शर्मा जी द्वारा दी गई।
2: जी, अब कवि गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने बुलाने जा रहा हूँ श्री दिव्यांश दीपक जी। वो पेशे से एक शिक्षक हैं। दीपक जी,
0: बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जगदीश जी। पहली बार मेरा आकाशवाणी में आगमन हुआ है, यहीं से शुरू करता हूँ कि बनाता हूँ तुम्हारी मैं चलो तस्वीर पानी में। बनाता हूँ तुम्हारी मैं चलो तस्वीर पानी में। तुम्हारे नाम का किस्सा जुड़ा होगा कहानी में। बनाता हूँ तुम्हारी मैं चलो तस्वीर पानी में। तुम्हारे नाम का किस्सा जुड़ा होगा कहानी में। सुनाकर गीत गजलें मैं चला जाऊंगा लेकिन तुम, सुना कर गीत गजलें मैं सजा जाऊंगा लेकिन तुम, मुझे रखना बसा कर अपने दिल की राजधानी में। मुझे रखना बसा कर अपने दिल की राजधानी में। और तमाम श्रोताओं से भी, आकाशवाणी के जितने भी श्रोता हैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि हमारे सभी कवियों को अपने दिल में बसा कर रखिएगा। कि हमें रखना बसा कर अपने दिल की राजधानी में। और इसी क्रम में चार पंक्तियां और निवेदित करता हूँ।
0: जब
1: पूरा विश्व अशांति के दौर से गुजर रहा है तो कहीं ना कहीं ये चार पंक्तियां प्रासंगिक हो उठती हैं। मैं चार पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि अगर मन से हमारे दूर हर छल छंद हो जाए, अगर मन से हमारे दूर हर छल छंद हो जाए, तो मुमकिन ही नहीं है फिर किसी में द्वंद हो जाए। अगर मन से हमारे दूर हर छल छंद हो जाए, तो मुमकिन ही नहीं है फिर किसी में द्वंद हो जाए। उस समूचे विश्व में आनंद ही आनंद हो जाए, समूचे विश्व में आनंद ही आनंद हो जाए। मनुजता यदि विचारों से विवेकानंद हो जाए, मनुजता यदि विचारों से विवेकानंद हो जाए, मनुजता यदि विचारों से विवेकानंद हो जाए। और एक गजल और आपके पेशे नजर,
0: स्वागत है।
1: कि जब से हुई हैं उसकी वफाएं मेरे खिलाफ, जब से हुई हैं उसकी वफाएं मेरे खिलाफ, चलने लगी हैं तब से हवाएं मेरे खिलाफ। जब से हुई हैं उसकी वफाएं मेरे खिलाफ, चलने लगी हैं तब से हवाएं मेरे खिलाफ, चलने लगी हैं तब से हवाएं मेरे खिलाफ। और शेर कुछ यूं हुआ कि चलने लगी हैं तब से हवाएं मेरे खिलाफ, कि मैं उसकी मोहब्बत का तरफदार क्या हुआ, मैं उसकी मोहब्बत का तरफदार क्या हुआ, मैं उसकी मोहब्बत का तरफदार क्या हुआ। उठने लगी हैं सबकी सदाएं मेरे खिलाफ, मैं उसकी मोहब्बत का तरफदार क्या हुआ। उठने लगी हैं सबकी सदाएं मेरे खिलाफ और जो हैं अमन पसंद मेरे साथ में रहें। बतौर खास शेर कि जो हैं अमन पसंद मेरे साथ में रहें, जो हैं अमन पसंद मेरे साथ में रहें, जो हैं अमन पसंद मेरे साथ में रहें, नफरत पसंद शौक से जाएं मेरे खिलाफ, नफरत पसंद शौक से जाएं मेरे खिलाफ, नफरत पसंद शौक से जाएं मेरे खिलाफ। और एक शेर कुछ यूं हुआ कि जिनको मेरे वजूद से नफरत है आजकल, जिनको मेरे वजूद से नफरत है आजकल, जिनको मेरे वजूद से नफरत है आजकल, रोका है किसने शौक से आए मेरे खिलाफ, रोका है किसने, जिनको मेरे वजूद से नफरत है आजकल, रोका है किसने शौक से आए मेरे खिलाफ, चलने लगी हैं तब से हवाएं मेरे खिलाफ। और एक शेर और बतौर खास कि रोका है किसने शौक से आए मेरे खिलाफ कि रब की रजा नहीं है तो होगा ना कुछ मुझे,
0: क्या बात,
1: रब की रजा नहीं है तो होगा ना कुछ मुझे, साजिश कोई भी आप रचाएं मेरे खिलाफ, साजिश कोई भी आप रचाएं मेरे खिलाफ, और इल्जाम बेवफाई मेरे सर पे ना रखें, इल्जाम बेवफाई मेरे सर पे ना रखें, पुख्ता कोई सबूत भी लाएं मेरे खिलाफ, इल्जाम बेवफाई मेरे सर पे ना रखें, पुख्ता कोई सबूत भी लाएं मेरे खिलाफ, जब से हुई हैं उसकी वफाएं मेरे खिलाफ। और एक शेर कुछ यूं हुआ कि जिस दिन से मुझ पे आपकी नजरें करम हुई, जिस दिन से मुझ पे आपकी नजरें करम हुई, गुलशन में बन रही हैं फजाएं मेरे खिलाफ, जिस दिन से मुझ पे आपकी नजरें करम हुई, गुलशन में बन रही हैं फजाएं मेरे खिलाफ। और मक्ता हाजिर करता हूं गजल का, दीपक मुझे

0: बताइए कब तक मैं चुप रहूं। दीपक दीपक मुझे बताइए कब तक मैं चुप रहूं। बढ़ने लगी हैं उनकी जफाएं मेरे खिलाफ, बढ़ने लगी हैं उनकी
1: उनकी
0: जफाएं
1: जफाएं
0: मेरे
1: मेरे
0: खिलाफ,
1: खिलाफ।
0: और जब से हुई हैं उनकी वफाएं मेरे खिलाफ, चलने लगी हैं तब से हवाएं मेरे
1: बहुत
0: खिलाफ।
1: अच्छे,
0: और एक गीत हाजिर करता हूं।
1: स्वागत।
0: अभी अभिलाषा जी ने एक बहुत शानदार गीत से शुरुआत की आज की इस काव्य गोष्ठी की, तो मुझे मेरा पुराना गीत याद आ रहा है, जब हम घोर निराशा के दौर में हो, तो ये गीत उन परिस्थितियों के लिए विशेष हो जाता है। मैं गीत हाजिर करता
1: बहुत
0: हूं
1: बहुत स्वागत है।
0: कि एक प्रण के दिए के सहारे सुनो एक

0: बाधा स्वयं पथ से हट जाएगी। गीत आशा के तुम गुनगुनाते रहो, रात कितनी भी लंबी हो कट जाएगी। एक प्रण के दिए के सहारे सुनो। अगला बंद देखें,
1: स्वागत है।
0: कि फूल उपवन में फिर से खिलेंगे नए। एक बड़ा निराशावादी दौर आया जब कोरोना पीरियड था, कि फूल उपवन में फिर से खिलेंगे नए। आज पौधों पे पतझर हुआ।

0: की खेत कुछ दिन को बंजर हुआ है तो क्या, डोर उम्मीद की छोड़ना मत कभी,
1: वाह
0: डोर उम्मीद की छोड़ना।

0: के तुम गीत का अंतिम बंद रखता हूं, मेरा प्रिय बंद है, शायद आप तमाम श्रोताओं को पसंद आया, अंतिम बंद रखता हूं
1: स्वागत
0: और आपसे
1: स्वागत
0: विदा लेता हूं कि एक प्रण के दिए के सहारे सुनो।

0: बहुत अच्छा,
1: हो।
0: वाह,
1: बहुत बहुत
0: बहुत सुंदर।
1: धन्यवाद आप तमाम श्रोताओं का।
2: अभी आप कवि गोष्ठी सुन रहे थे। प्रतिभागी कवि थे श्रीमती अभिलाषा विनय, श्री हेमंत जगदीश शर्मा और श्री दिव्य हंस दीपक। गोष्ठी का संचालन कर रहे थे श्री दिव्य हंस दीपक। इसी के साथ कवि गोष्ठी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्रवण मीणा।
3: यह आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। लीजिए सबसे पहले सुनिए कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर सिंह की आवाजों में फिल्म ताल का ये गीत।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। 8:45 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलॉस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्या

0: समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
0: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहलें शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
1: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
1: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
3: The world seeks trusted and reliable partners.
4: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
3: And a scale that few can match.
1: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
5: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाते हुए, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए, हम को डेवलपमेंट, को डिज़ाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं। और इसके चलते जितना ज़्यादा प्रोडक्शन, जितना ज़्यादा डिज़ाइन, जितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूँगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर

0: जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
3: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
2: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
4: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
5: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
2: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड़ पंढरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे। इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron hold delegation-level talks at historic Villa Carolos at Nice, focus on expanding special global strategic partnership between two countries across key sectors. Both leaders jointly inaugurate Bharat Innovates event at Palada Expositions. India's space economy poised to grow from $9 billion to $45 billion in the next decade. In Maharashtra, 8 pilgrims die as vehicle falls in well in Solapur. All 14 Indian crew members rescued from a vessel off Oman coast after engine failure. And in cricket, India set a target of 171 runs for Pakistan in the group stage match of ICC Women's T20 World Cup in Birmingham. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron held delegation-level talks at historic Villa Carolos at Nice in France. The discussions between two sides focused on expanding the special global strategic partnership between two countries across key sectors including defence, technology and trade. Prime Minister Modi was accompanied by the National Security Advisor Ajit Doval, External Affairs Minister S. Jaishankar, Foreign Secretary Vikram Misri and senior officials. President Macron was accompanied by French Minister for Europe and Foreign Affairs, Jean-Noël Barrot, and other senior officials. The two leaders also interacted during a walk-and-talk session at Villa Carolos. Earlier, Prime Minister Modi and French President Macron jointly inaugurated Bharat Innovates event at Palada Expositions at Nice in France today. The landmark initiative showcases India's rapidly expanding innovation and startup ecosystem. The flagship event being held under the India France Year of Innovation brings together over 120 Indian startups and leading investors, technology leaders, and premier educational institutions from across the globe. It features innovations across 13 key sectors, including advanced computing, semiconductors, artificial intelligence, clean energy, and others. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi highlighted India's startup revolution by saying that the country's youth are developing solutions for global challenges in a number of areas.
7: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
6: Highlighting the strength of India-France ties, Mr. Modi said, while many nations engage in trade and strategic cooperation, only a few relationships are guided by a shared vision as well as common interests.
7: दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में तारीखी विला केरलोस में वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने मुख्तलिफ कलीदी शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान खसूसी आलमी जामे शराकत दारी को तोसी देने पर तवज्जो मरकूज

0: मौजूदा 9 अरब डॉलर से बढ़कर तकरीबन 45 अरब डॉलर मालियत की हो जाएगी। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक खाई में एक गाड़ी के गिरने से 8 यात्री हलाक हो गए। ओमान साहिल के करीब एक जहाज से इंजन खराब होने के बाद अमले के तमाम 14 भारतीय अफराद को बचा लिया गया है। और क्रिकेट में बर्मिंघम में आईसीसी खवातीन के T20 आलमी कप के ग्रुप मरहले के मैच में भारत ने पाकिस्तान के लिए 171 रन का जीत का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर एमैनुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में तारीखी विला केरलोस में वफ्द की सतह की बातचीत की। फरीकैन के दरमियान तबादले ख्याल में दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा, टेक्नोलॉजी और तिजारत समेत कलीदी शोबों में खसूसी आलमी जाम शराकत दारी को तोसी देने पर तवज्जो मरकूज की गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिसरी और सीनियर हुक्काम मौजूद थे। सदर मैखों के साथ फ्रांस के यूरोप और खारिजी उमूर के वजीर जीन नोएल बेरोट और दिगर सीनियर हुक्काम थे। दोनों लीडरों ने विला केरलोस में वॉक एंड टॉक इजलास के दौरान भी बातचीत की। इससे कबल दिन में वज़ीर आज़म मोदी और फ्रांस के सदर मैखों ने नीस में पहले देश एक्सप्रेसियों में भारत इन्वेस्ट्स तकरीब का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। 3 रोज़ा ये अहम तरीन तकरीब भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स, इख्तराकार, मुहक्किकीन और सरमायाकारों को आलमी इख्तराई फंड्स और फुटप्रिंट के साथ यकजा करेगी। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि भारत इन्वेस्ट्स भारत के टैलेंट और यूरोपीय कैपिटल के दरमियान एक पुल के तौर पर उभर रही है, जो नौजवान इख्तराकारों को आलमी महारत के साथ मुंसलिक होने के नए मौके वज़ा कर रही है। भारत के स्टार्टअप इनकलाब को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क के नौजवान आलमी चैलेंजों के लिए उन शोबों में हल तैयार कर रहे हैं जो मसनूई जहानत और खलाई टेक्नोलॉजी से लेकर माहौल साजगार तवानाई, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और दिफाई अख्तरा तक का अहाता करते हैं। उन्होंने वाजे किया कि आज भारत में 2 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप हैं और ये इंसानियत के लिए टेक्नोलॉजी के उसूल के ज़रिए इंसान मरकूज जिद्दतकारी की क़्यादत के मॉडल को फ़रोग दे रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत फ्रांस ताल्लुकात की तकवीयत को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि जब बहुत से मुल्क तिजारत और जाम तआवुन में मसरूफ हैं, ऐसे में चंद मुल्कों के ताल्लुकात को ही मुश्तरका विज़न के साथ साथ एक जैसे मफादात की रहनुमाई हासिल है। उन्होंने भारत फ्रांस शराकत दारी को एक ऐसी फ़रोग पाती हुई शराकत दारी करार दिया जिसकी जड़ें बाहमी एतमाद, मुश्तरका अकदार और मुस्तकबिल के लिए एक जैसे नज़रिए तक फैली हुई हैं।
1: दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है।
0: इज्तिमा से खिताब करते हुए फ्रांस के सदर मैक्रों ने एक आलमी इख्तराई पावर हाउस के तौर पर भारत के उभरने की सताइश की और कहा कि आज सवाल ये नहीं है कि भारत इख्तरा कर रहा है, बल्कि सवाल ये है कि भारत के साथ कौन इख्तरा कर रहा है। उन्होंने इंजीनियरिंग के टैलेंट के भारत के वसी ज़खीरे को उजागर किया और भारत की तकनीकी महारत के तौर पर चंद्रयान मिशन जैसी हासिल करदा मुल्क की कामयाबियों की सताइश की। सदर मैक्रों ने कहा कि भारत इन्वेस्ट्स भारत के इख्तराई को निज़ाम और फ्रांस के वसी तकनीकी मंजरनामे के दरमियान एक मजबूत पुल वजा करता है। उन्होंने इस पहल के पहले एडिशन की भारत से बाहर मेज़बानी को फ्रांस के लिए एक एज़ाज़ करार दिया। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी को आज़ादी के बाद से भारत के सबसे तवील मुद्दत तक मुंतखब वज़ीर आज़म बनने पर भी मुबारकबाद दी।
2: The world seeks trusted and reliable partners.
3: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और

0: वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
1: वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर, सनत और कॉमर्स के वज़ीर पीयूष गोयल, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, प्रिंसिपल साइंस के मुशीर अजय कुमार सूद, इन्फोसिस के बानी नारायण मूर्ति और बहुत से सरकर्दा कारोबारी लीडर

0: भी इस मौके पर मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत आलमी जोग्राफियाई सियासी और तकनीकी तब्दीली के दौर में एक भरोसेमंद और काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर उभर रहा है। जनाब गोयल ने कहा कि इस तकरीब में शिरकत करने वाले 120 इख्तराकार भारत की सलाहियतों के सिर्फ एक हिस्से की नुमाइंदगी करते हैं। उन्होंने फ्रांस के कारोबारियों को दावत दी कि वो भारत में सरमायाकारी, डिजाइनिंग, जिद्दतकारी और मैन्युफैक्चरिंग के जरिए मकामी और आलमी मंडियों दोनों के लिए शराकतदारी को मुस्तहकम करें। वज़ीर-ए-आज़म मोदी गुज़श्ता रात फ्रांस के शहर नीस पहुंचे थे, जो फ्रांस और स्लोवाकिया के उनके 6 रोज़ा दौरे की शुरुआत है। अपने दौरे के दूसरे मरहले में जनाब मोदी आज रात स्लोवाकिया जाएंगे। भारत में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की काबिले बसीरत 12 साला दौरे हुकूमत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर ज़बरदस्त तब्दीली रोनुमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी की खबरों का शोभा एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम मुल्क के शहरियों की जिंदगियों में आसानी पैदा करने के लिए हुकूमत के जरिए किए जाने वाले इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस्लाहात के 12 साल एतमाद के 12 साल रहे हैं, ख्वाह वो GST हो, फेसलेस टैक्स हो या फिर डिजिटल इंडिया। हर पहल ने शहरियों को यह एहसास दिलाया है कि ये भी मुल्क के मेमार रहे हैं। मरकजी बजट 2026 में आमदनी टैक्स स्लैब और शरह में जामे नजरसानी को इस तरह तैयार किया गया है कि तमाम टैक्स अदा करने वालों को फायदा पहुंचे। अगले सिलसिले की GST इस्लाहात ने टैक्स के अमल को सहल बनाया है और शहरियों की जिंदगी में आसानी पैदा की है। आकाशवाणी न्यूज के साथ बातचीत में फिल्म प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर समीर दीक्षित ने कहा कि GST इस्लाहात इस हुकूमत के सबसे बड़े पॉलिसी साज फैसलों में से एक है।
2: GST को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
1: नरेंद्र मोदी हुकूमत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाया है और इसको सियासत और पॉलिसी साजी के मामलों में शामिल किया है। भारत 6G टेक्नोलॉजी में आलमी लीडर बनने की राह पर गामजन है। 6G से मुतालिक आलमी पैटर्न में तकरीबन 10% शराकतदारी का हदफ मुकर्रर किया गया है। आकाशवाणी न्यूज से बातचीत करते हुए इथरनेट एक्सप्रेस के CEO महेंद्र तिवारी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के इलाकों और हाशिया पर रह रहे लोगों की जिंदगियों में माविन साबित हो रहा है। गुज़श्ता 12 वर्षों में NDA हुकूमत ने शहरियों के मेयारे जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इकदाम किए हैं, जिसमें अवामी सहूलियात और आसान तर्ज जिंदगी सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि हकीकत की शक्ल अख्तियार कर चुका है। यह हुकूमत के रहनुमा उसूलों पर कारबंद रहने के अज्म की अक्कासी करता है। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज बताया कि भारत की खलाई मईशत अगली दहाई में मौजूदा 8 से 9 अरब डॉलर से बढ़कर तकरीबन 40 से 45 अरब डॉलर मालियत की हो जाएगी। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि ये पेशरफ्त, पॉलिसी असलाहत, बढ़ती हुई निजी शराकतदारी और तेजी के साथ तोसी पाते हुए अख्तराई इको निज़ाम के बायस है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत के खलाई शोबे की कायापलट तब्दीली मुल्क भर में होने वाली वसी तर तब्दीली की अक्कासी करती है, जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी लेबोरेटरीज से बाहर निकलकर

0: ऐसे प्रोग्रामों ने साइंस और इख्तरा को भारत की तरक्की के सफर के मरकज में लाने में अहम रोल अदा किया है। चंद्रयान 3 जैसे मिशन ने खलाई साइंस को वसीतर अवामी दिलचस्पी का मौजू बना दिया है, जिसके नतीजे में मुल्क भर के शहरियों में गैर मामूली बेदारी और दिलचस्पी पैदा हुई है। खला, जौहरी तवानाई और जदीद टेक्नोलॉजी जैसे अहम शोबों में भारत की बढ़ती हुई सलाहियतों ने आलमी सतह पर मुल्क की पोजीशन को मजबूत किया है। इन हुसूलियाबियों से पैदा होने वाले एतमाद ने मकामी टेक्नोलॉजी की साख्त में इजाफा किया है और भारत को एक काबिल एतमाद टेक्नोलॉजी के शराकतदार के तौर पर मुस्तहकम किया है। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
1: महाराष्ट्र के सोलापुर ज़िले में आज दोपहर पेश आए एक हादसे में बच्चों समेत 8 अकीदतमंदों की उस वक्त मौत हो गई जब उन्हें ले जाने वाली एक पिकअप गाड़ी सड़क के किनारे खाई में गिर गई। ये हादसा मलाशिरस तालुका में महासवंड पंढरपुर पर वाक़े तुंदलवाड़ी के करीब पेश आया। अकीदतमंदों का ताल्लुक पंढरपुर तालुका के रजनी गांव से है और ये सब सिद्धनाथ मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद वापस आ रहे थे। जख्मियों को इलाज के लिए पंढरपुर मुंतकिल किया गया है। इस दौरान महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इस अलमनाक हादसे पर दुख का इजहार किया है। इसके साथ उन्होंने महलूकीन के लवाहकीन के लिए 5-5 लाख रुपये माली मदद का ऐलान किया है। ओमान में भारतीय सिफारतखाने ने कहा है कि भारतीय परचम परदार तिजारती जहाज विराट 1 के तमाम 14 भारतीय अमले के अफराद को बचा लिया गया है। इस जहाज के इंजन में ओमान के साहिल के करीब खराबी हो गई। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में सिफारतखाने ने कहा कि अमले के अफराद महफूज हैं और सेहतमंद हैं। उन्हें दूसरे जहाज MV जबले अली 9 पर पहुंचा दिया गया है। सिफारतखाने ने मजीद कहा कि अमले के अफराद मुंबई के लिए रवाना किए जा रहे हैं। ओमान के शहर मस्कत में भारतीय सफारतखाने ने आज कहा कि भारतीय बाशिंदे निशांत उथनम के से मुतल्लिक ओमान के मकामी हुक्काम, बंदरगाह के हुक्काम और जहाजरानी कंपनियों के साथ फाल तौर पर ताउन कर रहा है। क्रिकेट में खवातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप ए के इफ्तिताही मैच में बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारत ने पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 171 रन का निशाना रखा है। अब से कुछ देर पहले तक पाकिस्तान ने 5 ओवर्स में एक गेंद में एक विकेट पर 40 रन बना लिए थे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अमेरिका के ह्यूस्टन में ग्रुप ई के मैच में जर्मनी का मुकाबला कुरासाओ से होगा। भारतीय वक्त के मुताबिक ये मैच आज रात 10:30 बजे खेला जाएगा। डलास में ग्रुप एफ एक के मैच में दूसरा मुकाबला नीदरलैंड्स और जापान के दरमियान होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक देर रात 1:30 पर खेला जाएगा। ईरान ने कहा है कि उसने मुजवजा मुफाहमत नामे से मुतल्लिक अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया है, जिसका मकसद अमरीका और इसराइल के दरमियान कशीदगी को खत्म करना है। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर एमानुअल मैखों ने फ्रांस के नीस में तारीखी विला केरलोस में वफ्त की सतह की बातचीत की। उन्होंने मुख्तलिफ कलीदी शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान खसूसी आलमी जाम शराकतदारी को तोसी देने पर तवज्जो मरकूज की। दोनों लीडरों ने पैलिस डेस एक्सपोजिशन में इनोवेट्स का मुश्तरक तौर पर इफ्तिताह किया। भारत की खलाई मईशत अगली दहाई में मौजूदा 9 अरब डॉलर से बढ़कर तकरीबन 45 अरब डॉलर मालियत की हो जाएगी। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक खाई में एक गाड़ी के गिरने से 8 यात्री हलाक हो गए। ओमान साहिल के करीब एक जहाज से इंजन खराब होने के बाद अमले के तमाम 14 भारतीय अफराद को बचा लिया गया है। और क्रिकेट में बर्मिंघम में ICC खवातीन के T20 आलमी कप के ग्रुप मरहले के मैच में भारत ने पाकिस्तान के लिए 171 रन का जीत का निशाना रखा है। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
2: This is Daily. Please stand by for the next broadcast. This is Akashvani. Time for National Program of Features. Today is World Blood Donor Day. It is celebrated globally on June the 14th every year and is one of the 11 official global public health campaigns recognized by the World Health Organization to raise awareness about the constant need for safe blood and to thank voluntary unpaid blood donors. It is in this backdrop that we now bring you a feature titled The Thread Between Us.

0: प्रतिभाशाली कर्नाटक शास्त्रीय गायक हैं और आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं। वे अपने आकर्षक और अभिव्यंजक शैली के लिए सुप्रसिद्ध हैं। ये प्रख्यात संगीतज्ञों के परिवार में पैदा हुए हैं। इन्होंने अपनी माँ श्रीमती जे चिद्रूपा लक्ष्मी जी की प्रेरणा से संगीत का अभ्यास प्रारंभ किया और बाद में विद्वान द्वारम सत्यनारायण राव और विद्वान आखेला मल्लिकार्जुन शर्मा जी के मार्गदर्शन में गायन में आगे बढ़े। श्री सूर्वारम प्रताप रेड्डी तेलुगु विश्वविद्यालय में एमए संगीत में स्वर्ण पदक हासिल करके अब ये वहीं संगीत में शोध कार्य कर रहे हैं। ये कर्नाटक संगीत के साथ साथ नामसन कीर्तन में भी माहिर हैं और देश विदेश में मुख्य त्योहारों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक समर्पित अध्यापक बनकर उन्होंने कई विद्यार्थियों को संगीत प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षित किया है और आप ललित कलाओं को बढ़ावा देने वाली संप्रदाय जैसी लाभ निरपेक्ष संस्था में भी स्वच्छंद सेवारत हैं।
1: श्री जे एस श्रीराम इज अ वर्सटाइल कर्नाटिक वोकलिस्ट एंड एन ए ग्रेड आर्टिस्ट विद ऑल इंडिया रेडियो। He is known for his expressive and dynamic style of singing. He hails from a distinguished musical family. Sriram was initiated into music by his mother, Srimati J. Chidrupa Lakshmi. Later, trained under Vidwan Dwaram Satyanarayan Rao and Laya exponent Vidwan Akella Mallikarjuna Sharma. He is a MA Music Gold Medalist from Sri Suravaram Prataparedi Telugu University, Hyderabad, where he is currently pursuing his PhD in music. Equally adept at Carnatic vocal concerts and Nama Sankirtanas, he performs at major festivals in India and abroad. As a dedicated teacher, he has trained many students to concert level. He also volunteers with Sampradaya, a non-profit organization promoting fine arts.
0: श्री जे श्रीराम अपने गायन का आरंभ वालाजी पेटा वेंकटरमना भागवतर की एक कृति से कर रहे हैं जो राग ललिता तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री जे श्रीराम बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विद अ कॉम्पोजिशन ऑफ वालाजी पेटा वेंकटरमना भागवतर इन द राग ललिता सेट टू आदिताल।

0: अब आप सुनेंगे श्याम शास्त्री की एक कृति जो राग पूर्वी कल्याणी तथा विलोम चापू ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू अ कॉम्पोजिशन ऑफ श्याम शास्त्री इन द राग पूर्वी कल्याणी सेट टू विलोम चापू ताल।

0: श्री जय श्री राम अपने गायन का समापन त्यागराज की एक कृति से कर रहे हैं जो राग शंकरावर्णम तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री जय श्री राम कंक्लूड्स हिज वोकल रिसाइटल विद अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग शंकराभरणम सेट टू आदिताल।

0: ये था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर विद्वान पेरवली जयभास्कर और घटम पर श्री यम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: That was तन्यावर्तनम played on मृदंगम by विद्वान पेरवली जयभास्कर and on घटम by श्री यम चंद्रकांत।
0: इसी के साथ आज की अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में श्री जे एस श्री राम का गायन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत करने वाले कलाकार थे वायलिन पर वीएसवी गायत्री शिवानी, मृदंगम पर विद्वान पेरवली जयभास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: विद दैट वी कंक्लूड द वोकल रिसाइटल बाय श्री जे श्रीराम इन द ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ही वॉज अकंपनीड ऑन वायलिन बाय वीएसपी गायत्री शिवानी, ऑन मृदंगम बाय विद्वान पेरवली जयभास्कर एंड ऑन घटम बाय श्री एम चंद्रकांत। दिस कॉन्सर्ट was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। तीन दिन तक के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि ये वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ऑपरेशन ओशन मिशन और गगनयान जैसे कार्यक्रमों ने विज्ञान और नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में स्थापित करने में मदद की है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये हादसा मालचिरस तालुका में महसवाड पंडरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। इसराइल ने लेबनान की राजधानी पर ईरान समर्थित समूह हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमला किया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि ये हमले उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में किए गए थे। बीते दिनों इसराइल ने बेरूत के इलाकों पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने भी इसराइल पर हमले किए। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में आज बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

फिलहाल सबसे पहले नाम हम लेते हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप सिंह। इन्होंने हमें कालका से भी हमें मैसेज आया है, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, साथ ही ये सारे मैसेज हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम में आपने अपने मैसेज हम तक तो पहुँचा दिए। फिलहाल अगला मैसेज लेंगे। हमारे श्रोता हैं गगनदीप थांडी, तृप्ता थांडी, डॉक्टर प्रियंका थांडी, डॉक्टर प्रियम थांडी, बेबी वामिका और वाणी थांडी। इन्होंने टोरोवाल नवाशहर पंजाब से मैसेज हम तक तो पहुँचा है और फिल्म संगीत की फरमाइश भी हम तक तो पहुँचा दी है। सबसे पहले चूँकि ये प्रोग्राम फिल्म संगीत का है, आइए सुनते हैं आप लोगों के ही पसंद से ये गीत।

और फिर आगे चलते हैं और आपके मैसेज को लेते हैं। आपका मैसेज मेरठ से हमारे पास आया है, दिग्दर्शन कविता, कर्ण शक्ति, रिया जया और दर्शन भाई, और साथ ही साथ लिख रहे हैं प्लेलिस्ट, लंबी कतार भेजा है। हम उसमें से एक गीत हमने चुनकर निकाल लिया है और ज़रूर प्ले करेंगे। आप उसका ध्यान ज़रूर रखिएगा और सुनिएगा ज़रूर। अगला मैसेज हमारे पास आया है मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, अभिजीत गुहांकर राही, श्रीमती सरिता गुहांकर, प्रिंस एकांश गुहांकर, बदलापुर मुंबई से प्रणीता गुहांकर, सिद्धांत गुहांकर, अर्जुन गुहांकर और टुक टुक, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से, वैशाली शैलेश गुहांकर, एकांश सुमित गुहांकर और कुमारी ध्वनि गुहांकर परी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके फरमाइश को भी हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगला मैसेज हमारे पास आया है लिखकर हमारे श्रोता, फिल्म संगीत की फरमाइश, मजनू का टिला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालू

और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक लिखकर भेजे हैं, शुक्रिया आपका। साथ ही साथ हमारे पास अगला मैसेज आया है कैथल हरियाणा से, जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा, और बहुत सारी बातें आपने लिख के भेजी है, मैंने उसे पढ़ा भी है और वाकई में आप सही कह रहे हैं, अगर ऐसा कुछ है कोशिश करेंगे उस मेल को हम शामिल ना करें। इनके साथ इन्होंने आपने जिनका जिनका नाम लिखा है ये मैं समझ सकती हूँ, लेकिन एक कोशिश रहेगी, लेकिन सामने जो आता है उसे फिर पढ़ना और उसे मिस करना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन एक कोशिश रहेगी कि हम आपके बात का गौर करें। अगला मैसेज हम लेना चाहेंगे हमारे श्रोता का, जिनका नाम हमने सबसे पहले लिया था, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप सिंह, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज लिखकर भेज रहे हैं, शुक्रिया आपका। अपने पसंद का कोई भी गीत सुना दे, गोल्डन रेडियो श्रोता संघ, राज पैलेस, मऊनाथ, भंजन, उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही साथ अगला मैसेज हमारे पास आया है पटेल नगर मलौद से, डॉक्टर रमेश कुमार जजौरिया, गीता रानी जजौरिया, गगनदीप जजौरिया, आरजू जजौरिया और गुड्डू लिखकर भेज रहे हैं, धन्यवाद। साथ ही साथ हम अगला मैसेज लेना चाहेंगे हमारे श्रोता का, लिख रहे हैं आदरणीय किसी भी गीत में शामिल करें, शुक्रिया। मजनू कटिला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। आप नाम बदल के आप जब ये मैसेज हम तक तो पहुँचाए तो हम समझ तो गए थे, लेकिन हमने आपका नाम लिया है, आपने बड़े शौक से हम तक अपनी बात पहुँचाई है, लेकिन एक कोशिश रहती है कि हर एक व्यक्ति के मेल को हम शामिल करें, इसलिए अपना नाम और सही जगह का लिख कर भेजें, जिससे कि हम आपका नाम बहुत अच्छे से ले पाए और दूसरों का भी शामिल कर सके। नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसूस सीतामढ़ी से लिख रहे हैं अक्रम हुसैन, प्रिंस डाक बाबू, बेगम इशरत अक्रम, वसीम अक्रम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अक्रम, शमीम अक्रम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान और निखत परवीन लिख कर भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक मैसेज पहुंचाने के लिए। साथ ही साथ हमारे पास आया है फिल्म संगीत की फरमाइश के साथ पद्मा टॉकीज नेपाल नगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, प्रीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह, आपने हम तक मेल पहुँचाई, आपका धन्यवाद। चलते हैं आप लोगों की पसंद से सुनते हैं अगला गीत।

अगला मैसेज हमारे पास आया है नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से। अब्दुल गफार डाबर खुश नसीब, अब्दुल हक डाबर, जियाउल हक डाबर, मोहम्मद उमर डाबर और राजेंद्र कटारे जी लिख रहे हैं। किसी भी गीत में शामिल करने को कह रहे हैं, ज़रूर करेंगे। अगला मैसेज हमारे पास आया है सतीश अनिजा जी का, और नमस्कार आपको भी अनिजा जी। चंडीगढ़ सिटी से इन्होंने सतीश अनिजा, बिमला अनिजा जी ने लिखा है, और फिल्म संगीत की फरमाइश भी अपने हम तक तो पहुँचाई है, ज़रूर पूरा करेंगे सतीश जी। अगला मैसेज हम लेना चाहेंगे हमारे श्रोता का, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। साथ ही साथ हमारे पास अगला मैसेज आया है, अगला मैसेज जो हम लेना चाह रहे हैं, फिल्म संगीत की फरमाइश के साथ, श्री रामपुर भोकर महाराष्ट्र से पत्रकार हरिभाव बड़वे और चिरंजीवी अनिकेत सोनवणे, शुभांगी श्रवण और अनीता बड़वे जी लिख रहे हैं। धन्यवाद आपका। और अगला मैसेज हम लेना चाहेंगे, हमारे पास मैसेज आया है फिल्म संगीत की फरमाइश के साथ, शास्त्री नगर बीच शहर से, किशन सबकाल, आशा सबकाल, सोनिया सबकाल, सहरा सबकाल और विशाल सबकाल। मैसेज की तादाद बहुत लंबी है, लेकिन गीत भी बहुत सारी लिस्ट में आ चुके हैं, तो चलिए आप लोगों की ही पसंद से सुनते हैं ये गीत।

फिल्म संगीत आपकी फरमाइश सुन रहे हैं आप मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ, और आपकी फरमाइश के गाने बहुत ही खूबसूरत हैं। फिलहाल आपका नाम लेना चाहेंगे नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, पीएस नोहांकर, निर्मलता नोहांकर, निर्मला नोहांकर, विशाल नोहांकर, सोपान टाइडे और नारायण इंगले जी लिख रहे हैं। धन्यवाद आपका, फिल्म संगीत की फरमाइश भी आपने हम तक पहुँचाई है, शुक्रिया। साथ ही साथ गुरमीत सिंह जी लिख रहे हैं, गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन, सुहाने गीत लिखकर भेज रहे हैं, शुक्रिया, आपके पसंद के होते हैं। अगला मैसेज हमारे पास आया है अनिल मोहन जी का, फिल्म संगीत की फरमाइश के साथ, पहाड़गंज मुल्तानी ढाडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक जी लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला मैसेज लेना चाहेंगे संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, और लिख रहे हैं अपने पसंद के किसी भी गीत को सुना दीजिए। और आप जो भेज रहे हैं आप सभी लोग, वो हमारे पसंद का भी है क्योंकि बहुत खूबसूरत गीत आपने हम तक पहुंचाए हैं। अगला मैसेज मेरे पास आया है फजिल का, पंजाब खेड़ा परिवार, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा,

लाड़ी खेड़ा, शालनी खेड़ा और दीवानशी खेड़ा गीत भी लिखकर भेज दिया है, हम तो पहुंचा दिया है और कोशिश करेंगे ज़रूर प्ले करें। अगला मैसेज हमारे पास आया है सुनील पाठक जी का। सुनील पाठक जी लिख रहे हैं अनारकली बाज़ार जगराव से। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और भाई सुच्चा से पाठक लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। फिल्म संगीत की फरमाइश भी आपने हम तक तो पहुँचाई है, धन्यवाद आपका। अगला मैसेज हम लेना चाहेंगे, हमारे पास आया है नारायण खर्चे जी का। एयरपोर्ट रोड, वंदना नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश से। नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, हमें किसी भी फिल्म का गीत सुनाइए, ज़रूर आपको सुनवाएंगे। अगला मैसेज एक और ले लें, हाँ, फिर आपको गीत सुनवाते हैं। हमारे पास आया है अगला मैसेज, बहन जी आदाब और नमस्कार, आपको भी नमस्कार, आपके आने से प्रोग्राम में रौनक आ गई, धन्यवाद। निराश और नज़रअंदाज मत करना, मेरे मेल को ज़रूर शामिल करना, शामिल कर लिया है। फिल्म संगीत के फरमाइश के साथ लिखने वाले हमारे श्रोता हैं छोटी बलिया करजत मुंबई से, अहमद भाई फूलवाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फूलवाले, इमरान अहमद फूलवाले, कापस हेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से, बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद फूलवाले और समस्त फूलवाले फैमिली, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक मैसेज पहुंचाने के लिए। अगला मैसेज हम लेना चाहेंगे हमारे श्रोता का, फिल्म संगीत की फरमाइश के साथ, बीड शहर महाराष्ट्र से, नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महेत्रे और अंजलि करवा, बाबा साहेब करवा जी लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल चलते हैं आप लोगों की पसंद से सुनते हैं ये गीत।

फिल्म संगीत की फरमाइश में आपके खूबसूरत गीत ने वाकई में आज कमाल ही कर दिया। इतना खूबसूरत, अच्छा लगा सुनकर। वैसे तो हम आपका नाम ज़रूर लेना चाहेंगे, लिखने वाले हमारे श्रोता हैं, हम बिल्कुल आपके करीब से ही आपको सुन रहे हैं। मैं वेट ही कर रही थी, और नाइट शिफ्ट में अपने कार्य को सुचारू रूप से करते हुए आपका कार्यक्रम भी सुन रहे हैं आप हमेशा ही इस तरह हमारी शानदार प्रस्तुतिकरण के लिए, हमेशा ही की तरह बधाई स्वीकार करें। धन्यवाद आपका। पीटीआई संसद मार्ग, अनिल मोहन जी लिख रहे हैं संसद मार्ग से। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल मोहन जी, और मैं आपके मेल का, आपके मैसेज का इंतज़ार ही कर रही थी। मुझे पता था कि आप भी आज ड्यूटी पर ही होंगे। अगला मैसेज हम लेना चाहेंगे हमारे श्रोता का, कोई भी गीत लिख कर भेज रहे हैं। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद जी लिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेल हम तक तो पहुँचाने के लिए। आरती राही जी का हमारे पास आया है, भाना ब्रह्माण नान नरखाना हरियाणा, माफ़ कीजिएगा नाम सही से नहीं लिया। बाल किशन, रोशनी, मालू, पूजा, मुस्कान, जिगर शर्मा, हमें आपका कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है, हमें कोई भी शादी का गाना सुना दीजिए प्लीज़। तो अपने पसंद का गाना लिखकर आप भेज देते ना। वैसे तो हम ये कहेंगे कि थोड़ा लेट अगर आपका नाम आता है तो लाइन कतार में आप थोड़े पीछे चले जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल एक कोशिश रहेगी आपके पसंद को पूरा करें। आरजे साहिबा जी को प्यार भरा नमस्कार, आदाब दर्ज हो, आपको भी नमस्कार। गुन्नौर से आदिल कुमार तस्दीक अली मुजफ्फर अली लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेल हम तक पहुंचाने के लिए। हाजी जी का आया है अस्तुपुरा ज़िला मऊ से, मज़हर अली अंसारी, रज़िया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाज़ीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवान परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद जी लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मैसेज लेना चाहेंगे हमारे श्रोता का, जिनका नाम हमने शामिल नहीं किया उनका लेना चाहेंगे। मोहम्मद आमिर जी, मोहम्मद आमिर अंसारी, शमीम अंसारी, माहे नूर अंसारी, नसरीन अंसारी, समा अंसारी जी लिख रहे हैं ग्राम करेली बरेली से, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ अगला मैसेज हम लेना चाहेंगे हमारे श्रोता का, प्रकाश जी का, छत्तीसगढ़ पलारी से, प्रकाश वर्मा, अन्नपूर्णा वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा लिखकर भेज रहे हैं फिल्म संगीत की फरमाइश भी। बहुत खूबसूरत गीत आपने लिखकर हम तक तो पहुँचाए हैं, धन्यवाद। साथ ही साथ अगला मैसेज हमारे पास आया है फिल्म संगीत की फरमाइश के साथ, पिहरा बाजार झुमरी तलैया से, तितलैया से, शिवाली कुमारी साहू, श्रीमती मुन्नी देवी शाह, गुड़िया अवनविका बेबी लिख रहे हैं, धन्यवाद आपका। साथ ही साथ अगला मैसेज सोमदत्त जी का आया है, नाभा ज़िला पटियाला पंजाब।

सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमत कौर, मनु और फिल्म संगीत की फरमाइश भी साथ में है, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ मोहम्मद जी का हमारे पास आया है रात के तन्हाई रेडियो के साथ और इंद्रप्रस्थ दिल्ली के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। और वाकई में प्रोग्राम का समय भी इतना खूबसूरत सा है कि आप आराम से बैठकर हमें सुन सकते हैं। इन्होंने हमें कहाँ से ये मेल पहुँचाई है वो हम ढूंढ रहे हैं। कोहत पाकिस्तान से, ओके, दो मोहम्मद जी लिख रहे हैं कोहत पाकिस्तान से। उमा देवी का जिक्र ही तो नूर जहाँ का भी जिक्र लाजमी है, नूर जहाँ का नगमा, ओके, आप सुनना चाहते हैं ज़रूर, लेकिन आपको फिर वही कहेंगे, वक्त में थोड़ा सा पीछे हैं, इसलिए कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश को पूरा करें। फिल्म संगीत की फरमाइश आपने हम तक पहुंचाई है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अगला मैसेज हम शामिल करना चाहेंगे हमारे श्रोता का, जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं। इससे पहले क्यों ना हम ऐसा करें कि हम आपके ही पसंद का सुनते हैं एक और गीत।

हमारे पास अगला मैसेज आया है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम सबीर राही, महराज जहाँ, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से। और आपको पता है हमने आपके सॉन्ग को प्ले करने के लिए सोचा जल्दी से चला दें, क्योंकि वक्त जो है अब कम ही रह गया हम लोगों के पास, और आप मुझसे ही बात कर रहे हैं पूजा भारती के साथ। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू जी लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ फिल्म संगीत की फरमाइश भी आपने हम तक तो पहुँचाई है, धन्यवाद आपका। अगला मैसेज हमारे पास आया है सतीश जी, आपके मैसेज को हमने ले लिया। सतीश अनेजा, विमला अनेजा चंडीगढ़ सिटी से लिख कर भेज रहे हैं, और आपकी फरमाइश पूरी हो चुकी है और काफ़ी पहले पूरी हो चुकी है। ये सॉन्ग नहीं था लेकिन कुछ और सॉन्ग था। फिलहाल अगला मैसेज लेना चाहेंगे हमारे श्रोता का। हमारे श्रोता ने लिखा है मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, निहारिका, हार्दिक, वंश बत्ता जी लिख रहे हैं, कनेरा मोहल्ला पटियाला से, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला मैसेज लेना चाहेंगे हमारे श्रोता का, हमारे श्रोता अनिल मोहन जी का। अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, पहाड़गंज मुल्तानी धाड़ा से लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारा अगला मैसेज हमारे पास आया है रफ़ीक जी का, मोहम्मद रफ़ीक।

पनवार, बेनज़ीर कौसर, मोहम्मद साकी पनवार, अलमास बानो पनवार और मोइन छोटू पनवार, मोहम्मद हसनैन पनवार, ताज मंजिल लकर बाज़ार खंडवा से लिखकर भेज रहे हैं। फ़िलहाल आप लोगों की पसंद से सुनते हैं एक गीत और।

और वाकई में समय ख़त्म हो गया, लेकिन जल्दी से नाम लेना चाहेंगे। एक नाम हमने गलत लिया था, मोहम्मद कमर जी का, तो हमने उसको सही कर दिया है। धन्यवाद आपका, आपने मैसेज करके हमें ये बात बता दी है। आज नाइट शिफ्ट का आखिरी दिन है, ईश्वर से कामना है कि आगे नाइट शिफ्ट हो तो आपका कार्यक्रम सुनने का अवश्य मिले। पुनः आप शानदार प्रस्तुतिकरण के लिए, पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी लिख रहे हैं। शुक्रिया अनिल मोहन जी, और मैं एक दिन और नाइट में आऊँगी, लेकिन आप नहीं होंगे अगर आपकी आज लास्ट ड्यूटी है तो। फिलहाल आपका नाम लेना चाहेंगे मोहम्मद जी। पूजा जी आदाब, आज की प्रोग्राम ज़बरदस्त रही, सभी गीत अच्छे थे। वाकई में आप लोग बहुत खूबसूरत गीत हम तक आप लोगों ने पहुँचाए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और अरुण कुमार पांडे जी, जिनका नाम हमने अभी जस्ट लिया है, और इन्होंने फिल्म संगीत के साथ फरमाइश के साथ ये गीत हम तक पहुँचाई है। कहाँ से लिख रहे हैं ये, नियमित श्रोता ए के पांडे मध्य प्रदेश से लिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल यही कहेंगे, प्रोग्राम में आए, यहाँ पर आपने इसमें खूबसूरत गीत हम तक पहुँचाई, और साथ ही साथ एक कोशिश रही कि आप सभी के नाम को शामिल करें। गीत शामिल करना पॉसिबल नहीं, लेकिन नाम ज़रूर शामिल करना चाहते हैं। किसी का नाम अगर रह गया हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन यही कहेंगे कि प्रोग्राम में ऐसे ही आप शिरकत करते रहें, अपने खूबसूरत गीत हम तक पहुंचाते रहें। फिलहाल आज का प्रोग्राम बस यही ख़त्म होता है। मुझे पूजा भारती को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 12 बजने को हैं, इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारे प्रसारण जारी है। अब समाचार होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा

0: सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कल नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। 2 दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रेनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट पिको से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि ये वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। अपराध जांच विभाग CID ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी से पार्टी विधायकों के हस्ताक्षर में धोखाधड़ी के मामले में कथित तौर पर शामिल होने को लेकर 9 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के विधायक कुणाल घोष और अभिषेक बनर्जी से आमने सामने पूछताछ की। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में कल दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये हादसा मालशिरस तालुका में महासवाड पंडरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi concluded his visit to Nice, France, after holding extensive discussions with French President Emmanuel Macron and participating in a series of engagements aimed at deepening the India-France Special Global Strategic Partnership. More from our correspondent.

हम लोग निदा फाजली के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, ये गीत भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया था, इसलिए आज आपने इसे सुना जगजीत सिंह और आशा भोसले की आवाज़ में। 12 अक्टूबर 1938 को जन्मे निदा फाजली का जन्म दिल्ली के कश्मीरी परिवार में हुआ था। असली नाम मुक्तदा हसन निदा फाजली था। हालांकि उनका जन्म दिल्ली में हुआ, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ ग्वालियर में हुआ था। और जब वो लिखने लगे तो मुंबई में बस गए, लेकिन दिल्ली उनसे बहुत दूर था ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अपनी जगह को कौन ही छोड़ता है। फिलहाल लेकिन ज़रूर कहेंगे कि उनके गीत ने हम लोगों के दिलों में ऐसे घर किया जिसे अभी भी आपने सुना होगा तो खुश हुए होंगे, और आगे भी सुनेंगे तो यूं ही खुश होंगे। फिलहाल सुनते हैं उन्हीं का लिखा ये गीत।

निदा फाजली के बारे में बात कर रहे हैं। उनकी कुछ बेहद मशहूर शायरियाँ, पास रहकर जुदा सी लगती है, जिंदगी बेवफा सी लगती है, मैं तुम्हारे बगैर भी जी लूँ ये दुआ बददुआ सी लगती है, या फिर वो वाला दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। ऐसे कई सारी लाइनें, कई सारे गीत, कई शायरी और कई ऐसे कविताएं निदा फाजली के हाथों ने लिख डाले, और कई ऐसे गीत हैं जो आज भी जुबां पर यूं हैं जैसे कि अभी तो लिखा गया है। सुनते हैं उन्हीं के अल्फाज को इस गीत के जरिए।

सुन रहे हैं आप सुरों का सफ़रनामा पूजा भारती के साथ। हम बात कर रहे हैं निदा फाजली के बारे में। उनका लिखा कई ऐसे गीत को हमने सुना और उनके हाथों ने क्या जादू चलाया। एक शब्द, मुंह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन। आवाज़ों के बाजारों में खामोशी पहचाने कौन। वाकई में कई ऐसे मुकाम आए निदा फाजली के जीवन में जो उन्हें ये लिखने पर मजबूर कर रहे थे। उनके अंदर की खामोशी, उनके अंदर की जज्बात को कोई पहचान नहीं पा रहा था। निदा फाजली की शायरी इतनी मधुर और अर्थपूर्ण थी कि बॉलीवुड के कई दिग्गज संगीतकार ने उनके साथ काम किया। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, मनहर उदास की आवाज़ में निदा साहब का यह गीत बहुत ही हिट हुआ था। क्यों ना हम भी इसे सुन लें।

निदा फाजली अदब की दुनिया का वह नाम है जिसकी आवाज़ रूह तक उतर जाती है, वो आवाज़ जिसमें दर्द है, खुशी है, साहस है और इश्क भी है। जिस मुल्क में भी शायरी की भाषा समझी जाती है वहाँ अपनी दखल रखने वाले शायर हैं निदा फाजली। निदा फाजली का हर शेर, हर एक नज्म, दोहे, लेख अपने आप में एक मील का पत्थर है। मगर कहते हैं ना कि निदा फाजली के शेर की गहराई को समझना हो तो उनका एकमात्र शेर ही काफ़ी है। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलती, जमी तो कभी आसमां नहीं मिलती। निदा फाजली कभी भी हिंदी उर्दू के विवाद में नहीं पड़े और अपना लंबा सफ़र तय किया। उनकी लेखनी में गहराई होने की एक वजह ये भी थी कि उन्होंने ऐसी तकलीफें देखी जो उनके लिए अंदर से उन्हें झकझोर देती है। उन्हीं तकलीफ़ों को बाद में शायरी के ज़रिए ज़बान दी है निदा फाजली ने, और फिर अपने ज़बान को यानी कि अपने लफ्ज़ों से उन्होंने कुछ नहीं कहा, जो भी कहा अपनी लेखनी से कहा, और वो तकलीफ़ ऐसी जिसे कोई बयां नहीं कर सकता। लोगों से, अपनों से दूर होने की तकलीफ़ देखी है उन्होंने। देश के बंटवारे के साथ उन्होंने इस तकलीफ़ को अपने अंदर दबा लिया था। वक्त ही कुछ ऐसा था, लेकिन फाजली साहब ने अपनी ज़ुबान पर तो ताला लगाया लेकिन अपने हाथों से अपने दिल के जज्बात को कलमों से उकेर दिया, और वही जज्बात आज हम गज़ल गानों के साथ सुनते हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं का लिखा एक और गज़ल।

अब खुशी है ना कोई दर्द रुलाने वाला, हमने अपना लिया हर रंग जमाने वाला। फिल्मों में लिखने का सफ़र कमाल अमरोही की फिल्म रज़िया सुल्तान से शुरू हुआ। गीतकार जानिसार अख्तर का अचानक इंतकाल हो गया था, उसके बाद कमाल अमरोही ने निदा फाजली को फिल्म के बचे हुए दो गाने लिखने को कहा। निदा साहब ने वो गीत लिखा जो कब्बन मिर्ज़ा की आवाज़ में गाया हुआ था, बहुत बहुत मशहूर हुआ था उस वक्त। गीत के बोल थे, तेरा हिज्र मेरा नसीब है, तेरा गम ही मेरी हयात है, तुझे मेरी दूर का गम हो क्यों, तू कहीं भी हो मेरे साथ है। वाकई में ऐसे लफ्ज़ ऐसे शब्द कोई उम्दा ही व्यक्ति लिख सकता है। जिसके दिल में दर्द हो वो ही इसे कलमों से उकेर सकता है। इसके बाद फिल्मों के गीत लिखने का सिलसिला जो शुरू हुआ वो कम नहीं हुआ। अब गज़ल की या फिर शायरी की बात हो ही रही है तो आपको ये भी बता दें कि कबीर के दरवाज़े पर दस्तक सबसे नज़दीक से जिसने दिया वो निदा फाजली साहब थे। निदा फाजली भी दोहा कहने में कबीर की तरह ही फकीराना स्वभाव के थे। उदाहरण के लिए एक दोहा आपको बताते हैं, चाहे गीता बाँचिए या पढ़िए कुरान, मेरा तेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान। फिल्मों में लिखना साहब को पसंद नहीं था, फिर भी हुनर तो हुनर है, बाज कैसे आए सो कलम ने लिख दिया।

हर दिल अजीज निदा फाजली, काफ़ी लंबे समय से मन में चल रहे अपनी बातों को छिपाते गए, और फिर एक समय ऐसा आया कि वो लंबे समय तक बीमार रहे। 78 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से इस दुनिया से रुखसत हो गए। निदा फाजली जैसे शख्सियत को इतने कम शब्दों में समेटना बहुत ही मुश्किल है। उनके व्यक्तित्व के कई महत्वपूर्ण पहलू तो छूट भी गए हैं। निदा फाजली किसी किताब या दस्तावेज का नाम नहीं, ये वो मुकम्मल ज़िंदगी है, वो हर युग का ज़बान है, कुदरत के साथ हमजोली करने वाला और कायनात के सभी राज खोलने वाले शायर, महान शख्स। हमेशा अपने इज्तिमाई ज़िंदगी को असाधारण तरीके से भी जीकर समाज और इंसानियत दोनों ही को तमाम नसीहतें और मशवरे देते रहते थे। जीवन के समीकरण को समझने के लिए निदा साहब का ये मानना था, दो और दो का जोड़ हमेशा चार होता है, पढ़े लिखे को थोड़ी नादानी दे मौला। कहते हैं कि निदा साहब अपनी कई चीज़ों को इस तरीके से बताते थे, माहौल और तालीम के शब्दों का खेल और उर्दू के आबो हवा निदा साहब को उनके वालिद से मिली थी, जो कि खुद एक शायर थे। रही सही कसर हिंदी के पदों को आत्मसात करने की, तो वो मंदिरों में गाए बजाए जा रहे सुर और कबीर के दोहों को के साथ उसे पूरी कर दी। निदा फाजली के गज़ल की ज़बान ऐसी थी कि ना कभी उर्दू की डोर उनके हाथों से छूटी और ना ही कभी हिंदी की डोर ज़रूरत से ज़्यादा ढीली हुई। इसमें कोई शक नहीं था कि उर्दू के कुछ बड़े शायरों ने, जिन्होंने हिंदी और उर्दू की दीवार ढहा कर रख दी थी, उसमें निदा फाजली का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। फिलहाल कार्यक्रम अब अपने आखिरी मोड़ पर है। निदा साहब के हाथों से, उनके कलमों से लिखा एक और गीत आपके लिए।

0: सुरों का सफरनामा यहीं पर खत्म होता है। अब सुनिए हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कल नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीपटेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी

0: ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर कल विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 वर्षों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि ये वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाती है। अपराध जांच विभाग सीआईडी ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी से पार्टी विधायकों के हस्ताक्षर में धोखाधड़ी के मामले में कथित तौर पर शामिल होने को लेकर 9 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के विधायक कुणाल घोष और अभिषेक बनर्जी से आमने सामने पूछताछ की। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में कल दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड पंढरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में कल बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi concluded his visit to Nice, France after holding extensive discussions with French President Emmanuel Macron and participating in a series of engagements aimed at deepening the India-France Special Global Strategic Partnership. More from our correspondent.
4: The visit witnessed several important outcomes across technology, innovation, and economic cooperation. The most significant was the adoption of the India-France Innovation Roadmap 2030, providing a framework for collaboration in artificial intelligence, startups, research, skilling, and innovation ecosystems. Prime Minister Modi and President Macron also jointly inaugurated Bharat Innovates, bringing together more than 120 Indian startups, leading academic institutions, investors, and technology leaders. The two countries announced the creation of a joint India-France AI Working Group on AI Governance, launched an economic security dialogue focusing on critical technologies and resilient supply chains, and agreed to establish a high-level annual mechanism to pursue the goal of doubling bilateral trade.

एक तो मोहब्बत का असर होता है, दूसरा अगर कोई सज ले, सवर ले, गजरा लगा ले, गजरा सजा ले, तो फिर क्या ही होगा, नींद तो उड़नी ही है। और कोई इस गीत में कुछ ऐसा ही कहा गया है।

सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गीत सुनहरे, पुराने ज़माने के वो गीत जो आज भी हमें याद हैं, और याद भी क्यों ना हो, उसके शब्द उसके बोल कुछ इस तरीके से हैं जो हमारे दिल में घर कर जाते हैं। जैसे कि आप देखिए ना कि पूरी ज़िंदगी किसी एक पल को याद रखना, आखिर ऐसा क्या है। कुछ पल ऐसे होते हैं जो बहुत खुशनुमा होते हैं, कहीं कहीं कुछ पल ऐसे होते हैं जो दिल में टीस दे जाते हैं, लेकिन टीस वाले पलों को इंसान भूलते ही रहना चाहता है। याद क्या रखता है, वो पल जो दिल में घर कर जाते हैं एक खुशी के तौर पर। जी हाँ, जब वो बरसात की रात जो हमेशा याद रहे, आखिर ऐसा क्या है उस गीत में, आइए सुनते हैं इस गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शुरू, गीत सुनहरे गोल्डन एरा के संगीत पूजा भारती के साथ। और गीतों का एक सिलसिला तो चल चुका है, अब एक स्वर ऐसा भी है जो एक ज़माने में जब आया तो लोगों ने कहा कि उस के आवाज़ में वो खनक नहीं है, लेकिन फिर भी वो गाने हिट हो गए। जी हाँ, खनक तब जब उसे सुना गया था तो सभी का यही मानना था कि इसे इस फिल्म में ना लिया जाए, लेकिन फिर भी लिया गया। कौन थी वो आवाज़? आवाज़ केएल सहगल की आवाज़। जब वो आए थे तो लोगों ने उन्हें फिल्मों में लेने से इनकार किया था, लेकिन जब वो फिल्म में एक किसी गीत में उन्होंने अपनी आवाज़ दे दी, वो भी इस कदर दी थी कि जब कोई एक गीतकार वहाँ पर मौजूद नहीं था, तब मजबूरीवश उन्हें लेना पड़ा था, और तब उन्होंने जब अपनी आवाज़ दी तब वो गाना हिट हो गया। और जब हिट हुआ तो ऐसा हुआ कि गानों की लाइनें लग गई, और फिर क्या था, केएल सहगल को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सका। जी हाँ, उन्हीं के स्वर में सुनते हैं ये गीत।

जब तकदीर से तकदीर को जब बनाने की बात आती है तो इस पर भी तो गीत बने हैं। कई गीत ऐसे बने हैं जो मोहब्बत से लेकर आपके जुनून तक को, उसके बीच के सफ़र को तय करते हैं। लेकिन जब हम तकदीर की बनाने की बात करते हैं तो इस पर भी क्या गीत हो सकती है? अगर हम पुराने ज़माने को जाकर देखें तो कोई भी ऐसा सिचुएशन, कोई भी ऐसे शब्द जिस पर गीत ना हो, ये हम मान ही नहीं सकते। गीत के बोल से लेकर ज़िंदगी के हर एक पड़ाव को पुराने ज़माने ने खंगाला और उस पर गीत बनाए, एक से बढ़कर एक। उनमें से एक गीत ये भी है।

और वाकई में ये दुनिया किसी किसी के लिए बहुत खूबसूरत होती है, और कभी ऐसा होता है कि दुनिया बदरंग सी लगने लग जाती है, और फिर हम कामना करने लग जाते हैं कि ये दुनिया मेरे लायक नहीं है, चलो भाई चल लेते हैं यहाँ से। लेकिन क्या ये हो सकता है? क्या ये संभव है? ऐसा होता नहीं है। लेकिन गीतों का क्या है, हर एक माहौल पर, हर एक समय पर गीतों का बनना लाजमी है, और इस गीत ने यही साबित किया है। आइए सुनते हैं।

हाँ, तो ये तभी होता है जब आपका दिल टूटा हो। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भाई हम यहीं रहें, लेकिन हम तेरे दरवाजे पर तो नहीं आएंगे। और वाकई में मोहब्बत के टूटे हुए लोग कुछ इस कदर टूट जाते हैं कि अपने दिलों पर उनका कोई यही नहीं रहता, कोई क्या कहते हैं उसे, काबू नहीं रहता। और जब दिलों पर काबू ही नहीं रहेगा तो इंसान क्या ही सोचेगा। जी हाँ, गीतों के ज़रिए कई ऐसे समय को सिखाया गया। उस समय को जीते समय हमें उन गानों की, उन गीतों की याद आ जाती है। एक गीत ऐसा भी है जहाँ ये कहा गया है कि हम तो तेरे दरवाजे पर आएंगे ही नहीं, या फिर उस गली में ही आना हमने बंद कर दिया है। सुनते हैं कौन सा वो गीत है।

मोहब्बत करने वालों के दिल में कई बार ये जज्बात होते हैं कि अगर मैं अपने प्रेयसी से या अपने प्रिय से दूर हो गया तो वो मेरे बगैर नहीं रह सकते। और वाकई में यही सत्य है, जहाँ असली चाहत है, जहाँ मोहब्बत है, वहाँ ऐसा ज़रूर होता है। फिर क्या होता है, जब ऐसी मोहब्बत हो तब उसे हम अपनी कोई भी बात मनवाने के लिए ये कह सकते हैं कि अगर मैं तुमसे दूर गई, तुम्हें ना मिलूं, तो क्या तुम रह पाओगे। गीतों के ज़रिए कैसे इन बातों को बताया गया, आइए सुनते हैं।

और फिर वाकई में जब आपने ये गीत सुन ही लिया है तो फिर चलिए लो मैं चली। हाँ, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और अब इस कार्यक्रम को समेटने का समय तो आ गया है, लेकिन एक आखिरी नगमा आपका वेट कर रहा है, उसे सुनते हैं। मुझे पूजा भारती को दीजिए इस कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार।

0: आप जुड़े हैं AIR लाइव न्यूज 24x7 से। 2 बजने को हैं, अब सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कल नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों

0: ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर कल विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। 2 दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रेनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से ब्रास्तिलावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: अपराध जांच विभाग सीआईडी ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी से पार्टी विधायकों के हस्ताक्षर में धोखाधड़ी के मामले में कथित तौर पर शामिल होने को लेकर 9 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के विधायक कुणाल घोष और अभिषेक बनर्जी से आमने सामने पूछताछ की। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में कल दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालशिरस तालुका में मासवाड पंढरपुर मार्ग पर तांडुलवाली के पास हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने 34 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में कल बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi concluded his visit to Nice, France, after holding extensive discussions with French President Emmanuel Macron and participating in a series of engagements aimed at deepening the India-France Special Global Strategic Partnership. More from our correspondent.
3: The visit witnessed several important outcomes across technology, innovation, and economic cooperation. The most significant was the adoption of the India-France Innovation Roadmap 2030, providing a framework for collaboration in artificial intelligence, startups, research, skilling, and innovation ecosystems. Prime Minister Modi and President Macron also jointly inaugurated Bharat Innovates, bringing together more than 120 Indian startups, leading academic institutions, investors and technology leaders. The two countries announced the creation of a joint India-France AI Working Group on AI governance, launched an economic security dialogue focusing on critical technologies and resilient supply chains, and agreed to establish a high-level annual mechanism to pursue the goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. Another key outcome was the establishment of a National Center of Excellence for Skilling in Aeronautics and Allied Sectors at NSTI Kanpur, aimed at strengthening workforce readiness in aviation and aerospace. Beyond innovation and technology, the leaders reviewed cooperation in defense, space, civil nuclear energy, connectivity and global affairs, reaffirming their shared commitment to a future-oriented partnership. The visit underscored the growing strategic convergence between India and France and their common vision for innovation-led growth and global stability. Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
2: After concluding his visit to Nice, France, Prime Minister Narendra Modi has arrived Slovakian capital Bratislava for the maiden visit. He will be received by Slovak Foreign Minister Jura Blanar in a short while. Prime Minister Narendra Modi will be accorded a ceremonial welcome this morning upon his arrival at Bratislava. Slovakian musicians welcomed him with a rendition of Vande Mataram. Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh said India's space economy is poised to grow from the current $8 to $9 billion to nearly $40 to $45 billion over the next decade. Addressing a press conference in New Delhi, the minister said this growth is driven by policy reforms

अभी आप सुन रहे थे नॉनस्टॉप गीत संगीत कार्यक्रम। आप जुड़े हैं AIR लाइव न्यूज 24x7 से। 3 बजने को है, अब कुछ ही पलों में पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में समाचार सुनिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कल नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर कल विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया पहुंच गए हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। 2 दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रेनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। अपराध जांच विभाग सीआईडी ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी से पार्टी विधायकों के हस्ताक्षर में धोखाधड़ी के मामले में कथित तौर पर शामिल होने को लेकर 9 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के विधायक कुणाल घोष और अभिषेक बनर्जी से आमने सामने पूछताछ की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट www.neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में कल दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये हादसा मालशिरस तालुका में महसवाड पंढरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 170 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने 34 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में कल बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के चौथे दिन जर्मनी ने वर्ल्ड कप में पहली बार खेल रही टीम कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi concluded his visit to Nice, France, after holding extensive discussions with French President Emmanuel Macron and participating in a series of engagements aimed at deepening the India-France Special Global Strategic Partnership. More from our correspondent.
3: The visit witnessed several important outcomes across technology, innovation, and economic cooperation. The most significant was the adoption of the India-France Innovation Roadmap 2030, providing a framework for collaboration in artificial intelligence, startups, research, skilling, and innovation ecosystems. Prime Minister Modi and President Macron also jointly inaugurated Bharat Innovates, bringing together more than 120 Indian startups, leading academic institutions, investors, and technology leaders. The two countries announced the creation of a joint India-France AI Working Group on AI governance, launched an economic security dialogue focusing on critical technologies and resilient supply chains, and agreed to establish a high-level annual mechanism to pursue the goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. Another key outcome was the establishment of a National Center of Excellence for Skilling in Aeronautics and Allied Sectors at NSTI Kanpur, aimed at strengthening workforce readiness in aviation and aerospace. Beyond innovation and technology, the leaders reviewed cooperation in defense, space, civil nuclear energy, connectivity, and global affairs, reaffirming their shared commitment to a future-oriented partnership. The visit underscored the growing strategic convergence between India and France and their common vision for innovation-led growth and global stability. Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
2: After concluding his visit to Nice, France, Prime Minister Narendra Modi has arrived Slovakian capital Bratislava for the maiden visit. He was received by Slovak Foreign Minister Juraj Mlinar. During his two-day visit, Mr. Modi will meet Slovakian President Peter Pellegrini and hold talks with Slovakian Prime Minister Robert Fico in Bratislava. The Ministry of External Affairs conducted a special briefing on the outcomes of the Prime Minister Narendra Modi's visit to Nice, France. During the briefing, Foreign Secretary Vikram Nisri described the India-France Innovation Roadmap 2030 as a key outcome of the visit, aimed at deepening collaboration in critical and emerging technologies.

कुछ आवाज़ें दिल में घर कर जाती हैं, जैसे कि अभी आप सुन रहे थे हरिहरन की आवाज़ में ये गज़ल, और आने वाली गज़ल में आप सुनेंगे गुलाम अली साहब को।

चांद से जब दोस्ती है तारों की, क्योंकि वो रहते हैं बिल्कुल साथ में, तो चांद हो अगर परेशान तो कैसे सो जाएं तारे भी। आपने सुनी ये बहुत खूबसूरत गज़ल चित्रा सिंह के स्वर में। आइए अगली गज़ल की ओर लेकर चलते हैं और सुनवाते हैं चंदन दास का स्वर।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं वो आवाज़ जिसको सुनते ही शायद आप 80-90 के दशक में जाना चाहते हों, उस बचपन के दौर में जब हम वो आवाज़ सुनते थे। आज वो आवाज़ सुनकर सब यादें ताज़ा हो जाती हैं। जी हाँ, सुनवाने जा रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में ये अगली गज़ल।

और अब सुनवाते हैं इस गीत के बाद इस कार्यक्रम का आखिरी गीत। जी हाँ, क्योंकि आप सुन रहे हैं गीत व गजलों का कार्यक्रम अपनी दोस्त कीर्ति के साथ। इस रात के सफर में आइए चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी गीत की ओर। आवाज़ मनहर उदास की।

0: इसी गीत के साथ अब गीत व गजलों का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की दीजिए अपनी दोस्त कीर्ति को इजाजत। सुबह के 4 बजने वाले हैं, अब हमारे अगले कार्यक्रम को आप जल्दी सुनेंगे।
1: नमस्कार श्रोताओं, लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आज के अर्चना कार्यक्रम में हम सुनेंगे श्रीमती सुधा रघुरामन का भक्ति संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में श्रीमती सुधा रघुरामन प्रस्तुत करेंगी डॉक्टर एम बाला मुरली कृष्णा की रचना बृहदेश्वरा महादेव।

इस कार्यक्रम का समापन श्रीमती सुधा रघुरामन गुरु सुरजानंदा की रचना गंगाधीश्वरम शंकरम से करेंगी।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एआर लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। अब प्रस्तुत है कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्मा। इसके अंतर्गत आइए आपको सुनवाते हैं अमृता वर्षिणी अमु का गायन। मृदंगम पर वी एम कन्नन ने संगत की है और वायलिन पर हैं ए जी सुब्रमण्यम।

अभी आप सुन रहे थे कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत अमृता वार्षिणी अमू का गायन। मृदंगम पर संगत की थी वी एम कनन ने और वायलिन पर साथ दे रहे थे ए जी सुब्रमण्यम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की तिथि 15, तदनुसार 15 जून 2026। सुबह के

आइए अब आपको आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण दे दें। अब से कुछ ही देर में यानी कि सुबह के 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस। 5:20 पर सुनिएगा देशभक्ति संगीत और 5:30 पर समय रहेगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी का। सुबह 6:10 पर वंदना कार्यक्रम होगा। चिंतन आप सुन सकेंगे 6:40 पर। रामचरितमानस का समय होगा 6:45। सुबह 7:10 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम संगीतिका। गीतों भरी गुड मॉर्निंग का समय होगा सुबह 7:30 पर।

सुबह 8:45 पर समय होगा कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत के स्वर गंगा का। 9:15 पर कार्यक्रम रहेगा आर गेस्ट, मिट्टी दी महक पंजाबी कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 9:30 पर। आपकी पसंद कार्यक्रम रहेगा सुबह 10:10 पर।

0: आयोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां आप सुन सकेंगे सुबह 11:10 पर। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुर मंजरी सुनेगा 11:30 पर। दिन में 12:10 पर महिला कार्यक्रम घर आंगन आप सुन सकेंगे। एक ही फिल्म से आप सुनेंगे दिन में 1:10 पर। एक ही कलाकार का समय होगा दिन में 2:30। उर्दू मजलिस कार्यक्रम होगा 3:30 पर। युववाणी लाइव आप सुनेंगे शाम 4:15 पर। लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंजनी का समय रहेगा शाम 5:10। दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी आप सुन सकेंगे शाम 5:30 पर। और संस्कृत सौरभम का समय रहेगा शाम 6:10 पर। कार्यक्रम ग्राम संसार का समय होगा शाम 6:30 का। शाम 7:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम रहेगा। कवाली व गजलों का आनंद लीजिएगा शाम 7:30 पर। पब्लिक स्पीक आप सुन सकेंगे रात 9:30 पर। गुलदस्ता कार्यक्रम होगा रात्रि 10:10 पर। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंजन सुनिएगा 10:30 पर। फिल्म संगीत आपकी फरमाइश कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 11:10 पर। ये थे आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह के 5 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया की 2 दिन की यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की वहां की ये पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कल नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीपटेक स्टार्टअप अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर कल विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। फ्रांस का एवियन शहर आज से शुरू हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। पूरे विश्व के नेता और शिष्टमंडल 3 दिन के आयोजन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों G7 देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करेंगे। G7 देशों में फ्रांस के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान शामिल है। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल G7 शिखर सम्मेलन के संपर्क सत्रों में भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 5:10 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं, आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस। आज आप जानेंगे शोल्डर मूवमेंट यानी कि कंधे का मूवमेंट और ताड़ासन के बारे में।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी चौखन, आपके योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे शोल्डर जॉइंट्स प्रॉब्लम पर। शोल्डर जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो बहुत ही मोबाइल जॉइंट है और सबसे ज्यादा मूवमेंट इसी जॉइंट में पाई जाती है। इसकी मोबिलिटी के साथ साथ शोल्डर जॉइंट की स्टेबिलिटी का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, और इसके लिए शोल्डर जॉइंट की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए हमें प्रतिदिन क्या जरूरी है, योग करना जरूरी है। शोल्डर जॉइंट की समस्या जैसे शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर और बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स में भी शोल्डर प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। शोल्डर जॉइंट की सर्जरी होने के बाद भी शोल्डर जॉइंट मूवमेंट में कई बार रुकावट आ जाती है। इन समस्याओं से निदान पाने के लिए आप योग में शोल्डर जॉइंट के लिए सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। आज मैं आपको एक सूक्ष्म क्रिया का अभ्यास बताऊंगी। उसके लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर और दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। श्वास छोड़ते हुए यानी ब्रीद आउट करते हुए दोनों कोहनियों को वक्षस्थल के सामने मिलाएं। अब श्वास भरते हुए यानी ब्रीद इन करते हुए दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्र आकार घुमाएं। ब्रीद इन करते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर की ओर लेकर जाएं और ब्रीद आउट करते हुए नीचे की ओर लेकर आएं। दोनों कोहनियों को चेस्ट रीजन के सामने स्पर्श करने की कोशिश करें। पीछे की ओर भी कोहनियों को खींच कर घुमाएं। इस प्रकार पूर्ण रूप से दोनों कोहनियों को पहले 4 से 5 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं, यानी घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में भी 4 से 5 बार घुमाएं। श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लेकर आएं। इस योगिक क्रिया के अभ्यास में शोल्डर जॉइंट की मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और उसमें होने वाले रक्त संचालन भी बढ़ता है। अगर आप यह अभ्यास प्रतिदिन मॉर्निंग में करते हैं तो आपके शोल्डर जॉइंट हेल्दी रहता है और उसमें होने वाली रुकावट से भी छुटकारा पाया जा सकता है। तो आज हमने शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी को, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को, उसकी मांसपेशियों को आप किस प्रकार मजबूती प्रदान कर सकते हैं एक सिंपल छोटी सूक्ष्म व्यायाम क्रिया के साथ, जिसको हम शोल्डर मूवमेंट्स कहते हैं। तो आज के लिए

0: नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। आज हम करेंगे सबसे सरल व सुखद आसन ताड़ासन, जिसे कहीं भी ऑफिस में, घर में, किसी भी प्रकार के कार्यस्थल पर सावधानी से किया जा सकता है, जिसको करने से पैर के तलवे से लेकर सर की चोटी तक समस्त मांसपेशियां स्वस्थ होती हैं, विशेष रूप से हमारी पसलियां एवं विष्ठ की मांसपेशियां। जानते हैं इसे करने का तरीका? दोनों पैरों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं, दोनों हाथ की हथेलियों को साथल से, जंघा से मिलाकर रखें, धीरे से श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में फंसाएं और श्वास भरते हुए सामने की ओर से ऊपर की ओर ले जाएं, ऊपर की ओर थोड़ा खिंचाव दें, धीरे धीरे एड़ियों को ऊपर उठाएं, समस्त भार अपने पैर के पंजों पर ले आएं। तीन लंबे गहरे श्वास लें और प्रत्येक श्वास के साथ शरीर में और ऊपर और ऊपर और ऊपर स्ट्रेच करें, खिंचाव दें। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस पुरानी स्थिति में आ जाएं। दोबारा इस आसन को करने के लिए अपनी उंगलियों को आपस में फंसाएं, श्वास भरते हुए पुनः ऊपर की ओर ले जाएं। इस बार एड़ियों को ना उठाएं, पूरा ऊपर की ओर खिंचाव दें। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाहिनी ओर झुकाएं, कुछ देर रुकें, श्वास भरते हुए फिर ऊपर की ओर खिंचाव दें और श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं ओर झुकाएं, पूरे शरीर में खिंचाव अनुभव करें। श्वास भरते हुए फिर बीच में आएं और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाएं, पुरानी स्थिति में वापस आ जाएं। इस आसन को दो या तीन आवृत्ति दोहराएं, रिलैक्स अनुभव करेंगे। कहीं भी इस आसन को कर सकते हैं अपने शरीर के तनाव को दूर करने के लिए, अपने को स्वस्थ अनुभव करने के लिए तनाव अथवा थकान की अवस्था में। धन्यवाद। और विशेष रूप से यह आसन बच्चों के लिए और भी ज़्यादा लाभकारी है, उनकी लंबाई बढ़ाने में। विशेष रूप से 25 वर्ष तक की उम्र के लोग इस आसन को रोजाना 2-3 बार करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी लंबाई भी बढ़ने की संभावना है। धन्यवाद।
1: आपने अभी सुना कार्यक्रम आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस।
2: मैं हूं आपका जलदाता, ग्रैंड वाटर। कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहां धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देती। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं। क्या लिखूं अपना दर्द, अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता, बस 2 शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।
1: आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर। सुबह के 5:20 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं देशभक्ति संगीत।

सुबह के 5:30 हो चुके हैं। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर। अब प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत बांसुरी वादन। कलाकार हैं प्रवर टंडन। इनसे सुनते हैं राग ललित में।